सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। आपने आखिरी बार अपनी पूरी स्वास्थ्य जांच कब कराई थी? डॉक्टर ने पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पूरी जांच कभी नहीं कराई, उस व्यक्ति ने कहा। ऐसा क्यों? चकित डॉक्टर ने पहले पूछा और फिर बोला, 40 की उम्र के बाद कम से कम 2 साल में एक बार तो अपनी पूरी जांच करा ही लेनी चाहिए। इस पर वह व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब, मैं यह जांच नहीं कराना चाहता क्योंकि फिर वे मुझे कई सारी रिपोर्ट थमा देंगे जो बता रही होंगी कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कि मुझे मधुमेह हो गया है और न जाने क्या क्या। मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, यदि एक बार यह जांच हो गई तो मुझे लगने लगेगा कि मैं बीमार हूँ। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह किसी चीज से बचकर भागना केवल थोड़े समय के लिए ही हो सकता है, और यह भी जानते हैं कि जीवन में किसी भी चीज से आप स्थायी रूप से नहीं भाग सकते। फिर भी आप इसका प्रयास क्यों करते रहते हैं? आप आशा के विपरीत आशा क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों है कि जो आपको जानना चाहिए उसे आप जानना नहीं चाहते? केवल अपनी आंखें बंद कर लेने से सारा संसार अंधा नहीं हो जाता? आखिरकार आपको इसका सामना तो करना ही पड़ेगा, तो फिर अंत में ही क्यों? कोई भी बात हो उसे कल पर क्यों टाला जाए? कुछ भी हो उसमें देर क्यों की जाए? आज आप जिस चिंगारी से अपनी आंखें मूंद रहे हैं, कल वही आपके सामने भीषण आग बनकर आ खड़ी होगी। यह सच है कि अधिकांश लोग जीवन की सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाते। जिस सच्चाई का सामना हमें करना है वह यही है कि हम जीवन की सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। यदि इस सच का सामना कर लिया जाए तो फिर इस बारे में कुछ किया जा सकता है। हमें लग रहा है कि अभिभावक के रूप में हम अपने बच्चों को जितना प्रभावित कर सकते हैं उससे कहीं अधिक उसके मित्र उसे प्रभावित कर रहे हैं। कोई संदेह नहीं कि यह एक कड़वा सच है, लेकिन इसका सामना करने से ही इस बारे में कुछ किया जा सकता है। हमें लग रहा है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा हमारे मार्केट शेयर को निगले जा रही है। हमें लग रहा है कि हमारे कुछ कर्मचारी हमारे ही प्रतिस्पर्धी के साथ काम करने का मन बना रहे हैं। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उससे हम मित्र बनाने के साथ साथ कुछ शत्रु भी बना रहे हैं। हालांकि हमने उससे कह तो दिया कि गलती उसकी थी, लेकिन मन ही मन हम जानते हैं कि गलती हमारी थी, और ऐसी बातों की सूची का कोई अंत नहीं है। यदि सच्चाई का सामना करना ही है तो देर किस बात की।

यदि आप सच्चाई का सामना करेंगे तभी उस बारे में कुछ किया जा सकेगा। यदि आप सच का सामना करने से बचते रहते हैं तो वह और विकराल हो जाता है और बार बार आपके सामने आ धमकता है। कम से कम अब तो उसका सामना कर लें। हो सकता है कि अभी भी कुछ किया जा सकता हो। जिसे आप अनदेखा कर देते हैं वह आपसे कहीं दूर नहीं चला जाता बल्कि और भी भयंकर हो जाता है और बार बार आपके सामने आ खड़ा होता है। आप जिस सच्चाई से भागते रहेंगे वह भविष्य में आपके पीछे पड़ी रहेगी और तब आप सोचेंगे कि काश मैंने वैसा कर लिया होता, काश मैं कर सकता। आप डॉक्टर से नियमित सलाह तो ले ही सकते हैं, स्वास्थ्य निर्देशों का पालन कर सकते हैं, अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, अपने मित्र के साथ खुलकर बात करके आप मतभेदों को दूर कर सकते हैं, आप अपनी ओर से पहल करके आगे बढ़कर अपने बच्चों के सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं, आप नए ग्राहक तलाश सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश सकते हैं जो आपका मार्गदर्शक बनकर आपको दुविधा से निकाल सके और आप सॉरी बोलने का साहस करें, जो देखने में भले ही छोटा सा शब्द लगता हो लेकिन इसका असर बड़ा होता है। हर स्थिति में कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता है। जीवन की कड़वी सच्चाई का सामना साहस के साथ करें, क्योंकि सिर्फ तभी उसके बारे में कुछ किया जा सकेगा। जब भी कोई समस्या सुलझी है तो बस इसीलिए कि किसी न किसी ने सच्चाई का सामना करना चाहा है और इसकी शुरुआत सच का सामना करने से ही हुई है। इस सच का सामना करने से कि आप अब तक इसका सामना करने से बचते रहे हैं, तब आप पहली बार जीवन की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। किसी चीज से भागना आप जैसे और मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है। यदि सच्चाई का सामना करना ही है तो देर किस बात की, उसका सामना कर ही डालें। जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको चुनौती दी जाती है, आपको कोने में धकेल दिया जाता है और फिर जब वह देखता है कि आप अपना खेल बखूबी खेल रहे हैं तो वह आपको बाजी जीतने देता है और इस तरह खुद भी जीत जाता है।

0: लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। And it's a very, very comfortable journey. और जैसे ही वो spiritual journey से आप नीचे उतरते हो, तब आप jerk feel करते हो। So one of the purpose of life is, can I enjoy this spiritual journey? And that is what is very, very important.

जापान ने 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में स्टील उत्पादन में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। स्टील उत्पादन के लिए अनिवार्य दो मूलभूत जरूरतें हैं, लोहा और कोयला, और दोनों ही जापान में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जापान जानता था कि इन्हें कहां से आयात किया जा सकता है, और वह यह भी जानता था कि इसके बाद अपने तैयार माल का निर्यात कहां करना है, यानी जहां मांग ज्यादा हो। परिणाम 1960 के दशक के अंत तक जापान विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक देश बन चुका था। एक दशक के अंदर ही यह एक औद्योगिक क्रांति थी। यह हुआ कैसे? बेहतर संसाधन प्रबंधन से। मान लीजिए कि किसी उत्पाद की उत्पादन लागत 10 रुपये है और इस पर 1 रुपये का लाभ लेकर इसे 11 रुपये में बेचा जाता है। लाभ का 1 रुपया और पाने का एक तरीका तो यह है कि 11 रुपये की बिक्री और की जाए, जिसका अर्थ हुआ कि बिक्री को 100% बढ़ाया जाए। दूसरा तरीका यह है कि पता लगाया जाए कि उस उत्पाद का उत्पादन मूल्य 9 रुपये तक कैसे लाया जाए, जिसका अर्थ हुआ कि लाभ का 1 रुपया अतिरिक्त पाने के लिए विक्रय मूल्य वही रखते हुए उत्पादन क्षमता में 10% का सुधार किया जाए। यहाँ हम काम को आधे अधूरे ढंग से करने का या उत्पाद की गुणवत्ता से कोई समझौता करने की वकालत नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेहतर संसाधन प्रबंधन की बात कर रहे हैं। नई नई और मध्यम आकार की व्यापारिक इकाइयों में उनकी पूंजी की लागत यानी कर्ज पर चुकाया गया ब्याज उनके लाभ को लील जाता है। आप यदि उनके कामकाज का लेखा जोखा देखें तो आप पाएंगे कि समस्या पूंजी की कमी नहीं है, बल्कि गलत पूंजी प्रबंधन की है। पूंजी को अर्जित करने में अकुशलता और अर्जित पूंजी के प्रबंधन में असावधानी, यह उन्हें ऊंची ब्याज दर वाले उधार में फंसा देती है। इस प्रकार उनका लाभ उनके हाथ में आने से पहले ही फिसल जाता है। साल दर साल कुल बिक्री तो बढ़ती जाती है, लेकिन वह लाभ में परिवर्तित नहीं हो पाती, और इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिखाई पड़ता। अब कुशलता पूर्वक पूंजी प्रबंधन वाले विशाल संगठनों को देखें। हर वर्ष वे बिक्री में भी बढ़ोतरी करते जाते हैं और लाभ में भी। कैसे? बेहतर संसाधन प्रबंधन से। आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी पूंजी है, जो भी श्रमिक है, उनका आप सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना फायदा जरूर करेंगे।

0: ओए रुको रुको ओए रुको ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

भारत के लोग यही रोना रोते रहते हैं कि जनसंख्या ही उनकी मुख्य समस्या है। विश्व ने इसका क्या किया? उन्होंने भारत की इसी जनसंख्या को कम कीमत वाले श्रम क्षमता के स्रोत के रूप में देखा। विश्व ने बहुत सारे काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारत में कराने शुरू कर दिए और अपने लाभ में वृद्धि कर ली। बेहतर संसाधन प्रबंधन, अपने भीतरी और बाहरी दोनों क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लुभाकर दुबई ने अपने वीरान और बंजर रेगिस्तान की काया पलट कर दी और उसे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। बेहतर संसाधन प्रबंधन, समस्या यह नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, समस्या है समय नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की। समस्या यह नहीं है कि आपके पास पर्याप्त स्थान नहीं है, समस्या है स्थान नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की। समस्या यह नहीं है कि आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और इसीलिए आप धनी नहीं है, समस्या है पूंजी नामक संसाधन के कुशल प्रबंधन की। वह कितनी भी कम हो लेकिन आपको धनी बनाने के लिए पर्याप्त है। बिना लोहे और कोयले के जापान 1960 के दशक में विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक देश बन गया। शून्य संसाधनों की मदद से जापान ने पर्याप्त परिणाम दिए, तो हमें यह विश्वास तो कर ही लेना चाहिए कि पर्याप्त की मदद से हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आपके जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई संसाधन या तो गंवाया जा रहा है या उसका गलत प्रबंधन किया जा रहा है। देखें और तलाश करें कि वह क्या है और उसमें सुधार करें। वास्तव में अपना सबसे अच्छा संसाधन तो खुद आप ही हैं। क्या आप अपना पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं? जीवन में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचता, हमारा मन ही यह रेखा खींच लेता है। जीवन कभी कूप मंडूक नहीं बनता, लोग ही कूप मंडूक बन जाते हैं। जीवन कोई बंद दायरा नहीं है, आप जितना चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं, यह पूरी तरह खुला हुआ है। आपके जीवन में उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी आपका मन सोच सकता है, जितनी आपका दिमाग विश्वास कर सकता है और जैसा कि जीवन के प्रति आपका रवैया है। जीवन के लिए सबसे सटीक शब्द है ज्यादा। तो अपने जीवन के प्रति अपना रवैया बदल दें और जीवन को अच्छे ढंग से पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर सुन

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजी श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कहते ही हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा समझते हैं कि स्वास्थ्य और सहज ये तो दो ऑपोजिट चीजें हैं जिसे हम एक साथ मिलाकर हम एक ऑक्सीमोरॉन बना रहे हैं। कई लोग तो ये भी समझ लेते हैं कि ये हैप्पी मैरिज जैसी बात करी जा रही है, मगर बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि वास्तविकता में किसी भी संबंध को खुशी के लिए ही जोड़ा गया होता है। आज हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें इन चीजों में ज्यादा तकलीफें महसूस होती हैं। सहज स्वास्थ्य का भी अर्थ कुछ ऐसा ही है कि स्वास्थ्य हमेशा से सहज रहा है, मगर धीरे धीरे हमने कुछ ऐसी चीजें बदलते बदलते आज अपने स्वास्थ्य को मुश्किल कर लिया है। आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य के परिचायक अस्पताल हैं या चिकित्सक हैं या चिकित्सा कर्मी हैं, मगर हमेशा से भारत में या दुनिया में भी इसका डेफिनेशन ऐसा नहीं रहा है। प्रायः लोग स्वास्थ्य को एक घरेलू मुद्दे की तरह देखते थे और छोटी मोटी चीजों के लिए तो घर में ही इलाज कर लेते थे। आज ये देखने को मिलता है कि हम हर छोटी मोटी चीज के लिए या तो अस्पतालों की ओर भागते हैं या फिर तुरंत दवाई की दुकान पर जाकर दवाइयां खरीदते हैं। और तो और हालात यहाँ तक पहुंच गए दोस्तों कि हम में से लगभग हर एक के घर में दवाइयों का एक डब्बा मौजूद ही रहता है। सिर दर्द हो गया तो ये ले लो, पेट दर्द हो गया तो ये ले लो, बुखार हो गया तो ये ले लो। ये दवाइयां तो हम बिना डॉक्टर के जांच पड़ताल के उनके परामर्श के खुद ही अपने अनुभव के आधार पर लेने लगते हैं और समझते हैं कि ये होने से इस चीज में हमें राहत मिलती है। कई लोग तो एंटासिड्स और एंटासिड जैसे अनेक द्रव्यों का भी उपयोग करते हैं जिनको एसिडिटी इत्यादि की समस्या होती है। कई लोग तो और अनेक ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करते हैं जो है तो मेडिकल दवाइयां, मगर उसे घरेलू स्वास्थ्य से संबंधित इलाज के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या ये सब कुछ सही है या हमें चिकित्सकीय राय सही तरीके से लेना है या स्वास्थ्य का जो मापदंड है उसे ही हम बदल चुके हैं, यही सब कुछ हम समझते हैं सहज स्वास्थ्य में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी हैं। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं। भारत के प्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ होने के साथ साथ भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। आइए आज करते हैं उनसे बातचीत और लेते हैं उनसे मार्गदर्शन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज हम सहज स्वास्थ्य को मुश्किल समझ लेते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर, अस्पताल या स्वास्थ्य कर्मी ही स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं और स्वास्थ्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी हो जाए वो लोग जिम्मेदार हैं, हम वहां जाएंगे, वो ठीक करेंगे और वापस भेज देंगे। साथ ही हम अपने घरों में इतनी सारी दवाइयों की दुकान लगा रखे हैं कि भाई जब चाहे हम दवाई की दुकान पे जाके खुद ही दवाई ले लेते हैं। और आजकल घरेलू दवाइयों के नाम पे हमारे पास एक डब्बा पड़ा रहता है जिसमें अनेक दवाइयां हम रख लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी अगर हम बोल दें कि आज मेरे को ये तकलीफ हो रही तो वो अपनी दवाइयां और प्रिस्क्राइब कर देते हैं फोन पे कि जाओ ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या ये स्वास्थ्य का डेफिनेशन सही है?
1: श्री भैया, इस समय हम एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। आपने जैसे आज एंटासिड की अभी बात की, सर दर्द होने पे दवाई गोली खाने की बात करी, लोग इस समय अपने आप बहुत कुछ सेल्फ मेडिकेट कर ले रहे हैं। ये बहुत इजी हो गया है। हम सबके पास अब एक दवा की कुंजी है जो हमारा मोबाइल फोन है, हम उससे अपनी समस्या का नाम डालते हैं। और भैया, अब तो ये स्थिति हो गई है कि हम जाकर एक डॉक्टर से दवा लिखवा के लाते हैं, वो जो दवा लिखता है उसका सस्ता स्वरूप क्या मिल सकता है या और क्या हम उसकी जगह खा सकते हैं ये भी ढूंढने लगे हैं। हमारे भारत की एक और जो समस्या मैं महसूस कर रहा हूं कि आदमी अब दवा खाने से पहले ये सोचता ही नहीं है कि उससे नुकसान क्या होगा। जैसे भैया आपने मेरा बताया कि मैं ऑस्टियोपैथ हूं, मैं कमर दर्द के मरीज को देखता हूं और पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नसों में तनाव है, पैर में तनाव आ रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उन्होंने बताया मैं दवा खा रही हूं। मैंने कहा ये दवा आपको किसने लिखी? तो उन्होंने किसी ने नहीं लिखी, जो मेरे को जिम में एक्सरसाइज कराता है उसने बताया। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वो एक बहुत ही ऐसी मेडिकेशन है जो हमारे यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकती है, वैसी दवा को उस आदमी ने बताया। वही सेम मेडिसिन भाई थोड़े दिनों बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की और उस पेशेंट ने फिर अपने किसी और घर वाले को भी प्रिस्क्राइब कर दी, ना ये जानकर कि उस दवा से और दवाइयों का क्या इंटरेक्शन होगा और आपको अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप क्या करेंगे। मैं ये देखने लगा हूं कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अपने पेशेंट को बहुत जल्दी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो मसाज करने वाले, फिजियोथेरेपी करने वाले, आयुर्वेद के ज्ञानी, होम्योपैथी के ज्ञानी, इवन एलोपैथ के ज्ञानी अपने मरीज को तुरंत दवा लिख दे रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उससे क्या नुकसान होगा। अच्छा, और मरीज भी चाहता है कि मुझे तुरंत दवा लिख दी जाए या मुझे तुरंत लाभ दिया जाए। आप किसी भी एक व्यक्ति को कहिए कि जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा चला रहे हैं, लोग आप पूछे कि आप वजन कम करना है, आप बोलिए आप हमारे हिसाब से भोजन करेंगे, इलाज कराएंगे, आपको महीने में 8 से 10% आपका वजन कम होगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद वो तुरंत पूछता है कोई दवाई है क्या जिसको मैं खा लूं और मुझे ये व्यायाम न करना पड़े, एक्सरसाइज न करना पड़े, ये नीरस भोजन न करना पड़े, मुझे तुरंत इससे छुटकारा बता दीजिए। सो मैं ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है कि व्यक्ति को तुरंत लाभ चाहिए और इससे भी गुरेज नहीं कर रहा है कि हमको दवा दे दी जाए और उसका क्या नुकसान होगा उसके बारे में उसको एकदम चिंता नहीं करनी है। अब बस डायबिटीज के मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई अच्छी गोली लिख दीजिए कि हम मीठा खा सकें। ये तो मतलब इसको हम कैसे समझाऊं लोगों को कि आपके शरीर में आप मीठा अब नहीं खा सकते हैं और हम आपको गोली खिलाकर आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद से, विभिन्न योगासनों से आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैं मीठा खिलवा दूं कि आप उसको तुरंत ऊपर बढ़ा दें। तो ये सारी समस्याएं आजकल होने लगी है। हम सोच नहीं रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हमको तुरंत लाभ चाहिए और उस लाभ के स्वरूप हमको उससे क्या हमें नुकसान हो रहा है हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। श्री भैया आपने एक बात और बोली कि अब हर एक के घर में एक दवाई का डब्बा है। भैया अब एक दवा की अलमारी हो गई है, वो इतनी दवाइयां बढ़ गई हैं और दवाइयां बीमारियों के साथ साथ आजकल हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति से वो भोजन नहीं ले पा रहे हैं या वो प्रकृति से वो भोजन लेना नहीं चाहते हैं, वो तुरंत सप्लीमेंटेशन के नाम पे दवा खा रहे हैं। और मुझे विदेशों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप चाहकर भी एंटीबायोटिक दुकान पे जाके नहीं खरीद सकते जब तक कोई एक डॉक्टर ने उसे लिखा नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ आप जाइए आप तुरंत जो दवा चाहेंगे वो ले लेंगे। मैंने अभी एक पेशेंट करीब 5-6 दिन पहले देखा, उसमें जो डॉक्टर साहब मुझसे पहले जिन्होंने देखा था उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखा था सेल्फ मेडिकेटेड थ्रू मेडिकल शॉप फॉर 6 मंथ। मतलब उस मरीज ने 6 महीने तक जो दवा की दुकान में काम करते हैं उनके सहयोग से अपना इलाज किया और उन्होंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो इस समय हम सबको ये, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, कोई भी दवा खाने से पहले कृपा करके प्लीज उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके नुकसान के बारे में पढ़ लीजिए और जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई दवा को या कोई औषधि को मत खाइए।
0: अब जब आप दवाई के बारे में कह रहे थे, अब हम दवाई के एक डब्बे से हटकर अब दवाई की अलमारी या दवाई का एक कबर्ड बन गया है, ये चीज हम समझ गए हैं। प्राय घरों में ये चीज देखने को मिलती है कि घर में अगर 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं जिसमें से 2 बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 युवावस्था के 2 लोग और रहते हैं, तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों की दवाइयों का एक खाना बना हुआ है उस कबर्ड में, बड़ों का जो उम्रदराज लोग हैं उनकी दवाइयों का एक खाना बना हुआ है और दूसरी चीजें जो इन युवाओं के लिए चाहिए वो दवाइयां रखी हुई। प्राय ये चीज सोचने में आती है कि जो बुजुर्गवार हैं उन लोगों के लिए सिर्फ दवाइयों का एक खाना नहीं है, वहां पर उनका दवाइयों का एक ट्रे बना हुआ होता है कि सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, खाने से पहले ये खाना है, खाने के बाद ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को सोने के बाद खाना है, सोते समय खाना है। अब ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ये भी हम देखते हैं कि आज हम ये मान लेते हैं कि जैसे पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बातचीत कर रहे थे, लोग सोचते थे कि हाँ डायबिटीज तो चलो ठीक ही है ना, दवाई लेना है और जीते रहना है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब डायबिटीज के साथ साथ एक और चीज, या कई कई घरों में डायबिटीज न सही तो बीपी की भी एक बीमारी है, उसके लिए भी गोलियां लोग ले लेते हैं। लोग अक्सर पूछते भी हैं, मतलब ये कॉमन सी चीज हो गई है, जैसे लोग हालचाल पूछते हैं ऐसे पूछते हैं किसी को, अगर आप किसी के घर चले जाएं आपको चाय नाश्ता इत्यादि ऑफर करने से पहले पूछ लेते हैं, आपको बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है आपको? तो अब ये बीपी जो चीज है ये भी डायबिटीज जैसा ही एक कॉमन नेम बन चुका है। तो पहले हम ये समझें बीपी क्या है, ये भी कोई बीमारी है, क्या चीज है, ये लोग इतने आसानी से बीपी बीपी कह देते हैं।
1: बीपी को अगर हम, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मली मेरा भी रक्त एक प्रेशर के साथ हमारी धमनियां जो हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें चल रहा है, और मेरा खून, आपका खून, हम सब का खून किसी न किसी प्रेशर के साथ उस धमनी में चल रहा है। जब भी शब्द बीपी का प्रयोग किया जाता है तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की तरह इसको समझा जाता है। ये मतलब आपको बीपी हो गया है, ये मतलब हम सबके पास ब्लड प्रेशर है, हम सबके पास बीपी है, मगर जब ये बोला जाता है कि आपको बीपी हो गया है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। और नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्पिग्नोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर वाली मशीन से मापा जाता है, और ये 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसको माना जाता है। और अब एक रेंज की बात करते हैं तो मतलब 130 से लेके 110 के बीच में हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, और नीचे 90 से लेके 70 तक हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। और ये किसी की लंबाई, मोटाई, उसने क्या काम किया है, क्या अवस्था है, जैसे अगर कोई दौड़ कराया तो उसका बीपी अपने आप नॉर्मली बढ़ा मिलेगा, तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर वाला, मतलब जो 120 है उसकी जगह अगर 140 आ रहा है, और नीचे आपका जो बीपी है वो करीब 90 के ऊपर है या 100 के ऊपर है, तो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाता है। और एक बार में, मतलब 3 बार अगर हम इसकी जांच करें और आपको कुछ ब्लड प्रेशर के लक्षण हो रहे हो, कि आंख से धुंधला दिख रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, पसीने छूट रहे हो, तो एक माना जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। अच्छा भैया, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अधिकतर लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, जो जो मतलब अगर हम बीपी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकतर जो मरीज हमें भारत में मिलते हैं वो हाई बीपी के मिलते हैं। अभी का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का और वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन का जो डेटा है, उसके हिसाब से करीब 10 से 11 करोड़ आदमियों को भारत में ब्लड प्रेशर की समस्या है। मतलब इतने लोगों को ब्लड प्रेशर की दवा की आवश्यकता है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन कहता है कि हमारे यहाँ करीब 12 से 14 करोड़ को शायद ब्लड प्रेशर हो। मतलब उनका ब्लड प्रेशर कभी न कभी बढ़ जा रहा है, जो उनको नुकसान दे रहा है। तो ये जो फिगर है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये करीब 22 से 24 करोड़ आता है। मतलब हमारे देश की अमूमन 18 से 20% की जनसंख्या को इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से वो ग्रसित है, और मोटा मोटी 7 से 8% से लेकर 10% की तो जनसंख्या इसकी दवा खा रही है। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि 1-2% भी हमारे यहाँ करोड़ों में होता है। तो सोचिए 15 से 20% की जब जनसंख्या इस समस्या से ग्रसित है तो हमारा देश कहाँ जाएगा।
0: जब आप ये बात बता रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आबादी को ब्लड प्रेशर की समस्या है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो लोग इसे एक आम रीति के रूप में ही देखते हैं कि भाई बढ़ा हुआ है, तो ये चिंता का क्या विषय है? क्यों मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा होना कोई सोचने वाली बात होनी चाहिए?
1: बड़ा अच्छा सवाल आपने श्री भैया पूछा। आप एक साधारण सा बात समझिए,

0: हृदय की धमनियां फट सकती हैं, हमारे दिमाग में जो जो छोटी छोटी धमनियां हैं वो फट सकती हैं, और बड़ी धमनियों में कुछ नहीं होता, पर जो छोटी छोटी धमनियां जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी ब्रेन में हार्ट में वहां चल रही हैं, उनमें एकाएक ब्लीडिंग हो जाती है, और एक इतने जरूरी जो हमारा अंग है उसमें खून बहने लगता है, उस पे प्रेशर पड़ने लगता है, और इससे हमको हमारा हृदय काम करना बंद कर सकता है, हमारी किडनियां हैं वो काम करना बंद सकती हैं, हमारा दिमाग है वो काम करना बंद सकता है। ये हमको एकाएक झटके में हमको इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप बहुत बार सुन भी लेंगे अब कि अरे वो तो ठीक से चल रहे थे, एकाएक उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, या एकाएक उनके हार्ट में कुछ परेशानी हुई उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतना खतरनाक है, इससे एक एक सेकेंड में मतलब तुरंत इससे मृत्यु हो सकती है, या किसी अंग में रक्त स्राव के बाद वो अंग का काम करना बंद हो सकता है या नुकसान हो सकता है। जी भाई, आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आप हैं और मैं हूं, हम लोग बहुत सारे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व भर में, वहां जाकर काम करते हैं, या वहां जाकर लेक्चर देते हैं, वहां जाकर इंटरेक्शन करते हैं लोगों से। मैंने इधर नोटिस करना शुरू किया कि अब भारत की जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मानव जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो सब अपने यहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, वो सब अपने यहाँ डॉक्टरों को रख रहे हैं, वो सब यही शिक्षा दे रहे हैं कि हल्का खाइए, मानसिक रूप से शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपनी लालसाओं को, अपनी जरूरतों को संयम में रखिए, सब यही बात कर रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि शांति बनी रहे। और भैया, शांति रहेगी तभी ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तभी नॉर्मल रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, जब आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि आज हम ब्लड प्रेशर को कोई बड़ी समस्या के रूप में ना देखते हुए, ये भी एक आम चीज़ है, इसके लिए हम गोलियां खा रहे हैं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं, मगर ये बात समझ में आ रहा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है बीपी का बढ़ा होना। और अगर हम इसे, चलिए दवाई खा रहे हैं तो फिर तो कम से कम समझ में तो आता है, अगर किसी को पता ही ना हो उसको बीपी हो रहा है या नहीं हो रहा है या है भी ये समस्या मेरे को, ये व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? मतलब कोई सिम्टम्स हैं जिससे व्यक्ति जाके जांच करा ले कि भाई हाँ, जैसे डायबिटीज के लिए हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आपने बताया था, ऐसे बीपी के लिए क्या व्यक्ति को जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर हाँ मेरे शरीर में ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ तो मैं जाके डॉक्टर की सलाह लूँ या मैं चिकित्सक के पास पहुंचूँ?
0: जो सबसे कॉमन चीज मैंने अनुभव की है और बोला भी जाता है कि सबसे पहले आपको सरदर्द होने लगेगा, और आपको अक्सर सरदर्द होगा, और आप ये सोचेंगे यार कोई कारण नहीं है मेरे सरदर्द होने का, मुझे सरदर्द हो रहा है। आपको थकान होने लगेगी, आपको ऐसा समझ में आएगा कि मेरे धड़कन मेरी बार बार मेरी धड़कन बढ़ रही है, हल्का एंजाइटी होने लगेगी। भैया, कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि नाक से खून निकलने लगता है, अक्सर बार बार नाक से नोज ब्लीड हो रही है, तो ये आपको यही दिखेगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर बैठे बैठे आपको आपकी आंख के सामने धुंधलापन होने लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा फिर थोड़ी देर में, फिर तो ये सिम्टम्स जैसे ही आपको महसूस हो तो आपको तुरंत अपना बीपी की जांच करानी चाहिए, ये कि आपको ये सारी समस्या हो रही है, और आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: ये बात बहुत ही फायदेमंद है कि हम पहले तो इस बात पे सजग रहें कि हमारे शरीर में क्या हमें तकलीफें हो रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे, बीपी का मरीज हूं या बीपी की समस्या मुझे है, ये समझने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये भी चीज समझ में आती है कि बीपी को आपने साइलेंट किलर कहा कि पता भी नहीं चलेगा और व्यक्ति उसकी वजह से अपने मौत को न्योता दे सकता है अगर वो इग्नोर करता है इन चीजों को, इसलिए अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूक रहना भी आवश्यक है। वक्त कहता है कि इस मोड़ पर यहाँ रुकना होगा दोस्तों, मगर बहुत ही आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो घर में उसकी दवाइयां हमारे घर के सदस्य खा रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं चलो दवाई तो खा ही रहे हैं ना ये, मगर हम उनके स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, ना हम जागरूक हैं ना जो व्यक्ति स्वयं दवाई खा रहा है वो जागरूक है। साथ ही ये भी बात आज हमने इस चर्चा में सुनी और समझी कि अपने ही मर्जी से दवाइयां लेना, अपने घर में दवाई

0: का कबर्ड या बक्सा बनाकर रख लेना और छोटी मोटी चीजों के लिए खुद ही दवाई लेना, ये हितकारी नहीं है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर समझ को ले आने की आवश्यकता है, और जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सही समझ लाएंगे तब हम सहज रीति से स्वस्थ रह पाएंगे। आज डॉक्टर राहुल मोदी हमारे बीच आए और उन्होंने हमें स्वास्थ्य से संबंधित मार्गदर्शन दिए हैं। अगले एपिसोड में बीपी और उससे जुड़ी हुई अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उनसे लेते रहेंगे। आज हम सभी श्रोता मित्रों को उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर मोदी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य और आज हम सहज स्वास्थ्य को सहज बनाने की ओर, हमें क्या जागरूकता रखनी है, क्या हमें करने की जरूरत है, बीपी जैसे बीमारियों के बारे में भी नई जानकारी आज हासिल हुई है। अगली चर्चा में इस विषय पर और गहराई से चिंतन करेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ओर एक कदम लेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक, पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। अभी तक हम स्पिरिचुअलिटी के जब एस्पेक्ट्स को देखते थे, जिंदगी की बहुत सी बातों को ले रहे थे, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं क्योंकि रोल से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारी जिंदगी में हम कितने रोल्स प्ले करते हैं। और वो जब एक्ट अभी तक हम कर रहे थे तो ये लगता था कि दूसरे हमारे स्क्रिप्ट लिखते हैं या मुझे ऐसे ही रोल को प्ले करना चाहिए क्योंकि कोई और डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं ही खुद डायरेक्टर बनी, मैं ही खुद एक्टर हूँ और मैं ही स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, तो अब मुझे स्किल्स चाहिए थी कि मैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए कि मेरी जो स्क्रिप्ट होगी वो सही होगी और जैसा मैं चाहती हूँ वही मैं मैसेज कन्वे कर पा रही होंगी अपनी एक्टिंग के माध्यम से। एक बात जो हमने समझी थी वो था पर्सपेक्टिव, मेरा लाइफ के प्रति दृष्टिकोण क्या है, परिपेक्ष क्या है। अगर मैं उसमें प्यार और क्रिएटिविटी शामिल करके लाइफ को देखती हूँ, मेरे हर रोल में वो फ्लो हो रहा होगा। आगे और बहुत से स्किल्स कौन सी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने रोल्स पर ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है और ज़िंदगी में जिस खुशी को, जिस मज़े को, जिस फन को हम तलाश रहे थे वो अब हमारे सामने है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुश्री शिवानी, जिस तरह से अब स्क्रिप्ट हम खुद लिखने लगे, एक बात तो सामने आई कि लाइफ के प्रति मेरा नज़रिया क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी मैं अपने किसी भी रोल में चलती हूँ। एंड इनफैक्ट उसमें क्या हुआ है कि जब मैंने रोल प्ले करने शुरू किए, मुझे दिखने लग गया कि मेरा नज़रिया था क्या और यहाँ मैं गलत हो रही थी।
1: अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस। कई बार क्वेश्चन उठता कि बार बार आप कह रहे हैं अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस, कैसे करनी है वो अवेयरनेस,
0: किस लिए करनी है?
1: तो अवेयरनेस ये है कि अपने ही परसेप्शंस, अपने ही वे ऑफ थिंकिंग अब दिखाई देने लगे, क्योंकि उस पर काम करना शुरू किया तो दिखने लगा, ओ अच्छा, आई वॉज लुकिंग एट इट लाइक दिस, नाउ प्रोबेबली आई कैन लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे, दैट्स क्रिएटिविटी, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, दिस इज क्रिएटिविटी।
0: एंड उसमें अब गिल्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि हमसे कुछ भी हो जाता था और वो हमें लगता था गलत हो गया, यू नो अपरेंटली हमें पता होता गलत हो गया, एंड वी यूज टू गो इन टू गिल्ट, कि फिर हम उसके सोल्यूशन वो ढूंढने लगते थे, कारण कि हमने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे किया था। अब क्या हुआ, जब दिख रही हैं चीज़ें हमें गिल्ट नहीं हो रहा,
1: गिल्ट की बजाय रियलाइजेशन। ये डिफरेंस है, गिल्ट नेगेटिव एनर्जी, रियलाइजेशन पॉजिटिव एनर्जी। गिल्ट हमें डीमोटिवेट कर देता है और हम और ही दर्द में चले जाते हैं, रियलाइजेशन हमें मोटिवेट करता है। एंड हो सकता है ये सीन में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, बट रियलाइजेशन मींस नेक्स्ट सीन के लिए आई एम गोइंग टू बी रेडी। यू नो रियलाइजेशन एक्चुअली इट इज रियलाइज मीनिंग रियल आईज, द रियल आईज मींस द रियल पर्सपेक्टिव, राइट दृष्टिकोण, सत्य दृष्टिकोण क्या है मेरा, दोज आर द रियल आईज। वो ये जो बुद्धि से जो हमारा दृष्टिकोण है वो हमें रियलाइज होता कि ये नहीं है। सो एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। हम सोचते थे गिल्ट में गए तो उससे परिवर्तन आ जाएगा, एनर्जी वॉज नेगेटिव, रिजल्ट कैन नॉट बी पॉजिटिव। सो वंस वी रियलाइज आई एम द क्रिएटर ऑफ द एनर्जी, आई एम अवेयर वट एनर्जी टू क्रिएट। कभी भी जैसे ही फीलिंग आए तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये फीलिंग मुझे लो की तरफ लेके जा रही है, उदासी की तरफ लेके जा रही है, क्विकली चेंज इट, डोंट लेट दैट स्पाइरल गो डाउनवर्ड्स, आई हैव टू टेक इट अपवर्ड्स। तो वो अवेयरनेस कि कहीं, जो हमने एक बार पहले भी कहा कि यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, उसका हमें ध्यान रखना है, सब कुछ बाहर करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये बच्चा ठीक है, थोड़ा सा भी रोने लगे, थोड़ा सा भी दर्द हो किसी भी बात से, तुरंत आकर
0: रोक लो,
1: स्टॉप, चेक किस बात का दर्द है, फिर उस बच्चे को समझा कर उसके दृष्टिकोण को ठीक कर नाउ कम बैक इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो यहाँ नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दैट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, और उसका रिजल्ट जहाँ अंदर क्रिएटिविटी होगी तो उसका रिजल्ट बाहर ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी होगी। तो एक है परसेप्शन, दृष्टिकोण, एंड दूसरा हमने देखा कि जहाँ क्रिएटिविटी होगी वहाँ प्यार की, स्नेह की एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो होगी। इसके लिए, क्रिएटिविटी के लिए जो हमें एक और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक है लोगों के प्रति जजमेंटल, क्रिटिकल, और एक है लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस कि वो जो हैं जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। हर सीन में व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद पीपल, एनर्जी तो वही है, उस एनर्जी को अगर मैंने दूसरों को जज करने में यूज़ कर दिया आई कैन नॉट बी क्रिएटिव एट दैट टाइम, क्योंकि वो एनर्जी आपको जज करने में निकल गई,
0: वो पूरा टाइम दूसरों पे लग गया ना. नाउ एक्चुअली आई हैव मोर टाइम फॉर माई सेल्फ.
1: एब्सोल्युटली नो. एंड नॉट ओनली दैट, इट्स नॉट सिर्फ दूसरों के लिए, लेकिन दूसरों के लिए भी किस फॉर्म में?
0: नेगेटिव.
1: यू नो, एक बार सी इट्स द सेम एनर्जी. एक बार आपने उसको एक डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, नेगेटिव, तो फिर आप उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक टाइम पे
0: एक ही चीज़ हो सकती है.
1: दो चीज़ें नहीं हो सकती है. तो हाँ, एक एनर्जी को आप कभी कभी कंस्ट्रक्टिव में यूज़ कर सकते हैं, कभी डिस्ट्रक्ट, लेकिन एक ही समय पर तो वो एक ही प्रकार से यूज़ होगी ना. सो इफ़ राइट नाउ इन दिस मोमेंट मैं आपके प्रति जजमेंटल हो रही हूँ अंदर, तो मैं अपनी एनर्जी को नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रही हूँ, तो उस मोमेंट, इट इज़ मोमेंट बाय मोमेंट, सीन बाय सीन. हाँ, ये हो सकता है नेक्स्ट सीन आई इमीडिएटली चेंज माई सेल्फ, एंड दैट इज़ वॉट आई नीड टू डू नाउ. येस, क्योंकि हमारा बहुत पुराना संस्कार है, बींग जजमेंटल इज़ वन ऑफ आर वेरी वेरी हार्ड कोर संस्कार. वेरी, मतलब अगर हम इसको ऊपर ऊपर से भी ख़त्म करें ना, इट इज़ सो सटल. आप सारा दिन देखेंगे हम हर स्टेप पे अंदर, अब हम शायद वो स्टेज से क्रॉस कर जाते हैं कि हम नहीं बोलते जल्दी जल्दी, लेकिन अंदर वी आर सो जजमेंटल अबाउट एवरीबडी. हम हरेक के हरेक एक्शन, हरेक वर्ड को जज कर रहे हैं सारा दिन.
0: और लेबल की जो बात की, लेबल्स लग रहे करते जाते हैं,
1: और इसीलिए क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी फ्लो हो गई डिस्ट्रक्टिव वे में. तो मुझे अगर अपने पर ध्यान देना है, तो मुझे वो नेगेटिव क्रिटिकल होने की जो आदत है उसको थोड़ा हल्का करना होगा.
0: आई थिंक वो कंप्लीटली ब्लॉक करना होगा,
1: फिनिश ही करना है एक्चुअली.
0: यू नो, वी रियली नीड टू. इनफैक्ट हमारे पास एक मेल आई थी, उसको हम शेयर करते हैं कि वो कह रही हैं कि मैं जब घर पे होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब रोल्स प्ले कर रही हूँ तो मैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही हूँ ताकि वो हर्ट ना हो. मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो सच्चाई है, जो मेरे अकॉर्डिंग सच्चाई है, लेकिन उनको वो बुरा लगेगा, तो इसीलिए मैं वो कहती हूँ जो वो चाहते हैं. तो क्या मैं ये सही कर रही हूँ, और मैं फिर उसको मैं कैसे अपने रोल को कैसे जस्टिफाई करूँ?
1: वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट, रोल भी जो हम प्ले कर रहे हैं इसमें बहुत मैटर करता है इंटेंशन. हमारी इंटेंशन क्या है उस संकल्प और उस कर्म के पीछे? कहीं इंटेंशन प्यार की होती, कहीं इंटेंशन डर की होती है. प्यार और डर, ये दो ऑपोजिट इंटेंशंस हैं. अगर मेरा आपके प्रति इंटेंशन प्यार का है, मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ और आपको बुरा नहीं लगेगा. इट विल जस्ट नॉट हैपन. इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग टू एक्चुअली चेक आर ओन इंटेंशंस, कि वो एक्चुअली इंटेंशन क्या है, क्योंकि हम बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं अपने आप को, तो हमें लगता है प्यार ही तो है और कुछ थोड़ी है. नहीं, देर आर सो मैनी, द इंटेंशन इज देयर. इवन ये सोचना कि मैं जो कहूँगी वो आपको हर्ट करेगा, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द इंटेंशन ऑफ हर्ट. अगर मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं किस भाव से आपको ये कह रही हूँ, जो एनर्जी पहले पहुँचती है वो है ये वाली एनर्जी. वर्ड एनर्जी तो बाद में पहुँचती है, वर्ड्स कभी हर्ट नहीं करते किसी के, इट इज़ द एनर्जी. तो अगर हमने वही एनर्जी भेजी होगी तभी आपको हर्ट करेगी. सो प्लेइंग योर रोल इज मोर अबाउट the quality of your thoughts and feelings. Wo ekdam clear honi chahiye, clean honi chahiye. Give across your message. There is no way it can hurt. And phir bhi, agar suppose somewhere koi hurt ho raha hai, we've understood, then that is their journey. That's their journey. Agar meri, lekin apni intention ki bahut checking chahiye, huh? Sometimes we can be very downright rude and say ki nahi main to bilkul theek thi. We have to be very careful with that. Lekin agar I'm 100% clean ki maine kis tarah se socha hai aapke prati aur kis tarah se bola hai, फिर भी अगर आप हर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं वो फिर आपकी जर्नी भी
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. और यहाँ लेकिन कई बार क्या कहते हैं हम कि डिटैच होकर मैंने उससे बात की, तो अगेन डिटैचमेंट में मैं उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हो पाती. यू नो, लाइक उसके प्रति केयर तो नहीं जा रही मैं.
1: क्रिएटिविटी अपने रोल में लाने के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी जो एक चाहिए वो है सेंसिटिविटी. आज स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में वी विल फाइंड कि हम सेंसिटिव नहीं हैं बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति, क्योंकि हम ज़्यादा काम के बारे में सोचते हैं. वी वेरी वर्क कॉन्शियस, वर्क ओरिएंटेड. तो लोगों के प्रति जो एक सेंसिटिविटी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी अप्लाई करने के बाद भी हम थोड़ा सा कई बार डिटैच होने के प्रोसेस में इनसेंसिटिव हो जाते हैं. वो एक थिन क्या है बॉर्डर लाइन है विच वी हैव टू सी हाउ टू मेंटेन द बैलेंस. इन रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट अब नहीं चाहिए, समझ में आ गया. रिलेशनशिप्स में जो पहले नीडीनेस थी कि मुझे ज़रूरत थी वो रिश्ते की, वो भी अब ख़त्म हो गया है. लेकिन रिश्ते ज़रूर चाहिए, रिश्तों पर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन रिश्तों से कटना नहीं है. रिश्ते ज़रूर चाहिए क्योंकि रिश्तों में ही आई एक्सप्रेस एंड आई एक्सपीरियंस. लेकिन अब क्या है कि अनलेस आई कैन बी सेंसिटिव टू योर नीड्स, टू योर प्रेजेंस, टू योर रोल, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माई रोल properly with you. Again, I will be fixed with my way of identity. तो आपके प्रति sensitive होने के लिए कहीं ना कहीं I need to be detached from the role, from the scene and from the actor. हम ये तीन चीज़ों में attached हो जाते हैं. उस actor, actor की suffering, आपकी suffering से मैं attached हो गई तो फिर मैं sensitive नहीं हूँ, उस time मैं attached हूँ. So somewhere we all need to explore with ourselves कि am I being able to maintain वो balance, sensitivity
0: and detachment.
1: Or detachment.
0: You know somewhere because the moment we are detached, we become so cold.
1: Yeah.
0: और we apparently ऐसा नजर आता है कि हम cold हो गए या हम हो भी जाते हैं, हमें पता ही नहीं.
1: हमें पता नहीं
0: क्योंकि हम detachment में हमने अपना तो रखा कि मुझे detach होना है उससे, मुझे pain नहीं लेना है. यू नो समवेयर मुझे उसकी पेन से अफेक्टेड नहीं होना है, लेकिन मैं फिर उसकी पेन के साथ ही एम्पथाइज नहीं करती.
1: एब्सोल्युटली. अगर मैं उनके साथ ही नहीं एम्पथाइज करूँ तो फिर मेरा रिलेशनशिप वो नहीं रहेगा. एज अ रोल ऑफ अ पेरेंट, एक पेरेंट का रोल, एक लीडर का रोल एक कॉरपोरेट सेक्टर में, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों के साथ, हमें अपनी टीम मेंबर्स के साथ एम्पथाइज करना है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो किस परिवर्तन से गुजर रहे हैं, या उनको उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनका क्या दर्द है. लेकिन अगर हम कहें This is not my role. I don't need to know anything about you. Then I'm not sensitive towards you. अगर आप मेरे टीम का हिस्सा हैं और आप दर्द में हैं, तो somewhere is that not my responsibility as a leader to understand कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं. क्योंकि जब तक मैं ये नहीं समझ पाऊँगी कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, मैं आपकी right potential, आपकी पूरी strengths को उस कार्य के लिए भी नहीं यूज कर सकते. सपोज आप दर्द में हैं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आप काम करो. तो इज दैट रियली बीइंग फेयर टू इवन द वर्क? क्योंकि दर्द में रहकर अगर कोई काम करने वाला है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्यों नहीं हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं? लेकिन उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? वो बॉस से हटकर मुझे एक फ्रेंड, मुझे एक काउंसलर, एक मोटिवेटर, वो रोल अपनाना पड़ेगा. बट दैट विल ओनली हैपन इफ आई एम सेंसिटिव कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यू नो तकलीफ देती हैं. बीइंग वेरी सेंसिटिविटी कुड ऑल्सो बी लाइक कंसर्न, बीइंग कंसर्न अबाउट पीपल, बट सेइंग नहीं मुझे हमें तो काम से मतलब है, काम हो जाना चाहिए, उनके लाइफ में क्या हो रहा है दैट्स नथिंग टू डू विद मी, देन दैट्स समवेयर हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत रूखापन आ जाएगा एंड फिर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. तो इसको हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अटैचमेंट ना हो जाए. अटैचमेंट ओनली मीन्स कि आप दर्द में हैं
0: तो
1: मैं दर्द में हूँ, एंड सेंसिटिविटी वुड मीन आप दर्द में हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ, शायद आपके साथ आपको वो प्रोसेस पे हेल्प भी कर रही हूँ, लेकिन दर्द नहीं एक्सपीरियंस कर रही. एंड जैसे ही मैं दर्द नहीं एक्सपीरियंस करती, आई विल बिकम इंस्ट्रूमेंट टू एम्पावर यू. स्पेशली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में दिस इज़ फंडामेंटल.
0: लेकिन एक और बात जो देखी जाती है जनरली, एक कहीं गाने में भी आता है कि हर कोई अपने दर्द के कारण रोता है. जब भी कोई कहीं हम किसी को दर्द देखते हैं, उसी से हम कहीं खुद को रिलेट कर लेते हैं और तब हम दर्द में आ जाते हैं. तो क्योंकि कहीं ना कहीं अपना ही कोई जख्म जो है,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं खुद की स्थिति भी उन चीज़ों से गुजर रही है, तो वो एक आपकी परिस्थिति मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है, मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है, और मेरा जो अक्यूमुलेट किया हुआ है वो इमोशन ट्रिगर हो जाता है, और आपका दर्द हम कहेंगे आप दर्द में हैं तो maybe that, no? But actually, it's not that. See, in a parent-child, it's very important today. Because bachche apne daur se guzar rahe, apni journey par hain. Especially jab aap ek bachche se ek teenage ke, you know, adolescent period se guzarte hain, wo bahut ek turmoil, but that's a part of the journey. Wo unki yatra ka ek hissa hai. Agar main एक काउंसलर एक मीडिएटर बनकर उनको मदद करना चाहती हूँ कि वो उस पीरियड को दर्द के बिना क्रॉस करें तो पहले तो
0: खुद को दर्द से बाहर निकालना होगा
1: लेकिन उनसे ज़्यादा दर्द में तो हम गए होते उनके अंदर वो परिवर्तन देखकर यू नो दर्द कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स दर्द इज नॉट क्राइंग
0: दर्द कैन बी एंगर ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट
1: मेनी टाइम्स बच्चा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है उसको खुद वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है उसके स्कूल में उसके एज ग्रुप उस तरह के होने के कारण वो कई बातों से गुजर रहा है कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनालिटी में अग्रेशन के रूप दो फॉर्म्स में आता है किसी के अंदर वो एकदम चुप हो जाते हैं अंदर चले जाते हैं और कुछ लोग बहुत लाउड हो जाते हैं जो वो पहले नहीं थे एज अ पेरेंट आई हैव टू बी सेंसिटिव कि मेरा बच्चा क्यों इस तरह से परिवर्तन हो रहा है एंड दैट विल नॉट हैपन बाय शाउटिंग एट हिम और हर कि तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो
0: और बाय गोइंग इनटू शॉक यू नो यूजुअली वी गो इनटू शॉक कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर और हमारी फिर सोचने समझने की शक्ति खत्म
1: हो जाती है तो फिर मैं उसको नहीं समझ पाती कि वो इस दर्द से क्यों गुजर रहा है मैं इस बात से हर्ट हूं कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है नाउ द मिनट मैं दर्द में चली गई कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है विल आई बी एबल टू एम्पैथाइज विद द चाइल्ड
0: ओह नो नॉट एट ऑल इट्स माय प्रॉब्लम देन
1: माय पेन तो फिर क्या हुआ माय रोल एज अ पेरेंट इज नॉट बीइंग प्लेड प्रॉपरली बिकॉज फंडामेंटल माय रोल है आज कि मेरा बच्चा अगर दर्द में है मुझे उस बच्चे को हेल्प करना है दर्द से निकलने के लिए लेकिन मैं खुद ही दर्द में चली गई यू नो व्हेन अ चाइल्ड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हर रोज हर घर में होता होगा एंड आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत रूडली या एंग्रीली बात करते हैं तो ईदर द पेरेंट शाउट्स बैक अगर एक बच्चे ने रूडली बात की या तो वो पेरेंट शाउट बैक करेगा ये कोई बात करने का तरीका है आजकल के बच्चे देखो एंड देन इट बिकम्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट या द पेरेंट विल गेट वेरी हर्ट मेरे बच्चे मेरे साथ इस तरह बात करते हैं समवेयर द पेरेंट स्टार्ट्स टेकिंग इट एज अ पर्सनल फेलियर कि आई हैव नॉट बीन अ गुड पेरेंट
0: मैं उनको राइट वैल्यूज नहीं दे पाया मैंने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए
1: अब ये सब जब क्रिएटिव प्रोसेस अंदर चल पड़ा इस तरह से थिंकिंग का बच्चे के बारे में सोचना कि वो क्यों दर्द में है वो क्यों इतने गुस्से में है वो क्यों मैं क्या उसके लिए कर सकता हूँ उधर तक तो सोच जा ही नहीं रही आई ओनली लुक एट द चाइल्ड शाउटिंग एट मी एंड नाउ स्टार्ट विद माई प्रोसेस तो फिर एम्पथी या उसकी मदद करना उसको एम्पावर करना इज नॉट
0: वेरी ट्रू यू नो सिमिलरली जब अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा स्कूल से शिकायत आ रही है हम ज्यादातर ये करने लगते हैं कि उसके ऊपर ऊपर से काम कैसे किया जाए
1: अब
0: हम डिसिप्लिन में कैसे लाएं
1: अब ये जो आप कह रहे हैं ना ऊपर से काम कैसे वी डोंट रियलाइज कि अगर आज सडनली मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या बच्चे का बिहेवियर स्कूल में चेंज हो गया टीचर कंप्लेंट करती है पेरेंट्स को बुलाया कंप्लेंट किया पहली बात टीचर ने बुलाया और कंप्लेन किया आई गेट हर्ट कि क्यों कंप्लेन इंसल्ट मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहा अब मैं सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड हो जाती हूँ कि इसके मार्क्स को कैसे ठीक करना है इसके बिहेवियर को कैसे ठीक करना है उसकी थिंकिंग उसकी फीलिंग्स क्या हो रहा है उस बच्चे के अंदर जिस कारण से उसके मार्क्स या उसके बिहेवियर वे नॉट लुकिंग दैट साइड फिर क्या होगा उसकी जो अंदर की चोट है वो तो है ही अंदर लगी हुई है हमने उसके ऊपर
0: चोट देते जाते हैं
1: हाउ डैमेजिंग कैन दिस बी
0: और हम एक रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंट का माय गॉड वी कैन एक्चुअली चेंज इट
1: यस नाउ वी नीड टू चेंज दैट लेकिन वो तभी होगा जब हम अपनी हर्ट अपनी इंसल्ट्स अपने एंगर को साइड पे रख हम स्टेबल रह पाएंगे कि इट्स एक आत्मा है जो एक दर्द से गुजर रही है और मेरा रोल क्या है एज अ पेरेंट पेरेंट मतलब मेरा रोल है उस आत्मा को उस जर्नी पर मदद करना इंस्टेड ऑफ मेरा बच्चा है मेरे बच्चे ने मुझसे ऐसे कैसे बात की इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव लेकिन जब आई एम सो अटैच्ड टू द आइडेंटिटी कि मैं एक पेरेंट हूँ ये मेरा बच्चा है माई प्रॉपर्टी तो मेरे बच्चे को मेरे से कैसे बात करनी चाहिए
0: और मेरा रोल भी डिफाइंड है सदियों से माँ बाप ऐसे करते आ रहे मेरे फादर ऐसे बिहेव करते थे तो मैं भी तो ऐसे ही करूंगा दिस इज द राइट वे
1: परसो वी वर डूइंग अ प्रोग्राम एंड वी कॉल्ड अबाउट फोर चिल्ड्रन ऑन द स्टेज एंड 1000 या 1500 की सभा में चार बच्चों को ऊपर बुलाया और उनसे पूछा सबके सामने स्पीक ऑन द माइक कि आपके पेरेंट्स जब आपको इस तरह एंड दे वर लिटिल लिटिल वंस कि डांटते हैं या करते हैं तो आपको कैसा लगता है. You should have seen the vibration in the room. Those little children, because maybe the parents were hearing it for the first time, and those little children said, "Hame itna dard hota hai, itna dard hota hai, itni takleef hoti hai." And parents to aise sun rahe the, jaise unko ye nahi pata tha ki kisi ko daant padne ke baad usko dard hota hoga andar. For them, it seemed to be a realization. Humne kya socha ki hum kisi ko daantte jayenge and the person supposed to feel good about.
0: Aur hum bachon ko kitna.
1: And you know, some of the children said ki wo to hame aise aise karke. We need to stop and think. What are we doing? मतलब आज मेरा एक ग्लास भी ऐसे गिर के टूट जाए तो मुझे इतना बुरा लगता है. मेरी प्रॉपर्टी है, टूट गई. और वो बच्चे को हम ऐसे ऐसे ऐसे करके जब मारते हैं, हम क्या समझ रहे हैं? वो कौन है? वो हमें लगता है ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है. और हम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन,
0: और कहां कहां का बच्चे का ही गुस्सा नहीं होता.
1: वो बच्चे का गुस्सा होता ही नहीं है. बिकॉज अगर आप अपने सेंसेस में हैं तो आप अपने बच्चे को इस तरह कर ही नहीं सकते. आप कर ही नहीं सकते. कोई और आपके बच्चे को छू भी दे तो आप उसका क्या हाल करेंगे? और आप खुद उसको इस तरह से मारते हैं, ये क्या रिजल्ट है? ये हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो अंदर भरी हुई है. तो उसका दर्द देखना, उसके प्रोसेस को समझना, आई जस्ट कांट डू दैट. नाउ दिस इज इनसेंसिटिविटी, दिस इज अटैचमेंट, बट सेंसिटिविटी नहीं है. एंड देन आई एम मोर अटैच्ड टू माय सफरिंग. और फिर मैं अपने को देखते, मेरी फ्रस्ट्रेशन सारी बाहर निकलती. सो एम आई प्लेइंग माय रोल द राइट वे विल बी अ क्वेश्चन मार्क.
0: वेरी ट्रू. और इनफैक्ट आई सडनली रियलाइज, यू नो, जब बच्चा आता है हम उस पर 100% कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार उसको कर रहे हैं. लेकिन ये तो है कि बिना सोचे समझे हम जब चाहे उसको डांट देते हैं. हमें से हर पेरेंट, आई थिंक वी नीड टू चेक.
1: स्पेशली यू नो, बच्चे छोटे हैं, स्पेशली जब छोटे हैं, दे आर वन ऑब्जेक्ट, दे आर वन ऑब्जेक्ट जो हमें लगता है जिसके ऊपर हम अपना कुछ भी निकाल सकते हैं. देखो, मैं इक्वल एज में आपके ऊपर ऐसे नहीं चिल्ला सकती, मुझे पता है आपने भी वापस चिल्लाना. लेकिन वो छोटे छोटे हैं ना, एंड वो मेरी प्रॉपर्टी है. दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इनको,
0: एंड
1: इट्स ऑल बीइंग डन इन द नेम ऑफ उनके फायदे के लिए. ये मैं उनको सुधार रही हूँ, उनको डिसिप्लिन कर रही हूँ. इस तरह से इज अ क्वेश्चन मार्क. वी नीड टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग. दे आर ओनली गोइंग इनटू पेन. So, हर रोल प्ले करते हुए,
0: इतनी छोटी उम्र में मैं उनको पेन से गुजार रही
1: हूं. आई मीन, दैट प्रोग्राम यस्टरडे फॉर अस वाज दिस लिटिल लिटिल वंस. दे सेड इट ऑन स्टेज टू एवरीवन एंड दे सेड हमें इतना दर्द होता है अंदर जब हमें बार बार बार बार डांटा जाता है हर बात के लिए. वी नॉट रियलाइजिंग वी पेन पेन पेन. वो जो बच्चा इतना लेगा तो रिजल्ट क्या है? फिर आज डॉक्टर कहता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम है. एंड देन वी से ओ कंपटीशन, एजुकेशन सिस्टम. नो, इट इज सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ पेन दैट चाइल्ड इज कैरिंग इनसाइड.
0: लेकिन वो लोग कहेंगे कि हमारे भी तो पिताजी ऐसे ही करते थे, हमारे भी तो, ये तो एक पैटर्न है जो कि कब से चला आ रहा है.
1: एब्सोल्युटली.
0: तो बच्चा तो भूल जाता है, अगले ही पल वो भूल जाता है, फिर खेलने लग जाता है.
1: हमें लग रहा है कि बच्चा भूल जाता है. स्टॉप एंड टॉक. हैव यू एवर आस्क्ड द चाइल्ड कि वो किस चीज़ से गुजरता है उसके बाद? वी नीड टू आस्क. कहीं ना कहीं जब हम फिर कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत अग्रेसिव हो गए हैं,
0: बिकॉज यस दे हैव सीन इट,
1: नहीं, विच एनर्जी हैज बीन गिवन टू देम, वो एनर्जी उनको ट्रांसमिट हुई है. तो अपने रोल को प्ले करने में एक एंथुजियाज्म हमें चाहिए. न्यू वे नाउ, सेम वे ऑफ एक्टिंग, सेम वे ऑफ इंटरेक्टिंग बहुत हुआ. नाउ न्यू वे ऑफ एक्टिंग, एंड दैट वुड मीन नया तरीका सोचने का, नया तरीका परसीव करने का, नया तरीका बिहेव करने का. लेट्स एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट. किया ना पुराना वाला, रिजल्ट भी देख रहे हैं, कितना दर्द क्रिएट किया. व्हाई डोंट वी एक्सपेरिमेंट विद समथिंग एल्स?
0: और वेरी ट्रू, यू नो, डांटने के बाद हम खुद कितने गिल्ट में जाते हैं, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी हम खुद ही क्रिएट करें.
1: पूरे घर में फिर वो एनर्जी फ्लो कर रही है. एंड दिस इज एवरी डे. मेन थिंग इज इट्स एवरी डे.
0: और इसको कभी रजिस्टर ही नहीं करते हैं एक्चुअली. इट्स अगेन ये बिलीव सिस्टम की तो होता ही है, हर घर में ही है. बच्चे को तो डांट पिटेगी ही ना, बच्चे तो डांट खाएगा क्योंकि गलती करेगा तो डांट.
1: तो फिक्स्ड वे में रोल प्ले कर रहे हैं. तो अगर बच्चा गलती करेगा तो हम डांटेंगे. तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे जो बच्चे को राइट नहीं लगता तो बच्चा क्या करेगा?
0: फिर भी डांटेगा, वो भी डांटेगा,
1: वो भी तो उसी तरह से बात करेगा ना. देन भी से आजकल के बच्चे क्यों इतने रूड हो गए? they're just learning it the same way.
0: सामने सामने लर्न हो रहा है, बहुत सुंदर. आज एक नया परिपेक्ष सामने आता है पेरेंटिंग में भी और हर रिश्ते में. और फिर हमें जो एम्पावरमेंट, हम जो एम्पावर हो रहे हैं, जो सशक्त हो रहे हैं कि हमारे अपने हाथ में है, उस रोल को चेंज करने का प्रयत्न तो करें. जो अभी तक जिस पर चलती आ रही है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, दिख रहा है हमें. और वाई नॉट बी क्रिएटिव, यू नो. अब हमने जो बच्चे ने गलती की, हम उसके साथ बैठकर उसको सॉल्व कर सकते हैं. कहीं ना कहीं हम एक नए परिपेक्ष में ले सकते हैं.
1: सिर्फ अगर खुद दर्द में नहीं होंगे तो अगेन हाँ. वो ऑक्सीजन मास्क जो हमने कहा, तुरंत पहले अपनी सुरक्षा करें, अपना ध्यान करें. एंड उसके लिए अगर रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, अपने पर वर्क करेंगे, तब बच्चे को देखना, बच्चे के इस तरह के व्यवहार को समझना बहुत ईजी हो जाएगा.
0: और उसकी गलती मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगी. वेरी ट्रू. उसकी कोई भी गलती, कहीं पे गलत बिहेव कर रहा है, मैं सोचती हूँ मेरे साथ हुआ कि मैंने ही उसे सही परवरिश नहीं दी थी. ओह, इट्स अमेजिंग, यू नो हाउ डीप दीस थिंग्स कैन गो. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: हर बार की तरह आपसे कहेंगे कि अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप ही के सवाल हम ज़रूर शामिल करते हैं. तो आप हमें या तो फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं. कुछ और बातें लेकर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे. ओम शांति.

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। 24 जुलाई 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुक्रवार का दिन है, शक्ति का दिन है, तो माँ अम्बे की शक्ति आप पर बनी रहे ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियाँ 24 जुलाई 2026 की। और राष्ट्रीय शके 1948 शके 2 गते 8 आषाढ़ शुक्रवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी शुक्रवार अनुराधा आज है। इस्लामी हिजरी 1448 सफर जुम्मा इकलील आज है। इसके साथ ही आज विशेष दिन है, जैसे कि हर शुक्रवार को हम लोग माता रानी या फिर अम्बे मैया की याद करते हैं, तो आज हम लोग अम्बे मैया को याद करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप भी अगर अपने घर में कुछ ऐसी भक्ति में समय निकालते हैं तो पूरे परिवार एक साथ बैठकर कुछ पल, 5 मिनट क्यों ना हो, एक अंदरूनी जो है मिलन हो और शक्ति स्वरूप परमात्मा से शक्ति को याद करें। और शक्ति को याद करने से या कुछ पल शांति में बैठने से भी हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने से नहीं चल पाते हैं, तो फिर कहते हैं कि हे माँ तू जहाँ चल ले मुझे या कहते हैं कि ये ईश्वर तुम जहाँ ले चलो वहाँ मैं चलूँ, है ना। तो व्यक्ति को हर समस्या का समाधान उस निराकार को याद करने से, उस परम शक्ति के साथ जुड़ने से या फिर शक्ति को कनेक्ट करने से, तो हमें किसी भी तरह भक्ति हमारा जो है ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ देता है, है ना। तो हमें अपने जीवन में जिस तरह से हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं रात में या दिन में जब ख़त्म हो जाती है बैटरी,

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अच्छा लग रहा है, बारिश का मौसम है और देवी भक्तियों का सुंदर जो है गीत आप सुन रहे हैं। आइए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी। आज का मौसम बहुत सुहाना है, बरसात हो रही है, धम धीम धम धीम धीम धीम धीम धीम धीम।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: उसके साथ में आपके गानों का भी आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और मेरा भी एक गाना उसके साथ में संलग्न कर देना चाहता
0: हूँ।
1: ओ भाई रे, मत दीजिए माया ने दोष, कर मरी गति न्यारी न्यारी। एक मारा बेटा प्यार प्यार री गति न्यारी न्यारी।
0: एक मारा बेटा
1: नमस्कार। राम राम हो। सुरेश भाई है, भूरा राम जी है, बदल भाई है, और सुरेश भाई है, सुरेश भाई है, और क्या नाम उनका, सुभाष भाई है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, रेडियो मधुबन से जुड़ते रहो हमेशा के लिए। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। और बारिश का मौसम चल रहा है, बड़ा ही सुहाना और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए, इस बीच मैं आपको ले चलता हूँ। मनोज कुमार का जन्मदिन है, अजीम जी, प्रेम जी, इनका भी जन्मदिन है, तो बातें करते हैं मनोज कुमार के बारे में। और मनोज कुमार, इनका पूरा नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी था, और फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे। अपनी फिल्मों के जरिए मनोज कुमार ने लोगों को देशभक्ति की भावना का गहराई से एहसास कराया। मनोज कुमार शहीद आज़ाद, भगत सिंह जैसे बेहद इनके जीवन से प्रभावित रहे, और इन्हीं के ऊपर उन्होंने इसी भावनाओं को लेकर शहीद जैसे कलजाई फिल्मों में देश के इस अमर सपूत ने किरदार निभाते हुए जीवंत प्रेरणा दी। और 1992 में मनोज कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनके कार्य को देखते हुए। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, ओम शांति जी। जी
1: सर, बहुत अच्छी बातें हो रही, अच्छे अच्छे गाने भी हम रहे थे माता रानी के, बहुत अच्छा सुना गाना, दो तीन गाने भी बहुत बढ़िया गाने थे
0: जी, जी।
1: और बस बारिश तो रात को ही शुरू हो गई, अभी तक बंद करने का नाम ही नहीं है। बहुत जोरों से बारिश हो रही है इधर हमारे भी गुजरात में। और बताओ तो सर, अहमदाबाद में तो पूरा चक्का जाम हो गया, कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है, सभी रास्ते बंद हो गए।
0: अच्छा।
1: और वो कई सारे बसों भी बंद हो गई है, ट्रेनों भी बंद हो गई है, कहाँ से कोई जा ही नहीं सकता, ऐसा हाल है। सूरत में भी ऐसा है, मुंबई में भी ऐसा है।
0: अच्छा।
1: तो अहमदाबाद में भी पूरा सभी जगह का रास्ता बंद है, और एक एक पांच पांच फुट घरों में पानी भरा है नीचे वाले को, तो ऐसा हाल है, बहुत बुरी। यहाँ परमात्मा की पता नहीं, नहीं आते थे तो नहीं आते थे, आते हैं तो बंद नहीं होते, बारिश क्या करे। लोगों को तो ऐसा है, अभी जल जब चाहिए थी तो बोल रहे थे भाई बारिश आओ बारिश आओ, लेकिन अब तो बोलते हैं बंद हो जाओ बंद हो जाओ। तो चलो, कोई तो कुदरत का कहर है, पता है, कहते ना कि पानी बरसता है तो अच्छा है वाकई, लेकिन बिल्कुल बारिश नहीं आती है तो दुकाल जैसा स्थिति हो जाती है। लेकिन पानी जो बारिश होते है, ये फसल नहीं होगी तो अगली फसल होगी, लेकिन जरूर होगी। तो ये भी चलो अच्छा है, बारिश की तो जरूरत की, और आ गए हैं हमारे बुरीलाल जी को, बुरा राम जी को भी राम राम है। और मनोज कुमार की जो बात बताई तो बहुत अच्छे एक महान कलाकार थे, हमारे देशभक्ति गाने तो बहुत अच्छे गाए हैं। और मनोज कुमार की बात और है, गाना मैंने मनोज कुमार का भी चुना है कि कई सारे गाने हैं, लेकिन जो क्रांति फिल्म में कई सारे गाने गाए हैं मनोज कुमार का किरदार है इसमें। और एक गाना और है कि जब वीरो दिया भारत ने, ये गाना है।
0: बिल्कुल
1: जरूर सुनाना सर, हमारी तरफ से आपको और हमारे सभी मित्रों को नमस्ते, आपको बिल्कुल शुभकामना, शुक्रवार है सबको, शुक्रिया, नमस्ते।
0: जी जी जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, सुरेश जी ने काफ़ी बातें की और मनोज कुमार जी को भी याद किया है, तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को एक बारिश का गीत सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मनोज कुमार के खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाले हैं। आज सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए बातें हो रही हैं मनोज कुमार के बारे में। मनोज कुमार जो है, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 को आज ही के दिन पाकिस्तान के अबोटाबाद में हुआ था और उनका असली नाम हरी कृष्ण गौर गिरीश गोस्वामी था। देश के बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बस गया था। मनोज ने अपने करियर में शहीद, उपकार, पूर्व और पश्चिम और क्रांति जैसे देशभक्ति पर फिल्म बनाए और बेजोड़ फिल्में बनाईं। इस वजह से उन्हें उनका नाम फिर मनोज कुमार के साथ भरत कुमार भी कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं मनोज कुमार के खूबसूरत गीतों की तरफ और आप सभी एंजॉय करें मनोज कुमार के सुंदर गीतों का बारिश के इस मौसम में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ साथियों, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। बहुत ही प्यारा सा सदाबहार गीत आप सुन रहे थे मनोज कुमार का। आइए इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे गीत आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ विशेष मेहमान जो है शांतिवन में पहुंचे हुए हैं। भारत के जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं वहाँ पर जो बीके भाई जो है अपनी सेवा देते हैं, उनका एक सुंदर जो है तपस्या का समय यहाँ पर निकाल के योग करने के लिए आए हैं, तो उसी में से एक सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे साथ बीके राजू भाई हमारे साथ हैं। उनसे हम लोग बातें करते हैं उनकी सेवाओं के बारे में, सेंटर में किस तरह की सेवाएं हो रही हैं और आप कैसे करते हैं। जी राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओम शांति भाई साहब, आपका भी स्वागत जी, है आज जी। मैं महाराष्ट्र सोलापुर सब जोन से मुरुम सेंटर से हूँ। लगभग 1936 में मुझे ज्ञान मिला जब महाराष्ट्र के अंदर किल्लारी में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। और उस भूकंप के समय ही हमें ज्ञान मिला।
0: अच्छा।
1: बहुत सारे भाई बहने उधर का भूकंप का एरिया देखने के लिए आते थे, तो उसमें हम संबंध संपर्क में पहले थे, लेकिन जब भूकंप हुआ 93 में तब से लेकर के हम ज्ञान में चल रहे हैं। हम कुमार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदरणीय हमारे सोलापुर सब जोन के जो संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सम्माननीय सोमप्रभा दीदी जी, उनके पालना में हम पल रहे हैं। तो उन्होंने हमको कुमार जीवन जो कितना महत्व है, उस समय तो बहुत सारी समस्याएं हमारे पीछे माता पिता के द्वारा आ रहे थे, लेकिन हमारी बहन जी ने बोला कि कोई नौकरी भी मुझे आई थी, तो नौकरी करेंगे तो छोकरी आ जाएगी, इसीलिए आप कुमार जीवन इतना वैल्यूबल है। तो उसकी जो गरिमा है बताने के बाद फिर हम कुमार जीवन रहने का दृढ़ निश्चय किए। फिर जैसे ही ना कोई बिजनेस भी था उसमें भी हम गए नहीं, और ज़्यादा नौकरी में भी हमको बहुत सारे, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे उसके कारण हमको बहुत सारे जॉब आ रहे थे, लेकिन उसमें भी हम गए नहीं। कुमार जीवन ही हमको बहुत अच्छा लगा, और बाबा को बहुत बड़ी सेवा करना थी, इसीलिए फिर मुरुम एरिया के अंदर एक सेंटर बनाया। फिर उसके बाद उमरगा में सेंटर बना, लोहारा में सेंटर बना, 10-12 कन्या निकले वहाँ से। अभी समर्पित रूप से हर जगह दो दो बहने, लोहारा में दो बहने हैं, ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन जी, ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी। उमरगा में ब्रह्मा कुमारी शिल्पा दीदी, ब्रह्मा कुमारी अंकिता दीदी है। मुरुम में ब्रह्मा कुमारी वैष्णवी दीदी, ब्रह्मा कुमारी श्रुति दीदी, ब्रह्मा कुमारी अनिता बहन जी। ऐसे जवलगा में भी ब्रह्मा कुमारी दीपा दीदी है, और भी मुरुम में भी अनुसया दीदी है। ये सारे बहने इतने अच्छी तरह से अपना समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। हमारे सोलापुर सब जोन में बहुत अच्छी तरह से सेवाएं चल रही है। प्रॉपर सोलापुर के अंदर भी बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बन रहा है
0: जी।
1: तो बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ कुमार रतन भाई जी पाटिल बोल के, वो भी लगभग 20-25 साल से हमारे साथ ज्ञान में चल रहे हैं। वो भी बहुत अच्छी तरह से हमेशा एग्री किए हैं। बहुत सारे उनके तहसील आदि की नौकरी आई थी, उन्होंने भी हमारे साथ छोड़ करके कुमार जीवन जीने का उन्होंने भी दृढ़ निश्चय किया। आज बाल ब्रह्मचारी कुमार जीवन जीते हुए बहुत आजू बाजू के गांव गांव में लगभग 25 किताब पाठशालाएं सब मिल करके संभालते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बहुत अच्छी तरह से सेवाएं चल रही है हमारे इधर। कई वहाँ के माजी मंत्री जो है बसवराज जी पाटिल साहब इधर आए थे, जंगले साहब आए थे, हमारे खासदार जो है रविंद्र गायकवाड़ जी उमरगा से, हमारे प्रॉपर गांव से, वहाँ भी आए थे। ऐसे बहुत सारे आमदार खासदार वीआईपी लोग सारे आते रहते, सेंटर पे भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं
0: जी।
1: तो ये आज इतना जीवन अच्छा लग रहा है। हम समर जो आमंत्रित विशेष यहाँ से लेटर आता है मधुबन प्यारे बाबा के घर से, बाबा का ही बुलाना होता है, तो आमंत्रित भाई से हम यहाँ पर आते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये 3-4 दिन हमको तपस्या करने का, सारे बातों से कारोबार से फ्री हो करके बहुत शांति का अनुभव करने का, और सारे वरिष्ठ भाई बहनों के साथ भट्टी करने का जो आनंद आता है, उनके वाइब्रेशन यहाँ का भट्टी का जो बड़े बड़े अनुभव यहाँ जो है, आदरणीय आशा दीदी है, चक्र दादी जी है, हमारे संतोष दीदी जी है, इनके द्वारा जो अनुभव युक्त ऐसे क्लासेस होते हैं, उससे और भी बहुत सारी हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें बहुत बड़ा ये सहयोग होता है। इसीलिए हम कभी ये भट्टी मिस नहीं करते हैं, बहुत आनंद से यहाँ आते हैं और भरपूर होकर के जाते हैं। तो आज भट्टी का लास्ट दिन है 24 तारीख का, तो फिर 27 तारीख को हम जा रहे हैं। तो मुझे यही सबके लिए कहना है कि अभी समय जो चल रहा है, वर्तमान समय जो है ये बहुत नाजुक समय है, बाबा तो बता ही रहे हैं। इसलिए दो बातें हमेशा बाबा कहते हैं, बच्चे एवर रेडी और अचानक, ये दो बातें हमेशा बुद्धि में रखो और स्वयं की स्थिति को अभी संभालो। हम पूर्वज है तो सबको बहुत अच्छी तरह से हमको दया भाव क्षमा भाव रखते हुए सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो, परमात्मा के साथ उनकी प्रीत बुद्धि जुड़े। ये सेवा हम सबको अभी करनी है, क्लास से हमारे भट्टी से भी हम सारे वरिष्ठों से अनुभव सुने हैं। तो जरूर या आने के बाद जो ऐसा लगता है मधुबन में, जैसे ही हम भरपूर होकर के इतना आनंद आता है जैसे कि हम स्वर्ग में आज ही है, भले सतयुग तो होगा लेकिन आज ही हम स्वर्ग में हैं ऐसा
0: अनुभव होता है।
1: बहुत अच्छी तरह से यहाँ का यह हमारा आज कुमार जीवन जो है, अनेक जन्मों का जब पुण्य होता है तो ये सुकृत मिला है, उसका बहुत हम भरपूर आनंद लेते हैं। ये आध्यात्मिक जो ऊंची है हमारी ऐसी बढ़ती रहे। और आदरणीय हमारे रमेश भाई जी जो है हमारे ऊपर बहुत स्नेह प्यार करते, आज ये भी मधुबन रेडियो में थोड़ा सा अनुभव शेयर करने का उन्होंने को चांस दिया, मौका दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मुझे यही कहना है कि अभी स्वस्थिति, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं इस शरीर का आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कार सारे कर्मेंद्रिय मेरे नौकर हैं। तो पहले स्व की स्थिति जो है, स्वराज्य अधिकारी पहले बनो, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, इसके ऊपर हम जरूर बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ वर्तमान समय कर रहे हैं। तो बहुत बहुत भाई जी, ओम शांति।
0: ओम शांति। बीके राजू भाई, बहुत ही धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने अपना भट्टी का सुनाया। आशा करूँगा हमारे सभी रेडियो लिसनर्स को भी इस 3 दिन का जो मेडिटेशन शिविर होता है, लोगों को हम लोग बुलाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो समर्पित भाई बहन डेडिकेटेड है ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में, उनको निमंत्रण दे के बुलाया जाता है, इसलिए उन्हें आमंत्रित भट्टी में इन्विटेशन मिल जाता है और 3 दिन वो भी अपने कारोबार से फ्री होकर परमात्मा के साथ ध्यान लगाते हैं और एक बार फिर से पूरे साल भर के लिए रिचार्ज होके जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव उन्होंने सुनाया जी।
1: विशेष मुझे ये अध्यात्म जीवन कुमार जीवन जीने के लिए
0: जी
1: मेरे विशेष वरिष्ठ भ्राता है महेश भाई जी साळुंके के मुंबई में रहते हैं।
0: अरे वाह,
1: उनका बहुत अच्छी तरह से आध्यात्मिक ऊंची है। उन्होंने एक सुंदरवाड़ी के अंदर हमारे जो अंकल थे रामचंद्र काका महाराज थे, आकाशवाणी में थे, जैसे आप आकाशवाणी में काम करते वैसे मुंबई में बहुत बड़े आकाशवाणी राजकोट आदि आदि उनके अंडर ही आकाशवाणी बने हुए हैं। तो वहाँ रहते हुए भी माया नगरी में वो बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन करते थे और उनका एक मेडिटेशन मंदिर जो है हम सुंदरवाड़ी के अंदर बनाए हुए हैं। हमारे आदरणीय सम्मानीय महेश भाई साळुंके जो है हमारे भ्राता जी, उनके तन मन धन लगा करके 6 एकड़ के अंदर ये मेडिटेशन मंदिर बना हुआ है। तो
0: ये पुणे में
1: ये सोलापुर सब डिस्ट्रिक्ट में आता है, उमरगा तहसील में, तो भी देखने जैसा मंदिर उन्होंने और उनका इतना तन मन धन से मुझे बहुत सहयोग रहता है, इसीलिए हम ये आध्यात्मिक कार्य
0: चलिए महेश जी महेश भाई साळुंके को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए अब वक्त हो गया है आप सभी को सीधे समाचारों की तरफ ले चलता हूं, दिल्ली की तरफ, और सुनते हैं अभी समाचार। फिर से एक बार बीके राजू भाई और उनके सभी सहयोगी टीम को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं कि वो इसी तरह आध्यात्मिक सेवाओं को, बाबा की सेवाओं को बढ़ाते रहें। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
3: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
3: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
4: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
6: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
7: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
8: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
9: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के पेंशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है, यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। दो साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच दो वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
2: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
11: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मैं हूँ उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं धूम 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, बातें हो रही थी मनोज कुमार जी के बारे में। मनोज कुमार जी शहीद के 2 साल बाद उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म उपकार का निर्माण किया। उसमें मनोज कुमार ने भरत नाम के किसान युवक का किरदार निभाया था, जो सिचुएशन के वश, परिस्थिति के वश गांव की पगडंडियों को छोड़कर मैदान जंग का सिपाही बन जाता और जय जवान जय किसान के नारे पर आधारित ये फिल्म बनी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के विशेष आग्रह पर बनाई थी। उस फिल्म में गांव के आदमी के शहर की तरफ भागने, फिर वापस लौटने और उससे जुड़े सामाजिक रिश्तों की कहानी थी, जिसमें उस वक्त के हालात को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश की गई थी। तो ये थी कुछ खास बातें। और विशेष मनोज कुमार ने अपने करियर शहीद उपकार पूरा पश्चिम से ही शुरू किया था और देश के ये सबसे बेजोड़ फिल्में थी जिनको आज भी याद किया जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते।

ये दुश्मन है खुद गर्दी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है।

0: हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में और बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं। हेलो जी।
1: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: मदन भाई बोलिए आपका। जी
1: बिल्कुल, बहुत चारों तरफ से बातचीत चल रही है चारों तरफ काले सब भर गए हैं।
0: जी जी।
1: और रिक्शिया ऑटो वाले घूम घूम के जा रहे हैं इधर ऊपर से, नहीं तो नीचे से, नीचे से जा रहे सब और ऊपर ही जा रहे हैं। ऊपर वाले तो याद करो सब कुछ
0: जी, होगा। जी जी जी
1: हो रहा है। तो नमस्कार है सर, बारिश है बहुत जोरदार और सुबह मैंने भी बर्तन घसे हैं पुराने चड्डी वड्डी पहन के ऐसे और बर्तन घस दिए, पानी भर दिया, बाहर सब कर दिया, रोटी भी बन गई। लेकिन अब चलो रिक्शा में, रिक्शा वाला बोला भाई सब नाक बंद है, कोई नहीं जा रहा है, लेकिन स्कूल नहीं आएगा तो और कोई आगे चला, एक भाई मिला, मैं गोपी का ले जाता, लेकिन नहीं मेरे को वहां जाना कि तोड़ दिया, मैं कि तोड़ लेना तू ले जा, वो ले गया मैं। बस आपको नमस्कार कर रहे हैं और रेडियो मधुबन को हमारे सभी दोस्त जहाँ कहा है मत रहिए। हाँ। और बस ये बारिश का मजा लीजिए और खेती की तरफ से ध्यान रखिए और एक दूसरे का ख्याल और ट्रैफिक में जरा संभालिए और बस ये कहेगा कि बस आज गाना कौन सा गाएगा और जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को और आज सभी दोस्त मिलने नहीं चाहते क्योंकि बारिश में पकड़ा रही है, पकड़ा नहीं रहा रेडिया, तो कोशिश किया था बस आज हमारे भारत के हमारे मनोज कुमार साहब के गाने चल रहे होंगे
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं तो आप लगा दीजिए, एक गाना है बड़ा अच्छा, हमने आपकी लड़ाई मार गई बाकी कुछ बचा महंगाई मार गई, महंगाई मार गई किसी को तो बच्चे की सिलाई मार गई, किसी को तो रोटी की कमाई मार गई और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, आई महंगाई आई महंगाई। पहले मुट्ठी में पैसे लेके जाते थे और थैली में शक्कर लेके, अब थैली में पैसे और मुट्ठी में शक्कर आती है, आई महंगाई आई महंगाई। तो नमस्कार करते हैं और बड़ा अच्छा गाना है ये सुना देना। और क्या है कि मौसम के हिसाब से चारों तरफ पानी भरे हैं और इसी हिसाब से थोड़ा बहुत कम बोल रहे हैं। नमस्कार है सर और बस यही कहेंगे, बहुत कुछ बातें करने का हो रहा है। चलो साहब नमस्कार, जिनका भी जन्मदिन है उनको भी हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार और बच्चे।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए बात करते हैं, अब विशेष हम लोग बात कर रहे थे मनोज कुमार जी के बारे में। मनोज कुमार जी का जो है उपकार फिल्म, फिर उसके बाद उपकार खूब पॉपुलर हुई और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार और सर्वश्रेष्ठ संवाद श्रेणी में फिल्म पेयर पुरस्कार मिला था। फिल्म को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ संवाद का BFA अवार्ड भी मिला है। तो मनोज कुमार को शहीद के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला और शहीद फिल्म में सरदार भगत सिंह की भूमिका को जीकर उस किरदार के लिए फिल्म रूपांतरण को एक अमर बना दिया और इस तरह से उनके लिए देशभक्ति फिल्मों का एक सिलसिला जारी हुआ। मनोज कुमार बेहद ही प्रभावी थे और अपने नाम फिल्म शबनम में दिलीप के किरदार के नाम पर मनोज कुमार रख लिया था और मनोज कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फैशन के ज़रिए बड़े पर्दे पर कदम रखा और फिर उनके फिल्म में कांच की गुड़िया, उसके बाद फिर फिल्म पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल आई, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म हरियाली और रास्ता था जो 1962 में रिलीज़ हुई थी। मनोज कुमार ने वो कौन थी, हिमालय की गोंद, गुमनाम, दो बदन, पत्थर के सनम, यादगार, शेर, शोर, सन्यासी, दस नंबरी और क्लर्क जैसे अच्छी फिल्मों में काम किया और उनकी आखिरी फिल्म मैदानी जंग 1995 में आई थी। बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म जय हिंद 1999 में बनाई थी। तो ये थी कुछ खास बातें उनकी फिल्मों के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और मनोज कुमार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों से दादा साहेब फलके पुरस्कार दिया गया था, और ये पुरस्कार उन्हें जो है आखिरी समय में 2016 में मिला। और इसके पहले उनको काफ़ी फिल्मों के लिए रोटी कपड़ा और मकान, लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर पुरस्कार, और ऐसे फिल्मों में काम किया उन्होंने बहुत सारे देशभक्ति के फिल्मों में। उनके पसंद और नापसंद की बात करें तो मनोज कुमार अक्सर बंद गले के कपड़े पहना करते थे, फिर चाहे वो कुर्ता हो या शर्ट हो। इसके अलावा मनोज कुमार हमेशा एक्टिंग करते समय एक हाथ को अक्सर उनके मुंह पर रखा करते हुए देखा होगा आपने। और मनोज कुमार को विशेष फिल्मों में रोमांस के बजाय देशभक्ति फिल्मों में काम करना ज़्यादा पसंद था। तो ये थी कुछ खास बातें। और मनोज कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली। तब वो 87 वर्षों के थे, 87 वर्षों के थे। वृद्ध अवस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण से उनका निधन हो गया। और मनोज कुमार लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे और अपने अंतिम दिनों में स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे थे। तो ये थी कुछ खास बातें मनोज कुमार के बारे में। तो चलिए मित्रों, अब वक्त हो गया है आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मनोज कुमार के खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं और पूरा बारिश के मौसम में देशभक्ति और बारिश के गीत आप सुन रहे हैं। आइए आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। भारत के बहुत ही पॉपुलर बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्मदिन आज है। 1911 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। उर्दू के बहुत ही पॉपुलर शायर व कवि नाजिश प्रताप गढ़ी इनका भी जन्मदिन आज है। 1924 में इनका जन्म हुआ था। और विशेष पद वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का भी जन्मदिन आज है। 1928 में इनका जन्म हुआ था। 12वीं लोकसभा के सदस्य रामपाल अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनका भी जन्मदिन आज है 1935 में। और भारतीय ऑर्थोपेडिक चिकित्सक है क्रांतिलाल अस्मित संचेती। 1936 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार जी का जन्मदिन आज ही के दिन 1937 में हुआ। और भारत के भूतपूर्व लोकसभा महासचिव रहे जीसी मल्होत्रा इनका भी जन्मदिन आज है। 1943 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। बेंगलोर स्थित विप्रो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का विकास और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करती है अजीम जी प्रेम जी 1945 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हैं सत्यपाल मलिक 1946 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज अडवाणी 1985 में आज के दिन इनका जन्म हुआ। ज्योतिष शास्त्र के मराठी विद्वान थे शंकर बाल कृष्ण दीक्षित 1853 में आज के दिन इनका जन्म हुआ। तो चलिए जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी

0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में, और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, और जाते जाते मनोज कुमार के कुछ खूबसूरत गाने आपको छोड़े जा रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इन खूबसूरत गानों को ज़रूर सुनिए, आनंद लीजिए, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। हमें सभी से मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, न जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए सभी से प्यार से रहना है। और जी हाँ, आपको बहुत ही सुंदर टिप्स देने वाली हूँ कि इस पर बहुत ही सुंदर गहनों के ऊपर ही है, लेकिन कौन से गहने को हम आज चमकाएंगे वो आप आशियाना सुनेंगे तो जान जाएंगे। और जी हाँ, आज खुशनुमा जीवन की बात करने वाले हैं और आज बनाएंगे चोराफली। प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए।

0: ब्रह्मा कुमारी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। आज आपको बहुत ही सुंदर विचार देने वाली हूँ। वैसे तो आपको सुना चुकी हूँ कि भाई हमें सभी से मिलजुल करके प्रेम से रहना चाहिए। न जाने कब हमारा बुलावा आ जाए और इस दुनिया को छोड़ करके हमें जाना पड़े कैसे। तो आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था उनके समक्ष था। शिष्य बोला, गुरुजी आप अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं, न तो आप किसी पर क्रोध करते हो न ही किसी को भला बुरा कहते हैं, कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे रहस्य के बारे में अवश्य जानता हूँ। शिष्य विस्मय से भर गया और बोला, वे क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तो गुरुजी बोले, तुम एक हफ्ते में ही मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले, कोई और कहता तो शिष्य को ये बात बुरी और मजाक लगती, लेकिन स्वयं संत तुकाराम जी के मुख से निकली बात को कोई कैसे भला टाल सकता है, काट सकता था। तो शिष्य उदास हो गया और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के वहाँ से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और अपने स्वभाव से उलट किसी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, क्रोध नहीं करता। वह अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में बिताने लगा। वह उनके पास भी जाने लगा और प्रेम पूर्वक मिलने लगा, जिनको पहले वो नफरत करता था, दूरी बनाए रखता था, जिनसे उसने कभी अभद्रता भी की थी या गलत व्यवहार भी किया था। वह उनसे माफ़ी मांगता, हंसता बोलता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को हफ्ता पूरा होने को आया। इस पर शिष्य ने सोचा, चलो एक बार आखिरी बार गुरुजी के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अब समय आ पहुंचा है इस दुनिया को छोड़ करके जाने का। वे गुरु के समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। इसके बाद गुरुजी बोले, ये बताओ कि तुम्हारे पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? शिष्य बोला, नहीं नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, तो मैं भला कैसे सबसे नाराज हो सकता हूँ। मैं सबसे प्रेम से मिला, इतना ही नहीं मैंने जिन लोगों का दिल दुखाया था उनसे भी क्षमा मांगी। संत तुकाराम मुस्कराए और बोले, हाँ बस यही तो मेरे लिए, मतलब ये तो मेरा कहना था भाई, तुम्हारे तुम कहते हो ना कि मेरा व्यवहार अच्छा कैसे है, तो यही रहस्य है कि मैं सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहता हूँ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ, और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम जी ने उसे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हमें भी सभी से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वास्तव में हमारे पास 7 दिन ही तो बचे हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 8वां दिन तो बना ही नहीं। आज से परिवर्तन शुरू करें, और अगर पेंसिल बनकर किसी की खुशियां न लिख सको तो रबर बनकर के किसी का दुख तो मिटा सकते हो ना। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर हम सभी गौर करेंगे। और आइए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा मोहम्मद सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नयो दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सब मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

पीछिया काली पड़ जाती है या बर्तन काले पड़ जाते हैं तो सोने की दुकान पर जाकर के उनसे साफ करवाते हैं, इससे चांदी घिस जाती है। पता है आपको? आप करवा करके देखिएगा। बहुत सारी बहनों का फोन आता है, हमारे पायल पतले हो गए, हमारे बर्तन पतले हो गए। तो भाई होंगे ना, थोड़ी बहुत चांदी तो निकाल ही देते होंगे। पतले पड़ जाते हैं इसका मतलब तो चांदी निकल जाती है। तो ऐसा क्यों करना है? अपने घर पर ही हम चमका सकते हैं ताकि हमारे बर्तन न तो पतले पड़े, न हमारे पायल पतले पड़े, न ही घिसे, नए के नए पायल घिस जाते हैं और हमको क्या लगता है अरे वाह जैसे कि आज ही खरीदे हो, ऐसे हो जाता है। तो क्यों ना हम घर पर ही ये सब कुछ आजमाएं। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप अपने चांदी के बर्तनों और गहनों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो उन्हें हेयर कंडीशनर से भी साफ कर सकते हो। ठीक है, हेयर कंडीशनर से भी आप अपने चांदी के बर्तनों और गहनों को साफ कर सकते हो। अगर ये टिप्स नहीं आजमाना चाहते तो दूसरी भी आपको बता रही हूँ कि टूथपेस्ट, सिर्फ इससे दांत ही साफ नहीं होते हैं, इससे फीके पड़ चुके चांदी के बर्तन भी आप चमका सकते हैं। ब्रश से अच्छी तरह घिस सकते हैं, नहीं तो ग्रीन कलर का बर्तन मांजने का जो स्क्रब आता है उससे भी आप अच्छी तरह घिस करके टूथपेस्ट लगा दीजिए और उस कुच्चे से आप अच्छी तरह घिसिए, एकदम चमक उठेंगे। फिर धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह, न तो हमारे बर्तन न हमारे गहने घिसे हैं और जैसे कि आज ही खरीदे हो, ऐसे चमकदार बन जाते हैं। अगर ये भी टिप्स नहीं आजमाना चाहते हो तो मैं और भी सुना रही हूँ आपको। नींबू और सोडा कैसे आप यूज करेंगे? अगर देखिए चांदी के बर्तन हो चाहे गहने हो, ठीक है, इसको चमकाने के लिए आप कुछ घंटों के लिए इन्हें नींबू और सोडा के घोल में छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप बाहर ला करके अच्छी तरह इसको पोंछ लीजिए तो चांदी के बर्तन चमक उठेंगे। नींबू और सोडा का घोल बना दीजिए, घोल बना करके इसमें बर्तनों को थोड़ी देर, गहने हो चाहे बर्तन हो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें ही इस घोल में। उसके बाद आपको भले धुलाई कर लीजिए, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, भले पहले थोड़ा सा रगड़िए स्वच्छ कपड़े से, फिर धुलाई करके फिर से पोंछ लीजिए, तो देखिए गहने हमारे चमक उठेंगे। और लास्ट आपको नुस्खा दे रही हूँ कि आप चाहे तो, हम घर में देखिए सर्फ तो यूज़ करते ही हैं, अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट होते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए और इस पानी में इसको डाल करके गर्म करिए, फिर चांदी के बर्तन या गहने इसमें डुबो करके रख दीजिए। कुछ देर डुबो के रखना है, उसके बाद निकाल करके ब्रश से हल्का हल्का रगड़िए, उसके बाद साफ पानी से धो करके पोंछ लीजिए तो भी चांदी के बर्तन हो या गहने हो साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे अच्छे हैं, आप चाहे तो आजमा सकते हो। और भाई ऐसे तो नहीं कि भाई चांदी के बर्तन के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो हम घर पर ही इस तरह साफ कर सकते हैं, न सोनी के यहाँ जाने की जरूरत है, ठीक है, क्यों हम बैठे बिठाए अपनी चांदी को घिसवाए। तो ये टिप्स तो आपको दी है। अब मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साधु संत और योगी है तब के और हम सभी है अब के, साधु संत और योगी ये है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। हमारे नंबर है 94 14 15 14 15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए पुनः सुनते एक प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: आज का विषय है कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, कहीं पे इशारा, कहीं पे निगाहें, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। आज हम चलिए इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं, कैसे बेटियों को समझाते थे पहले और कैसे बहुएं समझ जाती थी। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 9414151415। हेलो
2: हेलो, जय माता दी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: आपका भी आशियाना प्रोग्राम के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: यदि आप बोलते हो कि जब सुबह का समय खास होता है तो उषा आती है आपके पास।
1: अच्छा,
2: तो वैसे भी सुबह का समय फिर खास हो जाता है।
1: अच्छा, धन्यवाद।
2: और खास में फिर पास तो हो ही जाता है ना
1: जी।
2: और बस हमारे सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी
1: जी।
2: और टॉपिक तो आप बहुत ही सुंदर लेके आए हो। सबसे पहले तो आपको एक धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सुविचार भी बहुत ही सुंदर कहा।
1: थैंक यू।
2: क्योंकि किसी के साथ मिलजुल के रहना, क्योंकि ये जिंदगी छोटी है इसलिए
1: जी।
2: तो बहुत ही सुंदर, आपको जितना धन्यवाद बोले जितना कम है। और
1: अरे नहीं, नहीं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है।
2: बिल्कुल। और अभी का खुशनुमा जीवन की बात है जो आपने कल के प्रश्न के ऊपर लेके आए हो
1: जी,
2: तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, पहले के जमाने में तो चलो बहुओं को दाज भी बोलते थे तो चलता था
1: जी,
2: बेटों के सामने भी बोलते थे तो चलता था, मगर आज के जमाने में मतलब 100 में से 10% तो अभी भी बहू मतलब सिंपल साधारण है। मतलब वो अपने कभी सास ससुर को कुछ मतलब सामने जवाब भी नहीं देंगे
1: जी,
2: मगर 90% कुछ महिलाएं ऐसी है कि आप उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने एक गाना भी बनाया था ना कि आजा आजा सासू माँ दुल्हन मेरे हाथों में।
1: जी जी जी।
2: तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आजकल की बहुओं को आप डायरेक्ट नहीं समझा सकते, नहीं तो घर में हंगामा शुरू हो जाएगा
1: जी।
2: और हंगामा शुरू हो गया ना तो बेटे आजकल क्या है, बेटे भी है ना शादी के बाद बहुओं पत्नियों की ज्यादा सुनते हैं
1: जी जी जी,
2: क्योंकि वो रोटी हाथ में लेते हैं ना तभी पत्नी की बात चालू हो जाती है
1: जी जी जी जी,
2: क्योंकि उनको भी पता है कि ये खाना खाते खाते तो कहीं नहीं जाएंगे, बात पूरी सुनेंगे
1: जी।
2: तो मतलब बेटियों इस ये कलयुग है, और कलयुग में अगर आप बेटियों को समझाएंगे ना कि बेटा आपको भी ससुराल जाना है, ससुराल में ऐसे रहना है, कैसे ज्यादा नहीं करने है, ऐसे सबका कहना मानना है, वैसे करना है, तो वो इशारा शायद बहुएं समझ सकती है और घर का माहौल भी खराब नहीं होगा
1: जी।
2: और मतलब सब ठीक भी हो सकता है
1: जी।
2: वो कहते हैं ना कि देखिए वो जो बुद्धिमान होता है उसको इशारा ही काफी है।
1: बहुत सुंदर।
2: और मूर्ख होते हैं ना उनको तो फिर आप कितना मतलब कहते हैं ना कि वो उनके सामने ढोल पीटने से कोई मतलब नहीं है
1: जी जी। बहुत
2: ग्राम में ढोल पीटोगे तो भी उनके कोई असर नहीं पड़ेगा
1: जी। सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
2: आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू
1: जी। तो आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, जरूर आप जवाब दीजिएगा कि साधु संत और योगी है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? तो जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि बेटी को समझाते हैं और बहुएं समझ जाती है, तो इस विषय पर भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में आप जुड़ सकते हो, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। सुरेश भाई ने कहा है कि देखिए पहले बेटियों को समझाया जाता था और बहुएं समझ जाती थी, और बिल्कुल सही है। आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, आज भी अगर घर में बेटियां हैं और बहू भी है और बहू कुछ गलत कर रही है तो हमेशा माँ अपनी बेटी को ही कहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बेटियों को तो माताएं बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं। फिर तो वो कहते हैं ना कि कुछ अपने भी संस्कार होते हैं जो अपने ससुराल में जाकर के वो प्रकट करते हैं, बाकी माता पिता अच्छी शिक्षा संस्कार ही देकर के विदा करते हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी। हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
3: बस मैं आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है।
1: क्या हुआ?
3: थोड़ा हो गया है तो जुड़ा हूँ, घर पे हूँ।
1: क्या हुआ, बुखार आ गया क्या हुआ?
3: नहीं, कब्जियत थोड़ा हो गया है तो थोड़ा पेट में गड़बड़ हो गई है।
1: जी जी जी जी जी जी
3: हाँ, तो घर पे ही हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ।
1: जी
3: बहुत विषय भी आज का बहुत अच्छा है, और कल का भी जो बात थी वो आप बता रहे हैं, तो मैं मेरी बात बताऊँ।
1: जी
3: कि भाई अभी अभी हमारे एक बहू है बड़े बेटे की, तो मैं तो घर पे नहीं था लेकिन मेरे घर से थोड़ा बोल गई डायरेक्टली।
1: जी
3: भाई बाहर पास में भजन मंडली है तो आप जल्दी जल्दी सब हम काम निपटा दे, लोग आएंगे तो बाहर का जो कपड़े धोने का काम है ऐसा वैसा
1: जी
3: कर दे, तो वो तो बोलने लगे मोबाइल पे बाद में बात करना ऐसा मेरे घर से बोल।
1: जी
3: तो वो बोली कि भाई उसने तो बहुत मचा दिए,
1: हंगामा खड़ा कर दिया
3: कि आप छुपा के घर में बस पिए रखते हो ऐसा है तो ऐसा है, फ्रिज में दूध रखते हो तो छुपा के रखते हो। तो भाई फिर मैंने समझाया कि देखो ये बोली है तो सही बोली है, और फ्रिज में दूध रखते हैं तो कोई ताला फ्रिज को तो ताला तो नहीं लगाते।
1: जी जी
3: आपको ये इसका है इसका है अलग अलग रखते हैं लेकिन आपको उसमें से लेना है तुझे मैंने थोड़ा ये कर दिया। फिर मेरी बेटी आई तो बेटी ने भी ऐसा मैंने बेटी को बोला जो आप आज का विषय है, वो बोला कि आप तू कैसे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को तेरे ससुर और सास ने ऐसा मुझे खोल करके बताया था तो तू ऐसा करते डायरेक्टली मैंने
1: जी जी
3: थोड़ी बात मेरी बेटी को की तो ये बहू भी है पास थी तो उसको समझ में आ गया ये सब बातें।
1: जी
3: तो ऐसा थोड़ा ये जरूरी है डायरेक्टली शुभ बात
1: जी जी बहुत सुंदर, देखिए आपका तो प्रैक्टिकल अनुभव है। जी जी होता है, घर में चार जने होंगे तो वो कहते हैं चार बर्तन भी आपस में टकराते हैं, तो चार जने होंगे तो उनके विचार अलग अलग होंगे। जी
3: लेकिन हमें बड़ों कैसे लेना है, इसको सुलट में कैसे ये करना है, वो एक करना पड़ेगा तुरंत वरना तो ये हो जाएगा। कल तो मैं ये समझ में नहीं आया था, ये आपने घर में बात बताई थी लेकिन आज तो मैं
1: जी जी
3: वो हुआ जो बताया।
1: जी जी बहुत सुंदर, आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
3: जवाब तो थोड़ा विचार करके ऑफलाइन में।
1: ठीक है आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए बेटियों को समझाएंगे तो बहुएं समझेगी, बाकी डायरेक्ट आप कहेंगे तो फिर तो तुत्तू मैं बढ़ेगी, इसलिए प्यार से बेटियों को ही समझाना है। वो भी कहते हैं कि शादी के बाद नहीं, शादी होने वाली होती है या कुंवारी होती है तब बेटियों को समझाते हैं, शादी के बाद तो उसके भी ससुराल का माहौल कैसा होता है, तो माता पिता अक्सर पूछते हैं कि अच्छा बेटा कैसे हैं, सभी कैसे हैं, क्या है। फिर भी अगर अपनी बेटी कुछ कहने लगे कि सास ऐसी है वैसी है तो उसको शांत रखना है और बोलना है देखो जैसे भी है अब उन्हीं के साथ रहना है और कोई बात नहीं वो ऐसे तो आप ऐसे रहिए, प्यार से रहिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर इस तरह की शिक्षा हम देते हैं और हमारी बहुएं सुनती हैं तो उनके मन पर भी प्रभाव पड़ता है। और भी अधिक हम आपसे सुनेंगे, परंतु पहले सुनेंगे गीत। आज के प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा, इस विषय में अपनी राय भी व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आइए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बेटी शान है घर की, बहू मान है घर की।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत
1: हाँ
0: आपका रेडियो मधुबन में।
1: नमस्कार। ठीक है, सक्सेना बोल रहा हूँ। मैं अभी बात कर रही थी, वो कट गया था।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, स्वागत
1: हाँ
0: आपका
1: मैंने
0: रेडियो
1: तो
0: मधुबन में।
1: मैंने पहली बार जो मिला रहा हूँ, दूसरी बार मिला रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है।
0: नहीं नहीं इसकी
1: हाँ
0: चाहिए मत, देखिए रेडियो मधुबन पूरा एक परिवार है, आप बिंदास होकर के
1: ना,
0: बात करिएगा।
1: नहीं वो तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे
0: जी
1: यहाँ नरोरा में कभी कभी आता है, नेट से कभी कभी चला जाता है। अभी 3-4 दिन तो बिल्कुल नहीं आया।
0: जी जी जी जी अच्छा
1: तो आज मैं घर पे हूँ तो मिल रहा है, लेकिन बाहर नहीं मिलता है ऐसे। हाँ
0: अच्छा घर पर अच्छी तरह आवाज
1: तो
0: आती है।
1: हाँ, आवाज सही आती है घर पर।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: हाँ तो
0: बाहर नहीं
1: मुझे बहुत
0: आती।
1: अच्छा प्रोग्राम लगता है आपका।
0: जी थैंक यू।
1: हाँ, और ये पहले शुक्रवार को आता था, अब चेंज कर दिया है प्रोग्राम आशियाना वाला। अच्छा
0: नहीं तो सोम से शनिवार तक रोज आता है।
1: अच्छा तो मैंने
0: जी
1: पहले 1 साल पहले सुना था, तो वो शुक्रवार में या शनिवार को ऐसा आता था ही।
0: नहीं नहीं ये सोम से शनिवार तक रोज रहता है, एक रविवार के सिवाय।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं अब आगे से भाग लूंगा इसमें।
0: जी जी जरूर। तो आइए, आप रेडियो मधुबन सुनते हैं तो इसके द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आए?
1: हाँ जी बिल्कुल आया है, अपने को विचार को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कमी है उनको दूर कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: अभी अभी आपका प्रवचन आ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ
0: जी तो आप क्या कहेंगे, आज
1: जी,
0: के प्रश्न का जवाब देंगे?
1: मेरे आज तो मेरे समझ में नहीं आया था, इसलिए देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा सुन के तो
0: कोई बात नहीं, विषय तो
1: बताता
0: बहुत अच्छा है कि भाई बेटी को समझाओ तो बहू अपने आप समझ जाएगी, आप क्या कहेंगे?
1: हूँ। हाँ तो इसमें तो ये है कि अपने बच्चों को पहले समझाओ, जब अब ये तो बहू तो दूसरे घर से आती हैं, तो वो जो है हम अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो भी समझेगी।
0: जी
1: हाँ नहीं, क्योंकि तो अपने बच्चों को समझाएंगे जब ही तो दूसरा बच्चा समझेगा। अब हम डायरेक्ट डांटेंगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा कि
0: जी
1: अपने बच्चों की तो बताते नहीं है, हमारी बताते हैं।
0: जी
1: और मिलजुल कर रहेंगे तो और ही अच्छा है, दो
0: जी
1: सुख में सब साथ रहें तो और अच्छी बात है।
0: मिलजुल कर रहना है, इसीलिए कहते
1: हाँ
0: हैं कि कुछ गलतियां छोटे करते हैं तो बड़ों को समझाना पड़ता है, परंतु
1: हाँ बिल्कुल।
0: डायरेक्ट नहीं समझा सकते। क्यों
1: हाँ है जी,
0: डायरेक्ट नहीं समझा सकते? आज का समय चेंज हो चुका
1: हाँ
0: है, डायरेक्ट समझाएंगे तो कोई सुनना पसंद नहीं करेंगे। कारण क्या इसके पीछे? एक तरफ बहुएं कहती है कि हमें भी बेटी की तरह रखो, तो फिर
1: हाँ
0: बेटियों
1: जी
0: को तो हम डांट भी देते ना गलती पर,
1: हाँ,
0: फिर बहुओं को डायरेक्ट क्यों नहीं डांट सकते?
1: नहीं अपना बच्चा समझेंगे तो उन्हें भी डांट सकते हैं, उनसे प्यार भी करेंगे तो उनके डांटने का भी अधिकार है,
0: जी
1: उनकी
0: बिल्कुल
1: बात हम मानेंगे तो उनको भी समझा सकते हैं और समझना चाहिए उनको भी।
0: जी
1: और जब भी परिवार चलता है, जब सब एक दूसरे का ख्याल रखें।
0: जी बिल्कुल बहुत सुंदर।
1: हाँ और जब हम अब बहू को बेटी मानेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ना।
0: जी बहू को बेटी माने और बेटी सास को माँ माने, तब
1: माँ
0: रिश्तों में
1: मानो,
0: मधुरता
1: हाँ
0: रहेगी।
1: हाँ जब भी मदद कर रही थी।
0: जी
1: और अभी तक तो हमारे 5 साल हो गए, बहू आई है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गलती होती है तो समझा देते हैं, वो समझ जाती
0: बहुत अच्छी बात है। वो
1: है।
0: कहते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं उनके ऐसी बहुएं
1: हाँ
0: आती है, और अक्सर आती
1: बिल्कुल,
0: है, ऐसा नहीं है कि सभी खराब है। देखिए सिक्के के दो पहलू है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: जी
1: और बहू भी हमारी बहुत अच्छी है, और जैसा कहते हैं मान लेती है कहना, और 2-4 मिनट तो सभी नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर मिल जाते हैं आपस में।
0: जी जी वो तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तू तू मैं थोड़ी हो जाती है, लेकिन
1: हाँ
0: मन मुटाव नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए, हम
0: जी
1: उसे समझा देते हैं, बेटा कोई गलती हो जाती है तो थोड़ा सा उस समय नहीं कहते हैं, थोड़ा बाद में उसको समझा देते हैं तो उसकी समझ में आ जाती है।
0: जी जी यही
1: और
0: तो
1: ऐसे ही मिलजुल कर सबको रहना चाहिए, ऐसे ही समाज में रहना चाहिए, किसी से गलती हो गई तो उसे उस समय ना कह के थोड़ी देर में कहो
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसकी समझ में आ जाती
0: जी बिल्कुल,
1: है।
0: बहुत
1: जी
0: सुंदर बात आपने कही है। और
1: जी
0: आभार आपका
1: और,
0: जी बोलिए बोलिए जी, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: नहीं कुछ नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं जुड़ना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: मौका मिलेगा कल फिर बात करूंगा मैं।
0: जरूर, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में और आशाना कार्यक्रम में। ठीक है, परिवार को भी जोड़ सकते हैं, बहन जी को भी जोड़ सकते हैं, बहू को भी जोड़ सकते हो।
1: हाँ बिल्कुल, मैं कराऊंगा। अभी पहले मैंने कि मैं थोड़ा सा बात करूँ, फिर आप अपने मिसेज से कहूंगा, बहू से कहूंगा।
0: जी जी, अंताक्षरी कार्यक्रम रहता है शनिवार के दिन, तो अच्छा, उस दिन अच्छा। कुछ न कुछ थीम रहती है, भले देशभक्ति गीत, भले पुराने पिक्चर्स के गीत, आध्यात्मिक गीत, अलग अलग थीम रखते हैं, तो उस थीम अच्छा, पर भी भाग ले सकते हैं, बहन जी है, आपके बहू है, आप स्वयं।
1: ठीक है,
0: ठीक है जी, बहुत बहुत आभार आपका।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि देखिए, इसका हम चर्चा करें उतनी कम है, लेकिन समय के अनुसार चलना हमारा ज़रूरी है। तो कहने का भाव यही है कि डायरेक्ट बहुओं को मत कहिएगा, डायरेक्ट कहने से कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं वो। आप देखिए, घर में रहते हैं हम सभी, तो एक दूसरे के नेचर से भली भांति परिचित रहते हैं, है ना, कि इसको डायरेक्ट कह सकते या नहीं। कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट कहने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: जी दीदी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि
0: कोई बात नहीं
2: बात कर रही थी।
0: कोई बात,
2: बात
0: नहीं
2: कर रही थी भाई साहब की, तो मैंने सोचा चलो बात करी हो जाए तो बात कर लो।
0: जी जी जी,
2: तो बस अच्छे दीदी, बहुत खुशी हो रही है, अच्छी बातें चल रही है। बहू बेटी की कल की जो बात हुई थी वो भी आज बहुत स्पष्ट होने वाली है, बात सही है
0: जी।
2: और बताया कि दीदी की बहू को हम नहीं बोल सकते, बेटी को बोल सकते, लेकिन कई कई बहू ऐसी होती है दीदी की खुद हम बोलेंगे तो भी समझ जाती है
0: जी।
2: तो वो क्या है कि मैं समझाऊँ कि वहाँ से इससे पिताजी से घर से जो बात होती है
0: जी,
2: कि भाई हम वहाँ जाके अच्छे रहेंगे, सब कुछ वहाँ ससुराल में हम अच्छी तरह से रहेंगे, किसी से ऐसा मत बोले, किसी को गलत लगे, किसी को ऐसा वो काम करेंगे अच्छी तरह से, तो जो वही बात उसके दिमाग में रह जाती है, तो ससुराल में आती है तो कहना तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम कुछ बोलेंगे तो वो आराम से सुन लेगी और कर देगी, वो भी सही है
0: जी।
2: तो बोलने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो संस्कार लेके बेटी बहू बनकर आती है तो कुछ कहना नहीं पड़ता। कई घर जगह पे ऐसा करके जाए मैं है बहू, कुछ कहना ही नहीं पड़ता, खुद आराम से काम कर लेती है, किसी के बोलते नहीं, झगड़ा भी नहीं करती है, और परिवार में भी अच्छी तरह से रहती है
0: जी जी।
2: लेकिन
0: बहुत अच्छी
2: हम
0: बात।
2: बेटियों को सलाह देना जरूरी है कि हम बेटियों को कुछ बोल डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन बेटियों से कुछ कहते हो हम बहुत समझ आती है, समझ तो जो समझे वाले समझ आती है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं बहू ऐसी आती है तो उनका समझ लेती
0: जी,
2: तो
0: जी,
2: मेरे
0: जी,
2: मुझे बोल रहा है, मेरा बेटी को कहता लेकिन मेरे
0: जी बिल्कुल ऐसा होता है जी जी जी
2: ऐसा होता है। तो बस ये तो माँ बाप के संस्कार पर रहता है दीदी, माँ बाप का संस्कार अच्छा होता है तो बहू है बेटी चाहे,
0: माँ बाप के संस्कार भी और कुछ क्या अपने भी पुराने संस्कार रहते हैं स्वयं के भी
2: जी,
0: क्योंकि माँ हमेशा माँ अगर अच्छी शिक्षा देती है लेकिन ससुराल में जाकर तो नहीं देखती ना कि बेटी क्या कर रही है।
2: नहीं सही बात है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं कि बेटी को संस्कार अच्छे ही देते हैं, बुरा तो कोई देते नहीं, लेकिन फिर भी ससुराल में आकर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज ना हो और बेटी की तरह ही घर में रहे बहु जैसे बेटी जैसे
0: वही
2: सही रहेगा। ठीक है दीदी,
0: ओके।
2: जो आपने प्रश्न पूछा वो तो समझ में नहीं आ रहा है।
0: साधु संत और योगियों को कहते हैं तबके और हम सभी हैं अबके, कैसे?
2: वो तो सही है क्योंकि पहले जमाने से वो चल रहा है योगी जोगी और संत
0: जी।
2: वो तो सही है दीदी, कहे संत से ही हमारी शुरुआत हुई है, संत से ही हमको संस्कार मिले हैं, इसलिए साधु संत पहले के यार और हम अबके हैं, तो हम साधु संतों से संस्कार लेंगे, बात करें अच्छी सुनेंगे, तो अब ऐसी बात है मुझसे जो ज्यादा पता नहीं चलता तो यही कहूँगा।
0: कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की आपने जी।
2: तो साधु संत का मानिए और वो पहले के जमाने है कि उसको बहुत पता है, और हम तो आपके हैं, हमको कुछ पता नहीं, संस्कार हमारे में अभी तक कम है, तो जिसकी शिक्षा पर चलिए मैं तो ऐसा कहता हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आभार आपका सुरेश भाई, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और वो कहते हैं कि बात चल रही थी बेटी को समझाओ और बहू समझ जाए, लेकिन आजकल थोड़ा समय भी बदला है। आजकल भले आप बेटियों को शिक्षा दो तो भी क्या कहेगी, ओ देखो मुझे सुनाने के लिए अपनी बेटी को समझा रहे हैं। जैसे कि सुरेश भाई ने कहा, ऐसा भी हो रहा है। हर प्रकार के इंसान है समाज में, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं या सभी बुरे हैं, अच्छे भी है और इस तरह के भी है। कल ही एक बहन का फोन आया, इसलिए मैंने इसी विषय को ले लिया। उनका यही फोन आया कि बहुत दुखी है वो, उनके बहू कुछ भी काम नहीं करती, अपने ही कमरे में बैठी रहती है, खाना भी सास बनाएगी तब नीचे आकर के खाया और वापस ऊपर। दीपावली के दिन चल रहे हैं, साफ सफाई में कोई हेल्प नहीं, अकेले सास कर रही है। अब सास भी क्या करेगी, तीन मंजिल का घर है, हमारे आबू के अंचल की ही बात है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन तीन मंजिल का घर है। लेकिन बहू को कम से कम 5-6 साल हो गए शादी हुए, घर पर आए, लेकिन 5-6 साल हो गए, परंतु कोई भी कार्य में हेल्प नहीं करना, माने भोजन भी बना करके नहीं देना, कुछ भी नहीं। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार कुपाराम जी, कैसे हो आप?
3: कार्यक्रम सुन के हर काम भी करते।
0: जी जी अच्छी बात है।
3: इस के बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा बोलता हूँ
0: जी।
3: घर सुना बिन काम नहीं और घर सुधारे काम नहीं
0: जी।
3: बुआ को भी वो ससुराल भी अपना घर लगना चाहिए
0: जी,
3: और वो चाहे तो उसको स्वर्ग भी बना सकती है और चाहे तो उसको नरक भी बना सकती है।
0: बिल्कुल
3: हाँ जी, ये मेरा तो है
0: जी, बहुत सुंदर बात
3: है। ठीक है, आदमी को तो कमाने का उसका धंधा होता है, वो धंधा करके ला के देता है, घर में कैसे चलना है कि चलाना है, वो तो घर का काम है।
0: जी जी जी।
3: और संतों का वो प्रश्न तो मुझे लगता है कि संत तो क्या है, बार बार वो इसी योनियों में आते रहते हैं
0: जी,
3: और उनके तो वो संस्कार चलते रहते हैं
0: जी।
3: और हम अब के हिसाब से के क्या पता कितने जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिला होगा।
0: अच्छा
3: जी, हम अब के और संत तो वो तो जन्म जन्मांतर से भगवान उनको तो भेजते रहते हैं कि भाई जाओ सृष्टि में अच्छा काम करो, सृष्टि को सुधारो।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी कोशिश की, आभार आपका कुपाराम जी। तो बहुत ही देखिए, सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रश्न के जवाब बहुत अच्छे दिए हैं। और बात चल रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि उनका फोन आया, 5-6 साल हो गए, लेकिन उनकी बहू इकलौता बेटा है, इकलौती बहू है, अच्छा समाज है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं करती है तो रिश्ता तोड़ देवे, फिर भी वो तालमेल बिठा के चल रही है कि चलो किसी भी तरह हमारे प्यार को ये समझे, लेकिन अभी कोई महसूसता नहीं, घर में बात नहीं करना, सास से तो बिल्कुल ही बात नहीं करना। और बेटा कुछ सालों से बेटे की डेथ हो गई, बहू है, एक पोता है, पोते को भी जब इच्छा होती है तो सास ससुर को रखने देते हैं, नहीं तो वो अपने पास रख लेती है, देती नहीं है, और कभी कभी मूड पर आधार है, कभी कभी नीचे भेज देती है। वो कहते हैं बच्चे तो बंद के नहीं रहते ना, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं कि बच्चा भी रूम में ही रहता है, जब उसका मूड होता है तो ही नीचे जाने देती है और वो कमरे से नीचे नहीं उतरते। अब सास ससुर परेशान है, वो बोलते हैं कि भाई या तो आप इस घर में रहो तो हमसे बातचीत करो, हम आपको बेटी की तरह रखते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि आप चाहो तो हम आपकी दूसरी शादी करवा सकते हैं, क्योंकि 5-6 साल ही हुए हैं शादी हुए, लेकिन वो न घर छोड़ने के लिए तैयार है न ही प्यार से रहने के लिए तैयार है। तो बेचारे सास और ससुर किसको कहे, वो कहते कि हम बात बाहर नहीं करते, नहीं तो समाज में बातें हो जाएगी। और कहते ना कि भाई बहू को बिचारी समझ करके सास ससुर पर ही आरोप लगाएंगे, लेकिन ऐसा उनके घर में हो रहा है। उनके पियर वालों, बहू के पियर वालों को भी कहा, लेकिन वो भी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं आपके घर की आप जानो, हमको नहीं कहना है, हमारी बेटी अच्छी है। और वो बेटी मतलब वो बहू बिल्कुल काम नहीं करती है और न ही नीचे आती है, अपने ही कमरे में रहती है। जब खाना बनता है देखता है कि खाना बन गया तो खाने के लिए आ जाती फिर से ऊपर। अब आप क्या कहेंगे, तो समाज में हर प्रकार के मतलब इंसान है, हर प्रकार के लोग हैं। उनकी बेटी से भी जब वो ससुराल से आती है तो बहू बात नहीं करती है, तो बहुत जगह पर तो ऐसा है कि बेटियों को समझाते बहुत समझ जाती है, और बहुत सारी जगह पर भले कितने भी सास ससुर उसके आगे पीछे घूमे, भले प्यार देवे बेटी की तरह रखे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि देखिए तकलीफ है तो आप मुँह से बोलिए कि मुझे ये तकलीफ है, नहीं तो फिर इस तरह आप रूठे रहेंगे तो घर हमारा बिगड़ेगा, घर जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। चाहे भले बहू टिकी रहेगी तो सास ससुर कितनी बार वो कहते हैं कि हमारी इच्छा होती है हम घर छोड़ के चले जाए, लेकिन लोग यही कहेंगे कि देखो बहू को छोड़ करके अकेली छोड़ करके चले गए, अब घर में क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता। इसलिए प्यार से रहिए और जो भी कुछ आपको कहना है कह लीजिए, झगड़ा करना हो तो कर लीजिए, एक बार फिर से सुनिए कि हमारे सास ससुर हमें क्या कहना चाहते हैं और हम उनको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो बातचीत तो करो उतनी कम है, समय इशारा कर रहा है, इसलिए चलिए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर, मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं, माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम, एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई कुछ दिनों से आपको गुजराती आइटम सिखा रही हूँ, सुवारी आपने सीखी, मठिया आपने सीखा, आज आपको सिखाएंगे चोरा फली। भाई ये ऐसा नहीं कि गुजरात में बनता है और दूसरे स्टेट में नहीं बनता है, आजकल तो हर स्टेट की चीज़ें हर कहीं बन जाती हैं, क्योंकि हर स्टेट के लोग हर जगह पर रहते हैं। गुजरात में जैसे बाहर के लोग रहते हैं, दक्षिण के लोग रहते हैं, तो उधर के इडली डोसा भी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चटनियाँ वगैरह। और यहाँ के लोग भी बाहर रहते हैं तो वो एक दूसरे का कल्चर तो सीखने में आ ही जाता है ना, और वही मज़ा आता है हिल मिलकर रहने में और बनाने में। तो चोरा फली के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, लेकिन आज का प्रश्न बहुत सुंदर है कि साधु संत और योगी है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। और आइए अब चोरा फली आपको सिखाती हूँ। सामग्री ले लीजिएगा, जैसे आप 1 किलो लोट लेना है आपको तो आप 700 ग्राम लीजिएगा बेसन, 300 ग्राम लेना है उड़द की दाल का आटा, ठीक है? फिर आप लीजिए स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, और थोड़ा सा आपको लेना है खाने का मीठा सोडा, आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है, ठीक है? और मसाला बुरकाने के लिए आप लीजिए लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, और अगर चाट मसाला पसंद करते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो भाई ये कहते हैं कि समय के साथ चेंज आया है, अभी की नई पीढ़ी चाट मसाला भी ऐड करती है, पहले नहीं करते थे, पहले लाल मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स करते थे, ठीक है? तो बस सामग्री यही है कि बेसन 1 किलो का अगर मठिया बना रहे हैं तो आप ले लीजिए 700 ग्राम बेसन और 300 ग्राम उड़द की दाल का आटा, फिर आप स्वाद के अनुसार नमक लीजिए, और तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है, बेकिंग सोडा लेना है थोड़ा सा, और मसाला भुरकाने के लिए लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर और काला नमक। अगर आपको ज़्यादा पसंद है चाट मसाला तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको साथ ही साथ बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। भाई इसमें भी मेहनत है, जैसे मठिया बनाए ना, मठिया में कितनी मेहनत है, ऐसे ही चोरा फली बनाने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या करेंगे, बेसन का और बेसन और उड़द की दाल का आटे को छान लीजिए, मिक्स कर दीजिए, और इसमें खाने का मीठा सोडा डाल दीजिए, ठीक है? और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, फिर थोड़े से पानी में आप नमक गर्म करिए, भले आप नमक सेक करके डाल दीजिए डायरेक्ट ही, वो आप पर छोड़ा है कि आप कैसे क्या करते हैं। अगर नमक डायरेक्ट डालना चाहते हैं आटे में तो फिर आप थोड़े से तवे पर सेक दीजिए, ठीक है? और पानी को गर्म कर दीजिए, और इसमें आप 1 चम्मच तेल डाल दीजिए, बहुत जने डालते बहुत जने नहीं डालते, अब आपकी इच्छा हो तो डालिए, बाकी 1 छोटा चम्मच तेल डालिए, ठीक है? और फिर वो नवसेक के पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए, गूंद दीजिए, अच्छी तरह इसको गूंदना है, फिट रखना है, और अच्छी तरह गूंद करके फिर इसको आप आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक करके रख दो। आधे घंटे के बाद फिर से इसको एक मेक करिए अच्छी तरह, और फिर इसको भी मूसल से, हमान दस्ता जो होता है ना लोखन वाला, उससे आप कूटिए। जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना मठिया का कैसे, बस यही तरीका है चोरा फली बनाने का भी। इसमें भी बनाने में बड़ी मेहनत है, आप चाहे तो प्लास्टिक के कट्टे के बीच में रख करके पैरों से आपको चल सकते हैं, और आप चाहे तो हमान दस्ते के मूसल से कूट सकते हैं, अब वो आप पर छोड़ा है, ठीक है? अच्छी तरह इसको कूट पीट करके जब इसमें अच्छी लोच आ जाए तो फिर आप लीजिए, और फिर इसको भी तुंबना है, ठीक है? मतलब इसका थोड़ा थोड़ा लुआ लेकर के दोनों हाथों से इसको खींचिए, फिर से ये लुआ बनाइए, फिर से खींचिए, फिर से लुआ बनाइए, फिर से खींचिए, ठीक है। जब अच्छी मेहनत करने के बाद आपको लग रहा है कि अब इसमें लोच अच्छी आ गई है और अब ये टूट नहीं रहा खींचने पर, बाकी तो क्या लोच नहीं आती ना, तो हम जैसे खींचेंगे वैसे फट फट फट फट टूट जाएगा, लेकिन जब लोच अच्छी आती है तो हम खींचते हैं तो फिर वो टूटता नहीं है, पतले पतले तार की तरह चिपका रहता है। तो पता चल जाता है कि अब हमारा चोरा फली का आटा परफेक्ट हो गया है। उसके बाद आप अच्छी तरह इसको एक मैक करके वही मठिया के बनाए ना बेल, ऐसे ही इसके भी बेल बना दीजिए, बेलन की तरह लंबी लंबी चकले पर रख करके, और फिर धागे से इसके लुए काट दीजिए, जो भी आप साइज पसंद करते हो उस अनुसार आप लुए काट लीजिए। और फिर थोड़े से वही प्रोसेस है जो मठिया का है, बस इसमें मटेरियल थोड़ा सा अलग तरीके से डालने का है, उसमें थोड़ा सा अलग है। तो आप थोड़े से तेल में आटा या फिर थोड़ा सा आटा रखिए और आटे में थोड़ा तेल मिला करके एक मेक करके ये सारे लुए उसमें डाल दीजिए। अच्छी तरह सभी पर लग जाना चाहिए, ठीक है, सभी लुओं पर ये तेल वाला आटा लग जाना चाहिए ताकि बेलने में आसानी रहेगी, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि बेलने के लिए हम पहले से ही इतना तेल और आटा लीजिए कि इसमें ये सारे लुए अच्छी तरह चुपड़ जाए। उसके बाद आप बेलिए, और बेल करके आपको अगर कटर है तो कटर, नहीं तो चाकू से आप लंबे लंबे काटिए, ठीक है। पर कैसे काटना है, गोल गोल आपने बना दी साइज, जो भी रोटी की साइज है, चाहे पूरी की साइज है, जो साइज आप पसंद करते हो बेल दी आपने। बेलने के बाद अब आप बीच में से थोड़ा सा काटिए, आपको एक उंगली किस साइज का आपको रखना है, फिर तो आप चाहे तो चौड़े पसंद हो तो चौड़े रखिए, सकड़े पसंद हो तो सकड़े रखिए, जो भी साइज पसंद है रखिए। लंबे लंबे काटना है, लेकिन साइड में से किनारे नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मेहनत पड़ जाती है तलने में, इसलिए रोटी की तरह ही रहना चाहिए, बस बीच में से काटिएगा, किनारे रहने दीजिए, जब आप तलेंगे फिर निकालेंगे तो वैसे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप पहले तो बेल बेल करके रख दीजिए, जब तलते हो ना उसी समय काटिए। तो बस बेल करके आपने वही थप्पी लगानी है, थोड़े थोड़े से सुखाने हैं, ज़्यादा नहीं, और फिर इसको आप जब ये सारे बन जाए तो फिर आप रखिए कढ़ाई में, तेल डालिए, गैस पर रखिए और तल दीजिए। तल करके आप अच्छी तरह, मतलब दोनों तरफ से तले, लेकिन बहुत ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। और तलने के बाद आप निकाल दीजिए, फिर एक कटोरी में या एक प्लेट में लाल मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स कर दीजिए, चाट मसाला पसंद है तो उसको भी मिक्स कर दीजिए, और जब आप निकाल दो इनको तो फिर सभी के ऊपर ये नमक मिर्च बुरका दो, ठीक है। ऊपर से डालना है, अंदर नहीं डालना, अंदर तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ही डालना है, ऊपर से आप ये मसाला डालिए और फिर खाइए, फिर मुझे फ़ोन करिए कि कितना स्वादिष्ट लगता है, चोरा फली कितनी स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए चोरा फली तैयार है, देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली और थाली में आप चोरा फली रखिए, सब्जी चपाती जो भी बनाई है रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा चोरा फली का। साथ ही साथ एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
1: माँ अब तो बस करो।
2: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। बहुत ही सुंदर विचार था कि भाई सभी से हिल मिल कर के प्रेम से रहना चाहिए, न जाने कब बुलावा आ जाए। ठीक है, तो ये इस बात को ज़रूर गांठ बांध देनी है कि हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। फिर आपको टिप्स भी बहुत अच्छी दी है कि कैसे आप चांदी के बर्तन और अपने गहनों को चमकाएंगे। भाई दीपावली के काम चल रहे हैं, साफ़ सफाई ज़रूर करिएगा, पर इन सभी की भी साफ़ सफाई की आपको टिप्स दी है तो आजमा करके साफ़ कर सकते हो। खुशनुमा जीवन की बहुत ही अच्छी बातें हुई है कि भाई बहू मतलब बेटियों को समझाएंगे तो बहू है समझ जाएगी, जो समझदार होती है वो समझ जाती है, फिर तो आप सभी जानते हो। और बहुत ही सुंदर आपको चोरा फली बनाना सिखाए, तो आपने सीख लिया ना, सीख लिया है, बनाओ तो ज़रूर हमें भी खिलाना। चलिए वो तो मजाक थी। और आज का प्रश्न था कि साधु संत और योगी थे तब के और हम हैं अब के। सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छा जवाब दिया उन्होंने भी। और मतलब इनका जवाब था कि साधु संत सभी को ध्यान में रख करके भूत भविष्य वर्तमान को सोच करके चलते और हम अभी को सोच करके चलते हैं, बहुत अच्छा जवाब है। और सुरन कुमार जी सक्सेना यूपी नारोल से आप जुड़े हैं, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, विषय को अच्छा स्पष्ट किया आपने। फिर कंचन भाई आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया। सुरेश भाई झोटाना से आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की प्रश्न का जवाब देने की। और कुपाराम जी कोजरा से आपने भी विषय को स्पष्ट किया है। तो पहले तो मैं आप सभी के लिए ताली बजवाना चाहूँगी कि भाई आपने बहुत अच्छी कोशिश की और इस विषय में भी आप जुड़े और अपनी राय व्यक्त की। और आज का प्रश्न यही है कि साधु संत योगी है तब के कैसे। देखिए साधु संत योगी बहुत तपस्या कर चुके हैं, बहुत तपस्या कर चुके हैं, तो उनको सब सीधा मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है ना, और उनके द्वारा समाज को देश को दुआएं मिल रही है। इसलिए कहते हैं कि साधु संत योगी है तब के और हम सभी है अब के, जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तपस्या करें, कुछ भक्ति करें, कुछ योग साधना करें, अभी हम चल रहे हैं, इसलिए अब के और वो है तब के। ठीक है, और अब मैं आपको चंद पंक्तियां सुनाना चाहूँगी बेटी और बहू पर। आप लोग लेंगे इन पंक्तियों का आनंद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। आंगन अपना छोड़ घर किसी और के जा रही हूँ, आंगन अपना छोड़ घर किसी और के जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, पिता की शान से पति का मान बनने जा रही हूँ, पिता

ईशान से पति का मान बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ, अपना वजूद भुलाकर पहचान नई बनने जा रही हूँ, अपना वजूद भुलाकर पहचान नई बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ। बेफिक्रिया भूल के जिम्मेदारियां उठाने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ। बचपन यहाँ छोड़ संजीदगी से रिश्ते निभा रही हूँ, बचपन यही छोड़ संजीदगी से रिश्ते निभा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीना इसी का नाम है कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। पिछली कड़ी में हम बातचीत कर रहे थे सुधीर भाई जी से, जो वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी शांतिवन मुख्यालय परिसर में बिजली विभाग के इंचार्ज हैं और वो अपनी जीवन के उन चंद पलों को हमारे सामने खोल रहे थे और एक एक बात में हम उस ज्ञान की गहराई को समझ रहे हैं और उनके जीवन की जो यथार्थ अर्थ उन्होंने समझा है उसको हम भी समझने की और अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे भाई जी के साथ अपनी समर्पित जीवन की निर्णय के बारे में, जहाँ पे उन्होंने ये निर्णय किया कि अभी मुझे अपने आप को समर्पित करना है और ये नौकरी वगैरह सब छोड़ करके चले जाना है। और उनको बुलावा भी आया था भगवान के घर से कि आपकी सेवा उनकी बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए, आगे क्या हुआ है उस समर्पित जीवन में और कैसे उन्होंने वो निर्णय, वो दृढ़ता को कायम रखा है और आगे कैसे बढ़े हैं और अभी तक की यात्रा कैसी रही, हम जानते हैं। सुधीर भाई जी, आपको फिर से एक बार स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम जानते हैं, जहाँ पे आप बातचीत कर रहे थे कि आपने एक लेटर लिख करके दे दिया है आप उषा दीदी जी, जो आपकी सेंटर के निमित्त है, और उसके बाद क्या हुआ है?
2: फिर इस पीरियड में मेरे को इतना वैराग्य आया, ठीक है, कि मैंने लौकिक में आना जाना बंद कर दिया। बहुत वैराग्य था, ठीक है। और जो सर्विस में मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, ठीक है, था सर्विस में, तो वहां से भी जो सैलरी मिलता था, मैंने फिर दीदी के साथ एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया। तो मैं अपने खर्चे के लिए जो मेरा रनिंग अकाउंट वहाँ R&D सेंटर में था वो रहता था, और बाकी की सैलरी निकाल के जो जॉइंट अकाउंट था उसमें डाल देता था। जब मैंने समर्पणता का पत्र लिख करके दीदी को दिया था, तो दीदी ने मुझे एक पाठशाला में रहने के लिए छोड़ दिया था।
1: अच्छा।
2: कि आप इस पाठशाला में रहो। इस तरीके से 3 साल तक ये ऐसा क्रम रहा कि सर्विस करते हुए भी मैंने घर में कैश के रूप में पैसा नहीं दिया। अगर घर वाले आए, ठीक है, उनकी सेवा में जो खर्च होना था किया। उसी बीच में मेरे ताऊ जी आए, उनकी आंखों का ऑपरेशन कराया, पिताजी आए, माताजी आए, सबका, ठीक है, जो मेरे से सहयोग बन पड़ता था सब कराया, ठीक है। लास्ट में मेरे फादर आए, ठीक है। तो उन दिनों फिर मधुबन से भी ताराचंद भाई साहब का दीदी के पास बार बार फोन जाता था कि अब सुधीर को फ्री करो, इसको यहाँ भेजो, मधुबन भेजो, अब इसको फ्री करो, ठीक है। तो फिर दीदी मेरे को बोली कि सुधीर, अब तो तुम्हारा बुलावा बार बार आ रहा है, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन दिनों मेरी सर्विस लगभग 5 साल होने वाली थी। फिर मैंने भाई साहब को बात किया कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को ग्रेच्युटी का लाभ मिले, वो भी यज्ञ का ही होगा, ठीक है, तो मैं आगे और ये 3 महीने की सर्विस करूँ। अगर आप कहते हो नहीं अभी रिजाइन करो, तो मैं अभी रिजाइन करके आता हूँ। तो बोले जब ऐसी बात है तो भले ही, और ठीक है, कर लो सर्विस, ठीक है। उसमें भी लास्ट के 1 महीने का तो नोटिस ही होता है, ठीक है जी, लीव व्यू करके उसमें 15 दिन तो ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आखिर फिर मैंने रिजाइन किया। और जो घर वालों की बात आपने पूछी, छुट्टी दे दी, ठीक है, तो उसमें एक तो क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना मेरी तरफ से बंद हो गया था, तो उनके लिए तो मैं यहाँ रहूं या माउंट आबू में रहूं, उनको क्या फर्क पड़ना, परिवार की ऐसी स्थिति थी, ठीक है।
1: और वैसे भी कोई आपके ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं थी?
2: नहीं, डिपेंडेंसी नहीं थी, 2 बड़े भाई थे, संभालते थे सब, ठीक है जी, ऐसे मेरे ऊपर डिपेंडेंसी भी कुछ नहीं। हाँ, इतना है कि मैं अपना रोल प्ले करता था, सहयोग देता था सब बातों में। परिवार पर भी, माता पिता पर भी कोई इतनी डिपेंडेंसी किसी बात की नहीं रही थी, क्योंकि हम जो भाई बहने थे सब अपने पैरों लगभग खड़े हो गए थे। मेरी बहनों की 3 बहनें थी, उनकी शादियां हो चुकी थी। छोटा भाई था उस समय, वो ग्रेजुएशन कर रहा था, ठीक है, उसने भी देखा जब ये नौकरी छोड़ के जा रहे हैं तो मैं आगे पढ़ के क्या करूं, ठीक है। उसका भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। फिर बोला कि जब ये नौकरी लगी हुई छोड़ के जा रहे हैं तो मैं क्यों ज्वाइन करूं, मैं भी इसी मार्ग पे चलूंगा।
1: अच्छा,
2: ठीक है।
1: फिर वो भी आ गए आपके साथ?
2: हाँ जी, हाँ, वो मेरठ में रहता है, ठीक है।
1: अच्छा।
2: और समर्पण में यहाँ मेरे मामा जी का लड़का है संजीव भाई, यात्रा भोजन में वो समर्पित मेरे साथ साथ, फिर वो भी पीछे पीछे आ गए हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके का हमारे परिवार से छुट्टी की बात है। ठीक है।
1: कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप नौकरी कर रहे हैं और ये सभी चीजें, शादी का उम्र है, शादी का या नहीं, और ये भी होता है कि परिवार में वंश बढ़ाने की बात होती है, और ये सब कहाँ छोड़ के जा रहे हो, क्यों संन्यास ले रहे हो?
2: इसमें मेरा सिर्फ एक ही रिप्लाई सदा रहा, होता है। ठीक है जी, उम्र होती है तो आप जानते हैं होता है, रिश्तेदार भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ननिहाल पक्ष भी पूरी कोशिश करता है। ठीक है जी, मेरा एक ही जवाब रहता था, मुझे अभी नहीं करनी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, सिर्फ एक जवाब देता था कि मुझे अभी नहीं करनी, और अभी नहीं करनी है। ऐसे करते करते ठीक है, समय बढ़ता गया, मेरी ज्ञान में परिपक्वता बढ़ती गई, उन्होंने भी देखा ये तो वैरागी ही है। एक दो बार कोई लड़की वाले आए देखने के लिए, जब उन्होंने मेरे कमरे में चित्र टंगे देखे, बोला ये तो राजयोगी है। चुपचाप चले,
1: सन्यासी
2: सन्यासी है। ठीक है, तो बात आगे बढ़ाने की फिर कोशिश भी नहीं की उन्होंने।
1: सो भाई साहब, जैसे आप 1992 से मधुबन में आ गए थे हेडक्वार्टर में, और समर्पित रूप से जीवन में जीना शुरू किया, तो आप अपने जीवन में क्या उन्नति या क्या सिद्धियां पाया है, या प्रोग्रेस कैसे क्या देखते? क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब 7 डेज कोर्स किया तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को आपने बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा अपने अंदर, तो इतनी लगभग 30-35 साल की आपकी जो जर्नी रही है इस मधुबन तपोभूमि में, तो अपने अंदर आप क्या प्रोग्रेस देखते हैं?
2: जब मैं यहाँ आया ठीक है, तो लगभग 1-1.5 साल के बाद मुझे लगा कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है यहाँ। उसके पीछे फिर मैंने एक एनालिसिस किया कि यहाँ आने से पहले मैं क्या करता था और क्या नहीं करता था, वो मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ आने से पहले मैं क्या करता था और क्या नहीं करता था, और यहाँ आने के बाद क्या करने लगा हूँ और क्या नहीं करता हूँ, एक कंपैरेटिव स्टडी किया, तो मेरे को समझ में आया ठीक है ना, कि ये मेरी लाइफ में ऐड हो गया है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये मेरी लाइफ से निकल गया है जो जरूरी है, जो होना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या था कि जब यहाँ आए ठीक है, तो जैसे सेंटर में बहनों का टच रहता है, हमारे पर ध्यान रहता है उनका, मुरली क्लास में आए कि नहीं आए, ठीक है, योग में कैसा चल रहा है, संगठित योग होता है तो आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहनें वाच करती हैं, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को देखती हैं। ठीक है, यहाँ वो बात नहीं थी, यहाँ सब होलसेल में है। जैसे यूनिवर्सिटी में आ गए ना
1: जी,
2: होलसेल में सब मुरली सुन रहे हैं, दैट्स ओके,
1: और सभी की अपनी खुद की जिम्मेवारी,
2: खुद की यस। ठीक है, फिर क्या होता था कि डेवलपमेंट यहाँ तेजी से उस समय स्टार्ट हो गए थे, जैसे कहा ग्लोबल हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट, ज्ञान सरोवर का एस्टेब्लिशमेंट, ऊपर से नीचे तलहटी, तो मेरा सभी कैंपस से कनेक्टिविटी रहती थी सेवाओं की, तो सभी कैंपस से जो सेवाओं की कनेक्टिविटी रहती थी, तो मेरा काफी समय सेवाओं में जाता था,
1: कर्मणा सेवा में,
2: जिसके कारण थोड़ा ज्ञान योग का जो
1: समय कम होता,
2: समय कम मिलता था। बस सवेरे योग किया, मुरली सुनी, फिर नाश्ता करते फील्ड में, कब रात होगी, शाम का योग का समय भी चला जाएगा, 8 बज जाएंगे सेवा करते करते, ऐसा चलता था। तो अपने पर जो समय देना चाहिए था ठीक, वो योग में समय नहीं जाता था। और आप तो समझते हैं कि अगर योग कम होगा तो अवस्था पर उसका असर आएगा ही है। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, जो कहा कि एनालिसिस किया, उस पर ध्यान दिया, फिर मैं कैसे भी करके सेवाओं से भी अपने आप को निकाल करके योग में समय निकालता था, जाके बैठता था संगठन में, योग में बैठता था, उससे फिर वो मेकअप हो गया। अभी आपने कहा कि इतना समय आपको हो गया है ठीक है, जैसे अभी भी आदरणीय हमारी ब्रह्मा कुमारी की चीफ राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, जो वर्तमान समय भी न्यूयॉर्क में है, अभी हम सब मधुबन वालों से मिल रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब वो कानून चाहे भारत सरकार का कानून कहें, राज्य सरकार का कानून कहें, जो भी है, अथवा ऐसे ही हमारे ईश्वरीय इस परिवार का कानून कहें, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विधि विधान कहें, हम उससे ऊपर नहीं है। तो कोशिश यही होती है कि चाहे वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कहें, ईश्वरीय परिवार का कहें, चाहे सरकार का कहें, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग रहता ही रहता है। ठीक है जी। तो इन दोनों में मैं ध्यान रखता हूँ कि हम उसको कहीं क्रोश नहीं करें। तो जब वो क्रोश करने से बचते हैं तो डिस्प्यूट्स खत्म हो जाते हैं एक तरीके से, जनरेट ही नहीं होंगे तो खत्म होने का बात ही नहीं आता है। तो इसलिए इस बात पर मैं ध्यान देता हूँ। हालांकि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें एक पाठ पढ़ाया जाता है कि ना कहना माना नास्तिक और हाँ कहना माना आस्तिक। तो यहाँ हाँ और ना आस्तिक का विषय नहीं है वास्तव में, ठीक है। हमें बड़ों का ओबीडियंट होकर के चलना है, पर अगर हम देख रहे हैं कि वो नियम के अनुसार नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का नियम है चाहे हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है, तो मैं वहाँ थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूँ। मैं वहाँ अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाता हूँ, इन्वॉल्व नहीं करता हूँ अपने आप को। तो इस रीति से फिर हम, ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, चाहे वो थॉट प्रोसेस की एनर्जी हो, ठीक है, चाहे एक्ट के लेवल की एनर्जी हो, मानसिक स्तर पर भी और कर्म के स्तर पर भी, ठीक है, अपनी एनर्जी लॉस नहीं होने देते हैं। और जमा है तो प्रोग्रेस है, सिंपल सी बात है। जमा है तो आप खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड भी होंगे आप। तो इसको मैं ध्यान रखता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जब ज्ञान में चला तो प्रोटेक्शन लिया मैंने, ठीक है जी, ऐसे ही यज्ञ में भी मैं इस बात का ध्यान।
1: आप जो भी बिजली विभाग का कारोबार करते हैं उसमें आप ये ध्यान रखते हैं कि लौकिक दुनिया का भी कानून और इस ईश्वरीय मर्यादाओं का भी कानून का भी आप ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं को बैलेंस रीति से चलाते हैं।
2: हाँ,
1: तो आप आध्यात्मिक जगत में हैं और अपनी, जैसे कहा कि जब समर्पित होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ईश्वर को समर्पित हैं। तो एक इसीलिए करते हैं कि हम एक स्वउन्नति कर सके, हम एक बेहतर इंसान बन सके। और जैसे आपने कहा, अपने लक्ष्मी नारायण को जाते हुए देखा और उनकी जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य गुण हैं, वो हमारे जीवन में इसी जन्म में लेके आ सकते हैं। तो फिर ये जो सेल्फ प्रोग्रेस की बात है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपने किन विषयों के ऊपर आपने बहुत अच्छे से साधना की है या कुछ सिद्धियां प्राप्त की है या फिर कुछ ऐसी आपकी प्राप्तियां हैं जो आपको लगता है कि इन चीजों पे मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया है?
2: मेहनत तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं मेहनत करने वाला हूं नहीं, ठीक है जी? ठीक है, मैं इस राजयोग का एक दूसरा नाम है सहज योग, तो मैं इस योग को भी सहज रीति से ही जीता हूँ। और अल्टीमेटली जो ज्ञान क्या है वो हमारे कर्म से प्रतीत होता है। हम में कितना ज्ञान है ये भी हमारे कर्म से उजागर होता है, हमें कितनी समझ आई है ये भी हमारे कर्म से ही पता लगता है। जैसे आपने कहा सिद्धि, तो उसमें भी अर्थात हमें कितनी शक्ति है, चाहे वो दिव्यता की शक्ति कहें, पवित्रता की शक्ति कहें, समझ की शक्ति कहें, उसका भी जो पैमाना है वो हमारे कर्म ही है कि हमें कर्मों में कितनी सफलता मिल रही है, हमारे कर्म यज्ञ हित में कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी शक्तियों को उजागर करता है, ठीक है, प्रत्यक्ष करता है कि हमें वो शक्ति आई है कि हम इस लेवल पर कर पा रहे हैं, इस लेवल

0: जी पा रहे हैं, ठीक है। और वह करते हुए भी जब उसमें पोलाइटनेस रहती है, मधुरता रहती है, निर्माणता रहती है, निमित्त भाव रहता है, तो ये हमारे गुणों को प्रत्यक्ष करता है। कई बार क्या होता है, करते तो हैं पर उसमें ईगो क्रिएट होता है, मैं आता है, तो शक्ति का फिर मैं में कन्वर्जन, तो वहां डिविनिटी लॉस हो जाती है, जीवन के गुणों का ह्रास हो जाता है। तो फिर वो आज सफलता है, कल वो फिर असफलता में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जीवन में शक्तियों का और गुणों का संतुलन चाहिए। जो दिव्य गुण है वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, व्यवहार में दृष्टिगोचर होते हैं, और जो हमारी शक्तियां हैं वो कर्म की सफलता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो इसलिए कर्म के स्तर पर सफलता हमारी शक्तियों का सूचक है, और व्यवहार में सफलता ये हमारे दिव्य गुणों की जीवन में उपस्थिति का कहें, प्रधानता का सूचक है। तो इनको दोनों को लेके चलना चाहिए।
1: बहुत सुंदर कहा भाई जी आपने। सो लास्ट में सवाल है कि इस जीवन को जीते हुए या फिर वो कौन सा मोड़ था जब आपको लगा कि यही जीवन है, ऐसा ही जीना है, या इसे ही कहते हैं कि जीना इसी का नाम है?
0: ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं। जब देखा मैंने बाबा रजिस्टर में नाम लिख रहा है और आगे से आगे ऑफर हो रही है, ठीक है, मधुबन कॉल कर रहा है, आप मधुबन में आइए, सेवाएं दीजिए, तो मैं कुछ करूं, ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं। यहाँ भी हेडक्वार्टर में, जैसा आपने कहा कि आपको 92 से हैं, 34 साल हो गए हैं, यहाँ भी मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज को समझा है, अंत है क्या। इस समग्र सृष्टि पर मैं जब झांक कर देखता हूँ तो वो कोई भी फील्ड है, ठीक है, चाहे वो आर्थिक जगत की हस्तियों को देख लें, ठीक है, चाहे हम आप एक जो शो है जीवन का, ठीक है, तो जो भी फेमस पर्सनालिटी है किसी भी फील्ड की है उस दृष्टि से देख लें, चाहे विद्वता की दृष्टि से देख लें, अंततः सब जाकर के ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, अंततः उनकी मंजिल ईश्वर पर जाकर के खत्म होती है, उसके बाद नया कुछ नहीं होता, ठीक है। उससे पहले यही होगा कि मैं धनवान बन जाऊं तो भगवान का ध्यान करेंगे, ठीक है, धनवान होकर के भी उस पर ही अर्पित होना है, मैं सारी दुनिया में जाना जाऊं, सारी दुनिया मुझे जाने, जान करके भी खाली, सबने जान लिया फिर भी हम खाली, फिर भरने के लिए फिर ईश्वर के पास जाते हैं। हम राजनीतिक दृष्टि से देख लें, वैज्ञानिक दृष्टि से देख लें, कोई भी फील्ड है, अंततः हम अपने आप को सब कुछ पाकर के भी खाली ही पाते हैं। तो जब पाकर के खाली पाना है तो उस पाने की दौड़ में क्यों अपने को शामिल करना है? ठीक है, हम इस जगत में है, इस जगत में कर्म जरूरी है, क्योंकि कर्म का ही हमें फल मिलेगा, सोच का फल कर्म के रूप में जब घटित होगा तो ही मिलेगा, अंततः कर्म का फल है। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो कहते हैं इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो भोगना के रूप में मिले, चाहे उसको प्राप्ति के रूप में मिले। तो प्रधान हुआ कर्म, पद प्रधान नहीं हुआ, प्रतिष्ठा प्रधान नहीं हुई, प्राप्ति प्रधान नहीं हुई, कर्म प्रधान हुआ। कर्म से मैंने नंबर वन बन गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप में मेरा नाम है, ठीक है, पर मेरा कर्म का फल क्या है? वो फोर्ब्स की लिस्ट से मेरा फल नहीं है, वो नामाचार होगा, ठीक है, पर फल मेरे कर्म का है। तो मेरा कर्म कैसा है इस पर मैं ध्यान देता हूँ। मेरे को बहुत सारे स्लोगन हैं इस ज्ञान मार्ग में, मुझे सबसे जो फेवरेट मेरा स्लोगन है कि आपके शब्द कितने ही महान हों लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा ही पहचाने जाओ। अब यह पहचान बनाने की भी बात नहीं है, यानी प्रधानता किसकी हुई? कर्म की हुई। तो जब कर्म प्रधान है, वो तुलसीदास जी की चौपाइयों में भी एक ऐसी चौपाई है कि कर्म प्रधान है, इसलिए मैं कर्म पर ध्यान देता हूँ, ठीक है जी, और उस कर्म में, ठीक है, जो ईश्वरीय विधान है उसके अनुसार उस कर्म को करना, उस कर्म के आधार से अपने जीवन को जीना, जो ईश्वरीय विधान है या इस जगत में रहते हैं तो इस जगत के विधान से बंधे हुए हैं, उसके अनुसार जीवन जीना। तो ये मुझे सुख देता है, सुकून देता है।
1: जी, बहुत सुंदर तरीके से बताया भाई जी आपने, वो जीवन क्या जीवन है जिसमें सब कुछ होते हुए भी प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो एक जो प्राप्ति मिलती है उस एक से जुड़े रहने में सर्व प्राप्तियां प्राप्त होते हैं। इस जीवन के सार को आपने समझा और यही जीवन है और ऐसा ही जीना है, आपने निर्णय करके परमात्मा के पास आकर के आप अपने आप को समर्पित किया और आप अपने कर्म से प्राप्ति भी या भाग्य भी बना रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते जा रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव है भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज अपना समय निकाल कर आप आए हैं और आपकी इस योगी जीवन की अनुभव को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। यही समझ में आता है कि आप कितना भी बड़े हो जाओ, जीवन में कितने भी नाम मान शान सब प्राप्त कर लो, लेकिन अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुँचना है, उस ईश्वर के पास पहुँचना है। और आप इस बात को बहुत जल्दी रियलाइज किया और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और इस जीवन की यात्रा को आपने जिस तरीके से सुनाया है वो भी बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, आपको भी और आप सभी को भी।
1: जी दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और हमारे साथ आदरणीय सुधीर भाई जी, आप ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। ऐसे ही कुछ और विशेष अनुभवों से हम फिर से जुड़ेंगे अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

0: मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी वक्त है जीवन रोशनी कार्यक्रम का। तो आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर सब चीजें सही चल रहे हैं लाइफ में और कई बार कुछ निर्णय लेना होता है, कई बार कुछ परिस्थितियां अचानक सामने आ जाती है, हम कहते हैं अपने आप को टेक इट इजी, लेकिन वो इजीनेस को प्रैक्टिकल में लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तभी कैसे हम कर सकते हैं इसको, इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, तभी कर सकते हैं जब हमें इसे प्रैक्टिस करना आएगा और हम समझेंगे कि इजीनेस है क्या। हम अपने मन से बात करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि इजीनेस क्या है, लेकिन इसे बताने के लिए हमें चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे मध्य हैं आरजे हर्षा और आरजे मनीषा, जिनको आप सुनते हैं हमेशा कौन से प्रोग्राम में,
1: सपनों की सैर कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, तो आज हमारे साथ परी और दीदी दोनों जुड़ चुकी हैं और दोनों अपने अपने जो सेवा है बहुत बखूबी से निभाते हैं। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन होम है, वहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए सेवा करते हैं, और आरजे हर्षा वैसे MBA किया है उन्होंने और PR के रूप में कार्यरत है शिवमणि होम में, और आरजे मनीषा फिजियोथेरापिस्ट है, तो वो बुजुर्गों को हेल्प करते हैं एक्सरसाइजेस में और बहुत सारे चीजों में वो हेल्प करते हैं, उन्हें कोई भी पेन योगा हो तो इस प्रकार से वो उन्हें हेल्प करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप जीवन रोशनी कार्यक्रम में आए हैं तो इसीलिए खूब खूब स्वागत है।
1: थैंक यू आरजे, शुभा।
2: थैंक यू,
0: धन्यवाद। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इजीनेस के बारे में, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं आप करते हैं, फिर भी आप रेडियो पे शो करते हैं, ऑनलाइन आपको एडिटिंग करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं और रेगुलर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए लाइफ इजी होना बहुत जरूरी है, या फिर हमें इजीली उसे एक्सेप्ट करना शायद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि इजीनेस आपके लिए क्या है।
2: मेरे ख्याल में इजीनेस माना हम परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करें, तो इससे जो हमारा मेंटल रेसिस्टेंस है वो कम होगा
0: जी,
2: और ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है
0: जी।
2: जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में बेशक उसको हम कंट्रोल में रखें, ताकि हम उस परिस्थिति को इजीली टैकल कर पाएं, और इससे हमारा जो मन है वो थोड़ा स्टेबल रहता है परिस्थितियों में भी
0: जी।
2: तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सेप्ट करना, आपने बोला रेजिस्टेंट की बात, मतलब कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट हो जाते हैं?
2: जैसे वर्कलोड अगर ज्यादा हो गया तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, तो हरी करी इससे थोड़े फ्री रहे उसके लिए मुझे लगता है कि हम बीच बीच में पॉज करें।
0: ओके जी,
2: पॉज बहुत जरूरी है
0: जी।
2: तो इससे हम कुछ भी अगर अलग से हो गया, रिएक्ट हम नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे।
0: आगे आपसे जानते जाएंगे कि कैसे पॉज करें। अभी मनीषा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सहजता जन्मजात होती है या फिर ये अभ्यास से आती है?
1: वैसे देखा जाए तो सहजता मीन्स हम इजीनेस, जैसा हर्षा बहन ने बताया, और ये भी कह सकते हैं नेचुरलनेस या इफर्टलेसनेस हम सहजता से समझ सकते हैं, तो ये जन्मजात भी होती है और अभ्यास से भी आती है। जन्मजात क्यों कहेंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, तो ये सहजता उसका नेचुरल है ही उसके अंदर। और फिर क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो वो नेचर वाइज बहुत इजी होता है, वो चीजों को कन्वर्ट नहीं करता, वो एज इट इज लेता है, लाइट रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके ऊपर संस्कार आते जाते हैं, उसके ऊपर अपेक्षाएं मीन्स उसके ऊपर हावी होने लगती है, तो फिर वो जो सहजता है वो चेंज हो जाती है, उसको फिर बाद में उसको विकसित करने के लिए फिर से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर करना कहना चाहूंगी कि हाँ, इसको हमें विकसित भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर के बच्चे को यदि हम हमेशा जगा के रखें कहें, तो फिर हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक जन्मजात भी है और हम इसे और अच्छे से भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चलना जो है वो जन्म जाता है, मीन्स हर कोई चल सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से चलना बैलेंसिंग के साथ में चलना, तो वो एक कला हो जाती है, एक विकसित करने पे ये डिपेंड करता है।
0: जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको जगा के कैसे रखते हैं?
1: हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम जो अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखने के लिए हम कभी कभी डांस कर लेते हैं, हम कभी गाना गा लेते हैं, कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग, बहुत सारी जो ऐसे क्वालिटीज है, मीन्स हम इंजॉय करते हैं लाइफ को जैसे बच्चे करते हैं, कभी गेम्स भी खेल लेते हैं।
0: जी हर्षा जी, आप कैसे एंजॉय करते हैं?
2: हाँ, जैसे मनीषा बहन ने कहा, क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बुजुर्गों को भी, हाँ, उनके ये भी एक यूं कहे बच्चे की ही अब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग और बच्चा सेम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ वैसे बन जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है।
0: जी क्या बात है। तो लोग लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लेते हैं, हर्षा जी से जानना चाहूंगी।
2: मुझे लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ओवरथिंकिंग से बनती है।
0: ओके।
2: जो कि आजकल के जमाने में खासकर यूथ्स को बहुत ज्यादा ये बीमारी होने लगी है, ये देखने में आता है।
0: ओवरथिंकिंग
2: और कंपैरिजन, कंपैरिजन के कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और फ्यूचर का फियर है, इसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है।
0: तो मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: जैसा हर्षा बहन ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड का रीजन करेक्ट है कि ओवरथिंकिंग है, कंपेयर और इच्छाएं हो जाती है, कई बार एक्सपेक्टेशन हम ज्यादा करने लगते हैं अपने से भी और दूसरों से भी, और जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा होती है तो फिर वहां पर हम अपने आप को मीन्स एक रिजिट कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम अपने अंदर मीन्स जगह नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आई थिंक, मुझे लगता है कि सबको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वे हैं, ना कि हमें उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, तभी हम लाइफ को इजी बना सकते हैं। और क्या प्रकृति में हमें सहज जीवन के उदाहरण मिलते हैं?
1: हाँ, प्रकृति देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी जीवंत पाठशाला कहेंगे हम, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, कदम कदम पे मिलते हैं। जैसे कि यदि हम एक फूल को ही देख लें, तो फूल है वो सोचता नहीं है कि मुझे खुशबू फैलाना है या नहीं फैलाना है, वो उसका इजी, उसका नेचर ही है खुशबू फैलाना, इजी है वो। ऐसे ही देखें नदी को, देखें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो चल रही है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और जैसे पेड़ है, उसका छाया देना उसको काम है, फल लगते हैं तो और वो झुक जाता है, तो जो उसका नेचर है, जो सहज, वो उसको उन्होंने अपना के रखा हुआ है।

0: आकाश को देखें तो वो खुलापन है, उसके अंदर विशालता है। तो ऐसे हम जो प्रकृति से हम ऐसे सीख ले सकते हैं जो इजीनेस है उसके लिए।
1: जी, फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनमें से फेवरेट एलिमेंट आपके कौन से
0: हैं? फाइव एलिमेंट्स में देखा जाए तो मुझे लगता है, वैसे तो पांचों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसे लगता है वाटर ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे कटोरी हो, चाहे ग्लास हो, चाहे लोटा हो, या बॉटल हो, मटका हो, नदी हो, सागर हो, तो वो अपने आप को बहुत, मीन्स उसने एडजस्टमेंट की पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको हर्षा जी
2: सेम वाटर पसंद है क्योंकि फ्लो होता रहता है और हर चीज में ढल जाता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है हमें पानी।
1: नेक्स्ट मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि आप यूथ के बारे में बोल रहे थे और ओवरथिंकिंग के बारे में बोल रहे थे, तो यूथ में जो एंजाइटी और कंपैरिजन जो आजकल है देखने को मिल रहा है, तो ये इजीनेस को कैसे प्रभावित करता है? और जो ओवरथिंकिंग के बारे में आप कह रहे थे, तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं आपको लगता है?
2: हाँ बिल्कुल, ओवरथिंकिंग तो बहुत बड़ा शत्रु है क्योंकि इससे हमारी क्लैरिटी खत्म होने लगती है, हमारा फोकस चला जाता है और साथ में हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं चीजों की।
1: जी,
2: अगर परिस्थिति 10% है, सोच सोच करके हम उस 10% परिस्थिति को हम 80% 90% तक ले जाते हैं, जिसको कहते हैं राय का पहाड़ बना दिया।
1: जी,
2: तो परिस्थिति बहुत छोटी है लेकिन अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो वो बहुत हमको बड़ी लग जाती है क्योंकि हमने उसको सोच सोच के कर दिया है, तो इसके कारण ओवरथिंकिंग बहुत हानिकारक है।
1: जी, ओके, तो मनुष्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इच्छाओं के बाद जो हम करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसके अधिकतर जीवन को असहज बनाती है, तो कैसे, कुछ एग्जांपल्स?
0: जैसे कि इच्छाओं की अधिकता जीवन को असहज बना देती, तो कई बार क्या होता है हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो जरूरी भी है क्योंकि कहा भी जाता है इच्छा आवश्यकता की जननी है, वो होनी चाहिए, मगर जब जो इच्छा जो लेवल है वो उससे ऊपर चली जाती है तो फिर वो बैलेंस जो है हमारे जीवन में, जो संतुलित जीवन है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाती। तो जब इच्छाओं की अधिकता होती है तो शुरू होता है चाहिए चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और अगर चाहिए तो ठीक है, ओके, ये थोड़ा कहें कि ह्यूमन नेचर है, चाहिए, ओके, बट अगर नहीं मिला, जब वो जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला, तब भी हमारा जो थॉट्स है वो बैलेंस में रहे, हमारा इफेक्ट ना करे हमारे लाइफ पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इच्छाओं की जो अधिकता है तो ये कि हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, टू मच भागने लगते हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है वो असहज हो जाता है। अब असहज क्यों होता है, इसमें सबसे पहले आता है तुलना आती है, इसी समय हम कंपेरिजन करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है, स्पर्धा करते हैं हम, कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है, फिर ये कहें कि एक साइकिल शुरू हो जाता है, जैसे वो 99 का साइकिल है कि एक कम रह गया, तो वो उसको एक को पूरा करने का वो चक्र शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इच्छाओं की अधिकता है तो वो जीवन में हमारे असहजता लाती है, फिर भय होता है अंदर में, डर क्रिएट होता है, दूसरों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, सब मेरे अकॉर्डिंग हो, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर असहज हो जाता है।
1: जी, तो हर्षा जी जैसे कंपैरिजन की बात मनीषा जी ने कही और आप भी कह रहे थे कि कंपैरिजन जो है वो बहुत डेंजरस है, लाइफ को इजी करना नहीं होता, तो इसमें शायद यूथ को सबको ही एंजाइटी फील होती है, तो ये कैसे प्रभावित करते हैं अपने लाइफ को और अपनी सिंप्लिसिटी को?
2: कंपैरिजन जो है ये एंजाइटी पैदा करता है, और आजकल के जमाने में आई थिंक सोशल मीडिया ये ज्यादा कंपैरिजन में लेकर आ रहा है यूथ्स को, और जहाँ कंपैरिजन है वहाँ कंपटीशन होगी
1: जी,
2: और कंपटीशन शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी
1: जी,
2: तो इसलिए ये जो तीन सीज हैं वो बहुत थोड़े डेंजर वाले हैं
1: जी जी जी,
2: और इसके कारण मुझे लगता है कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो रहा है, क्योंकि देखा, कंपेयर किया, ये मेरे से बेटर है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो और अच्छा करने की कोशिश करते उसमें उनको एंजाइटी आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता, और इसका जो नतीजा है वो जो इंटरनल ईज होना चाहिए कि एक सरलता अंदर में जो संतुष्टता होनी चाहिए, लेटिंग गो की भावना होनी चाहिए, वो सब खत्म हो रही है इसके कारण, कंपैरिजन के कारण।
1: कंपैरिजन के कारण, तो जैसे माँ बाप कंपेयर करते हैं या कंपटीशन के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरिजन के भाव देने से शायद उसको लगे वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो इसको क्या कहेंगे,
2: मतलब हेल्दी कंपटीशन हो,
1: हेल्दी कंपटीशन हो
2: तो वो अच्छा है, लेकिन मेरी रील से उसकी रील्स अच्छी है, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है,
1: वो उधर घूमने गए, अपने फोटोज शेयर किए, जी इस प्रकार से।
2: तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए,
1: ओके।
2: और माँ बाप को उसमें मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे एंजाइटी में ना चले जाए, उनको प्रेशर ना दे माँ बाप।
1: ओके जी, ओके। तो जब इजी फील करने लगते हम हर चीज, आपने कहा कि संतुष्ट रहना चाहिए, है ना, और सिंपल होना चाहिए लाइफ, तो बोरिंग या फिर हम वो तो नहीं कर देंगे, स्टॉप तो नहीं कर देंगे अपने आप को कहीं पे, हम आगे तो बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे।
2: नहीं, संतुष्टता बोरिंग नहीं है। संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति रुक गई, बस हम इतने में ही सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं है। लेकिन संतुष्टता कब है, जब रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओके, हमने एफर्ट्स लिए, हमने काम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ठीक है, या तो उसे एक्सेप्ट करें, सेटिस्फाइड रहें और लर्न कर लें कि आगे के लिए इसमें क्या हम बेटर कर सकते थे, उसको सीख करके फिर और आगे बढ़े। लोगों से भी अगर कंपटीशन हेल्दी है तो आप उनसे सीखेंगे, लर्न करेंगे और वो चीज अपने में अपना करके आप आगे बढ़ेंगे। तो सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ना रोकती नहीं है और आगे बढ़ाती है, इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि वी डोंट नीड टू प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव।
1: ओके, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की।
2: हाँ, आपको इम्प्रूव।
1: जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छे से हर्षा बहन ने बताया है कि हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है खुद को, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। कई बार यही होता है ना कि हम प्रूव करने के चक्कर में कईयों को उंगली दिखाते हैं, तो एक उंगली तो उसकी ओर होती है मगर चार हमारी तरफ होती है, तो फिर यही है कि चार तो हमारी तरफ है तो हमको ही इम्प्रूव करना है, दूसरे के सामने प्रूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
1: जी जी, बिल्कुल। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने ईजी तरीके से ये टॉपिक हमें समझ में अभी आ रहा है। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, 9414151415 इस नंबर पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, यहाँ पर हम एक अल्पविराम ले लेते हैं और फिर मिलते हैं गाने के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है, आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल, मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे साथ आरजे मनीषा और आरजे हर्षा जी हैं। तो वो बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। बहुत ही सहज तरीके से हम सुन रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए आगे भी जानते हैं उनसे। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे आरजे हर्षा जी कि अगर कोई व्यक्ति रोज स्ट्रेस में रहता है, मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है कि सुबह ये बनाना है या ये काम पेंडिंग है, तो वो सुबह की शुरुआत कैसे सिंपल करे, कैसे सहज करे?
2: मुझे लगता है कि सुबह उठते ही आँख खुलते ही फोन हाथ में ना आए
0: जी,
2: क्योंकि हम फोन को जैसे चार्ज करते हैं तो एक ये लक्ष्य बनाए कि खुद को चार्ज करना है
0: जी।
2: तो एटलीस्ट हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स जब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, मन को थोड़ा रिलैक्स करने की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, जो पूरा दिन फिर उसी फ्लुएंसी में हम रहते हैं
0: जी।
2: और मॉर्निंग में ही अपने टारगेट्स गोल्स सेट कर लें कि आज ये काम मुझे करने हैं और इस तरह से मुझे किस तरह से करना है। मेंटली आप अपनी एक बना लें, यूं कहें प्रोग्रामिंग कर लें
0: जी,
2: तो आप बाकी जो परिस्थितियां या जो भी काम है उसमें आप एंग्जाइटी में नहीं आएंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे,
0: तो मन से बात
2: वैसे स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे।
0: तो मन से बात करनी है, प्रोग्रामिंग मतलब कि आज अगर कोई भी परिस्थिति आए तो मैं स्ट्रेस नहीं फील करूंगा,
2: मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा
0: जी। बिल्कुल। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेली अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे 5-10 मिनट तो ये लाइफ को सहज कर सकता है?
1: जी, प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के 5 तत्व जो देखें हम, आसमान, नदी, पेड़ पौधे, सब कुछ, पक्षी, फूल, पौधे, जो भी हम देखते हैं, तो उन सब से हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है एक तो, और दूसरा क्या है, उनकी क्वालिटीज हमें नजर आती है। जैसे कि पहले बताया कि जो फूल होता है वो पूछ कर खुशबू नहीं फैलाता है, उसका नेचर है। तो जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हम उनसे ये सीख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, और खासकर जब भी देखा जाए बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिलैक्स होने लगता है। खुली हवा हम लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो वो भी हमारे मन की जो गति है जो बहुत फास्ट हो गई वो स्लो डाउन करती है। फिर उसके बाद में जब ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारे थॉट थे वो धीरे धीरे थोड़े क्लियर होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमें प्रायोरिटीज देना है जिन चीज़ों को, वो चीज़ें धीरे धीरे ध्यान में आती हैं और उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, तो मन बहुत मीन्स कहीं रिलैक्स हो जाता है। तो एक स्ट्रेस जब भी है, स्ट्रेस जो है, तो भी हम यदि प्रकृति के बीच में जाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ये मैनेजमेंट है स्ट्रेस का, कह सकती हूँ, जिसमें शांति में जाकर यदि कोई पेड़ है तो उसके नीचे ही बैठ जाएं और गहरी सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है, तो ये बहुत सहज करने में मददगार है
0: जी। बिल्कुल। और हर्षा जी, जब हम कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, तो क्या उसको आसान बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपके पास है, क्या बताएंगे?
2: बिल्कुल, प्रैक्टिकल टेक्निक्स तो आज बहुत हमें मिलती है। इसमें यूं कहें कि हम अपनी मेंटल फाइलिंग सिस्टम जो है वो एक बना दें सवेरे उठते ही, और उसमें चेक करें, जैसे फाइल्स होती है तो ऐसे

0: हम अपनी फाइल्स को मेंटली चेक करें कि कौन सी फाइल इम्पोर्टेंट है. कुछ फाइलें अर्जेंट होती है, कुछ इम्पोर्टेंट होती है, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है
1: जी.
0: कुछ इम्पोर्टेंट भी होती है, अर्जेंट भी होती है. तो हमें डिसाइड करना है कि पहला काम मेरा कौन सा है जो मुझे करना है, अर्जेंट भी हो इम्पोर्टेंट भी हो. तो इस तरह जब मेंटल फाइलिंग सिस्टम हम कर लेते हैं तो हमें डिसीजंस लेना बहुत इजी हो जाता है. और उसके लिए फिर हमारे मन के विचारों को रिलैक्स होना बहुत जरूरी, क्योंकि मन तो विचार करता है लेकिन डिसाइड हमारा इंटेलेक्ट करता है. तो इंटेलेक्ट हमारा मतलब बुद्धि जो है जज है, मन तो वकील है. अब वकील बोलता ही रहेगा तो जज अपना निर्णय कैसे सुनाएगा, डिसाइड कब करेंगे,
1: मन को शांत करें.
0: तो इसीलिए मन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तो सही टाइम पर हम सही डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं. और उसके लिए जो मैं एक अफर्मेशन का प्रैक्टिस करती हूँ डेली का, खासकर सवेरे, वो ये है कि आई एम एट अ राइट प्लेस डूइंग राइट वर्क टेकिंग राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम. ये अफर्म रोज सवेरे अपने लिए करना, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको मदद करता है. और सही मायने में आप सही समय पर डिसीजन जो है वो ले सकते
1: हैं. ओके जी, तो ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, मन को शांत रखना है और फिर हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं अपने बुद्धि के द्वारा.
0: हाँ जी बिल्कुल.
1: तो मन को साफ रखना भी जरूरी है,
0: मन को शांत रखना भी जरूरी है, साफ रखना भी जरूरी है,
1: दोनों जरूरी है, तब हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं जी. तो मनीषा जी से जानना चाहेंगे, क्या जो चीजें हम यूज करते हैं आसपास में है, तो मिनिमलिज्म अपनाना जरूरी है इजीनेस के लिए?
2: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मिनिमलिज्म मीन्स यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कम सामान रखना, जबकि इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि जितना है उतना पर्याप्त है. मीन्स एक संतुष्टता का एक गुण है इसके अंदर में. और आज देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन में भी देखा जाए तो बहुत सारे कहें कि चाहिए चाहिए इच्छाएं इच्छाएं की वजह से साधन संसाधन बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं. यहाँ पर मुझे गांधी जी का याद आ रहा है, उनका कोट था बहुत फेमस है कि सादा जीवन उच्च विचार. तो जीवन सादगी से भरा हो लेकिन जो विचार है वो अच्छे इम्पोर्टेंट हो. और मीन्स अंदर की सादगी जो है वो बाहर हमारी क्लैरिटी लाती है, हमारे में सहजता लाती है. तो इसलिए सामान पे तो डिपेंड नहीं होता भले, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि संग्रह वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए. जैसे जैन धर्म में भी कहा गया, महावीर जी ने भी कहा है कि अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना. तो उसी प्रकार हमें ज्यादा चीजों को जमा नहीं करना है, क्योंकि एक ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें होती है उतना जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो लो होता. तो जितनी आवश्यक है उतना रखना है लेकिन सहज रहना. और कई बार क्या होता है कि इसको भी हम एक जबरदस्ती नियम जैसा बना लेते हैं तो ये भी फिर कई बार ही स्ट्रेस का कारण बन जाता है. तो ये रहे लेकिन पॉजिटिव वे में रहे.
1: जी बिल्कुल. तो मिनिमलिज्म अपनाते हैं तो जैसे मनीषा जी ने कहा कि हम अपरिग्रह, महावीर स्वामी जी ने ये बात कही थी, मतलब ग्रीड नहीं बट नीड जितनी.
2: हाँ जी करेक्ट.
1: रखे आप अपने पास. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हर्षा जी इसमें?
0: हाँ, इसमें अगर कुछ हम चलो चीजें हमें इसमें भी कंपैरिजन कई बार आता है, उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए या इससे बेटर मेरे पास होनी चाहिए.
1: कोई चीजें हमें मतलब अट्रैक्ट करती है, अच्छे लगने लगते हैं तो हम
0: तभी हम
2: खरीद लेते हैं.
0: खरीद लेते हैं.
2: और सबसे ज्यादा जो है इसका तो ऑनलाइन शॉपिंग है, सभी जान ही रहे हैं. अननेसेसरी हम चीजें देखते हैं, ये अच्छी है भले जरूरत हो ना हो हम परचेस कर लेते हैं भले वो पड़े रहे लेकिन अच्छी लगी. तो ये सभी थोड़ी सी हमारे जीवन को असहज करने में यूज कर देता है ये.
1: जी बिल्कुल जी. तो 5 मिनट मेंटल रिसेट एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें.
0: श्योर. इसमें सुबह उठते ही 3 बार डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें और एक ग्रेटिट्यूड की भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं.
1: ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज है?
0: हाँ, मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं कि रोज उठते ही ग्रैटिट्यूड फील करें, इससे आपको बहुत एनर्जी फील होगी.
1: ओके जी.
0: और ये एक मैजिक का काम करता है ग्रैटिट्यूड. इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप खुद करके देखेंगे, भले 1-2 दिन आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और उस फीलिंग के साथ जब करते हैं तो जरूर आप जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं. और साथ में फोकस्ड रहें. मैं कहूंगी सिंगल फोकस.
1: सिंगल फोकस मतलब?
0: मना आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे इस डिग्री को लेना है जो यूथ्स के लिए कहे कि मुझे ये बनना है, उनका जो सपना है, तो फिर डाइवर्जन ना हो कि ये भी करूं, एक में ही फोकस रहे और उसी को। अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन या पेंटर बनना चाहते हैं, तो उसी को आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं
1: जी।
0: अपने हैबिट्स तो नहीं लेकिन हॉबीज को प्रोफेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोकस्ड जरूरी।
1: सिंगिंग फोकस्ड एक नया शब्द है जो जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि हम आजकल सोचते हैं कि मल्टीपल चीजें एक साथ कर ले, मल्टीटास्किंग समझ लेते हैं, लेकिन एक बार में एक ही चीज के ऊपर हम फोकस रहे, ये बात कही जी। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल घर के अंदर बहुत सारे केओस जैसा माहौल होता है, बच्चों को कुछ और चाहिए, पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, अगर सास ससुर है तो उनको कुछ और चाहिए, और सभी के ओपिनियन भी अलग अलग है और लाइफ को देखने के नजरिया भी अलग अलग है। तो घर में रहते हुए घर के माहौल को कैसे सिंपल और पीसफुल बनाया जा सकता
2: है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि घर का माहौल बदलना है तो कहें कि एक एक पर्सन की, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। जैसे कि एक जो घर होता है वो ईंट से तो बना होता ही है, लेकिन कितनी सारी ईंटें होती है, सब जब जुड़ते हैं तो जब सब साथ में होते हैं तो फिर वो एक घर कहीं मजबूती आती है उसमें। तो घर के माहौल को यदि सिंपल और पीसफुल बनाना है तो इसमें सभी जो मेंबर्स हैं हम घर के कहेंगे, तो वो सभी इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। तो इसमें हम कुछ रूटीन्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिनचर्या हम ऐसी करें, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को भी उस अच्छी शांत दिनचर्या में शामिल किया जाए। घर में जैसे गांधी जी ने भी कहा सादा जीवन उच्च विचार, तो सिंपली सिटी रहे घर में भी, अनावश्यक चीजें ना हो, तो उसे कह कि बच्चों को भी कुछ लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। और सिंपल और पीसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि मेडिटेशन भी किया जाए, है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो एक शांति का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिक वो शांतिमय वातावरण क्रिएट होता है, अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, और जितना अच्छा मीन्स हमारी सादगी पूर्ण जीवन रहेगा, अंदर भी सादगी है तो वो बाहर भी सादगी को वो रिफ्लेक्ट करेगा। मन हमारा यदि शांत है तो घर में ऑटोमेटिक व्यवहार में कहें परिवार में शांति इजीली आ सकती है। तो घर के माहौल को सिंपल और पीसफुल बनाना है तो कहूंगी कि प्रकृति के बीच में भी जाएं, जो भी सारे हमारे मेंबर्स हैं सब थोड़ा सा टाइम निकाले, प्रॉपर एक रूटीन रहे जिसमें एक दूसरे के साथ में इंजॉय करें, यहाँ पर मैं की भावना को छोड़ के एक हम की भावना को क्रिएट करें, तो सिंपल और पीसफुल हमारा जो वातावरण है घर का वो बन सकता है
1: जी। अर्षा जी आपसे जानना चाहूंगी इसी में ही कि महिलाओं को खास करके क्या ध्यान में रखना चाहिए जब घर में वो कार्यरत है पीसफुल और उसको सहज बनाने के लिए।
0: मुझे लगता है कि महिलाओं में इमोशनल बहुत वो होता है, तुरंत इमोशनल ये हो जाते हैं कि जब कुछ भी होता है तो
1: जी,
0: तो इसलिए वैसे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सब शेयर कर लेती है, हल्के हो जाते हैं किसी को सुना करके, लेकिन उनको भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है
1: अपने घर के माहौल,
0: क्योंकि महिलाएं भोजन बनाती हैं, तो वो किस भावना से भोजन बनाती है, अगर ये भावना रखे कि ये प्रभु प्रसाद है और वो मुझे सबको खिलाना है, तो कितनी मन की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस भोजन में जाएंगे, और जब सब वो खाएंगे शांति से बनाए, अच्छे गाने सुन करके बना सकते हैं, अच्छे आजकल तो पॉडकास्ट और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आती है सोशल मीडिया में, वो सुनते हुए बनाए तो भी घर का वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा रह सकता है।
1: ओके, मतलब अगर किसी का फोन आ गया तो बातें करते करते खाना ना बनाए,
0: व्यर्थ बातों में
2: बार होता है ना, टीवी चालू है सीरियल देखते हुए कई बार आता है, मैंने भोजन बनाते हैं
0: आधा ध्यान देखते हुए,
2: आधा उधर मींस चल रहा है लाउड में और इधर काम चल रहा है उधर, उस तरीके से ना हो,
1: क्योंकि अपने फेवरेट सीरियल आए तो देखने को मन करेगा।
0: बिल्कुल,
2: लेकिन खासकर भोजन बनाते समय थोड़ा
0: खाते और बनाते वक्त ना वो सब चीजें देखे, उसको अवॉइड करें, उससे मिक्स होता है और उससे भी सीखते हैं उन सीरियल से और बच्चे भी सीखते हैं,
1: इसलिए आप अपने घर के माहौल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, सिंपल रहने देना चाहते हैं, तो इस टेक्निक्स को यूज आप कर सकते हैं
0: जी।
1: हर्षद जी जैसे आप कह रहे थे कि हमें 3-4 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, तो जो मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे, अभी भी आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये कैसे सिंप्लिसिटी ला सकता है लाइफ में? कुछ एग्जांपल्स आप शेयर कर सकते हो सर?
0: इसमें सुबह तो करना ही है, रात को सोते वक्त भी करना ही है
1: जी,
0: लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में हैं, आप ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो बीच बीच में माइक ब्रेक्स जब लेते हैं तभी भी ये काम में आता है, लाइफ को सिंपल करता है।
1: ओके जी,
0: बहुत फायदा होता है इससे क्योंकि मन बहुत ईज रहता है और हमको एक बहुत अच्छा सीख मिलती है कि चलो चीजों को लेट गो करें तो भी हम अपने आप को सरल बना सकते हैं कि ओके फाइन जो हुआ लेट गो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव ऑन।
1: जी मनीषा जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे?
2: ये मेडिटेशन कहें या ब्रीदिंग टेक्निक है, सिंप्लिसिटी तो लाती है क्योंकि हमारे जो विचार हैं उस समय हमारे शांत होते हैं, एकरस होते हैं थोड़ा। और खासकर टेक्निक ब्रीदिंग की बताना चाहूँगी, एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें डीप इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है उसे, अंदर सांस लेते हुए 4 सेकेंड, फिर अंदर हम होल्ड करेंगे 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में हम उसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 करके, और छोड़ने के बाद में भी फिर से 4 सेकेंड हमको होल्ड करना है। तो इस तरीके से 4 का ये बॉक्स, एक कहें कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा एक बॉक्स बनता है। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम करें, और खासकर तब जब बहुत टेंशन में हो या कोई स्ट्रेस हो, कोई भय हो या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो कुछ सेकेंड रुक करके जब हम अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहुत अच्छा पॉज लग जाता है उस चीज पे जो थॉट चल रहा है उस पे, प्रोसेस पे, तो ये कर सकते हैं हम।
1: जी हर्षा जी, जब वर्क प्रेशर के बीच में इमोशनली स्टेबल हम कैसे रहे?
0: हाँ वही माइक्रो ब्रेक्स जरूरी है, पॉज जरूरी है, बीच बीच में आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी को, वो भी रिलैक्स देता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ना करें उसमें,
1: जैसे
0: जैसे ऑफिस का जो भी स्ट्रेस है वो घर ना ले जाएं, घर का स्ट्रेस ऑफिस में ना ले जाएं, उसको वहीं छोड़कर आएं।
1: जी
0: एक व्यक्ति था, वो जब ऑफिस से घर आता था तो उसके बाहर एक उसने रखा पेड़ था, अपने सारे जो ऑफिस के स्ट्रेस है वो उस पर लिख के उस पेड़ पर चिपका देता था, उसको दे देता था, फिर घर में एंटर होता था। तो ये एक प्रैक्टिकल किया है उस व्यक्ति ने, तो इसीलिए घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार हम बॉस को तो सामने गुस्सा कर नहीं सकते, वहां तो हमको पी जाना है, तो वो जो अंदर भरा है प्रेशर वो फिर घर के लोगों के आगे निकलता है
1: जी,
0: है ना, जैसे प्रेशर कुकर फटता है। तो इसीलिए वहां ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुझे नहीं करना
1: जी,
0: ये थोड़ा हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: तभी हम अपने वर्क प्लेस पे और घर पे जो कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रह सकते हैं।
1: ओके जी, यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद वापस आएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन रोशनी नाम है।
3: महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद, अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान, कमजोरी, भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है।
4: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहे।
3: हर रोग का मिटे नामो निशान, ये है संकल्प, स्वस्थ रहे राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। तो मैं बिना देर के फिर से लौटती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के पास और आइए जानते हैं कि हमारे लाइफ को और इजी बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हर्षा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको सिंपल तरीके से रिजॉल्व कैसे करें?
0: सबसे पहले तो हमें सबका सुनना जरूरी है
1: जी,
0: हम ही सुनाते रहेंगे ऐसा नहीं है, उनकी भी सुने
1: जी।
0: और इसमें रिलेशनशिप्स में 3 L's है, लिसन, लुक और लर्न।
1: ओके,
0: लुक, लिसन और लर्न
1: जी।
0: तो हमें सबसे सीखना भी है, उनसे सुनना भी है और देखना भी है कि देखना माना वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या है। सिर्फ हम अपना ही एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सपेक्टेशन रखना माना कि हम जो वो नहीं है वो हम सोच रहे हैं कि ये मेरी तरीके से ही चले, तो ये ना हो, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से कम हो सके और आपका जो घर है वो स्वर्ग बन सकता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो है वो बन सकता है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में कोई फ्लूट पे है, कोई तबले पे है, कोई पियानो पे है, लेकिन सब एक ही सुर लय में बजाएं तो एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो सकता है। सब अपना ही बजाएंगे
1: जी,
0: तो एक मेस क्रिएट होगा जो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सोचे कि हर एक का अपना म्यूजिक है
1: जी,
0: हर एक अपने उस पर है, संस्कार अपने हैं, तो हमें उनसे मिला करके चलना है। तो घर का जो वातावरण है बहुत, रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत हमारी अच्छी हो सकती है
1: जी। तो मनीषा जी से जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का क्या महत्व है।
2: देखा जाए तो रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षमा मीन्स माफ़ करना, ये किसी भी संबंध को बहुत गहरा बनाता है। जैसे कि अगर बाई चांस समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता के बीच, बच्चों के बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यदि माता पिता उस बच्चे को क्षमा कर देते हैं तो वो उससे कतराएगा नहीं अपने मम्मी पापा से कुछ भी शेयर करने को। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। और जो फॉरगिवनेस है, जो हम क्षमा करते हैं, तो वो क्षमा हम दूसरों को नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही कर रहे हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए हम नेगेटिव रख रहे हैं, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने खुद को ही एक जेल में बंद कर लिया। लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो समझ लीजिए कि हम उसको तो किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने को आज़ाद किया, हम आसमान के खुले पंछी बने ना कि पिंजरे के पंछी। तो लाइट जीवन को हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। और महावीर स्वामी ने भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम्, यानी कि क्षमा जो है वो वीरों का गहना है। जो इगोइस्टिक होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, तो लेकिन जो जितना नम्र होगा वो क्षमा करेगा। और फॉरगिवनेस से तो क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं इजीली दूसरों को, जो है वैसे उसी तरीके से, हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने उनको भले एक बार बता दिया कि भाई और कई बार होता है ना कि क्षमा का भी मतलब ये नहीं होता कि बार बार माफ़ी करते जा रहे उसमें, लेकिन एक तरीके से एक गुण बन जाता है ये कि हमें यहाँ पे हर बार सहना ही नहीं है, लेकिन एक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, एक शीलता मीन सहनशीलता डेवलप होती है हमारे अंदर में। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ही माफ़ कर रहे हैं, वो तो सुधर नहीं रहा है, वो बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वहाँ पर हम सहन नहीं कर रहे होते, हम दमन कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन यदि हम उसको फॉरगिव करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम सहनशीलता, ये एक वैल्यू अपने जीवन में हम धारण करते हैं। तो क्षमाशीलता, सहनशीलता जैसे कि एक वैल्यू होता है, वो अपने साथ पूरी चेन लेकर आता है और वैल्यूज की। तो एक क्षमा इतना इम्पोर्टेंट मीन्स कहें कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसके पीछे समझ लीजिए पूरे गुणों की जो है वो लाइन लगी होती है। तो और ये अभ्यास तो हमें डेली ही करना चाहिए, सोने से पहले क्षमा मांगना, जिसको भी हमने जाने अनजाने यदि हमने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, चाहे अपने विचारों से भी किसी के लिए अगर गलत सोचा है तो भी एक तरीके से हम इनडायरेक्टली उसको तकलीफ दे रहे हैं, हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो उस गलती के लिए भी हमें अपने को माफ करना चाहिए और दूसरे को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है खुद के लिए, दूसरे के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते हैं, वहां पर हम स्वयं को माफ ही नहीं कर पाते हैं। दूसरों को तो माफ करने की सोचते हैं, लेकिन अपने लिए हम फिर बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझसे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। तो यहाँ पर हम खुद के लिए भी बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो वहां पर खुद के लिए भी थोड़ी करुणा रहे, क्षमा रहे कि भाई गलती हो गई तो हो गई, लेट गो करें, खुद को क्षमा करें। और ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम फिर ये गलती दोबारा ना हो, ये हम लेसन लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब खुद को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं, जब दूसरों को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं। तो जो फॉरगिवनेस है वो जीवन को इस तरीके से बहुत हल्का बना देता है
1: जी। क्या बात है, तो क्षमा करना खुद को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज के लिए आपने अपने आप को अभी तक क्षमा नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है आगे ईजी हो सके। तो हर्षा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस की भी आपने पहले बात कही है, तो उसको कम करने के क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे।
0: उसके लिए खुद की बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा कि मुझे पहले अपने आप को ही देखना है. उनसे एक्सपेक्ट करके हम अपने आप को यूं कहें कि एक बेचैनी सी फील होती है अंदर से, क्योंकि उसने मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा उसने किया नहीं, और इनडायरेक्टली हम अपना कंट्रोल उस पर डाल रहे हैं. तो इसीलिए, और फिर जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न एक्शन का रिएक्शन तो होगा. हमसे भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो हम उनका फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. तो इससे फिर रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स या टॉक्सिक वातावरण बनना शुरू हो जाता है.
1: जी,
0: तो इसीलिए जितना हो सके, भले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है, या तो आप उनको ठीक से बता दो भाई मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको क्लियर हो जाए कि जैसे माँ बाप को बच्चों में एक्सपेक्टेशंस होती है, तो उन्हें बताएं, फ्री रहें, बच्चे अपनी बातें उनको बताएं, एक अच्छा हेल्दी वातावरण रहे तो घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी.
1: जी, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप है या हमारे लव्ड वंस है, हाँ, वो ना बिन कहे हमें समझ जाए.
0: हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको क्लियर रहना है,
1: क्लियर
0: क्लैरिटी बहुत जरूरी है.
1: तो जैसे हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में, अभी बात ही चल रही है, तो ईगो कम करके हारमोनी को लाना कितना जरूरी है और कैसे ला सकते?
2: वैसे देखा जाए तो परिवार में ईगो कम करना यानी कि खुद को छोटा करना नहीं है, बल्कि रिश्ते को बड़ा करना है. मीन्स आप अपने ईगो से ज्यादा आप उस रिश्ते को, आप रिलेशन को आप अहमियत दे रहे हैं. तो परिवार में ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, कहना चाहूंगी मैं. और यहाँ पर हारमोनी, जैसे कि ये शब्द है, तो इसमें ही हमारी आदरणीय जो जानकी दादी थी वो समझाते थे, हारमोनी में ही दो शब्द है, हार मानी. तो जब हम परिवार में कोई एक हार मान ले तो बातें बढ़ेगी नहीं. तो बहुत सामंजस्य कहें परिवार में बना रहता है. तो परिवार में तो सबसे पहले ईगो मीन्स को गो कर देना चाहिए और हारमोनी को अपनाना चाहिए. मीन्स भले छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं, बट कभी आप झुक जाए, कभी सामने वाला झुक जाए, तो इस तरीके से कहें कि ये दो चक्के जो होते हैं पहिए, तो वो दोनों बैलेंस के साथ में चलते हैं. तो इस तरीके से हमें एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए. और इसमें कोई सामने झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के सामने झुक जाना. ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नीचे हो गए या आपने बिल्कुल गिर गए, इस तरीके से फीलिंग नहीं होती है. ये आप झुक गए तो समझ लीजिए आप और ऊंचे उड़ गए. तो वहां पर झुकना नहीं होता है, वो सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है. तो इस तरीके से परिवार में यदि हम ईगो कम करते हैं और ईगो की जगह हम कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हम डेवलप करें खुद के लिए भी और परिवार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें, तो भी हारमोनी आ जाती है. दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए. जब ये नहीं दे पाते हैं तभी हमारा जो ईगो है वो जागता है. और क्या होता है, ईगो का कारण ये भी होता है कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, देते नहीं है, चाहते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, और अगर बाय चांस वो नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर ईगो हर्ट हो जाता है. तो वहां पर हमें भले रिस्पेक्ट दे ना दे, वहां पर तो हमको लाइट रहना ही चाहिए. क्यों, एक्सपेक्टेशन तो हमें करनी नहीं है, परिवार में तो चलता है. तो इस तरीके से यदि हम ईगो कम करें, झुके, नम्र बने, तो बहुत इजीली हम हारमोनी ला सकते हैं, परिवार में सामंजस्य बना के रख सकते हैं.
1: जी, तो इसका मतलब जिंदगी को सहज करने के लिए हमें बहुत सारे मूल्यों को अपनाना है.
2: जी,
1: वैल्यूज की चेन के बारे में बात कर रहे हैं.
2: और एक वैल्यू अपनाएंगे तो सभी उसके फ्रेंड हैं, सभी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे.
1: तो दोस्तों जरूर कोशिश करें, आप कोशिश कर भी रहे होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. कोई भी परिस्थिति आपके सामने अगर आ जाए अचानक, तो आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप उस परिस्थिति को सामना करते हैं. तो हर्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर बहुत सारे टॉक्सिक माहौल है, कई बार हम मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, और वैसे भी हमारे लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती है उससे भी हमें लगता है कि बहुत टॉक्सिक है लाइफ. तो खुद को इंटरनली कैसे इजी रखें, चले बाहर तो माहौल है ही,
0: उसके लिए ही हमें बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है.
1: वरना
0: क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और कुछ समय के बाद जो जो चीजें आपने पहले देखी हैं उसको हिस्ट्री पूरी वाइप आउट कर दें और एक फ्रेश स्टार्ट करें.
1: जी,
0: तो आपको फिर नई चॉइसेस मिलेगी कि अब ये सारी बातें जो है वो मुझे सीखनी है, कि हफ्ता है या 10 दिन के बाद मुझे दूसरी नई चीजें देखनी है या सीखनी है।
1: जी,
0: सीखने की भावना से देखेंगे तो आप व्यर्थ में या टॉक्सिक में नहीं जाएंगे, तो इससे आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे और आप सेफ रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे।
1: जी, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नो कहना सीखना इजी नहीं होता है, तो नो कहना सीखना इजीनेस से कैसे जुड़ा है?
0: बिल्कुल, नो कहना थोड़े कई बार बहुत मुश्किल होता है, खासकर अपने बॉस को या बड़ों को।
1: जी,
0: लेकिन नो कहना जरूरी भी है और ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो भले आप एकदम से नो ना कहें, नहीं कह पा रहे हैं तो
1: जी,
0: लेकिन तरीके से कहें,
1: लेकिन अपनी बात,
0: अपनी बात तरीके से समय देख करके, वातावरण देख करके फिर आप अपनी बात रखें। तो फिर आगे देखें कि अब बड़े क्या डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन बताएं अवश्य, वरना नहीं बोलना, बोलने की जो ताकत अगर नहीं रहेगी तो अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है नो कहना।
1: जी,
0: भले उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए, तो आप टाइम लें, अपने लिए निकालें, दे अपने आप को टाइम, ताकत भरें, मोटिवेट करें, लेकिन बात को तरीके से रखें जरूर।
1: जी, कोई बात मनवाना होता है तो बहुत तरीके ट्राई करते हैं उसको मनवाने के लिए, लेकिन नो कहने के टाइम में थोड़ा बहुत जैसे आपने कहा कि समय दे अपने आपको,
0: हाँ,
1: पॉज लेना बहुत जरूरी है भाई। जी, तो मनीषा जी अभी तो समय हो चुका है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अफर्मेशन से आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कहते हैं, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल में काम करता है?
2: ये कहें ग्रेटिट्यूड मीन्स उसका मीन्स थैंकफुल फील करना कि जो आपके पास है, ना कि उसके लिए फील करना कि जो मेरे पास नहीं है। जैसे कि ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है, जो देखेगा वो कहेगा आधा खाली है और एक व्यक्ति जो है वो कहेगा आधा भरा है। तो यहाँ पर यही बात है कि हमारे पास क्या है वो हम देखने की बजाय क्या नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं और उसके लिए हम धन्यवाद कहें, आभार हम फील करते हैं खुद के लिए, भगवान के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ना। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जितना करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ओपन होता जाता है और थैंक कहने से कहें कि और मीन्स उसमें वृद्धि होती जाती है, प्रचुरता बढ़ती जाती है कह सकते हैं।
0: और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारी एनर्जी भी और बढ़ती है और एनर्जी शिफ्ट होती है हमारी, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना तो बहुत बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है।
1: जी बिल्कुल, तो दोस्तों ये हफ्ते आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और हमें अपना जो फीडबैक है 94-14-15-14-15 पर आप बता सकते हैं कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। तो अभी जाने से पहले कुछ रैपिड फायर राउंड है, ये आप दोनों से जानना चाहेंगे। तो मनीषा जी, इजीनेस एक शब्द में?
2: सरलता। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बच्चे।
1: एंड हर्षा जी, इजीनेस?
0: लेट गो।
1: लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली एक आदत?
2: ओवरथिंकिंग।
1: सेम क्वेश्चन,
0: सेम ओवरथिंकिंग।
1: सिंपल लिविंग का सबसे बड़ा लाभ?
2: क्लैरिटी आती है थॉट में,
1: क्लैरिटी आती है। आप क्या कहना चाहते हैं?
0: ईज फील होता है, इनर ईज,
1: इनर ईज। लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
2: एक 1-1-1 का होमवर्क देना चाहूंगी, 1 मिनट पॉज एवरी आवर, 1 मिनट साइलेंस में फील करेंगे और किसी एक को थैंक करना, धन्यवाद, पॉज या साइलेंस की प्रैक्टिस और
1: धन्यवाद करना।
2: हाँ जी, धन्यवाद।
1: हर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
0: रोज सुबह उठते ही खुद को चार्ज करना, और इससे हम अपने खुद के इंचार्ज बन जाएंगे।
1: क्या बात है,
0: अर्थात खुद पर कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी और अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें।
1: क्या बात, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और मुझे लगता है इजीनेस वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इजी कर दिया, सरल कर दिया हमारे लिए।
2: थैंक यू,
0: थैंक यू
1: जी। उम्मीद है कि आप सिर्फ सपनों के शहर में नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे हमारे साथ अपनी बातें भी शेयर करते रहेंगे।
2: जरूर
1: जरूर। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पीके दत्ता, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं। पीके दत्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, खास करके ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आके और भी बेहतर महसूस कर रहा
0: हूँ।
1: बाबा के छाए में आके और भी अच्छा
0: लगा। अच्छा
1: अच्छा है। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने बुला लिया और शिव बाबा के पास आ गए। ग्लोबल समिट में आए हैं, बहुत सारा भाई बहने सब आए हैं, सब मिल के बाबा को याद करेंगे ये तीन दिन, और आशा करते हैं कि अगला दो दिन भी
0: बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पीके दत्ता सर, मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए।
1: मैं अपना परिचय में ये कहूँगा कि मैं आ रहा हूँ वेस्ट बंगाल से, स्टील से कितना नाम सुने होंगे आप लोग।
0: जी जी।
1: दुर्गापुर का रहने वाला हूँ, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। और मेरा स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक्स, मैं एमएस ऑर्थो हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: सारा दिन वो अच्छा नहीं हथौड़ी मेरा काम होता है ज़्यादा, बाबा के पास आ रहा था तो सारा सब चिंता इस सबसे निश्चित हो जाता हूँ बस।
0: चलिए पीके दत्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में, और यहाँ आने के बाद जो है जो वहाँ पर अपने प्रोफेशन में हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है हमें आंतरिक रूप से सुकून नहीं देते हैं, क्योंकि आत्मा को शांति चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। वहाँ एज ए अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करते हैं निमित्त मात्र, लेकिन जैसे ही हम आपने कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं, बाबा के पास आते हैं, तो सुकून मिलता है। तो वो सुकून बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सबके लिए नहीं होता है। जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से कनेक्ट होते हैं तो उनको ये मिलता है। तो आपका ब्रह्मा कुमारी से कनेक्शन कैसे बना?
1: कनेक्शन तो एक मेरा एक असिस्टेंट था जो पेशेंट में फिजियोथेरेपिस्ट है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो पहले से भाई है। तो मेरा पहला इम्प्रेशन बहुत ही खास है, मतलब उनको देखता था मैं, कभी किसी परेशानी में पड़ जाए, कोई भी पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनमें कोई हलचल मुझे महसूस नहीं होता था, बहुत शांत शिष्ट स्वभाव का होते थे। किसी परिस्थिति में उनको मैं विचलित नहीं देखा।
0: अच्छा।
1: फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा ये हुआ उनसे कि कैसा अपने आप को प्रिपेयर किया, कि हम लोगों के प्रोफेशन में जहाँ पे एक्यूट इमरजेंसीज होता है, एक बार तो यहाँ तक भी हो गया था, एक पेशेंट का शोल्डर स्टीफ था, तो उसका फिजियोथेरेपी करते हुए आर्टोजेनिक फ्रैक्चर हो गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो जबरदस्ती थोड़ा प्रेशर देने पे हड्डी टूट गया था। तो पेशेंट बॉडी भी थोड़ा एजिटेटेड हो गया। उस टाइम में मैंने उसको देखा, बिल्कुल शांत, आइस कोल्ड रहा। तो उसी से मुझे इंटरेस्ट पहली बार आया। फिर मैंने पढ़ने लगा, शिवानी दीदी को सुने, सचिन भाई जी को सुने, रिसर्च करके धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे लगा कि यस, दे हैव सम साइंटिफिक स्किल्स अलोंग विद द स्पिरिचुअलिटी दैट अट्रैक्टेड मी अ लॉट। उसी दिन से धीरे धीरे मेरा इंटरेक्शन बढ़ता गया, जो लोकल सेंटर्स है वहाँ पे जाता रहा। फिर पिछले साल पहली बार मैं ज्ञान सरोवर में आया था डॉक्टर्स मीट में, तो ये मेरा सेकेंड टाइम है। कहने का मतलब ये है कि सारा दुनिया आज सुकून ही खोज रहा है, इंटरनल पीस, और हम लोगों के प्रोफेशन में इम्पोर्टेंस यह है इसका कि अगर मैं सुकून में नहीं रहूँगा तो मेरा पेशेंट को वो मैं परकोलेट कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। फिजिकल पेन तो होता रहता है, वो चला भी जाता है दवा से, इंटरनल पेन का उसका इलाज करेगा कौन? तो मैं ये महसूस किया उसके लिए बाबा का शरण में आना पड़ेगा। और ये जो थॉट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जो अपने आप को जानना है, अंदर का शक्ति को जानना है, ये एनलाइटमेंट अवेकनिंग ये जरूरी था। तो मैं जो मुझे सुन रहे हैं अभी सबको कहूँगा, कभी भी आइए ब्रह्मा कुमारीज में, माउंट में, शांतिवन में, तो यहाँ का जो पॉजिटिव वाइब्स है उसको किसी भी टाइम आके लेके जाइए, दूसरे भी बाबा को शरण कर सकते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर पी के दत्ता जी, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया कि बाहरिक जो चीज़ें हैं वो कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक जो पेन है या दर्द है, दुख है, अशांति है, उसे मेडिटेशन के ज़रिए ही हम लोग सुख शांति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर अनुभव आपने बताया और ये इन्हीं आंतरिक सुख शांति के लिए आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और जुड़कर आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और यही आपका मैसेज भी था कि आप भी समय निकाल कर जो है इस ब्रह्मा कुमारी के छत्र छाया में आइए और अपना जीवन का जो सुख शांति है उसे पाइए। तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। और हमारे साथ विशेष मधु चौहान उपस्थित है, आपसे हम लोग बातें करने वाले हैं। तो मधु चौहान बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार जी, मैं ब्रह्मा कुमारी में पहली बार आई हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो मेरे यहाँ कुछ रिलेटिव हैं
0: जी,
1: जिन्होंने मुझे बताया था कि ब्रह्म कुमारी ने
0: मेडिटेशन
1: वगैरह करते हैं और जिन लोग टेंशन रहती है उनको काफी चीजें उन्होंने बताई। मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे यहाँ के अच्छा लगा और मतलब जहाँ हर जगह घूमे फिरे हैं इतना शांति कहीं नहीं थी जो यहाँ के मैंने अनुभव किया। पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही चाहूंगी कि मुझे दोबारा मौका मिले।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मधु जी, आपका प्रोफेशन के बारे में बताइए हमें जी।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और फार्मासिस्ट की वाइफ हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैंने बीएससी एमएलटी किया हुआ।
0: अरे वाह, आपके हॉबीज के बारे में कुछ बताइए हमें। खाली टाइम में क्या करना पसंद करें?
1: पसंद है मुझे और कुकिंग वगैरह।
0: अरे वाह जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। आपका हॉबी डांस है और कुकिंग है, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छा फील करता होगा जब आप डांस करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंटेशन वगैरह है या देने वाले? जी जी जी, मधु जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों के लिए आपको?
1: मैसेज यही है कि आप लोग को टेंशन घर से थोड़ा बाहर निकलिए, स्ट्रेस जो रहता है आप यहाँ पे आके देखिए एक बार जरूर आइए। तो ब्रह्मा कुमारी में सब लोगों को पीसफुल स्पेस है
0: जी,
1: तो यहाँ पे आके मेडिटेशन वगैरह सीखिए। बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आप नहीं जानते हो उस बारे में, तो आपको काफी चीजें यहाँ सीखने के लिए मिलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मधु चौहान बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने किया। फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए हैं लेकिन आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है और बार बार आना चाहेंगे आप, और अपना प्रोफेशन के माध्यम से इन चीज़ों को आप एज ए सेवा करना भी चाहेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें आप सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर अनुभव लोगों का आप सुन रहे हैं। तो अभी हमारे साथ चंदन दत्ता है जिनसे
1: चंद्रानी दत्ता
0: हमारे साथ है। चंद्रानी दत्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी
0: हूँ। जी जी,
1: मैं ओम शांति। मैं बाबा की बच्ची भी हूँ। मैं यहाँ पे एक साल से मैं बाबा की बच्ची हूँ, इंडिया में हूँ मैं। तो यहाँ पे आना मुझे एक्चुअली, मैं एक दिन लास्ट मतलब 4 इयर्स बैक में एक दिन वो यूट्यूब सर्च कर मतलब स्क्रॉल करते करते तो एक दिन शिवानी दीदी को सुनी। तो सुनते सुनते बहुत सारे शिवानी दीदी को सुनी, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे बाबा की मतलब बाबा के पास आना चाहिए। तो मैं बाबा के पास आई, फिर बाबा की बच्ची बनी मैं। और आके मतलब बहुत ही मत क्या बोलूँ, जो जो मेरा कुछ होता है ना कि कुछ आपका खराब जो नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ था मेरा
0: वो निकल गया।
1: वो बाबा की जब से बच्ची बनी हूँ तो बाबा की, देखिए बाबा की बात तो मानना पड़ेगा
0: बिल्कुल।
1: तो उसके बाबा की बात मान के मैं बहुत अपने आप को और क्या मेरा सराउंडिंग जो जो है बहुत लोग पॉजिटिव हुए। और मैं तो बहुत ही सब कुछ मेरा बहुत चेंज हुआ। और इसके लिए क्या एक्चुअली बाबा के साथ भी कुछ जो करना पड़ता है, बाबा के साथ कनेक्ट
0: होना पड़ता है जी।
1: फिर अपने आप को मतलब कुछ अपने को कुछ अलग से मिलता है जब बाबा के पास मैं कनेक्ट करती हूँ खुद को। तो बहुत ही सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरे साथ बाबा के पास आने से। बहुत बहुत क्या बोलूँ, मैंने मेरा सब कुछ ही
0: बाबा
1: है। मैं थोड़े कुछ मतलब बहुत से नहीं होगा ये,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: कुछ है इसमें, बहुत बहुत कुछ है, बहुत ही अच्छा है सब कुछ।
0: चलिए चंद्रा रानी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया, जिसको सुनाने के लिए आपके पास शब्द कम पड़ रहे हैं। और एक अच्छा एक्सपीरियंस करने के बाद व्यक्ति जो है आत्मा के सुकून में खो जाता है, तो शांति रहती है वहाँ पर। शब्द नहीं है, निशब्द शांति है, इसलिए वहाँ पर शब्द नहीं मिलते आपको। तो ऐसी अनुभूति करने के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे यह अनुभव होगा। तो चलिए, आशा करूँगा चंद्रा रानी जी का बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुना, ऐसे अनुभव आप भी करें ऐसी शुभ आशा के साथ। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फिर एक बार विशेष आपका स्वागत है। और जैसे कि हम लोग बातें कर रहे हैं, अलग अलग लोग हमारे बीच स्टूडियो में आ रहे हैं और आपकी मुलाकात हो रही है, तो अभी अनिकेत जी हमारे साथ हैं, उनसे बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत जी आपका। नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: जी जी जी। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें।
1: आप सभी को ओम शांति। मैं ओम शांति अनिकेत, और आप सभी आत्माओं से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और रेडियो माध्यम के इस मंच से मैं आपसे कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो काफ़ी परिवर्तनकारी है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। उसमें ऐसा है कि मैं पहले काफ़ी उलझन भरा रहता था, हमेशा कन्फ्यूजन बहुत रहता था। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन करने लगा हूँ, सीख गया हूँ मेडिटेशन, और अभी भी यात्रा जारी है, तो तब से ही थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो रहा है, निर्णय शक्ति बढ़ रही है। हमें यहाँ पे जो अष्ट शक्तियाँ बताई गई है, तो उसमें से निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, ये मैं सीख चुका हूँ यहाँ पे। और ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मुझे लगता था कि ये हमारे नॉर्मल इंसान के गुण नहीं है, किसी को क्षमा करना। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको वैसे ही उत्तर देना चाहिए, ऐसा हमने थोड़ा सा एक पहले का नेचर था हमारा। लेकिन जो अब बदल के हम क्षमा करना चाहिए, और ये क्यों करना चाहिए, कर्म का जो ज्ञान है वो भी यहाँ पे मिला, जिसकी वजह से जो हल्कापन आ रहा है, आत्मा पे जो बोझ रहता था, दिमाग पे जो बोझ रहता था, वो बिल्कुल हट चुका है और बिल्कुल हल्केपन सा अनुभव है। और ये सब हो रहा है राजयोग के माध्यम से।
0: जी,
1: ये इतना सहज योग है, नाम तो राजयोग है, काफी बड़ा लगता है, लेकिन ये तो है सहज योग, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और कोई भी कर सकता है, हर वक्त कर सकता है, काम करते वक्त रहो, खाते वक्त, बैठते वक्त। और आप इसमें डायरेक्ट जो ईश्वर से जुड़ सकते हो, जो माध्यम इन्होंने बताया है, वो बिल्कुल जबरदस्त है मेरे हिसाब से तो,
0: बिल्कुल,
1: और बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: आसान है।
0: जी जी जी, चलिए, बहुत ही सुंदर अनुभव है अनिकेत जी। और आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए कुछ।
1: बाय प्रोफेशन मैं अभी डॉक्टर हूँ, और मैं नांदेड़ में हॉस्पिटल है जी, तो वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और ऑब्वियसली जो मेरा जो ये प्रोफेशन है, काफी स्ट्रेस भरा रहता है, क्योंकि दिन भर बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं।
0: अच्छा।
1: और हमें बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है उनके साथ तो ये बात ऐसे है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: जी जी।
1: लोगों को लगता है कि डॉक्टर को क्या हो सकता है, स्ट्रेस वगैरह डॉक्टर को कैसे आ सकता है, लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा उनका जो स्ट्रेस है, उनका जो बोझ हल्का करना जो हमारा काम है, तो उसकी वजह से बहुत बार हम भी काफी स्ट्रेस में आते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो अभी जब से हम राजयोग करने लगे हैं, तब से स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो,
0: क्या
1: बस ये एक सूत्र हमने लागू किया है, जिसकी वजह से काफी फर्क आया है।
0: जी।
1: और हम अभी बिल्कुल टेंशन फ्री, तनाव रहित जीवन जी रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप।
0: चलिए डॉक्टर अनिकेत, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और जीवन के इस पड़ाव पे आकर आपने जो रियल एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आपका प्रैक्टिस होगा, वहाँ पर पेशेंस के साथ साथ हैप्पीनेस रहेगा आपके साथ में। और आप बहुत ही जो है हम्बल होके लोगों के साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया शरीर नहीं, आत्मा को ठीक करना है, आत्मा को हील करना है, क्योंकि शरीर तो निर्जीव है, सजीव जो चेतन आत्मा है। तो आत्मा का ज्ञान अगर मिल जाता है, निर्जीव अपने आप ही सजीव हो जाता है।
1: जी, बिल्कुल सही। और मेरी यात्रा बहुत अच्छे से जा रही है और आगे भी चलती रहेगी ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग रेडियो के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे, आप वहाँ से भी प्रोग्राम्स करते रहें, ऐसी हमारी शुभ आशा है। और ये सेवाएं करते रहें, अलग अलग विषय पे हम लोग जो है लोगों को ज्ञान बांटते रहेंगे। और हमारा एक प्रोग्राम चलता है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, हर संडे 9 बजे, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति,
1: ओम शांति।

0: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
1: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: खाने को 56 भोग सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग सोने की दुनिया होगी।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। साथियों, ये आवाज़ थी आनंद कारगी की, जो नेपाल से हमारे बीच पधारे हैं, और इन्होंने कल ग्लोबल सबमिट में विशेष अपना ये गाना भी प्रेजेंट किया था, और मैंने कहा आपकी आवाज़ से ही हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आनंद कारगी जी का आपने आवाज़ सुना, बहुत ही प्यारा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो आइए उनसे बातें करते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी जी जी, शुक्रिया। जी,
0: आप सबको मेरा प्रणाम।
1: जी जी जी, ओम शांति। आनंद जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें।
0: जी, मैं नेपाल से हूँ और पहली दफे इस पावन धरती पर, इस जगह पे आया हूँ ओम शांति के।
1: जी
0: और
1: जी,
0: मैं 30 साल हो गए मुझे ओम शांति से
1: जुड़ा
0: हुआ हूँ, और काफी मैंने ओम शांति के गाने गाए हैं नेपाली में और
1: हिंदी में।
0: सो ये काफी वर्षों से मेरी ख्वाहिश थी यहाँ आने के लिए, तो आज शिव बाबा ने मेरी जो कि ख्वाहिश पूरी की है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे कल बहुत अच्छा लगा, जब से मैं आया हूँ मेरे सोच में नेगेटिव
1: कुछ भी नहीं, खुशी खुशी
0: मैं देखता हूँ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव ऐसा लग रहा है कि हम लोग सतयुग में आ गए हैं।
1: जी जी जी,
0: और सब लोग जितने भी देख रहा हूँ मैं, सब खुश हैं, और खाते पीते
1: सब मस्त हैं,
0: मस्त हैं। यही चाहिए हम लोग को संसार,
1: ये नारायणी नशा चढ़ गया।
0: जी जी,
1: ऐसा कहते हैं ना इंग्लिश में, गुड बेटर एंड बेस्ट।
0: यस।
1: और वही अध्यात्मिक में कहते हैं आनंद, सचिदानंद एंड परमानंद। तो इस तरह से ये
0: जितने भी हमारे भाई बहन जितने भी हैं, सब सभी से इतना प्यार मोहब्बत हो गया, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सब खुश हैं।
1: जी जी,
0: और यही संसार में हो तो ये लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस हमें इस तरह का ओरा, इस तरह का वातावरण निर्माण करने के लिए अपने विचारों को ऐसा बनाना होगा ताकि सबको वो विचार मिले और सब अपने विचारों में परिवर्तन करें, तो देश तो परिवर्तन हो ही जाएगा।
0: अवश्य होगा।
1: जी जी जी,
0: हरेक को सकारात्मक सोच में
1: डालना
0: पड़ेगा।
1: जी जी जी,
0: और खान पीन के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो हमारे मन को सात्विक बनाने के लिए सत्व प्रधान खाना ही खाना पड़ेगा।
0: लेके जा रहा हूँ और इसको मैं अपने देश में जाके इसका उपयोग करूँगा, बताऊंगा कि खुश कैसे रहते हैं।
1: जी जी जी,
0: मैं सीख के आया।
1: चलिए आनंद जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि लोगों को खुशी देने के लिए आपका बड़ा योगदान है, क्योंकि आप सुंदर गाने सुनाएंगे तो लोग वैसे भी उनका मन जो है शांत, हाँ, और बहुत अच्छी तरह से होगा। तो एक हाथ छोटा सा और पीस सुनाइए, उसके बाद हम पूरा करेंगे एक मैसेज के साथ।

0: थैंक यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी आनंद जी को आप सुन रहे थे, आशा करूंगा आनंद जी की बातें, अनुभव जो है एक खुशी के माहौल आप तक पहुंचाया है। मैं चाहूंगा कि इस खुशी को बरकरार रखें, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी खुशी आपको। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा।

0: नमस्ते दोस्तों, आप सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? क्या कहा? मीना का इंतजार कर रहे थे? तो ठीक है, मीना के पास चलते हैं। लेकिन मीना है कहाँ? हाँ, वो रही अपने स्कूल में मोनू के साथ।
1: क्या हुआ मीना, रुक क्यों गई? जल्दी चलो, क्लास शुरू होने वाली है।
2: मोनू, वो देखो उधर।
1: अरे, ये दीपू इतनी धीरे धीरे चलता हुआ क्यों आ रहा है? और ये इतना उदास क्यों लग रहा है?
3: उदास क्यों लग रहा है? सुखी घास क्यों लग रहा है?
4: मीना, मोनू, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई।
1: क्या? चोरी?
4: हाँ, चोर खिड़की के रास्ते घर में घुसा और बहुत सा सामान चुरा के ले गया। मेरा पेंसिल बॉक्स भी। अब मैं लिखूंगा कैसे?
1: तुम उदास मत हो दीपू, मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं। ये देखो।
2: मोनू, तुम्हारे पास तो सच में बहुत सारी पेंसिलें हैं।
4: मोनू, मैं ये लाल वाली पेंसिल ले सकता हूँ?
1: हाँ हाँ दीपू, बिल्कुल, ये लो। अब से ये लाल पेंसिल तुम्हारी है।
4: मोनू, आज शाम को हमारा क्रिकेट का मैच है, तुम मेरी टीम में खेलोगे?
1: नहीं दीपू, मेरे पास मैच वैच खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
2: चलो चलो, क्लास शुरू होने वाली है।
0: और अगले दिन।
5: मीना, मीना,
4: मीना, ये देखो अखबार में क्या छपा है।
2: अखबार में क्या छपा है?
4: खुद ही पढ़ के देख लो।
2: आजकल चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते में चोरी के 3 मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस का मानना है कि चोर कोई छोटा बच्चा है जो आसानी से खिड़की के रास्ते घरों में दाखिल होता है। पुलिस अधीक्षक ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है।
1: मीना, दीपू, देखो मेरी नई साइकिल।
2: अरे वाह मोनू, तुम्हारी साइकिल तो बहुत प्यारी है।
3: बहुत प्यारी है, शान की सवारी है।
1: दीपू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये लो।
4: पेंसिल बॉक्स? मोनू, परसों तुमने मुझे पेंसिल दी थी और आज ये पेंसिल बॉक्स? नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता।
1: दीपू, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को उपहार नहीं दे सकता?
4: वो बात नहीं है, लेकिन।
1: ओ समझा, शायद तुम्हें ये पेंसिल बॉक्स अच्छा नहीं लगा।
4: नहीं मोनू, ये बहुत अच्छा है। बल्कि तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि मेरा पेंसिल बॉक्स जो चोरी हो गया था वो बिल्कुल ऐसा ही था, नीले और हरे रंग का, है ना मीना?
2: अरे हाँ दीपू, ये तो बिल्कुल तुम्हारे पुराने पेंसिल बॉक्स जैसा है।
1: मीना, दीपू, अब मैं चलता हूँ अपनी नई साइकिल पे घूमने।
4: मीना, कुछ गड़बड़ है, ये मेरा पुराना वाला पेंसिल बॉक्स है जो चोरी हो गया था।
2: क्या?
4: जिस दिन पिताजी मेरे लिए ये पेंसिल बॉक्स लाए थे, मैंने उसी दिन इसके पीछे बहुत बारीक अक्षरों में अपना नाम लिख दिया था। जरा ध्यान से देखो।
2: अरे हाँ, इसके पीछे तो तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मोनू के पास कहाँ से आया?
4: हमें मोनू से इस बारे में बात करनी होगी, कल ही।
0: और अगले दिन स्कूल में, जब दीपू ने मोनू से पेंसिल बॉक्स के बारे में बात की तो मोनू गुस्से में बोला।
1: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है दीपू? क्या मैं चोर हूँ?
2: नहीं मोनू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीपू तो बस।
1: दीपू, ये पेंसिल बॉक्स मैंने खरीदा है अपने पैसों से। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुम मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी।
4: अब क्या करें मीना, ये तो नाराज होके चला गया।
2: दीपू, हम मोनू से एक बार फिर बात करेंगे, आज शाम को उसके घर जाके।
6: नमस्ते चाची जी।
7: अरे मीना, दीपू, आओ आओ बच्चों।
2: चाची जी, मोनू नजर नहीं आ रहा।
7: मीना बेटी, वो शायद अपने पिताजी के पास गया होगा खेत में।
4: ओ अच्छा, इसका मतलब स्कूल से आने के बाद मोनू चाचा जी के पास।
7: स्कूल से वो तो कभी सीधा घर पर आता ही नहीं, कभी दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है तो कभी अपने पिताजी के पास खेत पे।
2: ठीक है चाची जी, चलो दीपू।
7: चाचा जी, जी नमस्ते।
8: अरे मीना, दीपू, नमस्ते नमस्ते।
2: चाचा जी, मोनू कहाँ है?
8: मोनू घर पे होगा?
2: नहीं चाचा जी।
8: अरे भाई, तो स्कूल से आने के बाद कहीं खेलने चला गया होगा।
4: चाचा जी, चाची जी ने बताया कि मोनू स्कूल से घर वापस आता ही नहीं, बल्कि रोज या तो खेलने चला जाता है या आपके पास खेत पे आ जाता है।
8: क्या?
2: हाँ, उन्हें लगा कि शायद वो आपके पास आया होगा, इसलिए हम यहाँ आ गए।
9: पता नहीं कहाँ होगा मेरा मोनू। मीना, दीपू, चलो मोनू को ढूंढ के आते हैं।
0: मीना, दीपू और मोनू के पिताजी ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन मोनू कहीं नहीं मिला। और फिर वो पहुंचे गांव के बाहर एक खदान के पास। खदान जहां जमीन से पत्थर निकाल के उन्हें तोड़ा जाता है।
2: चाचा जी, वो देखिए, मोनू की साइकिल।
4: मीना, वो जो लड़का वहाँ पत्थर तोड़ रहा है, कहीं वो मोनू तो?
2: अरे हाँ, वो मोनू ही है। मोनू, मोनू,
10: मोनू, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? वहाँ बहुत से पत्थर हैं, तुम गिर जाओगे। मोनू!
4: अरे मोनू तो पत्थरों पर बुरी तरह से गिर पड़ा।
0: मोनू अपने पिताजी को देख के घबरा गया था। वहाँ से भागने की कोशिश में उसका पैर मुड़ा और वो पत्थरों पे गिर गया। मीना, दीपू और मोनू के पिताजी उसे लेके नर्स बहन जी के पास गए।
11: भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मोनू के पैर में मोच आई है, मैंने दवा दे दी है, एक दो दिन में ये ठीक हो जाएगा।
9: धन्यवाद नर्स बहन जी।
11: लेकिन भाई साहब, मोनू को उस खदान में नहीं जाना चाहिए था, ये तो मामूली सी मोच है, इसे कोई गंभीर चोट भी लग सकती थी।
9: आप ठीक कह रही हैं बहन जी। मोनू बेटा, तुम उस खदान में काम क्यों कर रहे थे? अरे भाई, काम करने के लिए अपने खेत है ना, फिर तुम कहीं और?
11: भाई साहब, खुद का खेत हो या किसी की खदान, मोनू को कहीं भी काम नहीं करना चाहिए।
9: जी मैं समझा नहीं, अपने घर और खेत पर तो सब बच्चे काम कर सकते हैं।
11: देखिए भाई साहब, 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम या मजदूरी करवाना एक दंडनीय अपराध है। ये उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ये उम्र काम या मजदूरी करने की नहीं, मजदूरी कराने से बच्चों का शारीरिक और भावुक विकास नहीं हो पाता, और उन्हें काम करते हुए कोई खतरनाक चोट भी लग सकती है। मोनू, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी?
1: नर्स बहन जी, मुझे लगा था कि अगर मैं अपने खेत में काम कर सकता हूँ तो किसी खदान में क्यों नहीं।
9: नर्स बहन जी, गलती मेरी है, मैंने सोचा था कि मोनू जल्दी से खेती बाड़ी सीख जाएगा तो हमारी कमाई पहले से ज्यादा हो जाएगी। और
11: भाई साहब, जैसा कि मैंने कहा, ये उम्र बच्चों के पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है, और जहाँ तक कमाने का सवाल है, तो कमाने के लिए तो मोनू की पूरी उम्र पड़ी है।
3: पूरी उम्र पड़ी है, तुमको जल्दी पड़ी है।
0: और कुछ दिनों बाद,
1: मीना, दीपू, चलो कुछ खेलते हैं।
2: हाँ हाँ मोनू, हम जरूर खेलेंगे, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुमने दीपू के लिए ये पेंसिल बॉक्स कहाँ से खरीदा था?
1: मीना, उस खदान के पास एक छोटे कद का आदमी रोज शाम को आता है, बढ़िया बढ़िया

0: चीजें बहुत सस्ते दाम में बेचने। मैंने ये पेंसिल बॉक्स उसी से खरीदा था।
1: तो ये बात है, चलो मेरे साथ।
2: लेकिन कहाँ?
1: चलो तो।
3: मीना दीपू और मोनू के साथ पुलिस के पास गई और उसने उन्हें पूरी बात बताई। उसी शाम पुलिस ने कारखाने के बाहर से उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और फिर अगले दिन के अखबार में
1: तीन दोस्तों की समझदारी से एक शातिर चोर पकड़ा गया।
2: मीना, तीन दोस्तों की वजह से नहीं, तीन पक्के दोस्तों की वजह से।
3: चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की प्यारी सी कविता।
1: गांठ बांध के रख लो सारे, बात ये कर लो यार,
4: बच्चों से मजदूरी कराना कानूनी अपराध।
3: भाई वाह, क्या कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्ठू, मजा आ गया। चलो अब करते हैं इस मजे को दुगना, सुन के एक गाना।

0: गाना सुन के तो सचमुच मजा दुगना हो गया। अब कहाँ चलना है सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब चलना है खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ मैं तुम्हें तीन कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी, पैर नहीं है इसके फिर भी ये तो चलती जाए, ये सबको छू ले पर कोई इसको छू ना पाए।
3: क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है,
4: ये कैसे हो सकता है, तू बता।
5: चलती है,
6: ये सबको छू सकता है पर इसको कोई छू ना पाता।
7: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है मोनू। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी, इसका कोई रंग नहीं है ना कोई आकार, ये चलना रुक जाए तो रुक जाएगा संसार।
8: सही जवाब है रेलगाड़ी।
1: सुमी अगर रेलगाड़ी चलना रुक जाए तो क्या संसार रुक जाएगा?
8: तीसरी कड़ी भी बताई दीजिए बहन जी।
1: ठीक है गोलू। बच्चों अब सुनो तीसरी कड़ी, चारों ओर हमारे रहती, दिन हो चाहे रात, सांस न कोई ले पाएगा, घर हो ना ये साथ।
9: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है हवा।
1: हाँ मीना बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
9: दोस्तों चिट्ठी जरूर लिखना, मैं आपके पत्रों का इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: पात्र परिचय: गोपीचंद, यश, इंस्पेक्टर शर्मा, आदित्य और वेदांत। डिटेक्टिव गोपीचंद एक दिन तालाब के किनारे टहल रहे थे कि उन्हें इंस्पेक्टर शर्मा मिल गए।
1: हेलो गोपीचंद, कैसे हो? बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले, कभी घर भी आ जाया करो।
2: चलो तुम भी मेरे साथ जॉगिंग कर लो। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, आपको कसरत करते हुए देखना अच्छा लग रहा है।
1: चलो तुम भी मेरे साथ जॉगिंग करो।
2: असल में मुझे जॉगिंग करना पसंद नहीं।
1: भीड़ भाड़ वाले जिम में जाने से अच्छा मैं तालाब किनारे जॉगिंग करना बेहतर मानता हूँ।
2: पर मुझे जॉगिंग से वॉक करना बेहतर लगता है, और अपराध की दुनिया से कोई खबरें?
1: आप विश्वास नहीं करेंगे, पर 3 हफ्ते में अब तक एक भी केस हाथ नहीं लग पाया।
0: दोनों एक पुल के नीचे से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी।
1: अरे ये क्या था?
0: दोनों दौड़कर पुल की दूसरी तरफ गए। वहां उन्होंने एक आदमी को गिरा हुआ पाया।
1: क्या ये जिंदा है?
0: गोपीचंद ने उसकी नब्ज चेक की।
2: ये तो मर चुका है।
1: मेरे ख्याल से ऊपर से गिरने की वजह से ही इसकी मौत हो गई है।
2: अरे इसके कान से तो खून भी बह रहा है। क्या आपको यकीन है कि इसने खुदकुशी की है?
1: आखिर क्या वजह हो सकती है कि इसने खुदकुशी कर ली?
2: देखो वह कार अभी यहाँ से निकल कर गई। क्या आपको यकीन है इसने खुदकुशी की है?
1: आखिर इसने पुल से ही छलांग लगाई होगी ना?
2: इसने छलांग नहीं लगाई है, इसका किसी ने खून किया है, यानी कि इट्स अ क्राइम केस।
1: पर मैंने तो यहाँ अभी तक किसी को भी नहीं देखा।
2: वो देखो, वो कार अभी यहाँ से निकल कर गई है।
1: पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसने खुदकुशी नहीं की है?
2: अगर वह आदमी सिर के बल गिरता तो उसका खून गालों की तरफ नहीं बहता। इससे पता चलता है कि ये कत्ल ही है, आत्महत्या नहीं।
1: आपने सही कहा गोपीचंद, ये आत्महत्या नहीं कत्ल है। तो चलो उस कार का पीछा करते हैं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, नौवां पाठ, आधा और चौथाई, पृष्ठ 94। मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली दोस्त थे। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई।
1: इसे मैं लूंगा।
2: नहीं, इसे मैं लूंगी, मोटू ने कहा।
0: जब वो दोनों लड़ रहे थे तभी वहां टीटू बंदर आया।
1: अरे लड़ क्यों रहे हो, क्या समस्या है,
0: उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा,
2: हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें।
0: तब टीटू ने कहा,
1: अच्छा चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा।
0: चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा।
2: हे, ये बराबर नहीं है, बाया भाग ज्यादा बड़ा है,
0: मिंटू और मोटू ने कहा।
1: ओह कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा,
0: कहकर टीटू ने बाया हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया। टीटू बोला,
1: अब देखो ये बराबर है।
2: अरे अब दाया भाग ज्यादा बड़ा है,
0: बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा।
1: मुझे माफ करना,
0: ऐसा कहकर टीटू ने दाया हिस्सा तोड़ा और खा लिया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा,
1: ये मेरे काम का मेहनताना है।
0: टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया। इस पृष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में टीटू को रोटी के दो छोटे और बड़े हिस्सों के साथ दिखाया गया है और उसके साथ दो बिल्लियां खड़ी हैं, और दूसरे चित्र में टीटू को रोटी के छोटे और बड़े टुकड़ों के साथ दिखाया गया है और साथ ही दो बिल्लियां खड़ी हुई हैं। पृष्ठ 95, आधा आधा। अगर बिल्लियां तुमसे कहें कि चपाती को दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो तुम उसे कैसे बांटोगे? यहां पर चपाती का एक चित्र दिखाया गया है। अगर तुम टीटू की तरह चालाकी ना करो तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा। यहां पर एक चित्र में दो बिल्लियों को रोटी के दो बराबर हिस्सों के साथ दिखाया गया है। आधे का आधा। अगर दो बिल्लियां और आ जाएं और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? यहां पर एक चित्र में चार बिल्लियों के साथ एक लड़की का चित्र है। दो बिल्लियों के मुंह में रोटी के दो चौथाई भाग हैं और दो चौथाई भाग लड़की के हाथ में दिखाए गए हैं। एक बिल्ली ने कहा,
3: म्याऊ म्याऊ, हां हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया, तुम सही बंटवारा करती हो।
0: कई टुकड़ों के आधे। रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। यहां पर चॉकलेट का एक चित्र है जिसके छह बराबर हिस्से दिखाए गए हैं। उस हिस्से पर घेरा लगाओ जो रीना को मिला। पृष्ठ 96, चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं, रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं? रिक्त स्थान। यहां पर रानी के चेहरे का चित्र है। रानी कहती है,
2: हां आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की पूरी चॉकलेट।
0: आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियां। एक पन्ना लो, उसे दो बराबर तिकोनों में काटो ताकि हरेक तिकोन आधे पन्ने के बराबर हो। दोनों तिकोनों को अलग अलग रंगों से भर दो। अब इन तिकोनों से अलग अलग आकृतियां बनाओ। यहां एक ऐसी आकृति दिखाई गई है। यहां पर दो तिकोनों की आकृतियों के चित्र हैं। अब तुम यहां पर अपनी आकृतियां बनाओ। आधा करने के बहुत से तरीके। यहां पर एक आयत को जिगजैग तरीके से दो भागों में बराबर बांटकर दिखाया गया है। साथ ही एक बच्चे के चेहरे का चित्र है। बच्चा कहता है,
2: मैंने एक आयत बनाई और उसे दो बराबर भागों में इस तरह बांटा, हर भाग आधा है। हम इसे इस तरह लिखते हैं, 1/2, इसका मतलब होता है दो में से एक भाग। तुम जांच सकते हो कि भाग बराबर हैं या नहीं। एक को दूसरे के ऊपर रखकर देखो।
0: पृष्ठ 97। तुम कितने अलग अलग तरीकों से आयत के आधे भाग कर सकते हो। 5 अलग अलग तरीके से यहां बनाकर दिखाओ। यहां पर 5 आयत हैं। इन 5 को तुम अलग अलग तरह से बराबर बराबर भागों में बांट कर दिखाओ। क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं या नहीं। चौथाई करने के कई तरीके। यहां पर एक आयत का चित्र है जिसे बराबर बराबर 4 त्रिभुजों में बांटा गया है। बच्चा कहता है, मैं 4 हिस्से ऐसे बनाता हूं, हर एक हिस्सा चौथाई है और मैं इसे लिख सकता हूं 1/4। इसका मतलब 4 में से एक भाग।
2: एक आयत को तुम कितने अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांट सकते हो। 5 अलग अलग तरीके यहां बनाकर दिखाओ। यहां पर 5 आयतों के चित्र बने हैं। इन 5 आयतों को तुम बराबर बराबर 4 भागों में बांट कर दिखाओ। क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं?
0: पृष्ठ 98। केक को काटो। रजनी के पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी मां और पिताजी के लिए। यहां पर एक चित्र बना है जिसमें रजनी को केक काटते हुए दिखाया गया है और रजनी के सामने उसके मम्मी पापा और भाई खड़े हैं। हर हिस्से में अलग अलग रंग भरो। हर एक को कितना मिला? रिक्त स्थान। पिताजी ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिलेगा। 4 भागों में से रजनी को रिक्त स्थान भाग मिलेंगे जो कि केक का आधा हिस्सा होगा। इसलिए वो इसको लिखेगी 1/4 या 1/2। पिताजी के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का 1/2 भाग था। यह हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। राजू के हिस्से में रंग भरो। रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला? उनके हिस्से में रंग भरो। कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4। इस पृष्ठ पर दाहिनी तरफ 4 गोले बने हैं। प्रत्येक गोलों को 4 बराबर भागों में बांटा हुआ दिखाया गया है। पृष्ठ 99। लालची कुंदू। कुंदू एक लालची आदमी है। वो जब भी बाजार जाता है वो चीजें तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है पर ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता। एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपए में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वो बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा। कद्दू बेचने वाली बोली, इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपए है। पूरे कद्दू की कीमत होगी रिक्त स्थान रुपए। कुंदू ने कहा,
4: अरे 10 रुपए में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए।
0: कद्दू बेचने वाली बोली,
2: फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाएं, वो आपको 1/2 कद्दू 10 रुपए में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूं।
0: यहां पर एक कद्दू बेचने वाली का चित्र है और उसके साथ कुंदू का चित्र भी बना है। कद्दू बेचने वाली के पास कुछ कद्दू रखे हैं। कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। कुंदू ने कहा,
5: इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपए में दोगे?
0: दूसरा कद्दू बेचने वाला बोला,
6: आधा।
0: पूरे कद्दू की कीमत होगी रिक्त स्थान रुपए। पृष्ठ 100। कुंदू। कुंदू बोला,
7: भैया इसी कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा।
0: दूसरा कद्दू बेचने वाला बोला,
1: भागो यहां से, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियां बेचता है, वो तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपए में दे देगा।
0: लालची कुंदू अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा,
1: क्या तुम मुझे ये पूरा कद्दू 10 रुपए में दोगे?
0: तीसरा कद्दू बेचने वाला बोला,
7: तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते, वहां से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में।
0: कुंदू बहुत खुश हुआ, वो उस घर की छत पर चढ़ गया। और फिर यहां पर एक चित्र बना है जिसमें कुंदू को छत से गिरते हुए दिखाया गया है और साथ ही कद्दू भी दिखाया गया है। यहां पर एक भाव सूची का चित्र है जिसके दो भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है वस्तु और दूसरे भाग में लिखा है भाव रुपए में प्रति किलो। आइए अब हम सूची को पढ़ते हैं। टमाटर 8 रुपए प्रति किलो, आलू 12 रुपए प्रति किलो, प्याज 10 रुपए प्रति किलो, गाजर 16 रुपए प्रति किलो और कद्दू 4 रुपए प्रति किलो। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। भाव सूची का उपयोग। क, 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? रिक्त स्थान। ख, किसकी कीमत ज्यादा होगी, 1/2 किलो प्याज की या 1/4 किलो गाजर की? रिक्त स्थान। ग, 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी? रिक्त स्थान। घ, कीर्ति बाजार में खरीदारी के लिए जा रही है, उसके पास केवल 20 रुपए हैं, क्या वो सूची में लिखी सभी चीजें खरीद सकती है? ळ, इस भाव सूची को देखकर तुम खुद दो प्रश्न और बनाओ। प्रश्न 1, रिक्त स्थान, और प्रश्न 2, रिक्त स्थान। यहां पर कीर्ति का चित्र है जिसके हाथों में भाव सूची और नोटों को दिखाया गया है। पृष्ठ 101, अभ्यास का समय। क, पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है, हर एक आकृति के नीचे लिखो। यहां पर दो आकृतियां बनी हैं। पहली आकृति के दो भाग हैं, इसके एक भाग को रंगा हुआ दिखाया गया है और दूसरी आकृति के 4 भाग हैं। इन चारों में से

दो भागों को रंगा हुआ दिखाया गया है। अब तुम इन्हें देखकर अपने उत्तर लिखो। पहली आकृति रिक्त स्थान, दूसरी आकृति रिक्त स्थान। ख, हर आकृति के उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। यहां पर छह आकृतियों के चित्र हैं। पहली आकृति अष्टभुज, जिसके चार बराबर भाग हैं और नीचे लिखा है 1/2। दूसरी आकृति गोले की है, जिसके चौथाई भाग को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है 3/4। तीसरी आकृति छह भुजाओं वाली है, जिसे चार बराबर भागों में बांटा गया है और उसके नीचे लिखा है 3/4। चौथी आकृति एक आयत की है, जिसे चार बराबर त्रिभुजों में बटा दिखाया गया है और नीचे लिखा है 1/4। पांचवी आकृति एक और आयत की है, जिसके छह बराबर भाग हैं और उसके नीचे लिखा है 1/2। और आखिरी और छठी आकृति भी एक आयत की है, जो खाली है और उसके नीचे लिखा है 3/4। अब आपको इन छहों आकृतियों को देखकर उतने भाग को भरना है जितना कि उसके नीचे लिखा है। ग, आधा काटें। एक रेखा खींचकर यहां दी हुई आकृतियों को आधा करो। यहां पर तीन चित्र बने हैं। पहले चित्र में एक पक्षी का चित्र है, दूसरे चित्र में एक सितारा बना है और तीसरे में कद्दू है। अब तुम इन तीनों आकृतियों को एक रेखा के माध्यम से दो भागों में बांटो। पृष्ठ 102। घ, आधी आकृतियों में रंग भरो जैसा कि यहां दिखाया गया है। यहां पर तीन चित्र हैं। पहले चित्र में आठ आयत दिखाए गए हैं, इनमें से चार आयतों को रंगा गया है। दूसरा चित्र गोलों का है, यहां पर 18 गोले दिखाए गए हैं। और तीसरा चित्र फूलों का है, इसमें 10 फूल दिखाए गए हैं। ळ, दी हुई आकृतियों में 1/4 भाग रंगिए। यहां पर तीन आकृतियां दी गई हैं। पहले चित्र में चार ज़िगज़ैग आकृतियां बनी हैं। दूसरा चित्र बूंदों का है, यहां पर 8 बूंदें दिखाई गई हैं। और तीसरा चित्र घन का है, यहां पर 4 घन दिखाए गए हैं। च, रंगे हुए भाग का मिलान करो जैसा कि दिखाया गया है। यहां पर एक तालिका के तीन भाग हैं। पहले भाग में 4 अष्टभुज दिखाए गए हैं। प्रत्येक अष्टभुज को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। पहले अष्टभुज के 2 भाग रंगे हुए दिखाए गए हैं, दूसरे अष्टभुज का 1 भाग, तीसरे अष्टभुज के 4 भाग और चौथे अष्टभुज के 3 भाग रंगे हुए दिखाए गए हैं। तालिका के दूसरे हिस्से में सबसे ऊपर चौथाई लिखा है, उसके नीचे आधा, उसके नीचे 3/4 और सबसे आखिर में पूरा लिखा है। तालिका के अंतिम भाग में सबसे ऊपर 3/4 अंकित है, उसके नीचे 4/4, उसके बाद 1/2 और सबसे नीचे 1/4 लिखा हुआ है। इसमें से एक को करके दिखाया गया है, जैसे दाईं तरफ की सबसे ऊपर वाली आकृति, जिसके 4 भागों में से 2 भाग रंगे हुए हैं, उसे हमने एक रेखा द्वारा आधे से मिलाया और फिर हमने एक रेखा द्वारा 1/2 से मिलाया। अब बाकी तीन चित्रों को ऐसे ही मिलाओ। पृष्ठ 103। 6, दूसरे आधे हिस्से को बनाएं। यहां 1/2 चित्र दिया गया है। क्या तुम बचे हुए आधे हिस्से को बनाकर चित्र को पूरा कर सकते हो? यहां पर तीन चित्र हैं। पहला चित्र आधे फूल का है, दूसरा चित्र आधी तितली का है और तीसरा चित्र आधी मकड़ी का है, जिसकी 4 टांगें दिखाई दे रही हैं। ज, ये चित्र का चौथाई भाग है, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? इसको पूरा करने के लिए
तुम्हें कितने चौथाइयों की जरूरत पड़ेगी। रिक्त स्थान, यहां पर एक चित्र में सूरज के एक चौथाई भाग को दिखाया गया है, एक मीटर का आधा और चौथाई। अपने मीटर स्केल के सहारे एक मीटर लंबी रस्सी काटो, इस पर 1/2 मीटर, 1/4 मीटर और 3/4 मीटर पर निशान लगाओ। अपनी रस्सी की सहायता से जमीन पर 1/2 मीटर लंबी रेखा खींचो। यह रेखा कितनी सेंटीमीटर लंबी है? रिक्त स्थान, याद रखो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर या cm। यहां पर एक लड़की को रस्सी की मदद से मीटर स्केल को नापते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 104। अब बताओ, अब तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो। 1/2 मीटर = रिक्त स्थान सेंटीमीटर यानी cm। 1/4 मीटर = रिक्त स्थान सेंटीमीटर यानी cm। और 3/4 मीटर = रिक्त स्थान सेंटीमीटर यानी cm। तुम देख सकते हो कि जब हम 1/2 और 1/4 जोड़ते हैं तो हमें 3/4 मिलता है। दूध को बांटो। ये बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। ये दूध बाकी 4 बोतलों में इस तरह भरा गया है कि हर बोतल में 1/4 लीटर दूध है। हर बोतल में रंग भरकर दूध का स्तर दिखाओ। यहां पर 5 बोतलों का चित्र है। याद रखो 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर। हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? रिक्त स्थान। शान ने 1 लीटर दूध 2 बोतलों में इस तरह डाला कि पहली बोतल में 3/4 लीटर दूध आया और दूसरी बोतल में 1/4 दूध आया। यहां पर 2 बोतलों का चित्र बना है। इनमें तुम एक को 3/4 लीटर दूध से और दूसरी बोतल को 1/4 लीटर दूध से भरो। दोनों बोतलों में जहां तक दूध आया उतने हिस्से में रंग भरो। हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? पृष्ठ 105। बराबर भाग। यहां पर 10 बाटों का चित्र है जिन पर लिखा है 1 किलो, 500 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम। खाली पलड़े में सही वजन लिखकर दोनों पलड़ों को बराबर करो। कितने तरीकों से तुम इसे बराबर कर सकते हो? क, खाली पलड़े बट्टे बनाओ और बराबर करो। याद रखो 1 किलो = 1000 ग्राम। यहां पर एक तराजू का चित्र है जिसके 2 पलड़े हैं। एक पलड़े पर 2 किलो का बाट रखा है। ख, कितने अलग अलग तरीकों से तुम 3/4 किलो भार की बराबरी कर सकते हो? यहां पर एक तराजू का चित्र है जिसके 2 पलड़े हैं, जिसके एक पलड़े में 3/4 किलो बाट रखा है। अब तुम इन खाली स्थानों को भरो। 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान और 3 रिक्त स्थान। पृष्ठ 106। ये गलत क्यों है? कर्णन ने कुछ भागों में रंग भर दिया लेकिन उसकी दोस्त मिनी कहती है कि ये गलत है। क्या तुम बता सकते हो कि ये गलत क्यों है? यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र आयत का है जिसके 3 भाग बराबर हैं और 4th भाग कुछ बड़ा है और ये रंगा हुआ है। त्रिभुज का एक छोटा हिस्सा रंगा हुआ दिखाया गया है। आयत के नीचे बॉक्स में गलत का निशान है और त्रिभुज के नीचे बॉक्स में 1/2 लिखकर उसे काटा गया है। अभ्यास का समय। अब तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो। यहां 60 आम हैं। 1/2 पके हुए हैं। कितने आम पके हुए हैं? यहां 32 बच्चे हैं। 1/2 लड़कियां हैं।
लड़के कितने हैं? 20 तारे हैं, उनमें से एक चौथाई लाल हैं। कितने तारे लाल हैं? कितने तारे लाल नहीं हैं? रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, इसकी कीमत 2 रुपए है। उसने 1 रुपए का सिक्का दिया, 1 आधे रुपए का सिक्का दिया और 1/4 रुपए का सिक्का दिया। क्या ये काफी था? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे एक बच्चे को पेंसिल से कॉपी पर कुछ लिखते हुए दिखाया गया है और यहां पर एक दूसरे चित्र में कुछ सिक्के दिखाए गए हैं, जिनमें 25 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के और 2 रुपए के 3 सिक्के दिखाए गए हैं। इसी के साथ 9वां पाठ आधा और चौथाई यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगडो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: आज मैं अपनी फेवरेट मूवी देख के आया हूँ।
3: तुम्हारी फेवरेट मूवी तब तो मुझे मालूम होगा, लेकिन तुम्हारी तो इतनी सारी फेवरेट मूवी है, मुझे तो पता नहीं कौन सी मूवी देखी है।
2: अरे थोड़ा सोचो, वो कार से रिलेटेड है, स्पीड से।
3: ओ मैं समझ गया, चलो कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं, मैं तो समझ ही गया तुम्हारी पसंद। वैसे तुम मुझे स्टोरी बता सकते हो?
2: मूवी तो बहुत ज्यादा लंबी है और थ्रिलिंग है, बहुत से मोड आते हैं, उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट चलो और लोगों को भी बुला लेते हैं और मैं फिर एक ही बार में सबको स्टोरी के बारे में बता दूंगा।
3: ओके।
4: हेलो बच्चों।
5: हेलो दीदी।
4: क्या बातें हो रही हैं अकेले अकेले?
2: दीदी हम लोग मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशली मेरी फेवरेट मूवी की स्टोरी के बारे में बताने वाला था मैं।
5: पर तुम्हारी तो बहुत सारी फेवरेट मूवी है।
4: ये बात तो मुझे लगता है अभी वेदांत ने भी कही थी, है ना? वैसे आज कौन कौन बातें करने वाला है, पहले जल्दी से अपना नाम तो बता दो।
3: मैं वेदांत।
2: मेरा नाम यश है और मैं क्लास 10th में हूँ।
5: और मैं दृष्टि, क्लास 10th में हूँ।
6: और मैं मृदु, क्लास 11th में हूँ।
4: ओके ओके, वैसे आप लोग मूवीज के बारे में बात कर रहे हो। वैसे जब हम कोई मूवी देख के आते हैं तो मन करता है ना अपने फ्रेंड को जल्दी से कहानी बताएं उसकी।
5: बहुत मतलब वेट ही नहीं होता कि कब कल स्कूल, कल क्यों है, अभी क्यों नहीं है स्कूल, बस जाके बता दूं ऐसा।
6: अपना फेवरेट पार्ट डिस्कस करो, उसमें आपको क्या अच्छा लगा और सब कुछ डिस्कस करो।
5: और सबसे बड़ी चीज चिढ़ाओ कि तूने तो देखी नहीं, हम तो देखा है।
4: ओके अच्छा ये बताओ, आप लोग सब व्यूअर्स, यश है, यहाँ वेदांत है, दृष्टि है, मृदु है, आप लोगों को किस टाइप की फिल्म देखना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, किस तरह की अच्छी लगती है?
5: मुझे तो कॉमेडी, और अब मुझे ये नहीं पता कि कबीर सिंह किस कैटेगरी में आएगी, पर वैसी मूवीज भी अच्छी लगती है जिसमें ट्विस्ट हो, हंसी भी हो, दोस्ती भी हो और सब कुछ एक साथ हो। मुझे सबसे ज्यादा वो मूवीज अच्छी लगती है जिसमें दोस्तों के फ्रेंडशिप के बारे में बताया जाता है।
4: ओके और यश आपको?
2: मेरे को तो सबसे ज्यादा एक्शन एक्शन मूवी,
3: और मुझे मैथोलॉजी और हिस्टोरिकल मूवीज पसंद है।
4: ओके और मृदु?
6: मैं कहूंगी मुझे तो हर टाइप की मूवीज पसंद है, मुझे कोई भी दिखा दो, लेकिन हाँ ज्यादा एक्शन वैक्शन मुझे पसंद नहीं है।
4: ओके एक्शन पसंद नहीं है उतना।
6: हाँ
4: वैसे कोई बात नहीं, सबको अलग अलग पसंद होती है मूवीज, डेफिनेटली। अच्छा कोई आप लोगों में से कोई पुरानी फिल्में भी देखता है क्या या सिर्फ नई फिल्में?
5: मैंने देखी है पुरानी फिल्में, मुझे खैर अच्छी तो मैं नहीं कहूंगी कि मतलब अच्छी लगती हुई है, पर बहुत नींद आती है क्योंकि एक तो उसमें गाने बहुत लंबे होते हैं, 100 बार धूमता ना ना तेरे दो होता है, उसके बाद जाके कोई रिएक्शन आता है, पर हाँ अच्छी होती है उनकी जो स्टोरीज होती है ना, अच्छी होती है,
4: बट थोड़ी स्लो होती है
6: वैल्यू, बट मुझे तो बोरिंग लगती है। जैसे आज नए नए टॉपिक्स आते हैं मूवीज के, कुछ नया कुछ नया, पहले की मूवीज एक ही उसमें चल रही होती है, एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन, आजकल ग्रे शेड रोल चल रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, ओल्ड में कुछ बोरिंग हो जाता है।
4: ओके
3: एक्चुअली दीदी मुझे ना रिसर्च करने का बहुत शौक है, मतलब कोई भी गाना सुनूंगा ये गाना किस फिल्म का था, तो मम्मी बताती है कि ये उस पुरानी फिल्म का है, तो चलो उस फिल्म को देख ही लिया जाए एक बार।
4: तो आप देखते हो?
3: हाँ मैं देखता हूँ।
4: कौन से एक्टर्स की पुरानी फिल्में देखी है आपने?
3: अमिताभ बच्चन की ज्यादा देखी है, और सलमान खान जैसे पहले दिखाई देते थे, और शाहरुख खान को, और जो भी पुरानी करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित।
4: ओह माय गॉड, मतलब करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित पुराने जमाने की हो गई। लगता है मैं अपने बचपन में चली गई, मुझे तो वो आज भी आज के जमाने की लगती है।
3: इतने भी पुराने नहीं, मुझे जैसे उस समय नूतन थी और कई सारे और भी पुराने लेजेंडरी स्टार्स हैं, उनको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो आप जब छोटी थी दीदी तब जो आप फिल्में देखती थी वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
4: ओके मतलब आप 90s की बात कर रहे हो।
5: वैसे हाँ। दीदी आपने ये तो सबसे जान लिया कि उनको कैसी मूवीज पसंद है, आपको कैसी मूवीज पसंद है?
4: ओ मेरे ऊपर ही सवाल आ गया। मुझे भी एक्चुअली जैसे आपने कहा कि जिसमें फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, वो फिल्में बहुत पसंद है, और जब मैं शुरुआत जब बचपन से देखना शुरू किया था तब मुझे लगता है हम जब छोटे होते थे स्कूल में, तो तो जब कॉलेज लाइफ दिखाई देती थी और वहाँ लगता था कि अच्छा ऐसे दोस्त होते हैं, एक दूसरे के लिए इतना कुछ भी कर सकते हैं,
5: घूमने जाते हैं साथ में
4: हाँ, तो वो सब अच्छा लगता था कि भाई फ्रेंडशिप वाली स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक्शन मूवीज मैं भी नहीं देखती थी
5: हम भी नहीं देखते
4: और कॉमेडी तो अच्छी सबको लगती है, मुझे लगता है हंसना सबको पसंद है,
5: बहुत पसंद
4: है ना।
5: हाँ जी,
4: वैसे कार्टून फिल्म्स भी अच्छी होती हैं,
5: बहुत अच्छी
2: होती है, मेरी एक फेवरेट है वो हॉलीवुड की है।
5: Okay. मेरी भी हॉलीवुड मिनियंस।
4: ओके, बिल्कुल कॉमेडी भी है और साथ में कार्टून भी,
2: क्यूट
5: एनिमेटेड भी है,
4: क्यूट है।
5: और मेरे को ऐसे तो बचपन में कहा जाए तो मेरे को बारबी वगैरह पसंद थी, बट अभी तो बड़े होकर जैसे एनिमेटेड मूवीज जो होती है हॉलीवुड की, इवन अभी भी डोरेमोन वोरेमोन के हम देख लेते हैं शिनचैन के बैठ के, बड़ी मजे आती है,
4: अच्छा लगता है ना,
5: वो भले कितना भी बच्चे वाली हरकत करे हमको हंसी आती ही है।
4: तो आप लोग बड़े हो गए हो?
5: नहीं मैं तो नहीं हुई
3: अभी तो तूने बोला
5: नहीं, मैं बड़ी थोड़ी थोड़ी हुई हूँ, थोड़ी थोड़ी रही हुई, कई महीनों में हो गई, कई महीनों में नहीं हुई हूँ।
6: एक्चुअली खुद ही कंफ्यूज है
5: अरे मम्मी को कोई भी काम बोलो, इस काम के लिए मैं, किसी काम के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ और किसी के लिए बहुत छोटी हूँ।
6: ये तो सबके साथ ही होता है
3: मेरे घर भी
4: ये तो अभी तक भी होता है।
5: हाँ जी,
4: चलो कोई बात नहीं। अच्छा हम फिल्मों की बात कर रहे हैं तो आजकल जो नई लेटेस्ट फिल्में आती हैं वो जब आती है, मान लो फ्राइडे रिलीज हुई या जब भी रिलीज हुई, आप कितनी जल्दी उसे देख लेते हो?
6: दीदी ट्रेलर पे डिपेंड करता है, इंटरेस्टिंग हो तो जल्दी देख लेते हैं, नहीं तो फिर चलो देख लेंगे या तो नहीं भी देखेंगे चलेगा।
4: ओके
5: okay. नहीं पर मृदु के लिए तो ऐसा है कि हर मूवी देखनी जरूरी है ना मृदु?
6: ऑलमोस्ट देखी होंगी मैंने
5: मैं अच्छा विदान भैया आप बोल लो पहले, मैं देख रही हूँ तब से आपको बहुत मन कर रहा है बोलने का।
3: दीदी डिपेंड करता है कि कुछ एग्जाम अगर होंगे तो थोड़ी ना अपने देखने जाएंगे मूवी, क्यों?
4: नहीं मतलब किस चीज पे डिपेंड करता है, मान लो आपकी छुट्टी है एग्जाम्स नहीं है और आपको ट्रेलर किस तरह के कोई एक्टर पसंद है या इस एक्टर की आएगी तो देखनी है हाँ, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट
5: तो
4: अच्छा लगता है कि इस तरह की आएगी तो देखनी है
5: हाँ,
4: या सब लोग फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं,
3: ये तो है।
4: क्या क्या रीजन होता है देखने का?
5: मुझे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, अगर वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हाँ मुझे, जैसे मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर जब आने लगी थी सेकेंड पार्ट उसका, मैंने उसके बहुत टाइम पहले ही बोल दिया था मुझे वो मूवी जानी है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो भी मुझे अच्छा लगा था और सेकंड पार्ट भी। तो जैसे कोई डांस की मूवी है तो वो तो मैं देखती ही हूँ, मुझे बहुत पसंद होती है कोई डांस की मूवी होती है, डांस के शोज होते हैं, तो वैसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मेरा तो।
4: आपका कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? किसी का कोई एक्टर फेवरेट है, एक्ट्रेस है कि भाई इसकी तो देखनी है, ऐसा भी होता है?
2: मेरे को दीदी लगता है क्योंकि कुछ फेवरेट एक्टर्स हैं मेरे, कुछ पंजाबी हैं, कुछ हॉलीवुड के,
4: कौन कौन,
2: कुछ बॉलीवुड। अब हॉलीवुड के हैं तो पूरी दुनिया उसे जानती होगी, आरडीजे कहते हैं उसे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर।
4: ओके,
2: और अब पंजाबी मूवीज हैं तो उनमें से सिर्फ मेरे को एक बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ, परमीश वर्मा नाम है उनका। वो एक्टर जाते हैं सामने तो लगता है कि हाँ भाई इनकी मूवी है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है नेचुरल आती है और मेरे को पसंद आती है।
4: क्या कौन सी मूवीज आपको लगता है ये तो देखनी है?
3: डिपेंड करता है डायरेक्टर्स पर भी दीदी, जैसे हमारे जो इंडियन डायरेक्टर संजय लीला बंसाली जी है वो हमेशा क्लासिकल मूवीज बनाते हैं, हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हैं, तो वही मुझे देखनी पसंद है, इस वजह से मैं इंतजार में रहता हूँ कि कब वो कौन सी नेक्स्ट मूवी बनाएंगे। उनकी ज्यादातर सभी मूवीज मैंने देखी।
4: और कौन से डायरेक्टर का नाम मालूम है आपको?
5: करण जौहर।
3: इन सब का मालूम है हाँ, करण जौहर की भी कई अच्छी फिल्में हैं और उनकी फिल्मों का भी मैं इंतजार करता हूँ। रोहित शेट्टी, इनके ज्यादातर फिल्मों में एक्शन ही रहता है
4: तो उनका भी
3: कम पसंद आता है।
4: कम पसंद आता है, ओके ठीक है। अच्छा ये बताओ, कभी रिसेंटली कुछ फिल्मों के बारे में डिबेट होता है कि एक फिल्म के बारे में अगर बताएं तो डिबेट चलता है कि भाई कोई नेगेटिव किरदार है, मतलब वो गलत गलत काम कर रहे हैं, वो सिगरेट भी पी रहे हैं और वो किसी के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हैं, अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, और वो कभी कभी हमारा हीरो होता है मूवी का, तो वो मूवी आपको क्या लगता है, मतलब ठीक है नहीं ठीक है? इस तरह की मूवीज आती हैं तो आपको मन करता है देखने का?
5: मन डिपेंड करता है कि वो सिर्फ जैसे या तो वो ऐसी है कि वो हीरो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और ये वो मैं वो सब तो नहीं देख सकती, मेरे सर में दर्द हो जाता है वो सब देख के।
4: अच्छा हीरो परेशान है तो नहीं?
5: हाँ बहुत।

0: वो डिप्रेसिंग सी मूवी हो जाती है, मजा नहीं आता। बट कुछ ऐसा है कि हाँ वो हीरो खुश है, पर भले वो रैंक ला रहा है, अपने प्रोफेशन में खुश है, अपने करियर को बहुत अच्छा संभाल रहा है और साइड बाय साइड कर रहा है गलत चीजें, बट अपने कुछ उसूल है लाइफ के जिसको वो फॉलो कर रहा है और जिसको वो नहीं छोड़ रहा है, वैसी मूवीज मैं फिर भी देख लूँ। पर ऐसी नहीं कि बस वो सिगरेट ही पी रहा है, मारधाड़ी कर रहा है, वो सब नहीं।
1: okay.
2: अगर दीदी वो हीरो अगर उसे हीरो दिखा है और अगर वो गैंगस्टर है या गलत काम भी कर रहा है और कुछ रीजन हो सकता है उसका ऐसा बनने का, या ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्टिंग से ही ऐसा है, तो ट्रेलर में दिखाया ही होगा उसकी पास्ट, पहले दिखा सकते हैं कि अभी वो रिसेंटली कैसा है, और ट्रेलर में एंडिंग में दिखाया होगा कि उसकी पास्ट लाइफ कैसी है। तो अगर ऐसी भी चीज़ें हैं तो फिर भी मन करता है कि हाँ इसकी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो ये अब जाके ऐसा
1: बन गया है।
2: नहीं तो अगर स्टार्टिंग से ही इसको ऐसा दिखाया, ऊपर से उसको हीरो का किरदार दे दिया, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि ये तो मारधार कर रहा है और ऊपर से इसको हीरो दिखा दिया, तब वो मूवी ऐसा लगता है कि ये तो नेगेटिविटी है, इसमें से मारधार ही होगी, तो तब देखने का ऐसा दिल नहीं करता है।
1: ओके लेकिन अगर मान लीजिए अब वो एक्टर आपको बहुत पसंद है, वो उसको हीरो, तो वो हीरो तो है ही, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है वो जो आदत अच्छी नहीं है उसकी, तो आपको लगता है कि कभी आपने देख के आए उस मूवी को और आपको लगा ये हीरो ने ना आज, अच्छा उसका असर क्या होता है, मतलब एक्टर पसंद है आपको या एक्ट्रेस पसंद है, तो उसने जैसे कपड़े पहने हैं या वो जिस तरह का कुछ कर रहा है, आप लोगों को कभी लगता है मैं भी वैसे करूँ, किसी को देख के ऐसा लगा?
0: हाँ लगता है।
2: मैं एक और सिंगर है जो बॉलीवुड के यहाँ बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने मतलब मैं 90s की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं जब बहुत छोटा था तभी उन्होंने एंट्री ली थी।
1: बोल।
2: पहले भी उनपे भी बहुत सी उंगलियां उठी थी कि गलत तरह के गाने बना रहे, और मेरे को भी लगा कि हाँ ये गाने तो इम्पैक्ट करते होंगे, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने साफ साफ बोली थी कि जो मैं आज गाने बना रहा हूँ, मैं भी अपने एक ऐसे स्टेज से निकला था, टीन एज में था मैं, अब मेरे भी दोस्त थे, मैं सबको देखता था, चाहे मेरे दोस्तों की या दूसरे लोगों की बात करने का तरीका, उनकी आदतें या जो भी ये सारी चीज़ें हैं, मैं वही गाने में ला रहा हूँ। तो ये बात जो थी ना मेरे दिमाग में बैठी और मैंने सोचा कि हाँ मैं भी एक बार ट्राई करूँगा कि जो उन्होंने बोला उसको मैं भी देखूँ, तो मैंने भी उसको रिलेट किया और देखा कि हाँ ऑलमोस्ट चीज़ें मैच करती हैं, कि आज अगर उस गाने में कुछ ऐसा आया है तो डेली लाइफ में भी वो सिमिलर है उस चीज़ से, ऐसा नहीं कि गाने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है।
1: पता है एक कहावत है, आप लोगों को पता है कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है या साहित्य समाज का दर्पण होता है, सुना है आप लोगों ने कभी?
0: हाँ जी।
1: इसका मतलब है कि फिल्मों में वही दिखाया जाता है तो समाज में हो रहा है।
0: हाँ जी।
1: लेकिन ये बहुत डिबेटेबल इशू है डेफिनेटली, कि दुनिया में वो दिखा जो हो रहा है वो पिक्चरों में दिखा रहे हैं या पिक्चरों में जो हो रहा है वो दुनिया में होने लगता है।
0: पर दीदी ये तो देखने वाले पे डिपेंड है कि वो किसी चीज को नेगेटिव वे में ले रहा है पॉजिटिव वे में ले रहा है, मतलब जो डायरेक्टर होगा या जिसने वो लिखी होगी फिल्म, उसने क्या पता ये कहीं देखा हो और फिर वो उसमें पॉजिटिव चीज भी डाल रहा है। लेकिन आजकल क्या है, लोग नेगेटिव चीज इतनी देखते हैं कि उनको वो पॉजिटिव चीज ढक जाती है पीछे।
1: ओके हाँ वेदांत।
3: और दीदी मैंने आपको भी देखा है कभी शो में ये बोलते हुए कि सिनेमा में जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं।
1: बिल्कुल, एक्चुअली वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ। रियल लाइफ में वो क्या है, तो वो तो अलग ही बात है।
3: नहीं आता जब उनमें एक्टिंग करने वाले पे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो दृष्टि ने सही बोला कि वो डिपेंड करता है देखने वाले पर।
1: आपको पता है मैंने एक एक्टर है बहुत आज के, मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे, उनका इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी का कैरेक्टर किया था,
0: राजकुमार राव।
1: हाँ, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि, मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी डेफिनेटली, और उन्होंने बताया कि मैं कैरेक्टर करता हूँ नेगेटिव तो ऑब्वियसली मैं ये सोच के नहीं करता कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान गलत कर रहा है वो फिर गलत सोच के नहीं करेगा, उसको वो ठीक लगेगी अपनी गलती। तो उन्होंने बहुत सारी हेट स्पीचेस सुनी, मतलब नफरत वाली स्पीचेस सुनी उन लोगों ने बहुत सारी, तो वो जब सुन रहे थे इतनी स्पीचेस, तो उनपे इतना प्रभाव पड़ा कि एक आतंकवादी हमला, मतलब एक गलत एक्ट जब हुआ कहीं दुनिया में और खबर उन तक पहुंची, तो उनके दिमाग में उनको पहली थॉट पता है क्या थी? वेल डन, बहुत अच्छा हुआ। जबकि उसमें कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग, ऐसी बड़ी दुर्घटना थी दुनिया के लिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारी हेट स्पीचेस सुन चुके थे तो उनपे देखने का सुनने का इतना प्रभाव पड़ा कि उनके अपने ब्रेन ने उनके हिसाब से काम करना बंद कर दिया,
4: थिंकिंग ही चेंज हो गई
1: और तब उन्होंने याद दिलाया कि तुम एक एक्टर हो, इससे बाहर आओ।
0: क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो ये 2 ही घंटा देखा है, कौन सा हमारे दिमाग में कुछ चल रहा हो कुछ ऐसा, पर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हम सोचना छोड़ देते हैं पर पीछे वही चलता है।
1: एग्जैक्टली, ये तो प्रूफ है।
2: तो देखने और सुनने का प्रभाव तो दीदी है ही, क्योंकि जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया राजकुमार राव का, ऐसे ही हमारे बहुत ज्यादा फेमस एक्टर बॉलीवुड के जो रणवीर सिंह है, वो अपनी एक्टिंग कुछ इस तरह दिखाते हैं कि मतलब जैसे वो खुद हैं, वो इतना रोल में चले जाते हैं। तो उनका भी एक ऐसी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं मूवी कर रहा था और वो अपने इतने रोल में चले गए थे, और उनका भी नेगेटिव रोल था, तो वो भी बता रहे थे कि मैं एक समय पे सेट पे इतना एग्रेसिव हो गया था पॉट बॉय पे, पता नहीं कुछ गलती हुई थी कह रहे थे, कि मैं मतलब इतने गुस्से में आ गया कि मेरे को लगा कि मैं आज उसे जान से ही मार दूं, कि मैं उस रोल में इतना चला गया था।
1: राइट, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, असर डालती हैं। इसलिए मैं आपसे पूछा कि कौन सी एक चीज आपको लगा कि मैं अपनाऊं, हीरो हीरोइन को देख के लगा होगा कि काश मैं भी ऐसी होती या मैं भी ऐसी होता।
2: मेरे को तो सिर्फ उनकी ड्रेसिंग अच्छी लगती है, मैं इतना देखता
0: हूँ। उसमें ये स्टोरी मैटर नहीं करती, अरे ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है स्टाइल मार रही है, वो उसने ड्रेस क्या पहनी है सबसे पहले, उसके मेकअप पे नजर जाती है, उसके गेटअप पे, हेयर स्टाइल, इन सब चीज पे नजर जाती है कि उन्होंने मतलब क्या क्या नेकलेस कैसा पहना है। जैसे कई बार कई लोग मतलब मुझे जैसे ब्रेसलेट वगैरह का बहुत शौक है, तो उन चीजों को मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ, और स्पेशली मैं ये नहीं देखती कि ये क्या रोल क्या वो क्या, मैं देखती हूँ एक्टिंग कितनी अच्छी करी।
1: ओके, और मृदु आप?
4: एक्चुअली मैं भी एक्टिंग ही देखती हूँ कि उसने किस तरह के एक्सप्रेशंस किए हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो मुझे मूवीज में जो लोग नेगेटिव रोल्स करते हैं ना, मुझे वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक आई लव सीइंग देम, और खुद नेगेटिव रोल प्ले करना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम मिल जाती है बहुत सारे एक्सप्रेशन करने की। अगर आप पॉजिटिव रोल कर रहे हो ओके फाइन, एक सीमित तक ही एक्सप्रेशन आप कर पाते हो, बट नेगेटिव रोल में बहुत
1: अच्छा। कभी आप लोगों को कोई फिल्म देख के मन किया, जैसे उसमें तो देखो आप लोग भी अब बड़े हो रहे हो डेफिनेटली, और हमें ये मालूम होता है कि बड़े होने के साथ कुछ कुछ हमें आज़ादी मिलती जाती है, तो आपको कभी लगता है जैसे आप सिगरेट देखते हो, ड्रिंकिंग करते हुए देखते हो, या दोस्तों के साथ बिना पेरेंट्स के घूमने जाते हुए देखते हो, या अपनी पसंद के कपड़े पहने हुए देखते हो, कभी आप लोग को ये लगा कि नहीं काश
0: मेरे को लगता है ये सिगरेट ड्रिंकिंग मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता, बिकॉज मेरे को ये सब चीजें बहुत ज्यादा वो करती है, मैं बहुत अपोज हूँ इन चीज के, मुझे इनको कुछ है ही नहीं शौक। बट फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना, मुझे ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स ना हो, पेरेंट्स भी चले मुझे तो ऐसा है, बट मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना कहीं पर, और मतलब अपनी लाइफ में ना पूरी फ्रीडम हो, मुझे ये नहीं कि यार ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे, मुझे ये है कि मैं फ्री हूँ बस।
1: ओके, और मैं फिलहाल ये जानना चाहती हूँ किसी फिल्म को देख के आपको ऐसा लगा क्या? ओके यश,
2: दीदी जैसे एक मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें जिस हिसाब से वो जगहों पे घूमने गए, और वो 3 दोस्त थे और वो बेस्ट फ्रेंड थे, मुझे लगता है कि जिस हिसाब की उनकी फ्रेंडशिप स्टार्टिंग में मूवी में दिखाई है, वो बचपने से या अपने स्कूल लाइफ से फ्रेंड्स रहे होंगे, इस कारण से अपने कामों से फ्री होके तब जाके कहीं घूमने गए, तो ऐसी चीजें मुझे पसंद है। जैसे अभी भी क्या होता है कि मेरे फ्रेंड्स होते हैं, तो कोई जैसे कुछ भी आ गया, जैसे किसी का बर्थडे हो, चाहे कभी मन कर गया कि सारे दोस्त मिलके किसी के घर चलते हैं, एक दोस्त के घर जाके वहाँ थोड़ी मस्ती करते हैं बैठ के, क्योंकि स्कूल में तो हम लोग वैसी मस्ती नहीं कर सकते, कोई अलग क्लास में अलग, कोई दूसरी क्लास में है, कभी कोई टीचर ज्यादा सीरियसली मतलब पूरे पूरे दिन सीरियसली बैठ के पढ़ाई में निकल जाता है, तो लगता है कि एक दिन फ्री हो, सारे दोस्त मिले और मस्ती करें, तो मेरे को लगता है ये कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ रहूं और थोड़ा थोड़ा बहुत घूमूं, ऐसे नहीं कि पेरेंट्स को भी लगे कि ये तो बिगड़ते जा रहा है,
1: मतलब बैलेंस करके। विधान?
3: हाँ दीदी, वही जैसे कोई भी फिल्म देखे मन करता है कि हम भी फ्रेंड्स के साथ जाएं, जैसे कोई हॉरर मूवी में दिखाते कि वो फ्रेंड्स वगैरह कोई भूत बंगले में गए अकेले घूमने के लिए, मेरा मन करता है ना घूमने का डरावनी जगह में।
1: ओके,
4: माय गॉड।
1: अमृतु, आपको कोई फिल्म देख के जो आपको कुछ लगा कि नहीं ऐसा करना है मुझे?
4: स्पेशली वही तो सबने बोला, फ्रेंडशिप देख के लगता है कि वाओ, जैसे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, पक्की होती है, एंड कभी कभी रियल लाइफ में भी लगता है कि यार रियली जैसे अभी स्कूल के सिर्फ 1-2 साल ही बचे हैं यार, अभी फ्रेंडशिप निभा लो, क्यों किसी से दुश्मनी रखनी है, क्यों किसी से फाइट करना है, बस इतने से साल ही तो बचे, फिर क्या पता दोबारा मिले ना मिले,
1: मतलब मेमोरीज बनानी चाहिए।
4: या
1: ओके अच्छा, कभी आप लोग को नहीं लगा, बिकॉज ज्यादातर फिल्में रोमांटिक होती है, तो कभी इस तरह का नहीं लगता कि अच्छा नहीं मेरी भी इस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए या इस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, कभी इस तरह लगता है?
0: तो ऐसा कभी नहीं लगा, इस एज में कभी नहीं लगा, बड़े होकर भी मैं एक्चुअली ना मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगने से ज्यादा ना बोझ लगती है, जब कोई आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हो वो भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे एक लिमिट तक अच्छा लगता है।

0: कैरेक्टर से बहुत इंस्पायर हो गई थी. उन्हें लगता था नहीं, मतलब फ्रेंड्स हैं, वहीं ना कहीं लव स्टोरी होगी, कहीं ना कहीं कुछ होगा. तो सबको बहुत उससे एक हम कह सकते हैं कनेक्शन लगा था. तो डेफिनेटली अब जनरेशन चेंज हुई है, तो रोल्स भी चेंज है, डायलॉग्स भी चेंज है, तो असर भी चेंज है. तो आप लोगों को कभी कुछ ऐसा नहीं लगा किसी कैरेक्टर को देख के?
1: मुझे तो लगा
2: तो नहीं लगा थी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है. मेरे को मेरे दोस्त प्यारे हैं और मैं ये नहीं देखता कि वो लड़का है क्या लड़की है. मैं ये देखता हूँ कि मेरे से कोई बात कर रहा है तो वो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, उससे ज्यादा तो क्या होगा.
0: ओके.
2: दिल में बैठ जाएगा कि हाँ बस इसके साथ तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बस,
0: मतलब इसके लिए कुछ भी.
2: हाँ, और ऐसी दोस्ती डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि हाँ भाई ये ऐसी दोस्ती लड़के के लिए होनी चाहिए,
0: सबके लिए, किसी के लिए भी हो सकती है.
2: हाँ जी.
1: मुझे तो थोड़ा सा कबीर सिंह देख के मतलब अच्छा लगा था. मुझे ये नहीं था कि ऐसा लड़का ही होना चाहिए, वैसे लड़की भी हो, मतलब मेरी फ्रेंड, मुझे एक्चुअली ये सब मैटर नहीं करते. मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड्स मैटर करते हैं मेरी लाइफ में, मेरे फ्रेंड्स और मेरे गोल्स जो मुझे अचीव होने चाहिए.
0: मतलब आपको ऐसा लगा कि कोई इतना प्रोटेक्टिव होना चाहिए?
1: हाँ
0: कि आपके लिए कुछ भी कर.
1: हाँ,
2: वो सपोर्ट मिलता है.
0: ओके, ठीक है. लेकिन उसने तो मैंने सुना था थप्पड़ भी मार दिया था.
1: हाँ, थप्पड़ वो थप्पड़ मारा चलेगा, लड़का नहीं मारना चाहिए. लड़के का जोर से
0: लड़का अच्छा दोस्त
1: लड़के का जोर से लगता है दीदी.
0: लेकिन फिर वो मार सकता है, इतना अच्छा दोस्त अगर ये कर सकता है तो जो उसने फिर गलत किया या जो किया वो भी तो कर सकता है.
1: हाँ, थप्पड़ मतलब ऐसे अधिकार है, मैं ये कहती हूँ
0: पूरे कॉलेज के सामने चलेगा.
3: Oh my God, then I would like to do it.
1: मेरे को बताए, मेरे को एक्चुअली बेसिकली पूरी ऐसी गुंडा कर दी जैसे हो ना पूरी, कि मतलब नाम सुनते ही अरे वो तो उसका दोस्त है भाई, भागो, इससे पंगा नहीं लेना, मुझे ऐसी दोस्ती चाहिए.
0: ऐसी दोस्ती चाहिए.
1: हाँ जी.
0: ऐसी दोस्त नहीं तो थप्पड़ मारा फिर मुश्किल.
3: ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए.
2: दीदी ये तो ऐसे डिपेंड करता है ना कि कितना ग्रुप है बड़ा आपका दोस्तों का, और दोस्त इतने मतलब इतने ग्रुप में घूम रहे हैं, तो मतलब भाई इससे तो डरना ही चाहिए क्योंकि इनका तो बड़ा ग्रुप है.
0: अच्छा, एक और लास्ट में मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी क्योंकि ये डिबेट चलता है कि भाई जैसे जैसे मूवी की नई हम मूवी की बात करें, एक कैरेक्टर ऐसा है जो गुस्से में आ जाता है, कभी भी कुछ भी करता है, लोगों को लगता है कि वो बहुत पैशनेट है, जिससे प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिसका दोस्त है उसके लिए कुछ भी कर सकता है, मगर वो कैरेक्टर ड्रिंक भी कर रहा है, वो सिगरेट भी पी रहा है और वो किसी को मार भी रहा है, वो अपने ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. तो आपको लगता है उसे एक हीरो की तरह दिखाना चाहिए या फिर उसे केवल एक इंसान की दिखाना चाहिए जो एग्जिस्ट करता है? ऐसा नहीं कि वो समाज में है नहीं, पर क्या वो समाज का हीरो है?
1: वो नहीं, हीरो की तरह नहीं है.
2: हीरो बन भी सकता है बट कुछ मायनों में नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीजें प्रमोट की हैं जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है, और कुछ ऐसी भी चीजें की हैं जो आजकल की लाइफ में कम देखने मिलती हो.
0: Okay.
2: जैसे वो ट्रस्ट है और वो दोस्त के बीच में बॉन्डिंग है, वो सारी चीजें हैं. तो अगर वो ये सब कर रहा है तो हाँ, वो उस चीज में वो बहुत बड़ा हीरो है, क्योंकि वो रिलेशन उनका जो है बिल्कुल प्योर है और अच्छा है.
0: Okay.
2: बट अगर जहां तक बात है ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, ये सारी चीजें हैं और उसका अपने पे कंट्रोल नहीं है, और एंगर तो हमें डिस्ट्रॉय करता ही है, तो इन सब चीजों में शायद वो ना हीरो नहीं है, हो सकता.
0: तो आप लोग सब लोग साथ में क्या कहना चाहोगे, हीरो है ऐसा कैरेक्टर या हीरो नहीं है?
1: हीरो
3: तो नहीं है,
1: वो एक इंसान है, मतलब वैसा इंसान समाज में होता है, ऐसा नहीं कि वो हीरो बन गया भाई.
3: बिकॉज कोई भी दीदी परफेक्ट नहीं होता, हर एक किसी इंसान में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, तो उस इंसान की गलतियों को आप हीरो बनाकर पोर्ट्रे करोगे, देन इट वुड बी रॉन्ग.
0: चलिए ठीक है, मुझे लगता है हमारा डिस्कशन तो बहुत आगे तक और बहुत गहराई तक चला गया. तो डेफिनेटली कभी और इस बारे में बात करेंगे. फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू.
3: थैंक

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 5 बीज बीज बीज पृष्ठ 42। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थीं। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आईं तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। चर्चा करो, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना कितना समय लगता है? क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों? पृष्ठ 43। करके देखो। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियां लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेटकर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो, तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। तालिका बनाओ, जैसे क्या बीजों को हवा मिल रही है? कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हाँ, कटोरी 3 हाँ। इसी तरह लिखो, क्या बीजों को पानी मिल रहा है? बीजों में क्या बदलाव आया? क्या बीजों में अंकुरण हुआ? बताओ और लिखो, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? पृष्ठ 44। साबुत मसूर का दाना कहता है, साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों? चित्र बनाओ, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। लिखो बीज का नाम, किस दिन बोया उसकी तारीख लिखो। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो, जैसे तारीख, पौधे की लंबाई कितने सेंटीमीटर, कितने पत्ते दिखे और कोई बदलाव आया। पौधे को धागे से नाप कर फिर स्केल से भी नाप लो। पृष्ठ 45। पता करो बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में क्या अंतर था? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले? क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? चर्चा करो किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे। किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे। कौन सा बीज उगा ही नहीं, क्यों नहीं उगा होगा। अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा। दिल की बात बताओ, बीज के अंदर क्या होता है? छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? पृष्ठ 46। सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र बनाओ। पता करो क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकौड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करे, हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो, जैसे बीजों के रंग, उनके आकार कि वो गोल हैं या चपटा, उनकी ऊपरी सतह कि वो खुरदरी हैं या मुलायम। पृष्ठ 47। एक तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरें। तालिका इस प्रकार हो, बीज का नाम जैसे राजमा, उसका रंग जैसे राजमा का रंग भूरा होता है, फिर उस बीज का चित्र बनाओ, उसके बाद बीज की ऊपरी सतह लिखो, जैसे राजमा की ऊपरी सतह है मुलायम। सोचो क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी हैं? इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? समूह बनाओ और लिखो। क, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ख जो सब्जी के बीज हैं। ग जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं। घ जो हल्के हैं, फूंक मारकर पता कर सकते हो। जो चपटे हैं। और समूह भी बनाओ। कितने समूह बना पाए? क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो। घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पृष्ठ 48। यहाँ कपास का एक चित्र दिया गया है। ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं? क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। कुछ बीज हवा में नहीं उड़ पाते। यह बीज जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। है ना मुफ्त में सैर? इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ घर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। उनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। पृष्ठ 49। अंदाजा लगाओ कि बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज सुनी है? सोचो अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? एक सूची बनाओ। बीज किस किस

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं। 24 जुलाई की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और आज विशेष दिन है। मनोज कुमार, पन्नालाल घोष, केशु भाई पटेल, अजीम प्रेम जी, पंकज अडवाणी, नाजिश प्रताप गढ़ी, कांतिलाल हस्तिमल संचेती, सत्यपाल मालिक, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही उत्तम कुमार, तरुण राम फुकन, यशपाल, आमला शंकर, उड़पी रामचंद्र राव, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में इन सभी के बारे में कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करूंगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कुछ अच्छे विचार से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। रिश्ते जो है, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। और शाम के 4 बज चुके हैं, 4 से 5 के बीच में आप हमारे साथ रहते हो सफ़र कार्यक्रम में। मैं चाहूँगा 4 यानी चाय, चाय चाय के साथ में आप कार्यक्रम को सुनिए। चाय के साथ आप अगर कुछ नमकीन लेना चाहें तो बिल्कुल लीजिए। और गाने का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा करके सुनिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन विशेष में कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करूंगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, मन सफर इस कार्यक्रम को, और मैं आज आपको मनोज कुमार की बायोग्राफी तो सुनाऊंगा ही, साथ ही साथ कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से रूबरू कराना चाहूँगा। वो भी एक ऐसे समाज सेवी लोगों से जिनकी कहानी सुनकर आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पन्नालाल घोष के बारे में। ये भारत के बहुत ही पॉपुलर बांसुरी वादक थे, पंडित पन्नालाल घोष। बांसुरी के मसीहा कहा जाता है इन्हें। नई बांसुरी के जन्मदाता और भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत का युग पुरुष, जिसने लोकवाद्य बांसुरी को शास्त्रीयता के रंग में डालकर शास्त्रीय वाद्य यंत्र बना दिया।

0: नमस्कार, मैं राणा यशवंत आज आपको मशहूर बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष की कहानी सुनाता हूँ। चूंकि पन्ना दा की कहानी के अहम किरदार जाने माने संगीतकार अनिल विश्वास रहे हैं, इसलिए पन्ना दा की कहानी सुनाने से पहले अनिल विश्वास का किस्सा। अनिल विश्वास जब छोटे थे तो उनकी माँ तीर्थ यात्रा पर गईं। तब सफर इतनी आसानी से पूरे नहीं होते थे, यात्राओं में समय लगता था। माँ जब लंबी यात्रा से लौटी तो अनिल थोड़े बड़े हो गए थे। माँ ने देखा कि बेटे के कमरे में बांसुरी रखी हुई है। वैसे तो माँ को बांसुरी से कोई परहेज नहीं था, लेकिन न जाने क्यों बेटे का बांसुरी बजाना माँ को पसंद नहीं आया। माँ ने बांसुरी उठाई और फेंक दिया। अनिल छोटे थे इसलिए माँ के इस बर्ताव का उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन अपने दिल का दर्द उन्होंने पन्ना लाल घोष को सुनाया। पन्ना लाल घोष हमारी आज की कहानी के किरदार। पन्ना दा जाने माने सितार वादक अक्षय कुमार घोष के बेटे थे। जब उन्होंने सुना कि अनिल की माँ ने बांसुरी फेंक दी है तो कहा, एक काम करो, तुम अपनी बांसुरी अब मुझे दे दो। इसके बाद से पन्ना लाल घोष ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और सितार बजाना छोड़ दिया। यह पन्ना लाल घोष की लगन, संकल्प और काबिलियत का ही नतीजा है कि बांसुरी को इतना बड़ा मंच संगीत की दुनिया में मिला, या यूं कहिए कि बांसुरी को मंच पर लाने का श्रेय पन्ना लाल घोष को गया। पंडित पन्ना लाल घोष का जन्म 24 जुलाई 1911 को बंगाल में हुआ था। ये वो वक्त था जब आज़ादी की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही थी। पंडित जी बाद में खुद भी इस लड़ाई का हिस्सा रहे। पन्ना लाल घोष और अनिल विश्वास में गजब की दोस्ती थी। अनिल दा कहते थे कि दोनों दो शरीर जरूर हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। इस कमाल की दोस्ती का कारण एक यह भी था कि जब पन्ना लाल घोष महज 13 साल के थे तो उनका विवाह अनिल विश्वास की बहन पारुल घोष के साथ हुआ। पारुल खुद भी एक बेहतरीन गायिका थी। पंडित पन्ना लाल घोष एक बार बांसुरी के हुए तो बस बांसुरी के ही होकर रह गए। बाद में वो मेहर घराने के संस्थापक और महान शास्त्रीय कलाकार बाबा अलाउद्दीन खान के शिष्य भी रहे, जहां उन्होंने बांसुरी वादन की तमाम बारीकियां सीखी। कहा यह जाता है कि शहनाई के सम्राट और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने शहनाई को जो ऊंचाई दिलवाई, वही बुलंदी पंडित पन्ना लाल घोष ने बांसुरी को दिलाई। ये पंडित पन्ना लाल घोष थे जिन्होंने बांसुरी वादन में गायकी अंग की शुरुआत की। इसके बाद से बांसुरी वादन में शास्त्रीय रागों को बजाना संभव हो गया। 1934 में वो कलकत्ते के न्यू थिएटर्स में काम करने लगे। इसी दौर में उनकी मुलाकात महान संगीतकार आरसी बोराल से हुई, जो उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि एक बार बोराल साहब ने अनिल विश्वास को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था। अनिल विश्वास और पन्ना लाल घोष साथ साथ गए। उससे पहले दोनों ने प्रोफेशनल स्टूडियो देखा नहीं था। उस रोज स्टूडियो के अंदर अनिल विश्वास को पसीना आ रहा था और स्टूडियो के बाहर पन्ना लाल घोष को। रिकॉर्डिंग के बाद जब अनिल विश्वास स्टूडियो से बाहर निकले तो उन्होंने पन्ना लाल घोष से पूछा कि तुमको पसीना क्यों आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की फिक्र थी कि तुम अंदर क्या गाओगे। वैसे कुछ साल बाद जब पन्ना लाल घोष मुंबई गए तो अनिल विश्वास जाने माने संगीतकार के तौर पर सिनेमा की दुनिया में स्थापित हो चुके थे। फिर तो अनिल विश्वास की फिल्मों में जहाँ कहीं भी बांसुरी का इस्तेमाल हुआ, उसे बजाने वाले उनके जिगड़ी यार पन्ना लाल घोष ही रहे। 1952 में चेतन आनंद की फिल्म आंधियां का जिक्र जरूरी है। इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले दिग्गज कलाकारों में उस्ताद अली अकबर खान, पंडित रविशंकर के साथ पंडित पन्ना लाल घोष भी शामिल थे। बांसुरी में शास्त्रीयता के लिहाज से पंडित पन्ना लाल घोष को ही इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने एक और छेद कर उसे 7 छेद वाली बांसुरी बनाया। बांसुरी का जो प्रचलित स्वरूप आज है वो वही है। पंडित पन्ना लाल घोष मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय 3 बांसुरियों को एक साथ रखते थे। अति मंद्र सप्तक यानी नीचे के सुरों के लिए वो मोटी बांसुरी का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने बांसुरी के साथ और भी कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें धातु, लकड़ी और बांस की बनी बांसुरी के प्रयोग भी शामिल हैं। ये पंडित पन्नालाल घोष की महानता ही थी कि तमाम बड़े कलाकार उनको बहुत सम्मान दिया करते थे। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जैसी शख्सियत कहती हैं कि उनके साथ रिकॉर्डिंग का आनंद ही कुछ और हुआ करता था। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की बदकिस्मती है कि पन्नालाल घोष जैसा बड़ा कलाकार कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गया। 1960 में दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था।
1: ये थी कहानी पन्नालाल घोष की। आशा करूंगा उनकी कहानी सुनकर आपको मोटिवेशन मिला होगा। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो मुस्कुराओ।

0: थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और एक और ख़ास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। एक ऐसे समाज सेवी के बारे में बात करते हैं जिनका नाम आप भी शायद याद रखते हैं, अजीम हाशिम जी प्रेम जी, शॉर्ट में अजीम जी प्रेम जी कहा जाता है। बेंगलोर स्थित विप्रो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का विकास और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक और अब तक के सबसे समृद्ध भारतीय माने जाने वाले अजीम जी प्रेम जी की 20वीं सदी के अंत में अनुमानित निजी संपत्ति जो है $35 बिलियन थी। प्रेम जी ने घी व तेल बनाने वाली कंपनी को भारत की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में एक के रूप में तब्दील किया था। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद प्रेम जी 1966 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपना पारिवारिक व्यवसाय वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड संभालने के लिए भारत लौटे। उन्होंने उस समय प्रचलित व्यापारिक नियमों को अनदेखा करते हुए औद्योगिक उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाले नौकरशाहों की खुशामद करने के बजाय उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर ध्यान दिया। सामान्य उत्पादों को भी उन्होंने आकर्षक पैकेजिंग के जरिए बेहतर बनाया और विप्रो के ब्रांड नाम के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। अपने उत्पाद का विवरण बिचौलियों से करने के बजाय प्रेम जी ने सीधे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वितरण करके अपने लाभांश को बढ़ाया और देश के कई पारिवारिक व्यापार प्रतिष्ठानों के विपरीत उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन तथा इंजीनियरिंग स्कूल के स्थानकों को नौकरी पर रखा। बाद में उन्होंने नहाने के साबुन, बिजली के उपकरण, शिशु उत्पाद तथा वित्त के क्षेत्रों में भी कदम रखा और इस तरह से विप्रो की स्थापना हुई और भारत सरकार द्वारा अमेरिकी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM को भारत में अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए अनुमति न दिए जाने पर दूरदर्शी प्रेम जी ने 1979 में कंप्यूटर के क्षेत्र में पहला कदम रखा और जल्द ही विप्रो ने स्वयं को सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी में स्थापित किया और बाद में प्रेम जी सॉफ्टवेयर विकास की ओर मुड़े और इस उद्यम के वित्तीय वर्ष 1998 से 1999 में विप्रो को $41.99 करोड़ की वार्षिक बिक्री में 34% का योगदान रहा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं ले चलता हूं। अभी अभी हमने सुना प्रेम जी के बारे में, और प्रेम जी की अगर बात कहें तो एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी संस्थान जो है खास करके बहुत सारी सेवा संस्थानों के लिए एजुकेशन विंग के लिए काम करती हैं। और एजुकेशन विंग की अगर बात करें तो बहुत सारे छात्रों को, जैसे हमारे यहाँ दूसरा दशक करके एक परियोजना चलती है, बच्चों को जो ड्रॉप आउट बच्चे रहती हैं और वो स्कूल जाते जाते फिर स्कूल छोड़ देते हैं किसी कारणवश बच्चे या बच्चियाँ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो वापस स्कूल में नहीं आते। तो ऐसे बच्चों को ढूंढती है ये संस्था और इनके नाम लिस्ट कर देती है, फिर उनके माता पिता को इसके बारे में बताती है कि बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। तो वो जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनका नाम लिस्ट करने के बाद फिर उनके पास जो है वो चले जाते हैं और उनके माता पिता को कन्विंस करते हैं। कन्विंस करने के बाद उनको कहते हैं कि भाई आप जो है विशेष रूप से इन बच्चों को 4 महीने हमारे लिए दीजिए, हम इनको 4 महीने का आवासीय जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जहां रुकेंगे और इनको पूरी जानकारी जो है समाज का और पढ़ाई का पूरी जानकारी इनको देंगे और उसके लिए आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो है क्या कहते हैं आपको अपने बच्चे को देना है और 4 महीने तक खिलाना पिलाना रखना और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। 4 महीने के बाद बच्चा जो रेडी हो जाता है उसे फिर से वापस स्कूल में अपडेट किया जाता है और 10वीं 12वीं तक का जो टाइम चलता है उस तक वो जो है बच्चे को प्रॉपरली उनके फॉलोअप लेते हैं और उसके बाद बच्चा वापस जो है अपनी पढ़ाई करके फिर नौकरी करना चाहे उसके लिए भी हेल्प करते हैं, गाइडलाइन करते हैं, या फिर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसको और आगे के लिए भी भेजते हैं। तो ऐसे संस्थानों को भी अजिम जी प्रेम जी जो हैं उनके यहाँ से फंड मिलता है और उन बच्चों के लिए ये काम किया जाता है। तो चलिए आशा करूँगा कि आपको विशेष प्रेम जी संस्थान के माध्यम से, अजिम जी प्रेम जी फाउंडेशन के माध्यम से ये बातें होती हैं वो मैंने बताया जो प्रैक्टिकल हमने देखा है। आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, पंकज अडवाणी जी। हाँ, ये विशेष रूप से खिलाड़ी हैं, भारत का विश्व विजेता खिलाड़ी हैं, अब तक कुल 8 विश्व खिताब जीत चुके हैं ये। पंकज ने पहला पेशेवर बिलियर्ड्स विश्व कप 2009 में जीता था और इससे पहले वो एमेचोर विश्व बिलियर्ड्स और स्कूटर चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। पंकज ने 2006 में दोहे में हुए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। तो आइए इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। पंकज अडवाणी जो है विशेष रूप से आज ही के दिन 1985 को पुणे में जन्मे। पंकज ने कुवैत में अपना माता पिता अर्जुन एवं काजल और बड़े भाई श्री के साथ अपने जीवन के पहले 5 साल बिताए। इनका परिवार इराक पर आक्रमण करने के बाद बेंगलोर आ गया था। इराक पर आक्रमण होने के बाद पंकज और श्री ने फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर में अध्ययन किया और बालक पंकज ने 10 साल की उम्र से अपने भाई श्री शिष्टाचार के साथ शुक्र पार्लर गया और घर के करीब हर दिन स्कूल के बाद श्री के साथ वो खेलने जाता और इस तरह से खेलते खेलते वो उसमें मास्टरी हासिल की और फिर बहुत सारे सम्मान भी उनको मिले। खेल की उपलब्धियां लंबी हैं, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार ऐसे विशेष सम्मान इनको प्राप्त है। इसके साथ में शीर्ष खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने सिर्फ अपने एकदम श्रेष्ठ खिलाड़ी साबित करते हुए इंग्लैंड के मौजूदा चैंपियन और स्थानीय प्रबल दावेदार माइकल रासेल को हरा कर 7वां वर्ल्ड चैम्पियनशिप खिताब अपने नाम किया था। पंकज अडवाणी ने अपना दबदबा बनाते हुए 1895 से लेकर 1916 से जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल में हम वतन दुरसितवाला पर 881 से 281 की शानदार जीत के बाद अडवाणी ने 5 घंटे तक चलते फाइनल मुकाम लेके पहले घंटे में ही 298 का स्कोर बना लिया था और पंकज अडवाणी ने 119 के अंतिम ब्रेक में 11 बार चैंपियन का पारिजात पर समय फॉर्मेट में अपना 4वां विश्व खिताब हासिल किया। इस तरह से पंकज अडवाणी ने 2009 में विश्व पेशेवर चैंपियनशिप के फाइनल में रासेल को 2030 से 12:53 से हराया था और अब फिर उन्हें हराकर इतिहास दोहराया है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें इनकी सारी जो डी जीत की जो जश्न है। नवभारत टाइम्स, बीबीसी, हिंदी, आरटीवी, एनडीटीवी खबरों में भी वो सुर्खियों में रहे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, मैं हूँ हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए अब आखिरी में जाते जाते आपको मनोज कुमार की कहानी से अवगत कराऊंगा और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। और मनोज कुमार की कहानी से आप हमेशा वाकिफ रहे हैं। अब डायलॉग, गाने और म्यूज़िक सारी चीज़ें आपके लिए। फिल्म जगत के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं मनोज कुमार। अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को देशभक्ति की भावना का गहराई से एहसास कराया। मनोज कुमार शहीद आज़म भगत सिंह से बेहद प्रभावित है और इसी भावना ने उन्हें शहीद जैसी कलजाई फिल्म में देश के इस अमर सपूत के किरदार को जीवंत करने की प्रेरणा दी थी। और 1992 में मनोज कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे कहानी सुनते हैं मनोज कुमार की आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नाम इनका हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, पर बने ये भारत कुमार और मनोज कुमार के नाम से बने सुपरस्टार।
3: मुझे ये पता होता कि इंसान के भेष में एक वैश्य है, एक कातिल है, तो शायद मेरे होते हुए तुम 5 जिंदगी सुनके पाते।
2: जन्म हुआ 24 जुलाई सन 1937 में। इलाका अबोताबाद। भारत के विभाजन के बाद अबोताबाद पाकिस्तान में है। मनोज कुमार साहब को पद्मश्री से नवाजा गया है और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्हें दिया गया।
4: कल ही दिया था मैंने दिल तुम्हें, बोलो जी किया है कहाँ तुम।
2: लेकिन इनकी जिंदगी की शुरुआत बड़ी अजीबोगरीब रही। ये मात्र 10 बरस के थे तभी भारत का विभाजन हुआ और इन्हें अपने माता पिता के साथ अबोताबाद छोड़कर दिल्ली की तरफ जाना पड़ा। ये दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के किंग्सवे कैंप के विजयनगर रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने लगे। दिल्ली से ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। कॉलेज था हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और फिर इन्होंने सोच लिया कि अब ये फिल्मों में आएंगे।
5: घर छोड़े हुए 7 साल होने को आए।
6: क्यों?
5: मेरी वजह से एक देवी का जीवन बर्बाद हो गया और ये पछतावा मुझे कहीं भी चैन से नहीं बैठने देता।
2: इन्हें दरअसल लिखने का बहुत शौक था तो बहुत सारी फिल्मों के लिए इन्होंने घोस्ट राइटिंग भी की। इनके जान पहचान के साथी इन्हें बम्बई ले आए थे और बस थोड़ा बहुत फिल्मों का काम इनका शुरू हो गया।
7: तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया।
2: इतने में इन्हें हीरो बनने का ऑफर मिला और इन्होंने कहा कि बनूंगा तो जरूर, लेकिन मुझे पहले अपने मंगेतर से बात करनी होगी। ये गए, अपने मंगेतर को बताया कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ, ऑफर मिला है, क्या बन जाऊँ? और इनके मंगेतर ने कहा ठीक है, आप बन जाइए। और उसे मंगेतर यानी कि शशि जी से ही इन्होंने आगे जाकर शादी भी की।
8: पिताजी आज जरूर कहेंगे, बेटा मोहन, जितनी दिलचस्पी तुम नाच गाने में ले रहे हो उतनी ही अपनी पढ़ाई में लो। तो
9: अच्छा, तो पिताजी को ये भी पता है कि आपकी खोपड़ी खाली है।
2: ये किस्सा भी दिलचस्प है कि आखिर इनका नाम मनोज कुमार क्यों है, हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी क्यों नहीं। बात दरअसल यूं रही कि जब ये बहुत छोटे थे तभी अपने मामू जान के साथ एक फिल्म देखने गए थे, शबनम, जिसके हीरो दिलीप कुमार का नाम फिल्म में मनोज था। और तब ही हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी ने यह फैसला कर लिया था कि अगर फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो ये अपना नाम मनोज रखेंगे।

0: 1957 की फिल्म फैशन में ये नजर आए, कांच की गुड़िया 1960, पिया मेनन की आस और फिर रेशमी रुमाल। विजय भट्ट साहब की फिल्म हरियाली और रास्ता ने इनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते पूरी तरह से खोल दिए। इनकी हीरोइन थी माला सिन्हा। फिर राज खोसला की फिल्म वो कौन थी में नजर आए मनोज कुमार।
1: आखिर मुझे नफरत करने की इतनी क्या जरूरत है?
2: जरूरत यूं तो दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं, जमीन पर आसमान की जरूरत नहीं, हमारी तुम्हारी शादी की क्या जरूरत थी?
1: अगर बस चलता तो अपनी किस्मत से पूछती।
2: अपनी किस्मत से क्या पूछती हो? पूछना है तो उसकी किस्मत से पूछो जो खुशियों का सौदा करने निकला था और गम खरीद कर आ गया।
0: और एक बार फिर विजय भट्ट साहब की फिल्म हिमालय की गोद में राज खोसला के साथ दो बदन, जिसमें इनकी हीरोइन आशा पारेख थी, वो भी बड़ी हिट साबित हुई। सन 1965 में इन्होंने फिल्म बनाई शहीद, जिसमें शहीद भगत सिंह का किरदार इन्होंने निभाया। ये फिल्म सबको बहुत पसंद आई। अब फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान नारे पर एक फिल्म बनाने को इनसे कहा और तब फिल्म बनकर आई उपकार। इस फिल्म का संगीत, इस फिल्म की एक्टिंग, सभी कुछ बेजोड़ था। उसके बाद आई फिल्म पूरब और पश्चिम और फिर आई बेईमान। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया।
3: मौत को खबर है कि आशा तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक दीवार है जिसका नाम आनंद है, समझी?
0: मनोज कुमार साहब दरअसल शुरुआत में एज अ घोस्ट राइटर काम करते थे। बिना क्रेडिट के ही इनकी राइटिंग का इस्तेमाल होता था, जिससे काफी पैसे इकट्ठे हो जाते और इनके संघर्ष के दिनों में वो कलाकार जो खुद संघर्ष कर रहे थे उनकी भी रोजी रोटी चल जाती, जिनमें से एक नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र और मनोज कुमार बहुत गहरे और पक्के दोस्त बने।
4: उसी के कहने पर एक जगह गाड़ी रोक दी, देखता हूँ तो कब्रिस्तान। वो गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ चल दी। कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप खुला और फिर बंद हो गया। मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गई।
0: मनोज कुमार ने नए नए एक्टर्स को भी बहुत से ब्रेक दिए, जिनमें अमिताभ बच्चन साहब का नाम भी शामिल है। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक किरदार इन्हें भी दिया गया था। देशभक्ति फिल्मों ने मनोज कुमार को भारत कुमार का टाइटल दिलवा दिया, फिर चाहे वो उपकार रही कि पूरब और पश्चिम या फिर क्रांति।
3: संध्या, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता हूँ, न जाने मेरे कदम कौन रोक लेता है। तुम्हारी खूबसूरती को छूना चाहता हूँ, न जाने मेरे हाथ क्यों रुक जाते हैं। आंखें उठाता हूँ तो लगता है जैसे तुम्हारे और मेरे बीच पर्दा है।
0: मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी भी फिल्मों में आए, लेकिन बात बनी नहीं। मनोज कुमार के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ शशि गोस्वामी से। इस शादी से इन्हें दो बेटे हुए, विशाल और कुणाल। इनके भाई राजीव गोस्वामी भी फिल्मों में आए थे, पर खास बात बनी नहीं। मनोज कुमार दरअसल अपने घर से निकले थे बंबई के लिए, तो सोचा था कि 3 लाख रुपए कमाएंगे, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए और एक माँ बाप के लिए। लेकिन किस्मत ने इन्हें 3 लाख से कहीं ज्यादा रुपए दिए।
5: कहने को जो जी मैं कहिए, मगर इतना जरूर कह देता हूँ कि यहाँ कोई पल कोई घड़ी खतरे से खाली नहीं। अगर यहाँ कोई आपकी हिफाजत कर सकता है तो बंदा कर सकता है, यानी कि मैं कर सकता हूँ।
0: मनोज कुमार उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने फिल्में डायरेक्ट भी की, इनमें एक्टिंग भी की और लिखी भी। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में मनोज कुमार साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया तो

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।
1: नमस्कार, आई एम शिवानी झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन। You're watching this session live on BM eVidya channels number 6 to 12 and also on our YouTube handle NCERT Official. Well, let me apprise you all for this half an hour. We have our special program on Sahyog. And yes, as you all know, these Sahyog and Paricharcha sessions are brought to you by Manodarpan and is a great initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for providing psychosocial support and mental well-being to all the teachers, parents and of course students across the country. So yes, aaj jo topic hum aap sabhi ke liye lekar aaye hain bahut zyada interesting hai and aaj ke time ke liye bahut zyada important bhi hai. It is also flashing on your screens. It is from emotional awareness to active growth. Well, emotional awareness ki yahan par hum baat karne wale hain plus emotional awareness hamare ग्रोथ के साथ कैसे रिलेटेबल है, इमोशनल अवेयरनेस पर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं एंड अगर हम बात करते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स की जो अभी एडोलसेंस एज में भी होंगे, स्कूल गोइंग होंगे, उनके लिए ये इमोशनल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इमोशनली चीज़ों को समझना इतना ज़्यादा रिलेवेंट क्यों है। सो आई थिंक बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड सजेशंस हैं जो हमारे आज के एक्सपर्ट्स आप सभी तक पहुँचाने वाले हैं एंड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स हमारे आज के इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम देने वाले हैं। सो यस, चलिए आप सभी का मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि आज हमारे साथ कौन कौन से एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। सो फर्स्टली वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर प्रियम शर्मा एंड मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट DEPFE NCERT न्यू दिल्ली। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
1: ओके एंड यस डियर व्यूअर्स, अलॉन्ग विथ आर एक्सपर्ट हमें इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है थ्रू ऑनलाइन मीडियम हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर ने भी, जिनका नाम है मिस हेमा मुत्रेजा। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, थैंक यू।
1: ओके एंड यस, टू मेक दिस सेशन मोर इंक्लूसिव, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इजी, हमें हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ने भी ज्वाइन किया हुआ है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मिस नीतू को। सो नीतू, आई ऑल्सो वेलकम यू टू दिस सेशन एंड आई नो कि आपके मन में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर फीडबैक कुछ भी हो सकते हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं। सो हमारा फ़ोन नंबर है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। वी हैव टू फोन नंबर्स एंड फर्स्टली इट इज 8800-440-559 एंड सेकेंड फ़ोन नंबर हमारा मनोदर्पण काउंसलर्स का है जिनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ये है 8448440632 एंड ईदर यू कैन सेंड अस अ मेल ऑन आवर मेल आईडी व्हिच इज sahyog.ncert@cit.nic.in एंड एज आई अर्लियर मेंशन इस वक्त आप हमें यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे हैं। सो लाइव चैट बॉक्स का ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा ड्यूरिंग द इंटायर सेशन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज फ्रॉम इमोशनल अवेयरनेस टू एक्टिव ग्रोथ एंड फर्स्टली हम क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं एंड डॉक्टर प्रियम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं सबसे पहले आपसे ही पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी और ये है हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इमोशनल अवेयरनेस, क्योंकि हमने ये भी जोड़ा है कि एक्टिव ग्रोथ से हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो फर्स्टली ये बताएं आप।
2: बिल्कुल, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये टॉपिक आज के समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: एग्जैक्टली,
2: तो उसी से ही मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी। देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को कोई डिसकंफर्ट होता है तो उसकी इमोशंस किस तरीके से हमें पता चल पाते हैं, इट्स सिंपल कि बच्चा रोने लगता है
1: जी।
2: उसके इस बिहेवियर से हम समझते हैं कि बच्चा डिसकंफर्ट है और उस तरीके का बच्चे को हम केयर प्रोवाइड कराते हैं, राइट। अब यही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है उसके साथ साथ उसके बड़े उसके ग्रोथ होने के साथ साथ उसकी लर्निंग, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके जो कल्चरल अपब्रिंगिंगनेस हो रहा है, उस सभी का इम्पैक्ट दिखता है। वो कैसे दिखता है कि उसके जो यही जो इमोशंस है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
1: एंड कई सारे इमोशंस को जो है वो जब बड़े होते हैं एडोलेसेंस एज में आते हैं तब समझने भी लग जाते हैं जो शायद बचपन में वो नहीं समझते इमोशंस को.
2: बिल्कुल बिल्कुल right. तो मैं उसी पर ही आ रही थी. तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे को जब हम इमोशंस बताते हैं या बच्चा सीख रहा है कि अगर उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है वही उसकी जो क्राइंग है अब वो किस में चेंज हो जा रही है. वो हो सकता है गुस्सा दिखा सकता है, वो उदास हो सकता है, या वो उसके बताने का तरीका अलग हो सकता है, वो चुप हो सकता है. तो इस तरीके से आप चीजें देखोगे कि बच्चा अपने को रिस्पॉन्स देने के लिए इमोशंस का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है. अब आप ये देखें कि इमोशंस एक इतना बड़ा पावरफुल एक्सप्रेशन है तो उसको समझना भी उतना ही जरूरी है. अब जब हम बात करते हैं इमोशनल अवेयरनेस की तो ये हमें ध्यान देने की बात है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या इमोशंस है, क्या आ रहे हैं, क्या वजह है, उसकी टैपिंग कैसे कर रहा है. और सिर्फ ये समझना जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर के क्या इमोशंस है पर सामने वाला भी क्या चीजों को समझ रहा है, क्या किस तरीके की वो चीजों को रेगुलेट कर रहा है या बता रहा है
1: right.
2: सामने वाले को भी इमोशंस क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो ये दोनों तरीके से चलता है कि एक खुद के को भी समझना, सामने वाले को भी समझना. इन सारी चीजों को मिलाकर हम इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं.
1: एग्जैक्टली
2: exactly. उसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं जैसे कि आप ये ले लीजिए कि जैसे मैं फिर से दोहराऊंगी जो आप बात कर रहे थे कि आज के टाइम में जो है इमोशंस को समझना वो बहुत जरूरी होता है. आप देखिए किस तरीके से जिस तरीके से हमारे एनईपी आया है, हमारा नेशनल एजुकेशन जो आया है पॉलिसी आई है वो भी आपको यही पे फोकस करता है कि इमोशनल सोशल इमोशनल लर्निंग की हम बात करेंगे कि बच्चे के क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक है बच्चे के ग्रोथ से. जैसे मैंने आपको बताया एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि हम उसको ग्रोथ से रिलेट कर पाएंगे कि कैसे धीरे धीरे बड़े होते होते उसकी सोशल इमोशनल लर्निंग होती है और वो फिर सीख पाता है क्योंकि एक्सप्रेस करना, गुस्सा आया, खुशी हुई, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना है ये हम सीखते हैं.
1: बिल्कुल.
2: तो ये सारी चीजें होती है जब हम बात करते हैं
1: अवेयरनेस की. ओके, सो आई थिंक मैम बहुत अच्छे से आपने इन ब्रीफ भी हमारे सभी दर्शकों को बता दिया कि बेसिकली इमोशनल अवेयरनेस की हम आज के टाइम में बात क्यों कर रहे हैं एंड ये क्यों इतना रिलेवेंट है. और अगर हम जब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, बिकॉज बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिसके थ्रू वो गो थ्रू करते हैं लाइफ में, लेकिन उनको समझना पड़ता है एक्सप्रेस हम कैसे करें, कैसे उसको फिल्टर आउट करें. सो आई थिंक आगे के हमारे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको इनके आंसर्स भी ईजिली मिल जाएंगे. सो नाउ मूविंग अप टू नेक्स्ट, हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर मिस हेवा उत्रेजा मैम आपसे मैं जानना चाहूंगी. एंड इट इज हमने अभी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में बात की है डॉक्टर

0: उस गुस्से को, उस बेचैनी को या उस उदासी को 60 to 90 seconds तक कामली आराम से ब्रीद करके निकाल देते हैं, तो आपकी जो थॉट है उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी और यहीं पे हमारी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ भी होती है। अगर हम अपने इमोशन से और सामने वाले के इमोशंस और भावनाओं से को समझते हैं तो हमारा तनाव कम होता है। अगर कहीं पे हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत एग्रेशन आ गया है या बहुत बेचैनी हो गई है, और इन फीलिंग्स को बहुत बच्चे कहते हैं, मैम आई जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग, और ऐसी ही बहुत सारे मौके होते हैं जब आप इस एग्रेशन को, इस बेचैनी को या इस उदासी को डायरेक्शन ठीक नहीं दे पाते हैं और ग्रुप डायनेमिक्स या ग्रुप प्रेशर में आके आप या तो रिस्की बिहेवियर या सब्सटेंस एडिक्शन या सोशल मीडिया डिपेंडेंस में की तरफ झुकाव आपका बढ़ जाता है। तो अगर हम इमोशनली अवेयर होंगे तो हमारे पास पावर टू चूज होगी, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे।
1: एग्जैक्टली हेमा मैम, वेरी ट्रूली सेड बाय यू. एंड आई थिंक अगर हमें ये चीज़ हमने सीख ली कि हम अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, सो आई थिंक कि हमारी लाइफ की सिचुएशन भी, जो स्टूडेंट्स भी हैं इवन, बहुत ईजीली उसका डिसीजन भी ले सकते हैं. सो वेरी वंडरफुल मैसेज बाय यू. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को लेकर हम समझेंगे. डॉक्टर प्रियम जो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, उनका क्या कुछ रोल होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कूल में और टीचरों के साथ भी बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं. तो टीचर्स किस तरीके से और स्कूल किस तरीके से बच्चों के अंदर इमोशनल अवेयरनेस की ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकते हैं?
2: बिल्कुल. देखिए, ये बात तो हम मान के चलते हैं
1: जी
2: कि बच्चे मैक्सिमम टाइम जो है अब अपना स्कूल में स्पेंड करते हैं.
1: जी
2: स्कूल है, एक एटमॉस्फियर प्रोवाइड करा रहा है, टीचर्स हैं जो एज एन गाइड उनको वहाँ सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, जो उनका टेक केयर कर रही
1: राइट
2: हैं. तो उनका समझना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या है कि एकदम से आके अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं.
1: बिल्कुल
2: एक तो बच्चों की उम्र छोटी है, चीज़ों को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी वो सीख ही रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो कह रहे हैं वो डायरेक्टली, उनके कई तरीके होते हैं कहने की, सिर्फ
1: जी
2: भाषा ही नहीं है. भाषा में अगर आप देखें तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ें आती है. वो शख्स वो कह रहा है कि नहीं, मैम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि बच्चा परेशान है.
1: जी
2: तो ये क्या है, ये कुछ सिग्नल्स हैं जो बच्चा प्रोवाइड करा रहा है कि आप सुनो. बच्चा कह रहा है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की और टीचर्स की बढ़ जाती है कि वो जो उसके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो समझें. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे हम ध्यान देते हैं कि जो एकेडमिक्स हैं, जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा जो बच्चे बोल पा रहे हैं, जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनका नहीं है, वो किस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्कूल और एनवायरनमेंट को एक सेफ जगह बनाना,
1: जी
2: कि जहाँ पे बच्चा सेफ फील करे कि भाई मुझे कोई भी परेशानी हो, ये एक जगह है जहाँ पे मैं खुल के बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है आपको ये सीखना कि बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि भाई आप जो भी अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो आपके और मेरे बीच में है. बच्चा
1: राइट
2: तभी तो आके बोलेगा आपसे. और कई बार यही होता है कि ये पाया गया है कि जो सीनियर्स, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल है, वो बच्चों के कंसर्न को उस सीरियसनेस की तरफ से नहीं सोच पाते हैं. आपको लग रहा है कि अरे बच्चे को कोई बगल वाला जो उसका सीट में जो बैठा है वो परेशान कर रहा है,
1: जी
2: बट दैट कुड लीड टू अ बुलिंग. बच्चा किस तरीके से उस बुलिंग को ले रहा है, क्या वो एक्सेप्ट करने के सिचुएशन में है कि नहीं है. और जिस तरीके से बच्चे फिर बिहेवियर शो करते हैं, एग्रेशन शो करेंगे,
1: इरिटेट हो जाते हैं.
2: इरिटेट हो जाएंगे और बिहेवियरल इश्यूज स्कूल में आएगा. इवन किस दिस तरीके से अगर आप देखें कंसर्न्स आ रहे हैं बच्चे और टीचर के बीच में, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे बच्चे खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके. और ये जान सके कि जब वो

0: इमोशन शेयर कर रहे हैं तो उनकी बातों को अपने तक रखा जा रहा है विदाउट बीइंग जज्ड, कि हम आपको
1: राइट
0: जज नहीं कर रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा
1: जी
0: है, हम बस आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, मेजर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ पे स्कूल को लर्न करना पड़ेगा, और यही चीजें हैं जो बच्चों में कॉन्फिडेंस ला सकता है कि नहीं हम अपनी बात को फ्रीली कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हैं।
1: एग्जैक्टली मैम, इसमें आपने बहुत अच्छी बात भी बोल दी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना ट्रस्ट है, अगर वो स्टूडेंट को हो जाए देन उसके बाद वो कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ
0: बिल्कुल
1: विद अ ट्रस्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी टीचर्स, एजुकेटर्स एंड स्कूल हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सभी भी अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं और माइंडफुली उनकी बातों को सुनकर उन्हें चीज़ों को समझा सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ, काउंसलर की भी बात आती है कि काउंसलर्स भी होते हैं, हम बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, काउंसलर्स के पास भी लेकर जाते हैं। सो काउंसलर का क्या कुछ ऐसा रोल होता है कि बच्चे अपने इमोशंस को डिफाइन कर सकें, फिल्टर आउट कर सकें कि कैसे हमें डील करना है और उस बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो इसके लिए हेमा मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि काउंसलर्स की ऐसे क्या कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या कैसे वो समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में।
2: जी शिवानी मैम,
1: जी
2: आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ स्कूल काउंसलर हैज़ टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स जो उनके पास आ रहे हैं कि आप समझिए कि ये सोर्सेज क्या क्या हैं इमोशंस के। से फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी बहुत बड़ा सोर्स है, अगर बच्चा भूखा है या अच्छे से नींद नहीं पूरी हुई है तो वो इरिटेट होगा, दैट इज़ अ सिग्नल। स्कूल में अगर बुलिंग हो रही है या पीयर प्रेशर है या एग्जाम स्ट्रेस है वो सिग्नल दिखेगा। घर में अगर कोई ऐसा होम एनवायरनमेंट में फाइनेंशियल बर्डन है और द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट अ लव्ड वन, हिज ओन इंटरनल मैसेज टू हर सेल्फ और हिम सेल्फ, जहाँ बच्चा मान लीजिए अपने फ्रेंड्स को मैसेज किया और कुछ देर जवाब नहीं आया और इंटरनल मैसेज और इंटरनल थॉट्स उसकी चलनी ये शुरू हो गई, नोबडी लाइक्स मी, आई एम नॉट गुड इनफ, दे हेट मी। और हो सकता है कि पुराने कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में ट्रिगर्स हों जो उसकी भावनाओं में बहुत उतार चढ़ाव ला रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है समझना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सोर्सेज कितने भी हों लेकिन इमोशंस हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन चैनल है। एवरी इमोशन गिव्स अ मैसेज, एवरी इमोशन हैज़ अ पर्पस। से फॉर एग्जाम्पल अगर गुस्सा आया है दैट मीन्स समबडी हैज़ क्रॉस्ड माई बाउंड्रीज, इफ आई एम फियरफुल दैट मीन्स माई बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एन अननोन डेंजर, इफ आई एम सैड टूडे दैट मीन्स आई हैव लॉस्ट समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, कुछ नुकसान हुआ है मेरा। सो दिस इमोशनल वोकैबुलरी हमें हमारे बच्चों की, हमारे पेरेंट्स के साथ मिलके बनानी होगी, क्योंकि एक बच्चा जिस चीज़ को नाम नहीं दे सकता उसको सॉल्व कैसे करेगा। सो देर शुड बी अ नेम फॉर एवरी फीलिंग, वी हैव टू काइंड ऑफ ट्रेन आर किड्स टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कि क्या सिचुएशन है, एक गहरी सांस लीजिए और फिर उस फीलिंग को नेम करिए। जैसे बच्चे अक्सर कहते हैं आई एम वेरी एंग्री टुडे, वी हैव टू टीच आर किड्स आई एम फीलिंग एंग्री टुडे बिकॉज ऑफ ये जो भी हुआ सिचुएशन में। मार्क्स कम आ गए, बच्चे का इंटरनल डायलॉग क्या हुआ, आई एम अ फेलियर, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। वहां वो फीलिंग समझनी, फेलियर नहीं, यू आर नॉट अ फेलियर,
1: राइट,
2: ओके यू डिड अ मिस्टेक कि टाइम पे रहते पढ़ाई नहीं करी है, दैट कैन बी वन रीजन। तो वो इंटरनल जो रेगुलेशन है उसको करना है और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने स्कूल में हर क्लासरूम में एक फीलिंग का व्हील लगा रखा है जिसमें बेसिक सिक्स फीलिंग्स हैं और उनसे जुड़ी हुई सारी फीलिंग्स हैं। सो इन द मॉर्निंग एवरी चाइल्ड टू देयर पार्टनर टेल्स आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, देर कैन बी एन एक्टिविटी विच वी डिड इन आवर स्कूल की स्कूल असेंबली में और काउंसलर जिस भी क्लास में जा रहा है या क्लास टीचर उस वीक का एक इमोशन है उस इमोशन से जुड़ी हुई हम या तो कोई स्टोरी सुनाएंगे या कोई वीडियो चलाएंगे पॉज करके क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे कि इस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करिए कि सिचुएशन क्या थी नाम लीजिए कि उसने कैसी फीलिंग उसको आई और उस फीलिंग से जुड़ा हुआ उसका बिहेवियर क्या था
1: Definitely.
2: अच्छा था बुरा था सो दैट इज द लर्निंग देन वी कैन क्रिएट काम कॉर्नर्स इन ईच क्लासरूम जहां अगर बच्चे का मन उदास है या बहुत गुस्सा है तो वो अपने विचारों को शांत करने के लिए उस कोने में बैठ सकता है वहां हम कुछ पेपर्स रख सकते हैं और कलर्स रख सकते हैं स्क्रिबल करने के लिए एक चीज और जो हमने करी थी अपने स्कूल में कि हमने कार्डबोर्ड से बॉक्सेस बनाए थे और फिर उसके जरिए फिंगर करके ऐसे बॉक्स ब्रीदिंग सिखाई थी
1: okay.
2: तो तरीके बहुत से हो सकते हैं हम अपने बच्चों को टू आइडेंटिफाई द फीलिंग नेम द फीलिंग एंड देन रिएक्शन ना देके वो ब्रीदर वो चॉइस दे दें कि हमें रिस्पॉन्ड करना है
1: राइट मैम एंड इंडीड जो आपने अभी एक्टिविटीज बताई हैं दो तीन सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेंगी अगर स्टूडेंट्स के साथ उनके काउंसलर्स या हमारे जितने भी टीचर्स हो गए स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अगर वो लोग भी ऐसे करवाते हैं सो इससे वो बेसिकली आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे एंड उन्हें ये भी समझ आएगा कि कौन सी सिचुएशन में हमें एक्चुअली में रिएक्ट करना कैसे है सो यस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टिप्स सजेशंस अभी तक मुझे लगता है कि ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स ने दे दिए हैं जो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सो विद इन अ मिनट हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है लिमिटेड सो एक और क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर एक्सपर्ट से लेना चाहेंगे सो प्रियम मैम आपके लिए एक दो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो आप हमारे स्टूडेंट्स को हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो उनको इमोशनल अवेयरनेस को समझने में आइडेंटिफाई करने में उस पर वर्क करने में बेसिकली हेल्प कर सकता है तो क्या कुछ ऐसे रहेंगे
0: बिल्कुल जैसे कि अभी हमारे मैम ने अभी डिस्कस किया
1: जी
0: काउंसलर ने कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं जिसमें सबसे पहले उन्होंने यही स्ट्रैटेजी बताई है नेमिंग
1: राइट
0: पता चले हमें क्योंकि इमोशनल अवेयरनेस का पहला फंडा यही है कि हमें पता चले कि कौन कौन से इमोशंस है और ट्राई टू आइडेंटिफाई कई बार होता है हमें पता ही नहीं चल पाता है कि दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ इमोशन आई एम एक्सपीरियंसिंग क्योंकि कभी हमें ये प्रैक्टिस कराया नहीं गया कभी हमें बताया ही नहीं गया कि इमोशंस पे भी हम बात कर सकते हैं इसलिए बच्चे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको नेमिंग करने के लिए इसलिए एक जैसे एक्टिविटी अभी बताया जा रहा था कि क्लास में आप वैसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं आप ऐसा लेबलिंग कर सकते हैं कि भाई बेसिक ये छः छः ये बेसिक इमोशंस है उस इमोशंस में कैसा आपको लग रहा है या क्या आप इमोशंस को रिकग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं सो दैट बच्चे का इमोशनल वोकैबुलरी वो स्ट्रांग होगा अपनी बात को वो कहने के लिए सक्षम होगा तो इमोशनल वोकैबुलरी को डेवलप कराना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसके बाद अब इमोशंस का है और उसको ये भी प्रैक्टिस कराना है कि जब आप इमोशंस को समझ रहे हैं तो जैसे कि मैंने अपने पहले में बोला कि हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी हम लर्न करते हैं अपने सराउंडिंग से अपने कल्चर से तो यहाँ पे हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है कि रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में क्या फ़र्क है आपके साथ कुछ बुरी चीज़ हुई आपने तुरंत किसी को आपको मन किया कि आपने आपको गुस्सा आ रहा है और आपका मन कर रहा है किसी के साथ झगड़ा कर ले क्या ये सही तरीका है या दो मिनट आप रुके सोचे कि क्या हुआ क्या करना चाहिए और फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्स करें तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं उनके बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए
1: ऑफ कोर्स मैम बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आपने भी बताई हैं सबसे पहले तो जो अच्छा लगा ये कि अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है कुछ भी चीज़ें कुछ भी सिचुएशन में आप अगर रिएक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले कि आप पहले शांति से सोचें खुद को टाइम दें देन उसके लिए ये सोचें कि आप मुझे रिएक्ट कैसे करना है क्योंकि अगर हम उस टाइम पे शांत रहेंगे तो हो सकता है वो सिचुएशन हम और इजिली और अच्छे तरीके से डील कर सकें
0: क्योंकि आप उसको रिफ्रेस करते हो जो अनहेल्पफुल थॉट्स है आप उसको कंट्रोल करना सीखते हो तो इट्स अ बिग एक्सरसाइज टू डू.
1: बिल्कुल. और इमोशंस को आप इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर वर्क कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी बना सकते हैं. सो चलिए, यहाँ पर टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, सो वी हैव टू रैप अप दिस सेशन फॉर नाउ. एंड हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए थे उनका चलिए धन्यवाद कर लेते हैं यहाँ पे. सो फर्स्टली डॉक्टर प्रियम शर्मा मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
0: धन्यवाद.
1: एंड ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जुड़ी हुई थी हमारे साथ मिस हेमा मुथरेजा मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस.
3: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं. कैसे, आइए जानते हैं. पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें. एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें. जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें. सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें. घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं. लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए. मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए.
4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सात तारों भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर तुम जीत गए तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें पूरे 1 साल तक राजमहल की जेल में रहना होगा। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
1: आनंदगढ़ राज्य का राजा भोलेंद्र सिंह बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने दरबार में घोषणा कर दी,
2: आज से कोई किसान गेहूं या चावल नहीं उगाएगा, सब अपने खेतों में सोना उगाएंगे।
1: डर के मारे सभी दरबारी बोले, महाराज की जय। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। गांव का समझदार किसान गोपाल बोला,
3: अगर खेत में सोना उगता तो भगवान अन्न क्यों बनाते।
4: ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने गोपाल को अगले दिन दरबार में बुला लिया और गोपाल से पूछा,
5: क्या तुम हमारे आदेश को गलत कहते हो? महाराज, क्या आपने कभी खेत में हल चलाया है?
3: नहीं।
5: तो खेती का निर्णय किसान से बेहतर कौन समझेगा?
3: तो क्या तुम कहना चाहते हो कि खेत में सोना नहीं उग सकता?
5: अगर खेत में सोना उगता तो सबसे पहले किसान हल नहीं फावड़े लेकर सोना खोद रहे होते।
3: तुम बहुत बोलते हो किसान।
5: महाराज, मैं ज्यादा नहीं बोलता, बस सच बोलता हूं।
3: अगर तुम इतनी ही बुद्धिमान हो तो मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर तुम जीत गए तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें पूरे 1 साल तक राजमहल की जेल में रहना होगा। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
6: राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक साधारण किसान कभी भी राजदरबार की परीक्षा पास नहीं कर सकता। लेकिन गोपाल के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसे अपने ज्ञान और अनुभव पर पूरा भरोसा था। अगले दिन पूरा राजदरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। खबर फैल चुकी थी कि आज महाराज किसान गोपाल की पहली परीक्षा लेने वाले हैं।
7: राजा ने मुस्कुराते हुए गोपाल से पूछा,
8: गोपाल, तैयार हो पहली परीक्षा के लिए?
9: जी महाराज, मैं तैयार हूं।
8: अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो जाओ और हमारे लिए हवा पकड़ कर लाओ।
10: पूरा दरबार एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ दरबारी धीरे धीरे हंसने लगे। एक दरबारी धीरे से बोला, अरे हवा भी कहीं पकड़ी जाती है। दूसरे दरबारी ने कहा, अब तो किसान गया काम से। राजा जोर से हंस पड़ा।
8: क्या हुआ गोपाल, तुम्हारी बोलती बंद हो गई?
9: महाराज, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए।
8: ठीक है, कल इसी समय हवा लेकर आना। अगर नहीं ला पाए तो हार मान लेना।
9: ठीक है महाराज।
1: अगले दिन पूरा दरबार फिर भर गया। सबकी निगाहें महल के दरवाजे पर थीं। तभी गोपाल अंदर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा रंग बिरंगा कपड़े का थैला था। राजा उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा।
11: क्या बात है गोपाल, लगता है तुम हवा सचमुच पकड़ लाए हो।
12: जी महाराज, हवा इसी थैले में बंद है।
1: पूरा दरबार हैरान रह गया।
13: अच्छा, तो जल्दी खोलो।
1: जैसे ही उसने थैला खोला, अंदर की हवा बाहर निकल गई। गोपाल ने खाली थैला राजा के सामने रख दिया।
11: महाराज, हवा निकल गई, ये कैसी मूर्खता है, इसमें तो कुछ था ही नहीं।
12: महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। उसे हमेशा के लिए पकड़कर रखना किसी के बस की बात नहीं।
1: दरबार में सन्नाटा छा गया। गोपाल आगे बोला, जैसे हवा को खेत में बोकर नहीं उगाया जा सकता, वैसे ही सोना भी खेत में नहीं उगाया जा सकता। कुछ चीजें प्रकृति के नियमों से चलती हैं, इंसान के आदेश से नहीं। पहली बार राजा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। दरबारी भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गोपाल ने बिना ऊंची आवाज किए, बिना किसी अपमान के राजा की पहली परीक्षा का जवाब दे दिया था। लेकिन राजा अपनी हार मानने वालों में से नहीं था।
8: पहली परीक्षा तो तुमने किसी तरह पूरी कर ली, लेकिन दूसरी परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। कल मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे।
12: मैं कल भी समय पर उपस्थित रहूंगा महाराज।
1: गोपाल दरबार से बाहर निकल गया। राजा की आंखों में अब गुस्सा भी था और जिज्ञासा भी। उसे पहली बार लगा कि सामने खड़ा किसान साधारण नहीं है। पहली परीक्षा में गोपाल की समझदारी देखकर पूरा राज्य उसकी चर्चा करने लगा। लेकिन राजा भोलेंद्र सिंह के मन में अब एक ही बात थी, इस किसान को हर हाल में हराना है। अगली सुबह फिर से राजदरबार सजाया गया। राजा आज पूरे आत्मविश्वास में था।
14: गोपाल, तुम्हारी दूसरी परीक्षा है, दुनिया की सबसे भारी चीज लाकर दिखाओ।
15: महाराज, मुझे कल तक का समय चाहिए।
14: ठीक है, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है।
1: अगले दिन गोपाल खाली हाथ आया। ये क्या गोपाल, तुम तो खाली हाथ आए हो, दुनिया की सबसे भारी चीज नहीं मिली, इसलिए हार मानने आए हो?
16: महाराज, दुनिया की सबसे भारी चीज है कर्ज।
14: कर्ज? ये कैसी बात हुई?
16: महाराज, हाथी भारी होता है लेकिन उसे कई लोग मिलकर उठा सकते हैं। पत्थर भारी होता है, उसे भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन जिसके सिर पर कर्ज चढ़ जाए उसका सिर जीवन भर झुका रहता है। उससे भारी चीज दुनिया में कोई नहीं।
1: दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने सहमति से सर हिलाया।
14: ये पहली बार था जब दरबारियों ने राजा की ओर देखे बिना गोपाल की बात पर सहमति दिखाई थी। राजा का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोपाल हर सवाल का ऐसा जवाब कैसे दे देता है, लेकिन राजा हार मानने को तैयार नहीं था।
17: अभी एक परीक्षा बाकी है गोपाल, अगली परीक्षा में अगर तुम हार गए तो पिछली दोनों जीत किसी काम की नहीं रहेंगी।
14: महाराज, सच कभी हारता नहीं। राजा ने मुट्ठी भींच ली। उसे पहली बार लगा ये किसान मेरे लिए खतरा बनता जा रहा है।
10: अगली सुबह पूरा दरबार फिर सज गया। गोपाल हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ अंदर आया, लेकिन आज राजा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी नई चाल का इशारा कर रही थी।
16: गोपाल जी, महाराज, आज तुम्हारी तीसरी परीक्षा है, अगर इसमें सफल हुए तो हम मान लेंगे कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। आज्ञा दीजिए महाराज। ये घड़ा देख रहे हो? जी महाराज। कल सुबह तक इस घड़े को अक्ल से भरकर हमारे सामने लाओ।
10: गोपाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला,
11: महाराज, घड़ा मैं कल लेकर आऊंगा।
14: ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर घड़ा अक्ल से नहीं भरा तो जेल का दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
10: अगली सुबह रोज की तरह फिर दरबार सजा। गोपाल अंदर आया, उसके हाथ में वही घड़ा था, लेकिन इस बार घड़े का मुंह एक ढक्कन से ढका हुआ था।
11: आओ गोपाल, लगता है सचमुच अक्ल भर लाए हो।
18: जी महाराज, आपके आदेश के अनुसार ये घड़ा अक्ल से भरकर लाया हूं।
11: अच्छा, तो खोलो इसे।
18: महाराज, इसी खोलने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है।
11: क्या?
18: अगर घड़ा खुल गया तो सारी अक्ल उड़ जाएगी।
11: अरे मूर्ख किसान, अक्ल भी कभी उड़ती है?
18: महाराज, जब अक्ल दिखाई ही नहीं देती तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो उड़ नहीं सकती? कल आपने कहा था कि घड़ा अक्ल से भरकर लाओ, मैं ले आया। अब अगर अक्ल दिखाई नहीं देती तो फिर आप कैसे साबित करेंगे कि घड़े में अक्ल नहीं है?
11: पूरा दरबार एकदम शांत हो गया, कोई भी जवाब नहीं दे पाया। राजा पहली बार असमंजस में पड़ गया। वो घड़े को देखता, फिर गोपाल को, फिर मंत्रियों की तरफ, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी गोपाल ने धीरे से कहा, महाराज, दुनिया की सबसे कीमती चीजें दिखाई नहीं देती, अक्ल दिखाई नहीं देती, ईमान दिखाई नहीं देता, विश्वास दिखाई नहीं देता, लेकिन इन्हीं के सहारे पूरा राज्य चलता है। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने सहमति जताई। धीरे धीरे पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा गुस्से से खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला,
17: आज से पूरे राज्य में एक नया नियम लागू होगा। आज से कोई भी किसान अपने खेत में पानी नहीं देगा।
1: पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री ने घबराकर कहा, महाराज,
19: बिना पानी के फसल कैसे उगेगी?
1: राजा ने गुस्से से मंत्री की तरफ देखा। चुप रहो, बारिश भगवान करता है। अगर भगवान चाहता है कि फसल उगे तो वो खुद पानी देगा। किसानों को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। गोपाल ये सब सुन रहा था। वो समझ गया कि इस बार बात सिर्फ एक गलत फैसले की नहीं है। अगर ये आदेश लागू हो गया तो पूरे राज्य में भुखमरी फैल जाएगी। गोपाल आगे बढ़कर बोला,
18: महाराज क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ?
20: जल्दी पूछो।
18: क्या आज आपने भोजन किया?
20: हाँ किया है।
18: तो फिर कल से भोजन करना भी बंद कर दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? महाराज अगर भगवान चाहेगा तो आपका पेट अपने आप भर जाएगा, फिर रसोइयों की क्या जरूरत?
1: राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
20: ये दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं।
21: महाराज जिस तरह भोजन के लिए रसोइया मेहनत करता है उसी तरह फसल के लिए किसान मेहनत करता है। भगवान बारिश देता है लेकिन खेत तक पानी पहुंचाना किसान का काम है। मेहनत किए बिना फल की उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता है।
17: बस हम अपना आदेश वापस नहीं लेंगे। जो किसान खेत में पानी देगा उसे 10 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरना होगा।
16: गोपाल ने गहरी सांस ली, उसे समझ आ गया। अब राज्य को बचाने के लिए सिर्फ बातें नहीं एक योजना बनानी पड़ेगी। उसी शाम गोपाल अपने गांव लौटा। गांव के सभी किसान उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हर किसी के चेहरे पर डर था।
7: गोपाल ने सभी को कुछ समझाया। अगले दिन गोपाल राजमहल पहुंचा। उसके साथ कुछ बच्चे और एक बुढ़िया थी। गोपाल ने दरबार में पहले से 2 गमले रखवा दिए थे। पहले गमले का पौधा पूरी तरह हरा भरा था, दूसरे गमले का पौधा सूख कर झुक चुका था। पूरा दरबार ध्यान से देखने लगा।
1: महाराज इन दोनों पौधों को एक ही दिन लगाया गया था। पहले पौधे को रोज पानी मिला, दूसरे को एक बूंद भी नहीं। अब आप ही बताइए इनमें क्या अंतर है? राजा कुछ पल तक दोनों पौधों को देखता रहा।
7: पहला पौधा जीवित है, दूसरा सूख गया।
20: बिल्कुल सही कहा आपने महाराज, यही हाल पूरे राज्य का होगा अगर किसान खेतों में पानी देना बंद कर दें।
13: तभी एक बच्चे ने कहा,
22: महाराज हमने आज से खाना खाना छोड़ दिया है।
13: राजा चौंक गया, क्यों?
22: अगर भगवान चाहेंगे तो हमारा पेट अपने आप भर जाएगा।
7: पूरा दरबार एक दूसरे का मुंह देखने लगा। राजा कुछ समझ नहीं पाया। तभी बूढ़ी औरत ने आगे आकर कहा,
22: महाराज ये रोटी मैंने 3 दिन पहले बनाई थी। अगर खेत सूख गए तो अगली रोटी बनाने के लिए मेरे पास आटा नहीं बचेगा, तब मैं अपने पोते को क्या खिलाऊंगी?
7: पूरा माहौल भावुक हो गया। राजा ने पहली बार सबके चेहरे ध्यान से देखे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सिंहासन पर बैठकर लिया गया एक गलत फैसला हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। राजा की आंखें झुक गईं। उसने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया।
17: आज से खेती पहले की तरह होगी।
9: तुमने मेरी आंखें खोल दी गोपाल।
18: महाराज जो राजा अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा राजा होता है।
7: पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद राजा हर बड़ा निर्णय लेने से पहले किसानों और प्रजा की राय लेने लगा। आनंदगढ़ फिर से खुशहाल हो गया।
23: ये कहानी सुंदर जंगल की है जहाँ का राजा खुद बहुत बड़ा शिकारी था। वो अपने जंगल से रोज रोज शिकार करके अपनी भूख मिटाता था और एक दिन अपने खास दोस्त सियार को बुलाया।
24: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
25: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि
0: आई बिलीव एटलीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है. यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क. लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते. से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव. ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी. तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल हैं और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन. एंड असर्टिव डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड. हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर. आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर. तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड. बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस. तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी, वो बाहर अपने आप आएगी. वी विल नॉट हैव टू डू इट. एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं. तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल.
24: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.

0: अरे वाह वाह वाह, कितने कमाल की कारीगरी है। देख बुद्धू देख, वो आदमी कितने बढ़िया तरीके से पत्थरों को काट कर मूर्ति बना रहा है। इसे ही तो कहते हैं शिल्पकारी।
1: मैं भी बचपन में ऐसा ही शिल्पकार था मालिक। हाँ।
0: है? क्या मतलब तू पत्थर काट कर मूर्ति बना सकता है? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी।
1: मैं पत्थर नहीं काटता था मालिक। बचपन में परीक्षा में मेरे कितने

0: 500 तक दे दीजिए।
1: क्या 500 में पत्थर की मूर्ति चाहिए आपको? हा? अच्छा तो ठीक है, हाँ हाँ हाँ है वो रही।
0: अरे छी, ये तो बहुत ही पुरानी और बहुत ही गंदी मूर्ति है।
1: अरे यही तो आर्ट है महाशय, उस मूर्ति का नाम है बेशरम मूर्ति, इसलिए शर्म से उसकी नाक कट गई है।
0: अच्छा तो आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं?
1: अच्छा तो 500 रुपए की पत्थर की मूर्ति का पूछ कर मजाक पहले किसने शुरू किया था महाशय?
0: नहीं चाहिए, मुझे वो मूर्ति चाहिए ही नहीं। चल बुद्धू, चल यहाँ से।

0: काश कि मैं उन मूर्तियों को खरीद पाता।
1: अरे ये क्या, ये 22 तारीख परीक्षा में फेल हो गई है क्या मालिक, जो इस पर लाल लगा रहे हैं?
0: अरे नहीं नहीं, 22 तारीख को मेरा जन्मदिन है बुद्धू, इसमें अब बस 7 दिन ही बचे हैं। सोच रहा हूँ कि उस दिन मैं कोई मूर्ति खरीद ही लूँ। अब जन्मदिन में भी तो कोई मुझे तोहफा तो देगा नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही खुद को तोहफा दूँ।
1: अब सुबह सुबह आप ऐसी चुभने वाली बात मत करिए मालिक, सुनकर दिल को बहुत दुख होता है। उस दुख वाले दिन में ये बुद्धू राम आपके साथ रहेगा मालिक। हाँ हाँ मालिक हाँ।
0: अरे बस बस बस बस, अब रो मत बुद्धू, लाओ लाओ मेरी चाय तो लाओ। वैसे ये चाय इतनी नमकीन क्यों बनी?
1: अब आगे से आंखों में चीनी डालकर रोऊंगा मालिक, तो आंसू मीठे गिरेंगे ना।
0: मेरे सामने से दूर हो जा मूर्ख।
1: आप चाहे मुझे मूर्ख कहें या कुछ और कहें, पर मैं आपको आपके जन्मदिन के दिन तोहफा जरूर दूंगा। पर क्या दूंगा? हाँ वो मूर्ति ही खरीद कर दूंगा मालिक, पर वो मूर्ति तो बहुत महंगी है। हाँ एक काम करता हूँ मालिक, इस पूरे साल की तनख्वाह एडवांस में ले लेता हूँ मैं आपसे। हाँ बेवकूफ हुआ तो क्या हुआ, बुद्धू के पास बुद्धि भी है। मालिक आपको एक एहसान करना होगा मुझ पर।
0: कैसा एहसान बताओ?
1: मुझे तनख्वाह देनी होगी।
0: पर आज तो महीने की 21 तारीख ही है, अभी तो ये महीना पूरा भी नहीं हुआ है।
1: मैं ये सब नहीं जानता मालिक, मुझे एक साल की पूरी तनख्वाह एडवांस भी दे दीजिए, बस यही मेरी विनती है आपसे।
0: तूने तो इसके पहले मुझसे कभी भी 1 रुपया तक नहीं मांगा है, इसका मतलब इसे जरूर पैसों की सच में जरूरत है। पर मैंने तो ये रुपए मूर्ति खरीदने के लिए जमा किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, पहले बुद्धू राम उसके बाद मूर्ति। अब ठीक है, ये लो तुम्हारे 1 साल की एडवांस में तनख्वाह।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, कल आपका जन्मदिन है ना, जाता हूँ, बहुत सारे काम बचे हैं।

जब मालिक ये देखेंगे कि मैंने मालिक के जन्मदिन पर उनके पसंद की मूर्ति तोहफे में दी है तो खुशी से मालिक कहीं पत्थर ही ना बन जाए। हाँ नहीं नहीं नहीं, देर करने से नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जल्दी से मालिक के लिए मूर्ति खरीदनी होगी, देर करने से नहीं मिलेगी।

0: ये क्या हो रहा है? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ?
1: इस बुद्धू को भी समय का अंदाजा ही नहीं रहता। कब का निकला है घर से और अभी तक घर लौटने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने सारे रुपए लेकर आखिर ये गया कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा।

0: मालिक मालिक, आपको मैं आवाज तक नहीं दे पा रहा हूँ मालिक। ये क्या हो गया है मेरे साथ, देखिए ना मालिक क्या हो गया मेरे साथ।
1: अरे वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो एकदम बिल्कुल नई लग रही है। आहा, एक गरीब आदमी सर पर रुपए का बक्सा लेकर भाग रहा है। वाह, क्या हाथों की सफाई है।
2: अरे आप यहाँ फिर से आ गए हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ 500 रुपए की मूर्ति नहीं मिलती है भाई।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं यहाँ मूर्ति खरीदने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने बुद्धू को ढूंढने के लिए आया हूँ।
2: ये क्या, ये मूर्ति यहाँ कौन रख कर गया है? ये तो मैंने नहीं बनाई है। हाँ,
1: ये क्या, इसका मतलब आपने ये मूर्ति नहीं बनाई है?
2: अरे नहीं महाशय, ये मेरी बनाई हुई नहीं हो सकती। लगता है कोई गलती से इसे यहाँ छोड़ गया है। अगर आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं, रुपये नहीं लगेंगे इसके। यहाँ
1: क्या सच में? हे ऊपर वाले, आज आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर इस तरह से एक तोहफा दिया है। आपका धन्य धन्य है आपकी लीला। वाह, धन्य है आपकी लीला। बाप रे बाप, कितनी भारी मूर्ति है ये। अरे बाप, कितनी भारी मूर्ति है ये। लाते लाते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। पर इस मूर्ति का चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है, जैसे जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। और ये रुपए का बक्सा भी काफी पहचाना सा लगता है। चलो कोई बात नहीं। बड़ा सत्यानाश हो गया, इतनी सुंदर मूर्ति टूट गई। ये क्या हो गया?
0: मालिक मालिक, आप मुझे बचा लीजिए मालिक। ये क्या अर्थ हो गया? मालिक डर से पत्थर के बन गए। अब तक मालिक मुझे कंधे पर उठाकर ला रहे थे, अब बाकी के रास्ते मैं मालिक को कंधे पर उठाकर घर ले जाता हूँ। हाँ, अब जो किस्मत पे होगा वो सुबह देख लूंगा।
1: मूरख, पहले ये बता कि तू आखिर इस मूर्ति के अंदर घुसा कैसे? हाँ,
0: मैंने घुसा था मालिक, ये बहुत लंबी कहानी है, आपको बता देता हूँ मैं।
1: अभी थोड़ी देर में मारे डर के अपने जन्मदिन के एक दिन पहले मैं स्वर्ग सिधार गया होता। ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। चल निकाल मेरे पैसे वापस, मुझे दे। मुझे तेरे जैसा नौकर हरगिज नहीं चाहिए।
0: ऐसा मत कहिए मालिक, मुझे बहुत दुख होगा।
1: बाढ़ में गया तेरा दुख। चल दे दे, कहाना दे। अबे देता क्यों नहीं बुद्धू, चल ला ला दे दे, मैंने कहा ना दे। ए, ए बुद्धू दे, बोला ना ला।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुँचाने के लिए सरकार का जो मंशा है बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुँचाए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में उनका हुनर जो टैलेंट है जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए आज एक मंच मिलेगा। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं और बच्चे महात्मा होते हैं। बच्चे को जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो बच्चे करते हैं और माँ बाप तो खुश होते हैं, क्योंकि माँ बाप को कोई तंग नहीं करते और विद्यालय में आते हैं तो माँ बाप भी अपना गृह काम में लग जाते हैं। तो आज बहुत खुशी लग रहा है, सभी बच्चों के साथ हम रूबरू होंगे और इस कार्यक्रम को हमारा संस्था प्रधान भी सहयोग देते हैं। एक इशारा में आज राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू में पहुंचे। मोडू का बच्चों का आवाज़ बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस तरह कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में जाते हैं और बच्चों को एक मंच एक स्टेज देते हैं। बच्चे अपना हुनर को भी सबका सामने रखते हैं और इस कार्यक्रम को हमारा आसपास का गतिविधि जन जन तक पहुंचाते हैं। बहुत खुशी लग रहा है और इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारा सांस्कृतिक प्रभारी मैम को भी धन्यवाद देते हैं। सबको एकत्रित कि मैम अपना परिचय देंगे, बच्चों को थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, आपका आवाज़ सुनकर बच्चे भी आगे बढ़ेंगे।
1: हाँ, ओम शांति। मेरा नाम है शोभा ग्रासिया, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू से हूँ।
0: शोभा जी, आप कितने साल से इस स्कूल में?
1: मैं 8 साल से।
0: लगातार अपना घर से बच्चों को भी एक घर से समाज से आते हैं और बच्चों को अपना भाषा से प्रस्तुत करते हैं। तो पहला प्रस्तुति हम सुनेंगे एक प्रार्थना के रूप में और सभी का नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुबह आज तो सुबह बढ़ाएंगे, अभी तो बढ़ा दिए। प्रार्थना पहले करेंगे, इसका बाद दूसरा गीत करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करते तो प्रार्थना से शुरू करते हैं माँ सरस्वती से। और सुबह मैम बच्चों को वार्म अप कर दिए, पहले एक बार मैम आए थे हमारे रेडियो कार्यक्रम में, याद है?
1: जी जी,
0: अभी भी बच्चे को याद है। तो चलिए एक प्रार्थना सुनते हैं।

0: बच्चों को ताली चाहिए और इस तरह कार्यक्रम में बच्चे जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उनका आवाज ही उनका पहचान होता है, क्योंकि जब उनका आवाज सुनते हैं तो अपना नाम बताएंगे कौन सा क्लास में और कहाँ से।
1: चट्टी।
0: नाम क्या था?
1: आरती।
0: आरती, अरे वाह।
1: आठवीं कक्षा जयंती कुमारी, बसंती कुमारी, कक्षा आठ शोभा, कक्षा आठ सुमित्रा, कक्षा आठ
2: ज्योत्सना, कक्षा सात कमला कुमारी चट्टी, दुर्गा कुमारी।
0: दुर्गा, कमला, सभी दोस्त को धन्यवाद देते हैं इस तरह तोतली तोतली आवाज में पहला प्रस्तुति दिया, लेकिन बहुत सुंदर रूप में स्वर और लय का साथ। शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देंगे, ग्रामांचल बच्चे, आदिवासी बच्चे, गरासिया बच्चे भी कम नहीं है, और सभी ऐसे शुद्धता शुद्ध मन से अपना प्रस्तुति देते तो बहुत अच्छा हो जाता। और हमारा मैम शोभा मैम इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, और हमारा और एक मैम भी है तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते। ये था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू का आवाज।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला प्रस्तुति आवाज का दुनिया में सभी का आवाज जब सुनते हैं तो हमें खुशी होता है। जब इस तरह आकाशवाणी में बच्चे आते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो गांव का, शहर का और सभी का नाम रोशन होता है, विद्यालय का भी नाम रोशन होता है। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक आदिवासी गीत हो तो हमें कैसे लगेगा आदिवासी गीत में? तो मैम, आदिवासी गीत में बहुत मिठास होता है और शुद्धता होता है, भोलापन भी होता है। तो आप भी आदिवासी संस्कृति में आते, तो आदिवासी जो शुरू से बास करते उसको कहते हैं आदिवासी। तो आदिवासी का ऊपर में क्या जानते हैं?
3: आदिवासी जो पूर्व से जो निवास करते हैं, जो कोई ऐसी भी जातियां हैं जो कहीं से आती है, किसी देश से आती है, लेकिन हम जो है वो पूर्व से यहीं पे है। हाँ, हमारे जो पूर्वज है उसके भी पूर्वज ठेर से यही है, यही जो निवास है उनका निवास स्थान यही है।
2: इसलिए आदिवासी जब नाम सुनते पूरा गर्व महसूस करते हैं। हाँ। कोई भी बच्चा बोला मैं आदिवासी हूँ।
3: हाँ।
2: तो इसका आदि से जो शुरू से जो बात शुरुआत करते हैं।
3: जी, शुरू से हम जो निवास है वो आदिवासी है, जो लगभग जो 80% तो पहाड़ों क्षेत्रों में ही रहते हैं और हमारा जो है ये पशु है इनको पालन करते हैं यही है और खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारी आजीविका है। अब थोड़ा शिक्षा की और बड़े हैं तो शिक्षा में भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो है मगरेज जो भी मिलता है उनको बेचा करते हैं, पशुओं को रखते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, ये आजीविका है।
2: तो क्योंकि आबू रोड आबू सिरोही जिला खासकर टीएसपी एरिया है।
3: हाँ।
2: और सभी आदिवासी बच्चे बहुत नामांकन में वृद्धि होता है। तो और एक आदिवासी गीत प्रस्तुत करेंगे, तो चलिए वेरी गुड, शुरू हो जाए बच्चे, रेडी।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदिवासी अंचल में जो जाते हैं, आदिवासी जो गीत में जो भजन में जो मिठास है, जो शुद्धता देखने को मिलता है, तो आज बच्चे मोड़ू का बच्चे भी कम नहीं है, सब तक पहुंचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम का अगला कड़ी में बच्चों को पुनः स्वागत करते हैं। एक मंच के लिए जो तरसते हैं, आज वो मंच मिल रहा है। आज तो कार्यक्रम ही कार्यक्रम बच्चों का। आज नो बैग डे जैसे कोई पढ़ाई नहीं, पूरा मनोरंजन। उधर भी गीत चल रहा है, इधर भी नाच चल रहा है और इधर गीत चल रहा है। तो सभी भागीदारी को धन्यवाद देते हैं और एक प्रस्तुति के लिए रेडी शुरू।

सही में बेटी तो दो कुल को उधार करती है, एक उस कुल को उधार कर देती है। बेटी एक पराया धन नहीं है, बेटी सबके लिए धन है, मान है, धन है, तन है। तो बेटी पराया नहीं है और अपना है। जहाँ बेटी यहाँ रहेंगे वहाँ तो साफ स्वच्छता, परिवेश, पर्यावरण सब कुछ मिलता है, क्यों बेटी के पास इतना शक्ति है, क्योंकि शिव शक्ति कहते हैं। बेटियों क्या कहते हैं? शिव शक्ति, शिव का

का पहला हम बच्चों का गीत सुन रहे थे बेटी का, ऊपर में बेटी सभी को उद्धार करती है और घर का रोशनी बढ़ाती है। एक प्रेरणादायी गीत सुनेंगे तो हमारा सभी गुड़िया उपस्थित है एक प्रेरणादायी गीत के लिए रेडी हो रहे सेम ग्रुप ओके जो

इतना सुंदर प्रस्तुति और हमें बहुत खुशी लग रहा है। इस तरह बच्चे को जो मंच का आवश्यकता था आज वो मंच मिल गया, जिसका चलते एक का बाद एक पूरा गाड़ी चल रहा है और सजा रहे हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम गुलदस्ता जैसे बन गया। एक एक फूल को लेकर गुलदस्ता बनता है, तो एक एक आवाज को लेकर, एक एक गीत को लेकर एक आवाज का दुनिया में आवाज सुन पा रहे, हमें बहुत खुशी है। तो इस तरह बच्चे जब सच्चे मन से गाते हैं तो उनका माँ बाप जब सुनते, उनका दोस्त लोग जो सुनते तो उनको खुशी लगता है। ये हमारा विद्यालय का आवाज है, हमारा गुड़िया का आवाज है, और एक आवाज में ही उनको खुशी मिलता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति सुनेंगे बच्चों का तुतल तुतल आवाज से। तो हमारा साथ क्या नाम बोले?
1: शोभा।
0: शोभा
1: बसंती।
0: बसंती और शोभा इस गीत को प्रस्तुत करेंगे।
1: दया।

0: चलिए कार्यक्रम को अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और कविता भी सुनेंगे, लेकिन पहले कविता सुन लेते हैं। कविता सुनेंगे, एक छोटा सा नन्ना सा हमारा गुड्डा आया है तो अपना प्रस्तुति देने के लिए, बहुत खुशी लग रहा है। तो सिंगल प्रस्तुति के लिए नाम बताएंगे?
1: अमित।
0: अमित
1: जी।
0: और कौन सा क्लास?
1: सातवीं।
0: और बढ़ोकर क्या बनेगा अमित? डॉक्टर, इंजीनियर न मास्टर?
1: टीचर।
0: टीचर बनेंगे, बहुत अच्छा। तो अमित के लिए धन्यवाद देते हैं, छोटा सा प्रस्तुति देने के लिए आया है, तो सुनाएंगे क्या कविता? देखिए सुनाओ।
1: रणबीर चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराल था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ियावा को पाला था, गिरता ना कभी चेतक रे, तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा था हरी मस्तक आसमान पर घोड़ा था, जो तने कवा से बागली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा के पुतले फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल निकलाया ढालों में उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया वह ढालों में चरपट दौड़ा करवालों में, यह ही रहा अभियान नहीं वह वही रहा वह नहीं, थी जगह ना कोई जहां नहीं, किस अरे मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, वीर का राल बर्ज में बादल सा, अरियो की सेना की गहर गया, बाला की गया गिरा निसंग, यह टापो से खन गया अंग, वीरे समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग गया।
0: चेतक नाम सुनते तो कितना खुशी लगता है, चेतक का वीरता, चेतक का पूरा साहस। मैम अपना परिचय दीजिए, और खासकर चेतक नाम सुनते तो राजस्थान का जो चेतक, राणा प्रताप का चेतक घोड़ा, और चेतक का जो वीरता जिसका साहस, जो प्रभु का मालिक ते, उसका बारे में थोड़ा बताएंगे पहले अपना श्रोता मित्र को और हमारा बच्चों को।
2: चेतक है जो महाराणा प्रताप हमारे जो थे मेवाड़ के जो राणा, उनके जो घोड़े का नाम है चेतक, उनकी वीरता, उन्होंने अंतिम सांस तक अपना साथ, अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, उनकी टांग कट गई फिर भी उन्होंने अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए यहाँ उनकी साहस और वीरता की ये जो कहानी है कक्षा 6 की है, और चेतक की वीरता इसके बारे में बालक ने बताया कि चेतक जो कैसा था उसकी वीरता के बारे में उसने छोटी सी कविता सुनाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अंतिम प्रस्तुति देंगे शोभा वासंती एंड पार्टी, और ये कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा रहे हैं, और सभी ने अपना बात को रखें, ये काम बात नहीं है। तो चलिए शोभा एंड

पार्टी को स्वागत करते हैं और सभी बच्चे इनको साथ देंगे। ये पहले करेंगे शोभा और वासंती, इसका बाद बच्चे साथ में करेंगे, सभी साथ में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू का आवाज।

0: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भारत का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक हम जा रहे हैं और बच्चे इस तरह देशभक्ति में, हर बच्चा एक देवी का प्रतिमा है। मैंने पहले भी बोला था, बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महात्मा होते हैं और बच्चे देवी का प्रतिमा होते हैं, क्योंकि भारत का जो मिट्टी है, भारत देश महान है, इसलिए सभी देश से भारत हमारा श्रेष्ठ क्यों कहते हैं, क्यों भारत माता कहते हैं। कोई भी देश को माता शब्द नहीं बोलते, किन्तु माँ का प्यार, माँ का ममता, माँ का त्याग कभी भूल नहीं पाते, इसलिए भारत हमारा सबसे श्रेष्ठ है। और खुशी लग रहा है सभी इसका आवाज़ लिए हमारा, और एक मैम अपना खाली नाम बताएंगे और कौन सा विषय पढ़ाते।
1: मेरा नाम रवीना मंडावरिया है, मैं आबू रोड की रहने वाली हूँ और मैं मोल्डू स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 में गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ।
0: मैम पढ़ाने में आपको खुशी मिलता है ना?
1: हाँ, पढ़ाने में खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है।
0: बहुत खुशी मिलती है। बच्चे मैम के लिए ताली बजाओ, क्योंकि खुशी मिलना सबसे बड़ी बात है। पैसा देने से भी खुशी नहीं मिलता, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से खुशी मिलता है, क्योंकि कच्चा मिट्टी होकर बच्चे आते हैं और उसको मूर्ति बना देते हैं, जैसे रूप चाहेंगे, जैसे हम उनको बनाना चाहेंगे, जिस तरह उनका विशेषता गुण चरित्र बनाना चाहेंगे मैम बना देंगे। और इसलिए तो बच्चे स्कूल में आते पढ़ने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए। पढ़ाई का महत्व तब होता है जब हम चरित्रवान बनेंगे और एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे गीत के माध्यम से आप बच्चे सब सुनाएं, तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर बच्चों का साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन द्वारा प्रस्तुतिकरण, जो कि जैसे मैंने सुबह मैम को बताया भाई आप थोड़ा शुरुआत कर दो, बच्चे आपका आवाज़ को देख कर ही उनका आवाज़ को रोक नहीं पाएंगे और एक का बाद एक प्रस्तुति दिए। तो कैसे लगा सुबह मैम?
2: बहुत अच्छा लगा, आप आए, हमको हमारे बच्चों को मौका मिला कुछ गाने का, कुछ प्रस्तुति देने का, अपने मन के अंदर जो है उनको अभिव्यक्त करने का, अच्छा लगा। और आते रहना और सीखेंगे बच्चे हमारे, और कुछ आपको सुनाएंगे अगली बार।
0: धन्यवाद, तो धन्यवाद के लिए धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। दोस्तों, कभी कभी ना जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट टफ लगते हैं, कुछ आसान लगते हैं, पर फिर भी जिंदगी का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। कभी कभी कभी कभी अपनी भावनाओं को समझना ही आसान नहीं लगता, और लगता है बाकी चीजें तो समझ में आ रही है पर खुद को कैसे समझे। तो अगर सवाल आपके दिल में भी है तो जवाब हमारे पास है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, सीधा ग्लोबल अस्पताल से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं रेडियो के माध्यम से भी। आपके साथ जुड़ते रहते हैं हम। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से मिलकर, उनसे बातें करके, और खास कर अपनी इमोशंस को उनके साथ शेयर करके। जो हल्कापन, जो रिलैक्सेशन फील होता है, वो किसी और ही लेवल का होता है।
0: बिल्कुल, और वो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत इजीली समझ रहे हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। और एक और लव यू जिंदगी के एपिसोड में आते हैं तो कुछ और सीखने की तैयारी के साथ में वापस आ गए।
0: और हम बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी अपनी भावनाओं, यानी इमोशंस के बारे में। पिछले एपिसोड में भी बातें हुई थी, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले एक सवाल आया था जो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, वो ये, किसी ने पूछा कि बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, कुछ चेंज भी नहीं हुआ होता है, लेकिन अचानक से बुरा लगने लगता है या डाउन लगने लगता है, लो फील होने लगता है, और कुछ हुआ भी नहीं होता है, तो ये अंदर क्या बदल जाता है कि ऐसा होता है कि अंदर उदासी लगने लगती है विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, कैसा होता है या इसे क्या समझे?
1: जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हमारी लाइफ एक, जैसे बोलते हैं ना, हार्ट का ये होता है, स्कैनिंग होती है, एनालिसिस होता है, तो हमारी लाइफ सीधी सीधी रेखा में नहीं है, तो हमारा ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे मूड का हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है हमारे ब्रेन के केमिकल्स का। कई बार हमारी ब्रेन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां उत्पन्न होती है कुछ समय के लिए, जिससे हमारा मूड, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। और इसके लिए जब इस बात की समझ आती है कि ब्रेन के केमिकल्स का कुछ अप डाउन है, तब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, किसी काउंसलर या किसी गाइड या साइकोथेरेपिस्ट को मिलकर इसके बारे में पूछताछ करना जरूरी है। परंतु ये हमारा जो सिम्टम है, ये 3 हफ्तों से ज्यादा अगर चले तभी हमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत। अदरवाइज तो 24 घंटे में भी 3 बार या 4 बार हमारा मूड चेंज हो सकता है। सो ये एक नॉर्मल चीज है, जिसके कारण घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स को पहचान कर उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार मेरा मूड अपसेट हो जाता है या मुझे लो फील होता है और मुझे कहीं मन नहीं लगता है, तो वो कौन सा ऐसा समय है, क्या पैटर्न है मेरे मूड के अप डाउन होने का, उसको एक बार पहचान लेंगे और फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे मूड ठीक नहीं है तो हो सकता है मैंने नींद नहीं अच्छे से की है तो मैं अच्छी नींद ले लूं। मूड ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, हो सकता है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया है या मुझे समय पर खाना नहीं मिला है, नींद नहीं हुई है। दूसरा, हो सकता है मैंने बाहर थोड़ा एक्सपोजर नहीं किया, बहुत लंबा समय तक अंदर ही अंदर बैठ के काम किया है, जैसे कई लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर में बैठे रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, तो बाहर की खुली हवा का, नेचर के सानिध्य का एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो बंद वातावरण में हो सकता है मेरा मूड खराब। तो सबसे पहली बात है अपने पैटर्न्स को पहचानना, और दूसरी बात है उस उदासी भरे मूड से अपने आप को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बनाना। तो स्ट्रैटेजी में हम क्या बना सकते हैं कि म्यूजिक सुन लिया, शॉर्ट ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लिया, पानी पी के बाहर घूम के आ गए, खुली हवा में चले गए, किसी दोस्त से बात कर ली। ज्यादातर समय पर हमें जिस जगह पर हम है वहां से दूर किसी नेचुरल जगह पर जाकर खुली हवा में सांस लेने की आवश्यकता होती है। सो इस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं।
0: ओके इंटरेस्टिंग। तो पहले मतलब फिगर आउट करिए या पहले उससे बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी बनाए, पहले क्या करें?
1: नहीं, पहले फिगर आउट करना जरूरी है, अपने पैटर्न को पहचानना जरूरी है। जैसे कि महिलाएं होती हैं, उनमें मूड स्विंग्स तब होते हैं जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स जा रहे होते हैं या पीरियड्स के पहले 3-4 दिन और उसके बाद 1-2 दिन उनका मूड डिस्टर्ब रहता है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।
0: ओके, तो हमें समझना है और फिर उसको स्ट्रेटेजी बनानी है। उसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हो गया। मतलब वो हम कभी कभी सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हैं, इसकी बात बुरी लगी, उसकी बात बुरी लगी, बुरा लग रहा है और फिर ढूंढने लगते हैं कि किस बात से बुरा लगा। तो उस पे ज्यादा ओवरथिंक ना करें, पैटर्न को समझें और स्ट्रेटेजी बनाएं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। श्रीनिधि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं समझता हूँ जो कल्पना जी बात कह रहे थे, हम अक्सर ये अपने आप को रीड करने के बारे में सोचते नहीं। ये मूड खराब है तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों खराब है। कभी कभार जैसे रिपीटेडली मूड खराब होता है या समझ लीजिए एक पैटर्न बना हुआ है कि ये चीजें होती है तो मेरा मूड खराब होता है। जैसे कल्पना जी कह रहे थे, समझो आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिला है, तो चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोगों को, मैं भी होता हूँ, कि अगर मैं भूखा हूँ और मुझे खाना खाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को खाना खाने से रोक रहा है, बट मैं काम एक के बाद एक काम आता जा रहा है, कोई मिलने आ रहा है, फिर मतलब मैं मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, या मैं थोड़ा अपने आप को स्पेस देना चाहता हूँ, एक काम से दूसरे काम के बीच में मैं थोड़ा सा गैप रख पाना चाहता हूँ और वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जब ऐसी सिचुएशंस हो रही होती है तो मैं जानबूझ के उसके बीच में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता। तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर हावी हो रहा होता है और बोलते नहीं हमको अभी टाइम चाहिए, तो अब मैंने ना कहना सीखा है। मैंने कहा है कि नहीं, अभी मैं नहीं दे सकता, 10 मिनट बाद आप मेरे से मिल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल के बीच में मैं ऐसे मोमेंट्स चुरा रहा हूँ, अपने लिए स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करता हूँ। और खाने की बात तो है कि मैं खाने के टाइम पे किसी और चीज को टाइम नहीं देता। मैं कहता हूँ भाई मैं खाना खा के बाद में बात करूँ, अभी नहीं बात करूँ। तो बहुत बार ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इन चीजों को जानना जरूरी है कि क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, क्या चीजें आपको ऐसे जोन्स में पुश करती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, या आपको गुस्सा दिलाती हैं, या आपको सैड फील कराती हैं, या आपको एंग्शियस बनाती हैं, अनेक इमोशंस हैं। तो इन चीजों के बारे में खुद अपनी परख करना जरूरी है। और जब मैं अपने आप को ऐसे समझ लेता हूँ, जानता हूँ कि मैं इन चीजों से ट्रिगर होता हूँ, ये चीजें मेरे ट्रिगर्स हैं, तो फिर आपको उन ट्रिगर्स के सॉल्यूशंस भी पता होते हैं। अगर यही ना पता हो कि भाई चाकू से कट सकता है हाथ, तो फिर आप चाकू के साथ खेलते रहेंगे। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मैं प्रोन हूँ इस चीज के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ लोग कुछ इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनके बॉडी में कुछ फिजिकल सिस्टम्स वीक होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो लाउड म्यूजिक या कुछ ऐसा हवा में बदलाव होने की वजह से उनको हेडेक होने लगता है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हम प्रोन हैं, किन चीजों के लिए हम प्रोन हैं, क्या चीजें हमें तकलीफ में डाल। तो अगर वो समझ जाते हैं तो फिर शायद उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।
0: ओके, तो यानी हमें कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी है जो हमें लगता है कि हमें ट्रिगर कर रही है या हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण हमारी मूड चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो बाउंड्री सेट करें और ना कहना भी सीखें। ये भी समझ में आया, कई बार ना कहना नहीं आता है और मुश्किल लगता है। नीति, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि हम बाउंड्रीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते, या बाउंड्रीज एक्चुअली होती क्या है, क्या हमारी भावनाओं से लिंक्ड है, इसका कोई कनेक्शन है?
1: मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्री जी से कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना और ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। मैं कल का ही एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई मुझे शेयर कर रहे थे कि अरे मैंने इनको इतना गाइड किया, कदम कदम पर इनको किया, लास्ट मोमेंट पर भी ये मुझे से पूछ रहे हैं बात, इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को अपना टाइम देते हैं और उस टाइम की हम कदर नहीं करते हैं, तो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमारे टाइम की भी कदर नहीं करते हैं और छोटी छोटी बात के लिए वो हमसे ही सपोर्ट लेना चाहते। तो ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए या आपसे कुछ फेवर ले या कुछ मांगे, तो आपको आपकी बाउंड्रीज सेट करने आना चाहिए। कि भाई इतना तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और इससे आगे आपको खुद को हेल्प करनी होगी क्योंकि मेरी लिमिटेशंस ये है, इस टाइम में ही मैं आपसे मिल सकता हूँ क्योंकि इसके अलावा जो मेरा टाइम है वो मेरा मेरे लिए टाइम, मैं उसमें अवेलेबल नहीं हूँ। सो नो कहना आना चाहिए। कई प्रिय प्रेशर में आ जाते हैं कि चलो यार पार्टी में चल रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, सब कुछ फ्री ही है, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा, चलो फोर्स करते आप अपनी पढ़ाई का, अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर आप पार्टीज में शामिल हो जाते। जब एक बार आप पार्टीज में गए, उनके साथ समय बिताया, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो आपको समझते हैं कि हाँ इनका टाइम तो हमारे साथ गुजारने के लिए अवेलेबल है,
3: तो ग्रांटेड ले लेते हैं जैसे आपको।
1: बिल्कुल, कई आपके काम रह जाते हैं और आपको इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि मैं सबको खुश करना चाहती, किसी को ना नहीं कहना चाहती, कोई नाराज हो गया तो, मेरे से बात करना छोड़ दिया तो, या मेरे बारे में कुछ बुरा सोच लिया तो, इसलिए हम उसको कहते पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सबको संतुष्ट करना चाहते। लेकिन हम सबको हर समय संतुष्ट करते करते खुद की टाइम, खुद की एनर्जी, खुद का हेल्थ, खुद की नींद, खुद का कंफर्ट सब कुछ गवा चुके हो, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं। घर की मदर्स का ऐसे ही होता है, सबको खुश करने के हाँ सिलसिले में वो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ देती।
0: ओके, तो मतलब अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है, और पीपल प्लीजिंग ये एक बहुत बड़ा विषय है मुझे लगता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद की पर्सनालिटी भी दूसरों की तरह बनती जाती है। या हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी कि चेंज किसके लिए होना चाहते हैं, आपने भी वो कहा था कि आप चेंज पॉजिटिवली हो रहे हैं या फिर किसी को देख के हो रहे हैं, वहां भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। श्रीनिधि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, बाउंड्रीज क्या होती है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें इसे।
2: बाउंड्रीज मैं समझता हूँ एक हर व्यक्ति का एक कंफर्ट का दायरा होता है, अलग शब्दों में लोग इसे कंफर्ट जोन भी कहते हैं। कंफर्ट जोन्स को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कभी कभार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की भी जरूरत होती है जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं। मगर कंफर्ट जोन और बाउंड्री के बीच में अंतर ये है कि हम सबकी हदें हैं कि हम कुछ चीजें अपनी कैपेसिटी तक मैं इतना कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड कर पाना मैं अपने आप को टैक्स कर रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ बट मैं फिर भी मतलब अपने आप को खींच रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है इनके लिए तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप अपने आप को खींच करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो आपको बाउंस बैक करने का भी मौका मिलना चाहिए। वो आपने स्ट्रेच किया है उसको वापस रिलैक्स होने का भी मौका मिलना चाहिए। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, क्या मेरी बाउंड्रीज हैं, क्या मेरी लिमिट्स। और कभी कभार जब हम जैसे कल्पना जी अभी कह रहे थे कि पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। अक्सर अंग्रेजी में इसको यस मैन सिंड्रोम कहा जाता है कि हर चीज के लिए यस कहते हैं, और आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम इसको कहते हैं कि यस बॉस, हर चीज के लिए यस बॉस कहना। जरूरी नहीं है कि बॉस आपसे कोई चीज कह रहे हैं, आपका काम आपसे कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नई चीजें करने के बारे में सोचे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नवीनता के बारे में, इनोवेशन के बारे में, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचे नहीं। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं इसलिए आप सारा काम अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं, आप ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी 10 काम है करने के लिए, तो जस्ट बिकॉज आपको दिया जा रहा है आप बोल रहे हाँ हाँ ये भी दे दो कोई बात नहीं, और आपको 10 बजे 11 बजे 12 1 बजे तक लोग बैठ के काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना नहीं कर पाए, और इसकी वजह से उनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या घर में पेरेंट्स रहते हैं या जो भी रहते हैं उनके लिए हम टाइम न देकर अपने आप को ओवरवर्क महसूस करते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड्स में लागू होता है, ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज सिर्फ हमारे पर्सनल वेलबींग के स्पेस में है, हमारे प्रोफेशनल स्पेसेस में भी होता है। हम दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे फ्रेंडशिप्स हैं तो वहां पर हम अक्सर दोस्तों को कहते ही हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, अब ये कहने वाली बात तो शायराना लग सकती है कि जान हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला मुझसे जान मांगेगा और नहीं मैं जान देने वाला हूँ उसके लिए। कहने का भाव ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपने लिमिट्स को पार करके करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या ऐसा आप हर किसी के लिए करना पसंद करेंगे?
3: संभव भी नहीं है शायद।
2: संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ उस रिलेशनशिप में वो गिव एंड टेक है, वहाँ पर एक कंफर्ट जोन है, हम दोनों एक दूसरे से कुछ चीजों के प्रति कंफर्टेबल हैं, परिवार में भी हम लोगों के लिए करते हैं, मगर
3: नहीं करना चाहते तो सेल्फिश फील करते हैं कि अरे मैं
2: मैंने किया नहीं,
3: मेरे दोस्त है, मेरा परिवार है और मेरी बाउंड्रीज इसमें कैसे बीच में आ सकती है, हैव टू गिव।
2: जैसे अभी कल्पना जी होम मेकर्स का उदाहरण दे रहे थे, ऐसे महिलाएं जो घर का काम सारा देखती हैं, घर संभालती हैं, वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है घर संभालना, तो वहां पर भी उनको अपना स्पेस चाहिए। जब कोविड का समय था, कोरोना काल था, उस समय पर हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं, और जो लोग घर से बाहर चले जाते थे तो सुबह उनके लिए नाश्ता बना के दे दिया, टिफिन बॉक्स पैक करके दे दिया, आप शाम को आएंगे बच्चे तो उनको देखा जाएगा, हस्बैंड रात को आएंगे तो उनको देखा जाएगा, तब तक उनके पास एक ब्रीदिंग स्पेस था, वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे तो वो सब कुछ कर सकते थे, अपना टाइम टेबल था। अब अचानक वो टाइम टेबल मेसअप हो गया, ये सारे टाइम घर पे हैं और घड़ी घड़ी पूछ रहे मम्मी मेरे को ये दो ऐसा करो वैसा करो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बाउंस हो गए। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय पर एक नेचुरल बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी कि बच्चे घर पे नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट जब वो बाउंड्रीज हट गई तो सब कुछ मिक्स हो गया, तो मैनेज करना मुश्किल हो गया।
3: इसलिए कहीं ना कहीं पर्सनल बाउंड्रीज भी जरूरी है। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसी भावनाएं हैं जैसे हमें लगता है कि वो प्यार है, लेकिन उस प्यार में जब हम कुछ चीजें लिमिट लगा देते हैं या बाउंड्री सेट करते हैं तो गिल्टी या सेल्फिश फील करता है, बुरा फील करता है, तो क्या ये फील करना चाहिए या नहीं चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। गिल्टी फील करना ये सबसे बड़ी सजा है इंसान के लिए, चाहे आप गलती करो या ना करो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि वो हमेशा गिल्टी फील करते रहते हैं। गिल्टी फील करने का कारण है लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ लव की कमी।
3: ओके।
1: खुद के महत्व को, खुद की स्ट्रेंथ को न जानकर, उसकी परवाह न करना, उसको इम्पोर्टेंस न देना, इस वजह से सेल्फ वर्थ को न जानने की वजह से गिल्टी फील करते हैं। दूसरा सेल्फ लव नहीं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात में जब दूसरों को हम प्रसन्न नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, तो हमें गिल्टी फील होता है। जैसे मदर का भी ही मैं एग्जांपल दूंगी, जो होम मेकर्स है उनका, कि समझो फॉर एग्जांपल एक घटना बताती हूँ, बच्चा आया स्कूल से, है ना, मैं मेरी ही लाइफ का उदाहरण देती हूँ, बच्चे को चावल पसंद है लेकिन माँ ने आज चावल किसी कारण से नहीं बनाए, रोटी सब्जी ही बना के रखी। बच्चा स्कूल से आया, उसने बोला मम्मी चावल कहाँ है, तो कहा बेटा आज तो नहीं बने हैं, आज तुम रोटी सब्जी ही खाओ। तो बच्चे ने रोना धोना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो पता है ना मुझे चावल ही पसंद है, फिर तुमने चावल क्यों नहीं बनाए और अभी मुझे तो चावल ही चाहिए। तो माँ को गिल्टी फील होता है कि अरे मेरे बच्चे को ये चाहिए था और मैंने ये नहीं बनाया या नहीं बना पाई या अभी है नहीं घर में उस स्टॉक में, तो उसे गिल्टी फील होता है। अब बताइए क्या उस माँ को गिल्टी फील होना चाहिए या उसे बच्चे को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि बच्चा जब कुछ चीज नहीं है तो उसके लिए जिद करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, बच्चे ने तो जिद किया लेकिन मुझे गिल्टी फील नहीं करना है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए जरूरी था मैंने किया है और किसी कारण की वजह से मैं उसकी पसंदीदा चीज नहीं बना पाई। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को जानना, अरे मैंने सुबह से लेकर दिन भर इनके लिए सब कुछ करती हूँ मैं, अब छोटी सी चीज अगर मैं नहीं कर पाई तो उसके लिए मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं बच्चे के साथ बात करूंगी, उसको एंटरटेन करूंगी, उसको अच्छे से समझाऊंगी, वो समझेगा, नहीं समझा तो थोड़ी देर के लिए रो लेगा और चुप हो जाएगा, भूख लगेगी तो खा लेगा। सो ये है बच्चों का अपने माँ बाप को मैनिपुलेट करने का तरीका। अब वो हमारी भावनाओं से खेल रहे
3: हैं पता भी नहीं है ऐसा हो रहा है
1: और हम गिल्ट में चले जा रहे हैं,
3: फील कर रहा है जैसे ना जी। ओके, तो फील नहीं होना चाहिए मतलब, लेकिन दीदी, जैसे ये आपने एक मदर के कॉन्टेक्स्ट में बताया, क्या मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी कुछ यूथ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे समझ सकते हैं क्या कि कब वो गिल्टी फील करते हैं या मतलब नहीं जहां उन्हें करना चाहिए? कई चीजें तो ऐसी भी हैं जो समझनी चाहिए, लेकिन कई चीजें क्या ऐसी हैं जो गिल्ट में ले जाती हैं पर नहीं होना चाहिए? लाइक हम मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, फ्रेंडशिप में भी देखते हैं, क्या ये वहां पे भी कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जो हमें लगता है हम इसे नाम दे देते हैं दोस्ती का या प्यार का, लेकिन फिर हम खुद ही गिल्ट में जाते जाते हैं या फिर बुरा फील करते जाते हैं? क्या ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हम थोड़ा और समझ सकते हैं इस बात को? श्रीनिधि जी या दीदी, आप में से कोई?
2: मैं समझता हूँ ये एक ऐसा चीज है जहाँ पर रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये फैमिली के रिलेशनशिप्स हो, बच्चे या माँ के बीच में हो, मगर ये सारे ही रिलेशनशिप्स पे लागू करता है। आपने फ्रेंडशिप्स की बात कही, मैं वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स की भी बात करता हूँ। अगर आप कोलीग्स के साथ काम करते हैं तब आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को आप गिल्ट फील करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं हर दिन किसी के काम में मदद करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं हर दिन ही कर रहा हूँ, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि मतलब मैं जब भी मदद मांगूंगा ये व्यक्ति मेरे लिए ही अवेलेबल, ऑफिस का ही काम है, समझ ले कि मैं किसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद कर रहा हूँ। मगर आज मेरा कुछ और काम निकल आया जिसकी वजह से मुझे बैंक जाना पड़ रहा है, और उसी समय उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप आओ, ये काम अभी करना है अर्जेंट, और मैंने कहा कि नहीं मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, कोई और मेरा इंतजार कर रहा है मुझे उसके जाना। तो अब उन्होंने कहा अरे मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं आपको क्यों बुलाती, जरूरत के समय पर तो दोस्तों की मदद की जरूरत होती है ना, आप तो बैंक चले जाना चाहते हो। तो अब मुझे ये गिल्ट फील होता रहेगा कि भाई ये जरूरत के टाइम पे मदद नहीं की, क्योंकि हमने ये चीज सुनी हुई भी है कि भाई जरूरत के समय पर तो मदद हमेशा देने की जरूरत है। अब मैं इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, जरूरत के समय पर उनके काम नहीं आया। बिल्कुल, हम अंग्रेजी में ये कहावत सुनते हैं, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड, पर सही अर्थ में अब मैं दोस्त ही नहीं रहा,
3: अच्छा दोस्त ही नहीं हूँ।
2: हाँ, और आप अपने आप को उस लेवल के साथ अब चला के चल रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हमेशा मौजूद हो, अवेलेबल हो, हर चीज को कर सके, ऐसा संभव नहीं होता। हर एक व्यक्ति के अपने लिमिटेशंस हैं, हर एक व्यक्ति अनेक चीजों से घिरा हुआ है, हर एक के अपने अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन चीजों को समझ कर चलना शायद आवश्यक हो। और दोस्तों में जब ये खास चीज होता है तो तब हम अक्सर समझाने का प्रयास नहीं करते। जब ऐसे कोई लेबल्स पास किए जाते हैं, आपको गिल्टी फील करा दिया जाता है, तो आप उस गिल्ट को कैरी करते हैं, और उस समय पर ये आवश्यक होता है कि हम कैसे इस चीज को प्रोसेस करें। ऐसी घटनाएं होती हैं, बट उन घटनाओं को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में समझना
3: होगा।
2: कल्पना जी बता सकते हैं कि भाई ऐसे अनेक घटनाओं को लोग संजो कर रखते हैं जिसमें वो उन्हें अपने आप को गिल्टी फील कराया और गिल्ट लेके चल।
3: भारीपन वो गिल्ट।
1: जैसे ऑफिस में जब हम काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी काम आता है उसको पेंडिंग में रखते जाते हैं, है ना, फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल, पेंडिंग रह जाती, और फिर हमें स्ट्रेस आता है उन पेंडिंग फाइल्स को देखकर कि अरे इतनी ज्यादा हो गई। इमोशंस का भी ऐसे ही, इमोशन को भी अगर हम पाइल अप करते जाएंगे, जैसे गिल्ट को बचपन से लेके बड़े होने तक मैं गिल्ट को कैरी कर रही। बचपन में मैंने कुछ गलत किया, उसका गिल्ट कैरी किया, मेरे से कुछ गलत हुआ बचपन में, उसका गिल्ट कैरी कर लिया, तो वो आदत बन जाती है गिल्टी फील करने की। और हर छोटे बड़े जिसमें मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं भी की, उसमें भी मुझे गिल्टी फील होता है, सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे कारण सबको तकलीफ हो रही, इस तरह से खुद को विक्टिम बना लेते। तो अब क्या करना है, जो फाइल्स हम पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग में डाल रहे हैं ना, उसको उसी समय क्लियर करना है। समझो कि फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आपकी कोई बात हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई या आपको गिल्टी फील हुआ, अब वो गिल्टी कॉन्शियस को हम कैसे रिलीज करें? तो सबसे पहले है, जिसके साथ आपको गिल्टी फील होता है उनके साथ जाकर बात करें, तुरंत जाके सॉरी भी कहने की जरूरत नहीं, बात करें, एक नॉर्मल बात करें, एक्सेप्ट करे कि मेरे से गलती हो गई, इस बार ये छोटी सी गलती थी, कई बार मेरे से बड़ी भी गलतियां हो जाती है, इसी कोई बात नहीं है। और इंसान अगर जिंदा है तो उसे गलती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो गिल्ट फीलिंग को उसी समय रिजॉल्व करना है, जाकर बात करो सामने वाले से, सॉरी कह दो एक बार। बार बार सॉरी कहना भी आपकी लाचारी को दर्शाता है, और उस बात को भूल जाओ सामने वाले से, फिर नॉर्मल व्यवहार में आ जाओ, फिर उस बात को बार बार याद नहीं करो। तो मैं बार बार उसी बात को सोचती रहूंगी, वो मेरा ऑब्सेशन हो जाएगा, फिर वो गलत बात मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी। सो गिल्टी फील करने की जो फाइल्स है उसको पाइल अप ना करे, उसी समय उसे रिजॉल्व कर दे।
3: रिजॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दीदी, क्या हम जाते जाते कुछ ऐसा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने अभी तक जो पाइल अप करके रखा है उसको कहीं ना कहीं हम रिजॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल। सो अपनी गिल्ट को, अपनी नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की बहुत आवश्यकता है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण और शक्तियां होती है, उन शक्तियों को हम याद करें, उन स्ट्रेंथ्स को याद करें और अपने आप को याद दिलाएं, आई एम वर्थ टू लिव, मुझे जीने का हक है और मुझे खुशी से जीने का हक है। तो आइए चलिए कुछ मिनटों के लिए एक निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाएं, गहरी और लंबी सांस लें।

0: मुझ में ये गुण विशेषताएं हैं, अपनी काइंडनेस को, अपनी अच्छाई को याद कर गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप से बात करें, मैं जो हूं जैसी हूं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करती हूं। मुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी, उन कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ। कई बार मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं खुद के साथ कंपैशनेट रहकर उन गलतियों को आगे के लिए सुधारने में प्रयासरत रहती। मेरी गलतियों के लिए गिल्टी फील करने की बजाय मैं उसके लिए सॉरी कहकर उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करती। हर बार मेरी ही गलती हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मैं खुद की गलती को माफ करती हूं, वैसे मैं दूसरों की गलत, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं एकाग्र हूं, मैं खुश हूं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी. एक्चुअली बहुत लाइट फील हुआ ये एक्सपीरियंस करके, और ऐसा लग रहा है सच में 5 मिनट एक्सपीरियंस करके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है. तो डेली अगर हम कर लें तो कितना फायदा होने वाला है हमें. सिर्फ 5 मिनट और फायदा 24 घंटे का, और उससे भी ज्यादा, बल्कि फायदा ही फायदा है. थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के लिए. और फिलहाल वक्त हो गया है हमारे दोस्तों से इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, अपनी भावनाओं से भी और इस कार्यक्रम से भी. तब तक आइए जिंदगी को मिलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
2: मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं.

0: ने भारत को मान दिया, जननी माँ को अभिमान दिया, राजे राजवारों से मिलकर पूरे भारत को बनाया अनुपम, जिसने खंडित भारत भूमि का नक्शा नया सवारा था। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सच्चा सरदार हमारा था, सच्चा सरदार हमारा था। दोस्तों, इतिहास किताबों में तारीखें लिखता है, लेकिन राष्ट्र उन्हें याद रखता है जो दृढ़ इरादों को अपना ढाल बना लेते हैं। आज हम उस व्यक्ति की कथा सुनेंगे जिन्होंने बोला कम, अडिग रहे, झुके नहीं और ना ही देश को झुकने दिया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला बच्चा बना देश का सरदार और किया मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के सपने को साकार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। तो चलिए सुनते हैं आज गीत बन्नों को कहां लेकर गई है। अरे, ये तो कोई गांव लग रहा है। यहाँ कई किसान इकट्ठा हैं और किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे युवा वल्लभ भाई पटेल भी उनके बीच उपस्थित हैं। लगता है जैसे वकालत कर अभी अभी वापस आए हों। चलिए सुनते हैं गीत और बन्नो वहाँ खड़े होकर क्या बात कर रही हैं।
1: गीत, सब लोग गांधी जी की बात करते हैं, पर ये सरदार पटेल कौन थे? आप मुझे यहाँ लेकर तो आई हो सरदार जी की कहानी सुनाने और दिखाने, मगर वो थे कौन? क्यों उन्हें सरदार कहा जाता था? वो तो पगड़ी भी नहीं पहनते थे।
2: बन्नो, अगर गांधी जी भारत की आत्मा थे तो सरदार जी थे लौह पुरुष।
1: गीत, क्या सरदार जी बचपन से ही इतने सख्त थे? देखो ना, कितने खामोश से दिख रहे हैं, चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं।
2: नहीं बन्नो, वो सख्त नहीं थे, वो मजबूत थे, अपनी बात कहने का साहस रखते थे। बचपन से ही ये गुण उनमें कूट कूट कर भरा था। जैसे जैसे बड़े हुए, वो एक स्वाभिमानी और निडर नेता के रूप में पहचाने जाने लगे।
0: नाडियाद की धरती पर एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे वल्लभ भाई। पिता किसान और माँ गृहिणी थी। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर उभरेंगे, जो अपने नेतृत्व कौशल से न सिर्फ संगठन को मजबूत करेंगे बल्कि देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले वल्लभ भाई पटेल ने एक कामयाब वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी वकालत अच्छी चल रही थी जब वो गांधी जी के संपर्क में आए। तत्पश्चात बापू के चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने पटेल के जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी।
1: गीत, ये बताइए, खेड़ा जिले के इस गांव में किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है और पटेल जी यहाँ क्या कर रहे हैं?
2: थोड़ा धीरज धरो, बताती हूँ। ये साल 1918 की बात है। पटेल खेड़ा जिले में प्लेग बीमारी और अकाल को लेकर राहत कार्य चला रहे थे। तभी खबर मिलती है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों की कर छूट की याचिका को ठुकरा दिया है। गांधी जी चंपारण में व्यस्त थे तो उन्होंने वल्लभ भाई को खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा। पटेल ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।
3: अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ चुप रहना किसी अपराध से कम नहीं है। कानून का काम है सही गलत का फैसला करना, पर देश के लिए भी हमारा कुछ फर्ज है। हमें अपनी एकता कायम रखनी है और अहिंसक तरीके से अपनी मांग रखनी है।
0: वल्लभ भाई के इस उद्बोधन के बाद खेड़ा जिले के गांव में जमा किसानों की भीड़ में कुछ सुबुगाहट शुरू हो गई। किसान उलझन में थे कि क्या करें जिससे उनकी समस्या का निदान हो।
4: वल्लभ भाई तमे सही कह रहे हो, लेकिन अंग्रेज जो लगान बढ़ा रहे हैं उसे कितना उचित कहेंगे आप? खेती आपड़ी, फसल आपड़ी और फायदा वो ले जाए।
0: तब पटेल उत्तर देते हैं,
3: डरे नहीं, अहिंसा की शक्ति पर विश्वास रखे। एकजुट रहेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
2: बन्नो, यही वो पल था जब वल्लभ भाई पटेल केवल एक वकील नहीं रहे बल्कि किसानों की आवाज बन गए।
0: गीत और बन्नो की बातें चल ही रही थी, तभी अचानक दूर से अंग्रेजों के दो सिपाही भीड़ की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दिए। वो एक एक कर आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लेते जा रहे थे, लेकिन पटेल को हाथ नहीं लगा सके, उन्हें चेतावनी ही दे पाए। आगे सुनेंगे कि कैसे यही वल्लभ भाई पटेल बने किसानों के सरदार और राष्ट्र की रीढ़। ये था सरदार, मिट्टी से बना लौह संकल्प, भारत माता के लिए उनका प्रेम।
5: मिस्टर पटेल, ओबे द क्राउन, ये हुकूमत है।
3: हुकूमत डर से चलती है और देश विश्वास से। हम डरने वाले नहीं।
0: खेड़ा आंदोलन के बीच जब पटेल गांधी जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो वो अपने चरखे पर काम कर रहे थे। उन्होंने पटेल जी से पूरी घटना सुनी, फिर बड़े ही धैर्य से बोले,
6: वल्लभ भाई, देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है जो सत्य की मशाल को थामे रहें, चाहे आंधी कितनी भी तेज क्यों ना हो। वल्लभ भाई, सत्य और अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि इससे साहस बढ़ता है।
3: बापू, मैं लड़ना जानता हूं, पर देश के लिए खुद को पीछे रखना भी सीख लूंगा। अगर यही साहस देश को आजाद कर सकता है तो मैं कांग्रेस के साथ हूं बापू।
6: वल्लभ भाई, खेड़ा के किसान टूट चुके हैं, अकाल है, फसल नहीं और फिर भी लगान की मांग।
3: बापू, अगर किसान झुकते हैं तो अन्याय जीत जाएगा, और अगर हम साथ खड़े रहे तो इतिहास बदलेगा।
0: वल्लभ भाई की बातें सुनकर बन्नो ने गीत से पूछा,
1: दीदी, ये वही खेड़ा सत्याग्रह है?
2: हाँ बन्नो, खेड़ा सत्याग्रह केवल आंदोलन नहीं था, ये पहली बार था जब किसानों ने डर के सामने सिर नहीं झुकाया।
0: गांधी जी से भेंट करने के बाद पटेल पहुंचे किसानों के पास ताकि उनकी मनस्थिति को समझ सके, उनके मन से अंग्रेजों का डर मिटा सके।
7: वल्लभ भाई, घर में अनाज नहीं है, अने सरकार लगान मांग रही है।
3: लगान हम नहीं देंगे, जेले भर जाएंगी पर आत्मसम्मान नहीं टूटेगा।
8: नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
0: वल्लभ भाई झुके नहीं, ना लालच से ना लाठी से। उन्होंने खेड़ा में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और एक वर्ष के लिए कर वसूली को निलंबित कर दिया गया। यह वल्लभ भाई की पहली जीत थी। इस घटना के बाद वो ना सिर्फ गांधी जी के और समीप आए बल्कि उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली। वो एक नायक बनकर उभरे। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का विचार समाहित था और रणनीति थी पटेल की। यही कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार पीछे हटना पड़ा।
1: दीदी, तभी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को इतना मानते थे?
2: हाँ बन्नो, गांधी जी कहते थे, जहां मुझे कठोर निर्णय लेना होता है वहां मैं वल्लभ भाई को देखता हूँ।
0: वल्लभ भाई पटेल वैसे तो साल 1917 से किसानों से जुड़े मसले सुलझाने के लिए प्रयासरत थे। खेड़ा सत्याग्रह के पश्चात वो बापू द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और यहीं से वो स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग बन गए। ऐसे रमे कि सर्वस्व त्याग, खुद को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। असहयोग आंदोलन को भावनात्मक अपील गांधी जी ने की, पर उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरदार जी ने संभाली। इस आंदोलन के दौरान लोग सरकारी स्थानों, चीजों और नौकरियों का भी त्याग कर रहे थे, मगर कुछ लोग इतने बड़े फैसले को लेने से घबरा रहे थे।
9: सरदार, सरकारी स्कूल छोड़ने को लोग तैयार है, पर डरते हैं। रोजगार का होगा क्या?
10: डर स्वाभाविक है, इसीलिए असहयोग अराजकता नहीं हो सकता। राष्ट्रीय विद्यालय बनेंगे, स्वदेशी उद्योग खड़े होंगे, आज की कुर्बानी आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलेगी।
2: बन्नो, सरदार का नेतृत्व भाषणों में नहीं, योजना में बोलता था।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: आगे सुनो।
0: आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के सचिव सरदार पटेल के पास एक समस्या लेकर आते हैं।
11: सरदार, हजारों लोग गिरफ्तारी को तैयार हैं, लेकिन सूची, व्यवस्था, जिम्मेदारी?
10: हर गिरफ्तारी दर्ज होगी, परिवारों की मदद होगी। आंदोलन भावुक हो सकता है, पर अराजक नहीं।
0: असहयोग आंदोलन में जहां एक ओर त्याग था, वहीं दूसरी ओर सरदार पटेल की लोहे जैसी व्यवस्था थी। यही कारण था कि जब आंदोलन रुका तो वो टूटा नहीं, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हाथों में थी।
1: दीदी, तो सरदार जी सिर्फ लड़ते नहीं थे, सबको संभालते भी थे।
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास को संभालते हैं। सरदार वही करते थे।
0: इसके बाद पूरे आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल लोगों की हिम्मत बने, उनके अंदर जोश भरते रहे।
10: अगर जेल जाना पड़े तो याद रखना, हर कैद आजादी की नींव है।
1: दीदी, क्या आजादी ऐसे ही आएगी?
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग अपने सुख को कुर्बान करके देश का भविष्य बनाते हैं।
0: असहयोग आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 3 महीने की सजा हुई और साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल की उन दीवारों के भीतर वल्लभ भाई पटेल केवल कैदी नहीं थे, वो सोच रहे थे कि आंदोलन के बाद देश को किस तरह संभालना होगा।
1: दीदी, अगर सब जेल में होंगे तो देश कैसे चलेगा?
2: यही तो सरदार जी की सोच थी बन्नो। देश केवल जोश से नहीं चलता, व्यवस्था से चलता है।
0: कैद के उन दिनों में सरदार का मन भविष्य की योजनाएं गढ़ रहा था। अनुशासन, नियम, जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होगी, इनको लेकर ही सारे विचार चल रहे थे। वो जानते थे कि आज अगर संगठन टूटा तो कल राष्ट्र टूट जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगे,
10: क्रांति अगर बेकाबू हो जाए तो उसका लाभ शत्रु उठाता है। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो आगे की दिशा तय करेगी।
1: दीदी, तो सरदार जी हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा एवं सत्याग्रह पर पूर्ण विश्वास रखते थे।
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग तलवार उठाते हैं और कुछ मयान बनाते हैं। सरदार मयान थे, जो तलवार को सही समय पर चलने देते थे।
8: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
0: समय बीता और देखते देखते साल 1928 के 4 फरवरी का दिन आया। वल्लभ भाई पटेल को एक नई जिम्मेदारी मिली, उन्हें बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करना था, जो बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध संघर्षरत थे। सर्वप्रथम सरकार को पत्र लिखा गया, लेकिन कुछ सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने पर पटेल ने किसानों को संगठित किया तथा उन्हें लगान न अदा करने के लिए कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करवाने का अनुरोध किया। बारदोली सत्याग्रह नाम से एक दैनिक पत्रिका निकाली गई। बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया। ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने बंबई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। उधर पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए वैकल्पिक नेतृत्व के लिए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। किसानों का आंदोलन चल रहा था और वो कड़ी धूप में अपनी मांग पर डटे हुए थे।
4: हमें भूखे मरी रहा है सरदार, अने ये जालिम कहते हैं लगान दो के पची जमीन छोड़ दो।
3: जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे पूर्वजों की है, कोई अंग्रेज तुम्हें तुम्हारे घर से बेदखल नहीं कर सकता। यह हमारा अंतिम संघर्ष है, हम लगान नहीं देंगे, एक पैसा नहीं।
5: डिसोबीडियंस, सेडिशियस बिहेवियर, तुम सबको जेल भेजा जाएगा।
3: जेल हमारी आजादी की पहली सीढ़ी होगी, डरना मत। जब किसान खड़ा होता है तो कोई हुकूमत उसे झुका नहीं सकती।
8: वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद।
0: बारदोली आंदोलन की एक और विशेषता रही कि इसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदोली के लोग पटेल के नेतृत्व से बेहद प्रभावित हुए। इसी सत्याग्रह के दौरान पटेल को वहां की औरतों ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच करने का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध घोषित किया गया। सरकार को लगान घटाना पड़ा। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसान आंदोलन सफल रहा। गांधी जी ने सफलता पर कहा, बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है।
8: सरदार सरदार सरदार सरदार सरदार सरदार,
3: वंदे
8: मातरम,
3: वंदे
8: मातरम,
3: वंदे
8: मातरम।
0: साल 1931 में जब गांधी जी डांडी मार्च पर निकले तो सरदार पटेल को रास गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। वो महीनों जेल में रहे, पर उनके साहस के किस्से हर गली हर गांव में गूंजते रहे। वो आंदोलन के सेनापति थे और राष्ट्र के शिल्पकार भी। उनकी और बापू की गिरफ्तारी के बाद देश में नमक सत्याग्रह और तेज हो गया। जब दोनों रिहा हुए तो देश एक नई दहलीज पर खड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन अब केवल भावनाओं से नहीं, व्यवस्थित होकर अनुशासन से आगे बढ़ना चाहता था। इसी मोड़ पर कराची के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। अधिवेशन से ही गांधी इरविन समझौते का ऐलान किया गया। न्यूनतम मजदूरी, अस्पृश्यता एवं दास प्रथा के उन्मूलन के साथ एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की वकालत की गई। सरदार का अनुशासन और नेतृत्व क्षमता ऐसी थी कि कांग्रेस हर मुश्किल दौर से निकलती गई। बारदोली सत्याग्रह से लेकर आजादी के बाद राज्यों के एकीकरण तक उन्होंने हर चुनौती का सामना दृढ़ता से किया। उनकी सूझबूझ और संगठनात्मक क्षमता ने ही स्वतंत्रता संग्राम को एक ठोस दिशा दी। कोई भी समस्या हो, पार्टी के कार्यकर्ता उनके ही पास जाते थे।
11: सरदार साहब, संगठन बिखरा हुआ है, कार्यकर्ता जोश में हैं, पर दिशा साफ नहीं।
10: तो पार्टी को जोड़ेंगे, चुनाव, चंदा, अनुशासन भी लाएंगे। कांग्रेस केवल आंदोलन नहीं, एक मजबूत संस्था बनेगी। कांग्रेस को अब नारे नहीं, संगठन।

0: मजबूत ढांचे की आवश्यकता है।
1: यह सुनकर एक दूसरे कार्यकर्ता ने कहा,
2: लेकिन सरदार इतने बड़े जन आंदोलन को काबू में कैसे लाएंगे?
3: वंदे मातरम।
1: सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना कांग्रेस में केवल पद परिवर्तन नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। पटेल ने पार्टी को एक कुशल राजनीतिक मशीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांतों को कांग्रेस की मुख्य नीति बनाया, यूं कहें कि पार्टी को सत्ता के लिए तैयार किया।
4: दीदी, लोग उन्हें आयरन मैन क्यों कहने लगे?
5: क्योंकि बन्नो, वो भावनाओं में नहीं बहते थे, परिस्थितियों को संभालते थे। उनका दिल नरम था पर निर्णय लोहे जैसे।
1: एक ओर वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस संगठन और किसानों को उनका अधिकार दिलाने में जुटे हुए थे, तभी लंदन में हुआ गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। ये साल 1932 का समय था। देश में दोबारा से संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी एवं पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को यरवदा जेल में डाला गया। कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी थे, उनकी परछाई नहीं। यानी दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद था, लेकिन जेल में दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों के बीच स्नेह एवं विश्वास का एक नया संबंध कायम हुआ। खेड़ा हो, बारदोली, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, सब में एक बात समान रही, वो था सरदार पटेल का अनुशासन। उन्होंने नारा जितना ऊंचा दिया, जिम्मेदारी उतनी ही गहराई से निभाई। जब कोई आंदोलन जनजीवन को हर क्षण उद्वेलित करने लगे तो उसे नेतृत्व नहीं विश्वास चाहिए होता है। गांधी जी के उस विश्वास का नाम था वल्लभ भाई पटेल। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा था,
2: एक देश तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते।
5: बन्नो, बापू के इन शब्दों ने भारत की जनता पर जादू सा असर डाला। वे नए जोश, साहस, संकल्प, नई आस्था, निश्चय एवं विश्वास के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े।
4: अच्छा दीदी,
1: भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी के समय सरदार पटेल ने भी अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओजस्वी भाषण दिया था।
6: ब्रिटिश हुकूमत अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बंदी बना ले तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को खुद को कार्यकर्ता समझना होगा, उसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, प्राण की बाजी लगाकर देश की आजादी के लिए संघर्ष करना होगा, तभी स्वाधीनता स्वयं हमारा दरवाजा खटखटाने लगेगी।
1: भारत छोड़ो आंदोलन मूल रूप से एक जन आंदोलन था, जिसमें देश के हर जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने भी अग्रणी भूमिका निभाई, अपने कॉलेज छोड़ दिए, जेल का रास्ता अपनाने लगे। सरदार पटेल ने अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर देश भर की यात्रा की और आंदोलन के प्रति नागरिकों में नया जोश भरा। आगे के भाग में हम सुनेंगे कि कैसे सरदार ने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक बना दिया और कहलाए लौह पुरुष। आप सुन रहे थे एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते कहानी और दिलचस्प मोड पर आने वाली है।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। हमें सभी से मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, न जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए सभी से प्यार से रहना है। और जी हाँ, आपको बहुत ही सुंदर टिप्स देने वाली हूँ कि इस पर बहुत ही सुंदर गहनों के ऊपर ही है, लेकिन कौन से गहने को हम आज चमकाएंगे वो आप आशियाना सुनेंगे तो जान जाएंगे। और जी हाँ, आज खुशनुमा जीवन की बात करने वाले हैं और आज बनाएंगे चोरा फली, प्रश्न भी पूछने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ओए रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। आज आपको बहुत ही सुंदर विचार देने वाली हूँ। वैसे तो आपको सुना चुकी हूँ कि भाई हमें सभी से मिलजुल करके प्रेम से रहना चाहिए। न जाने कब हमारा बुलावा आ जाए और इस दुनिया को छोड़ करके हमें जाना पड़े। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था उनके समक्ष था। शिष्य बोला, गुरुजी आप अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं, न तो आप किसी पर क्रोध करते हो न ही किसी को भला बुरा कहते हैं, कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे रहस्य के बारे में अवश्य जानता हूँ। शिष्य विस्मय से भर गया और बोला, वे क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तो गुरुजी बोले, तुम एक हफ्ते में ही मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले, कोई और कहता तो शिष्य को ये बात बुरी और मजाक लगती, लेकिन स्वयं संत तुकाराम जी के मुख से निकली बात को कोई कैसे भला टाल सकता है, काट सकता था। तो शिष्य उदास हो गया और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और अपने स्वभाव से उलट किसी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, क्रोध नहीं करता। वह अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में बिताने लगा। वह उनके पास भी जाने लगा और प्रेम पूर्वक मिलने लगा, जिनको पहले वो नफरत करता था, दूरी बनाए रखता था, जिनसे उसने कभी अभद्रता भी की थी या गलत व्यवहार भी किया था। वह उनसे माफ़ी मांगता, हंसता बोलता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को हफ्ता पूरा होने को आया। इस पर शिष्य ने सोचा, चलो एक बार आखिरी बार गुरुजी के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अब समय आ पहुंचा है इस दुनिया को छोड़ करके जाने का। वे गुरु के समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। इसके बाद गुरुजी बोले, ये बताओ कि तुम्हारे पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? शिष्य बोला, नहीं नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, तो मैं भला कैसे सबसे नाराज हो सकता हूँ। मैं सबसे प्रेम से मिला, इतना ही नहीं मैंने जिन लोगों का दिल दुखाया था उनसे भी क्षमा मांगी। संत तुकाराम मुस्कराए और बोले, हाँ बस यही तो मेरे लिए ये तो मेरा कहना था भाई, तुम्हारे तुम कहते हो ना कि मेरा व्यवहार अच्छा कैसे है, तो यही रहस्य है कि मैं सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहता हूँ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ, और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम जी ने उसे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि हमें भी सभी से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वास्तव में हमारे पास 7 दिन ही तो बचे हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 8वां दिन तो बना ही नहीं। आज से परिवर्तन शुरू करें, और अगर पेंसिल बनकर किसी की खुशियां न लिख सको तो रबर बनकर के किसी का दुख तो मिटा सकते हो ना। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर हम सभी गौर करेंगे। और आइए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा मैं सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हुआ तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर टिप्स। मैंने आपको कहा कि गहने हैं, बर्तन है, आप चमका सकते हैं चांदी के, ठीक है भाई। दीपावली के काम चल रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कि हम सिर्फ तांबा पीतल स्टील के बर्तन ही साफ करेंगे। हमारे मंदिर में मूर्तियां होती है चांदी की, घर में कुछ बर्तन भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है, उनको भी चमकाना पड़ता है ना। तो बहुत ही सुंदर आपको मैं टिप्स दे रही हूँ ताकि आप सोने के या जा कर के नहीं चमकाए, अपने घर पर ही चमकाए। बहुत सारी बहनें क्या करती है, जैसे पायल काले पड़ जाते हैं, बिछिया काली पड़ जाती है या बर्तन काले पड़ जाते हैं तो सोने की दुकान पर जा कर के उनसे साफ करवाते हैं, इससे चांदी घिस जाती है। पता है आपको, आप करवा करके देखिएगा। बहुत सारी बहनों का फ़ोन आता है हमारे पायल पतले हो गए, हमारे बर्तन पतले हो गए, तो भाई होंगे ना, थोड़ी बहुत चांदी तो निकाल ही देते होंगे। पतले पड़ जाते इसका मतलब तो चांदी निकल जाती है, तो ऐसा क्यों करना है। अपने घर पर ही हम चमका सकते हैं ताकि हमारे बर्तन न तो पतले पड़े, न हमारे पायल पतले पड़े, ना ही घिसे, नए के नए पायल घिस जाते हैं और हमको क्या लगता है अरे वाह जैसे कि आज ही खरीदे हो, ऐसे हो जाता है। तो क्यों ना हम घर पर ही ये सब कुछ आजमाएं। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप अपने चांदी के बर्तनों और गहनों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो उन्हें हेयर कंडीशनर से भी साफ कर सकते हो, ठीक है। हेयर कंडीशनर से भी आप अपने चांदी के बर्तनों और गहनों को साफ कर सकते हो। अगर ये टिप्स नहीं आजमाना चाहते तो दूसरी भी आपको बता रही हूं कि टूथपेस्ट, सिर्फ इससे दांत ही साफ नहीं होते हैं, इससे फीके पड़ चुके चांदी के बर्तन भी आप चमका सकते हैं। ब्रश से अच्छी तरह घिस सकते हैं, नहीं तो

ग्रीन कलर का बर्तन मांजने का जो स्क्रब आता है उससे भी आप अच्छी तरह घिस करके टूथपेस्ट लगा दीजिए और उस कुच्चे से आप अच्छी तरह घिसिए, एकदम चमक उठेंगे। फिर धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह, न तो हमारे बर्तन न हमारे गहने घिसे हैं और जैसे कि आज ही खरीदे हो ऐसे चमकदार बन जाते हैं। अगर ये भी टिप्स नहीं आजमाना चाहते हो तो मैं और भी सुना रही हूँ आपको। नींबू और सोडा कैसे आप यूज़ करेंगे? अगर देखिए चांदी के बर्तन हो चाहे गहने हो, ठीक है, इसको चमकाने के लिए आप कुछ घंटों के लिए इन्हें नींबू और सोडा के घोल में छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप बाहर ला करके अच्छी तरह इसको पोंछ लीजिए तो चांदी के बर्तन चमक उठेंगे। नींबू और सोडा का घोल बना दीजिए, घोल बना करके इसमें बर्तनों को थोड़ी देर गहने हो चाहे बर्तन हो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें ही इस घोल में। उसके बाद आपको भले धुलाई कर लीजिए, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, भले पहले थोड़ा सा रगड़िए स्वच्छ कपड़े से फिर धुलाई करके फिर से पोंछ लीजिए तो देखिए गहने हमारे चमक उठेंगे। और लास्ट आपको नुस्खा दे रही हूँ कि आप चाहे तो हम घर में देखिए सर्फ तो यूज़ करते ही हैं, अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट होते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए और इस पानी में इसको डाल करके गर्म करिए, फिर चांदी के बर्तन या गहने इसमें डुबो करके रख दीजिए। कुछ देर डुबो के रखना है, उसके बाद निकाल करके ब्रश से हल्का हल्का रगड़िए, उसके बाद साफ पानी से धो करके पोंछ लीजिए तो भी चांदी के बर्तन हो या गहने हो साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे अच्छे हैं, आप चाहे तो आजमा सकते हो। और भाई ऐसे तो नहीं कि भाई चांदी के बर्तन के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो हम घर पर ही इस तरह साफ कर सकते हैं, न सोनी के यहाँ जाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्यों हम बैठे बिठाए अपनी चांदी को घिसवाएं। तो ये टिप्स तो आपको दी है, अब मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साधु संत और योगी हैं तब के और हम सभी हैं अब के, साधु संत और योगी ये है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। हमारे नंबर है 94 14 15 14 15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए पुनः सुनते एक प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: आज का विषय है कहीं पे निगाह है कहीं पे इशारा, कहीं पे इशारा कहीं पे निगाह है, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। आज हम चलिए इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं, कैसे बेटियों को समझाते थे पहले और कैसे बहुएं समझ जाती थी। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 9414151415। हेलो
2: हेलो, जय माता दी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: आपका भी आशियाना प्रोग्राम के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: यदि आप बोलते हो कि जब सुबह का समय खास होता है तो उषा आती है आपके पास।
1: अच्छा,
2: तो वैसे भी सुबह का समय फिर खास हो जाता है।
1: अच्छा, धन्यवाद।
2: और खास में फिर पास तो हो ही जाता है ना
1: जी।
2: और बस हमारे सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी
1: जी।
2: और टॉपिक तो आप बहुत ही सुंदर लेके आए हो। सबसे पहले तो आपको एक धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सुविचार भी बहुत ही सुंदर कहा।
1: थैंक यू।
2: क्योंकि किसी के साथ मिलजुल के रहना, क्योंकि ये जिंदगी छोटी है इसलिए
1: जी।
2: तो बहुत ही सुंदर, आपको जितना धन्यवाद बोले जितना कम है। और
1: अरे नहीं, नहीं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है।
2: बिल्कुल। और अभी का खुशनुमा जीवन की बात है जो आपने कल के प्रश्न के ऊपर लेके आए हो
1: जी,
2: तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, पहले के जमाने में तो चलो बहुओं को दाएक भी बोलते थे तो चलता था
1: जी,
2: बेटों के सामने भी बोलते थे तो चलता था, मगर आज के जमाने में मतलब 100 में से 10% तो अभी भी

0: बात शुरू हो गया ना, तो बेटे आजकल क्या है, बेटे भी है ना शादी के बाद बहुत पत्नियों की ज्यादा सुनते हैं।
1: जी जी जी,
0: क्योंकि वो रोटी हाथ में लेते हैं ना तभी पत्नी की बात चालू हो जाती है।
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उनको भी पता है कि ये खाना खाते खाते तो कहीं नहीं जाएंगे, बात पूरी सुनेंगे।
1: जी
0: तो मतलब बेटियों इस ये कलयुग है, और कलयुग में अगर आप बेटियों को समझाएंगे ना कि बेटा आपको भी ससुराल जाना है, ससुराल में ऐसे रहना है, खर्चे ज्यादा नहीं करने हैं, ऐसे सबका कहना मानना है, वैसे करना है, तो वो इशारा शायद बहुए समझ सकती है, और घर का माहौल भी खराब नहीं होगा
1: जी,
0: और मतलब सब ठीक भी हो सकता है
1: जी।
0: वो कहते हैं ना कि देखिए वो जो बुद्धिमान होता है उसको इशारा ही काफी है।
1: बहुत सुंदर।
0: और मूर्ख होते हैं ना उनको तो फिर आप कितना मतलब कहते हैं ना कि वो उनके सामने ढोल पीटने से कोई मतलब नहीं है।
1: जी जी, बहुत
0: ग्राम में ढोल पीटोगे तो भी उनके कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: जी सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
0: आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी, तो आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, जरूर आप जवाब दीजिएगा कि साधु संत और योगी है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? तो जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि बेटी को समझाते हैं और बहुएं समझ जाती है, तो इस विषय पर भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में आप जुड़ सकते हो, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। सुरेश भाई ने कहा है कि देखिए पहले बेटियों को समझाया जाता था और बहुएं समझ जाती थी, और बिल्कुल सही है। आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, आज भी अगर घर में बेटियां हैं और बहू भी है और बहू कुछ गलत कर रही है तो हमेशा माँ अपनी बेटी को ही कहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बेटियों को तो माताएं बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं। फिर तो वो कहते हैं ना कि कुछ अपने भी संस्कार होते हैं जो अपने ससुराल में जाकर के वो प्रकट करते हैं, बाकी माता पिता अच्छी शिक्षा संस्कार ही दे करके विदा करते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
2: बस मैं भी आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है।
1: क्या हुआ?
2: सच में थोड़ा ये हो गया है, तो जुड़ा हूँ घर पे।
1: क्या हुआ, बुखार आ गया? क्या हुआ?
2: नहीं, कब्जियत थोड़ा हो गया है, थोड़ा पेट में गड़बड़ हो गई है।
1: जी जी जी जी जी जी,
2: हाँ तो घर पे ही हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ।
1: जी,
2: बहुत विषय भी आज का बहुत अच्छा है, और कल का भी जो बात थी वो आप बता रहे हैं, तो मैं मेरी बात बताऊँ।
1: जी,
2: कि भाई अभी अभी हमारे एक बहू है बड़े बेटे की, तो मैं तो घर पे नहीं था लेकिन मेरे घर से थोड़ा बोल गई
1: जी,
2: भाई बाहर पास में भजन मंडली है तो आप जल्दी जल्दी सब हम काम निपटा दे, लोग आएंगे तो बाहर का जो कपड़े धोने का काम है ऐसा वैसा
1: जी
2: कर दे, तो वो तो बोलने लगे मोबाइल पे बाद में बात करना ऐसा मेरे घर से बोल
1: जी।
2: तो वो बोली कि भाई उसने तो बहुत मचा दिए,
1: हंगामा खड़ा कर दिया
2: कि आप छुपा के घर में वस्तु रखते हो, ऐसा है तो ऐसा है, फ्रिज में दूध रखते हो तो छुपा के रखते हो, तो भाई फिर मैंने समझाया कि देखो ये बोली है तो सही बोली है, और फ्रिज में दूध रखते हैं तो कोई ताला लग फ्रिज को तो ताला तो नहीं लगाते
1: जी जी,
2: आपको ये इसका है अलग अलग रखते हैं लेकिन आपको उसमें से लेना है तुझे
1: जी।
2: मैंने थोड़ा ये कर दिया, फिर मेरी बेटी आई तो बेटी ने भी ऐसा, मैंने बेटी को

0: बोला जो आप आज गाड़ी से हैं, वो बोला कि आप तू कैसे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को तेरे ससुर और सास ने ऐसा मुझे खोल करके बताया था, तो तू ऐसा करते ऐसा करते नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने
1: जी जी
0: थोड़ी बात मेरी बेटी को की, तो ये बहू भी पास थी तो उसको समझ में आ गया ये सब बातें
1: जी।
0: तो ऐसा थोड़ा ये जरूरी है डायरेक्टली शुभ बात
1: जी जी, बहुत सुंदर। देखिए आपका तो प्रैक्टिकल अनुभव है।
0: प्रैक्टिकल अभी अभी हुआ था।
1: जी जी, होता है, घर में चार जने होंगे तो वो कहते हैं चार बर्तन भी आपस में टकराते हैं, तो चार जने होंगे तो उनके विचार अलग अलग होंगे जी।
0: लेकिन हमें बड़ों कैसे लेना है, इसको सुलत में कैसे ये करना है, वो एक करना पड़ेगा तुरंत जी, वरना तो ये हो जाएगा। कल तो मैं ये समझ में नहीं आया था, ये आपने घर में बात बताई थी, लेकिन आज तो मैं
1: जी जी
0: वो हुआ जो बताया
1: जी जी। बहुत सुंदर, आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
0: जवाब तो थोड़ा विचार करके ऑफलाइन में।
1: ठीक है ठीक है, आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए बेटियों को समझाएंगे तो बहुएं समझेगी, बाकी डायरेक्ट आप कहेंगे तो फिर तो तुत्तू मैं बढ़ेगी, इसलिए प्यार से बेटियों को ही समझाना है। वो भी कहते हैं कि शादी के बाद नहीं, शादी होने वाली होती है या कुंवारी होती है तब बेटियों को समझाते हैं, शादी के बाद तो उसके भी ससुराल का माहौल कैसा होता है, तो माता पिता अक्सर पूछते हैं कि अच्छा बेटा कैसे हैं, सभी कैसे हैं, क्या है। फिर भी अगर अपनी बेटी कुछ कहने लगे कि सास ऐसी है वैसी है, तो उसको शांत रखना है और बोलना है देखो जैसे भी है अब उन्हीं के साथ रहना है, और कोई बात नहीं वो ऐसे तो आप ऐसे रहिए, प्यार से रहिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर इस तरह की शिक्षा हम देते हैं और हमारी बहुएं सुनती हैं तो उनके मन पर भी प्रभाव पड़ता है। और भी अधिक हम आपसे सुनेंगे, परंतु पहले सुनेंगे गीत। आज के प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा, इस विषय में अपनी राय भी व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे हैं 94 14 15 14 15। और आइए सुन लेते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बेटी शान है घर की, बहू मान है घर की।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत
1: हाँ
0: आपका रेडियो मधुबन
1: नमस्कार।
0: में।
1: टीके सक्सेना बोल रहा हूँ। मैं अभी बात कर रही थी, वो कट गया था।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, स्वागत
1: हाँ
0: आपका रेडियो
1: मैंने
0: मधुबन में।
1: तो अब मैंने पहली बार जो मिला रहा हूँ, दूसरी बार मिला रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही
0: नहीं नहीं
1: है। हाँ
0: हिचकिचाइए मत, देखिए रेडियो मधुबन पूरा एक परिवार है, आप बिंदास होकर के
1: ना
0: बात करिएगा।
1: नहीं, वो तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे
0: जी
1: यहाँ नरोरा में कभी कभी आता है, नेट से कभी कभी चला जाता है। अभी 3-4 दिन तो बिल्कुल नहीं आया।
0: जी जी जी जी अच्छा
1: तो आज मैं घर पे हूँ तो मिल रहा है, लेकिन बाहर नहीं मिलता है। हाँ
0: अच्छा घर पर अच्छी तरह आवाज
1: तो
0: आती है?
1: हाँ, आवाज सही आती है घर पर।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: हाँ, तो
0: बाहर नहीं
1: मुझे बहुत
0: आती।
1: अच्छा प्रोग्राम लगता है आपका।
0: जी थैंक यू।
1: और ये पहले शुक्रवार को आता था, अब चेंज कर दिया है प्रोग्राम
0: नहीं
1: आशियाना वाला।
0: नहीं तो सोम से शनिवार तक रोज आता है।
1: अच्छा, तो मैंने
0: जी
1: पहले 1 साल पहले सुना था, तो वो शुक्रवार में या शनिवार को ऐसा आता था ही।
0: नहीं नहीं ये सोम से
1: हाँ
0: शनिवार तक रोज रहता
1: हाँ
0: है, एक रविवार के सिवाय।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं अब आगे से भाग लूंगा इसमें।
0: जी जी जरूर। तो आइए, आप रेडियो मधुबन सुनते हैं तो इसके द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आए?
1: हाँ जी बिल्कुल आया है, अपने को विचार को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कमी है उनको दूर कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: अभी अभी आपका प्रवचन आ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: जी तो आप क्या कहेंगे, आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
1: अभी मेरे आज तो मेरे समझ में नहीं आया था, तो इसलिए देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा सुन के तो
0: कोई बात नहीं, विषय तो
1: बताऊँ।
0: बहुत अच्छा है कि भाई बेटी को समझाओ तो बहू अपने आप समझ जाएगी, आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, तो इसमें तो ये है कि अपने बच्चों को पहले समझाओ। जब अब ये तो बहू तो दूसरे घर से आती हैं, तो वो जो है हम अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो भी समझेगी।
0: जी
1: हाँ नहीं, क्योंकि तो अपने बच्चों को समझाएंगे जब ही तो दूसरा बच्चा समझेगा। अब हम उन्हें डायरेक्ट डांटेंगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा कि
0: जी
1: अपने बच्चों की तो बताते नहीं है, हमारी बताते हैं।
0: जी
1: और मिलजुल कर रहेंगे तो और ही अच्छा है, दुख
0: जी
1: सुख में सब साथ रहे तो और अच्छी बात है।
0: मिलजुल कर रहना है, इसीलिए कहते हैं कि कुछ गलतियां छोटे करते हैं तो बड़ों को समझाना पड़ता है, परंतु
1: हाँ बिल्कुल।
0: डायरेक्ट नहीं समझा सकते। क्यों
1: है जी।
0: डायरेक्ट नहीं समझा सकते? आज का समय चेंज हो चुका है, डायरेक्ट समझाएंगे तो कोई सुनना पसंद नहीं करेंगे। कारण क्या इसके पीछे? एक तरफ बहुएं कहती है कि हमें भी बेटी की तरह रखो, तो फिर बेटियों को तो हम डांट भी देते ना गलती पर, फिर बहुओं को डायरेक्ट क्यों नहीं डांट सकते?
1: नहीं, अपना बच्चा समझेंगे तो उन्हें भी डांट सकते हैं, उनसे प्यार भी करेंगे तो उनके डांटने का भी अधिकार है,
0: जी
1: उनकी
0: बिल्कुल
1: बात हम मानेंगे तो उनको भी समझा सकते हैं और समझना चाहिए उनको भी।
0: जी
1: और जब भी परिवार चलता है, जब सब एक दूसरे का ख्याल रखें।
0: जी बिल्कुल बहुत सुंदर।
1: हाँ, और जब हम अब बहू को बेटी मानेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ना।
0: जी बहू को बेटी माने और बेटी सास को माँ माने, तब
1: माँ
0: रिश्तों में
1: मानो।
0: मधुरता
1: हाँ
0: रहेगी।
1: हाँ जब भी मदद कर रहेगी।
0: जी
1: और अभी तक तो हमारे 5 साल हो गए, बहू आई है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गलती होती है तो समझा देते हैं, वो समझ जाती
0: बहुत अच्छी बात है। वो
1: है।
0: कहते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं उनके ऐसी
1: हाँ
0: बहुएं
1: बिल्कुल।
0: आती है, और अक्सर आती है। ऐसा नहीं है कि सभी खराब है, देखिए सिक्के के दो पहलू है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: जी
1: और बहू भी हमारी बहुत है, और जैसा कहते हैं मान लेती है कहना, और 2-4 मिनट तो सभी नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर मिल जाते हैं आपस में।
0: जी जी वो तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तू तो मैं थोड़ी हो जाती है, लेकिन
1: हाँ
0: मन मुटाव नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए, हम
0: जी
1: उसे समझा देते हैं, बेटा कोई गलती हो जाती है तो थोड़ा सा उस समय नहीं कहते हैं, थोड़ा बाद में उसको समझा देते हैं तो उसकी समझ में आ जाती है।
0: जी जी यही
1: और
0: तो
1: ऐसे ही मिलजुल कर सबको रहना चाहिए, ऐसे ही समाज में रहना चाहिए, किसी से गलती हो गई तो उसे उस समय ना कह के थोड़ी देर में कहो
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसकी समझ में आ जाती
0: जी बिल्कुल,
1: है।
0: बहुत
1: जी
0: सुंदर बात आपने कही है। और
1: हाँ
0: आभार आपका
1: और,
0: जी बोलिए बोलिए जी, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: नहीं कुछ नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं जोड़ना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: मौका मिलेगा कल फिर बात करूंगा मैं।
0: जरूर, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में और आशाना कार्यक्रम में। ठीक है, परिवार को भी जोड़ सकते हैं, बहन जी को भी जोड़ सकते हैं, बहू को भी जोड़ सकते हो।
1: हाँ बिल्कुल, मैं कराऊंगा। अभी पहले मैंने कि मैं थोड़ा सा बात करूँ, फिर आप अपने मिसेज से कहूंगा, बहू से कहूंगा।
0: जी जी, अंताक्षरी कार्यक्रम रहता है शनिवार के दिन, तो उस दिन कुछ न कुछ थीम रहती है, भले देशभक्ति गीत, भले पुराने पिक्चर्स के गीत, आध्यात्मिक गीत, अलग अलग थीम रखते हैं, तो उस थीम पर भी भाग ले सकते हैं, बहन जी है, आपके बहू है, आप स्वयं। ठीक है जी, बहुत बहुत आभार आपका।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि देखिए, इसका हम चर्चा करें उतनी कम है, लेकिन समय के अनुसार चलना हमारा जरूरी है। तो कहने का भाव यही है कि डायरेक्ट बहुओं को मत कहिएगा, डायरेक्ट कहने से कभी कभी नाराज हो जाते हैं वो। आप देखिए, घर में रहते हैं हम सभी, तो एक दूसरे के नेचर से भली भांति परिचित रहते हैं, है ना, कि इसको डायरेक्ट कह सकते या नहीं। कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट कहने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: जी दीदी थोड़ा सा लेट हो गया यार, क्योंकि
0: कोई बात नहीं
2: बात कर रही थी।
0: कोई बात नहीं,
2: बात कर रही थी भाई साहब की, तो मैंने सोचा चलो बात पूरी हो जाए तो बात कर लो।
0: जी जी जी,
2: तो बस अच्छे दीदी, बहुत खुशी हो रही है, अच्छी बात चल रही है। बहू बेटी की कल की जो बात हुई थी वो भी आज बहुत स्पष्ट होने वाली है, बात सही है
0: जी।
2: और बताया कि दीदी की बहू को हम नहीं बोल सकते, बेटी को बोल सकते, लेकिन कई कई बहू ऐसी होती है दीदी कि खुद हम बोलेंगे तो भी समझ जाती है
0: जी।
2: तो वो क्या है कि मैं समझाऊँ कि वहाँ से इससे पिताजी से घर से जो बात होती है
0: जी,
2: कि भाई हम वहाँ जाके अच्छे रहेंगे, सब कुछ वहाँ ससुराल में हम अच्छी तरह से रहेंगे, किसी से ऐसा मत बोले, किसी को गलत लगे, किसी को ऐसा वो काम करेंगे अच्छी तरह से, तो जो वही बात उसके दिमाग में रह जाती है, तो ससुराल में आती है तो कहना तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम कुछ बोलेंगे तो वो आराम से सुन लेगी और कर देगी, वो भी सही है
0: जी।
2: तो बोलने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो संस्कार लेके बेटी बहु बनकर आती है तो कुछ कहना नहीं पड़ता। कई कई जगह पे ऐसा करके मैं है बहू, कुछ कहना ही नहीं पड़ता, खुद आराम से काम कर लेती है, किसी के बोलते नहीं, झगड़ा भी नहीं करती है और परिवार में भी अच्छी तरह से रहती है
0: जी जी। लेकिन बहुत अच्छी
2: हम
0: बात।
2: बेटियों को सलाह देना जरूरी है कि हम बेटियों को कुछ बोल डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन बेटियों से कुछ कहते हो हम बहुत समझ जाती है, समझ तो जो समझे वाले समझ आती है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं बहु ऐसी आती है तो उनका समझ लेती
0: जी जी।
2: तो मेरे मुझे बोल रहा है, पहले बेटी को कहता लेकिन मेरे
0: जी बिल्कुल ऐसा होता है जी जी जी,
2: ऐसा होता है। तो बस ये तो माँ बाप के संस्कार पर रहता है दीदी, माँ बाप का संस्कार अच्छा होता है तो बहू है बेटी चाहे।
0: माँ बाप के संस्कार भी और कुछ क्या अपने भी पुराने संस्कार रहते हैं स्वयं के भी
2: जी,
0: क्योंकि माँ हमेशा माँ अगर अच्छी शिक्षा देती है लेकिन ससुराल में जाकर तो नहीं देखती ना कि बेटी क्या कर रही है।
2: नहीं सही बात है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं कि बेटी को संस्कार अच्छे ही देते हैं, बुरा तो कोई देते नहीं, लेकिन फिर भी ससुराल में आकर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज ना हो और बेटी की तरह ही घर में रहे बहुत जैसे बेटी जैसे उसे, वही सही रहेगा। ठीक है दीदी।
0: Okay.
2: जो आपने प्रश्न पूछा वो तो समझ में नहीं आ रहा है।
0: साधु संत और योगियों को कहते हैं तब के और हम सभी है अब के, कैसे?
2: वो तो सही है क्योंकि पहले जमाने से वो चल रहा है योगी जोगी और संत
0: जी।
2: वो तो सही है दीदी, कहे संत से ही हमारी शुरुआत हुई है, संत से ही हमको संस्कार मिले हैं, इसलिए साधु संत पहले के यार और हम आपके हैं, तो हम साधु संतों से संस्कार लेंगे, बात करें अच्छी सुनेंगे, तो अब ऐसी बात है मुझसे जो ज्यादा पता नहीं चलता तो यही कहूँगा।
0: कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की है आपने जी।
2: तो साधु संत का मानिए और वो पहले के जमाने है कि उसको बहुत पता है, और हम तो आपके हैं, हमको कुछ पता नहीं, संस्कार हमारे में अभी तक कम है, तो जिसकी शिक्षा पर चलिए मैं तो ऐसा कहता हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आभार आपका सुरेश भाई, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और वो कहते हैं कि बात चल रही थी बेटी को समझाओ और बहू समझ जाए, लेकिन आजकल थोड़ा समय भी बदला है। आजकल भले आप बेटियों को शिक्षा दो तो भी क्या कहेगी, ओ देखो मुझे सुनाने के लिए अपनी बेटी को समझा रहे हैं। जैसे कि सुरेश भाई ने कहा, ऐसा भी हो रहा है। हर प्रकार के इंसान है समाज में, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं या सभी बुरे हैं, अच्छे भी है और इस तरह के भी है। कल ही एक बहन का फोन आया, इसलिए मैंने इसी विषय को ले लिया। उनका यही फोन आया कि बहुत दुखी है वो, उनके बहू कुछ भी काम नहीं करती, अपने ही कमरे में बैठी रहती है, खाना भी सास बनाएगी तब नीचे आकर के खाया और वापस ऊपर। दीपावली के दिन चल रहे हैं, साफ सफाई में कोई हेल्प नहीं, अकेले सास कर रही है। अब सास भी क्या करेगी, तीन मंजिल का घर है, हमारे आबू के अंचल की ही बात है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन तीन मंजिल का घर है। लेकिन बहू को कम से कम 5-6 साल हो गए शादी हुए, घर पर आए हो, लेकिन 5-6 साल हो गए परंतु कोई भी कार्य में हेल्प नहीं करना, माने भोजन भी बना करके नहीं देना, कुछ भी नहीं। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार कुपाराम जी, कैसे हो आप?
3: कार्यक्रम सुन के काम भी करते।
0: जी जी अच्छी बात है।
3: इसके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा बोलता हूँ
0: जी।
3: घर सुना बिन काम नहीं और घर सुधारे काम नहीं
0: जी।
3: बुआ को भी वो ससुराल भी अपना घर लगना चाहिए
0: जी,
3: और वो चाहे तो उसको स्वर्ग भी बना सकती है और चाहे तो उसको नरक भी बना सकती है।
0: बिल्कुल
3: हाँ जी, ये मेरा तो है
0: जी, बहुत सुंदर बात
3: है। ठीक है, आदमी को तो कमाने का उसका धंधा होता है, वो धंधा करके ला के देता है, घर में कैसे चलना है, कैसे चलाना है, वो तो घर का काम है।
0: जी जी जी।
3: और संतों का वो प्रश्न तो मुझे लगता है कि संत तो क्या है, बार बार वो इसी योनियों में आते रहते हैं
0: जी,
3: और उनके तो वो संस्कार चलते रहते हैं
0: जी।
3: और हम अब के हिसाब से के क्या पता कितने जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिला होगा।
0: अच्छा
3: जी, हम अब के और संत तो वो तो जन्म जन्मांतर से भगवान उनको तो भेजते रहते कि भाई जाओ सृष्टि में अच्छा काम करो, सृष्टि को सुधारो।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी कोशिश की, आभार आपका कुपाराम जी। तो बहुत ही देखिए, सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रश्न के जवाब बहुत अच्छे दिए हैं। और बात चल रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि उनका फ़ोन आया, 5-6 साल हो गए, लेकिन उनकी बहू इकलौता बेटा है, इकलौती बहू है, अच्छा समाज है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं करती है तो रिश्ता तोड़ देवे, फिर भी वो तालमेल बिठा के चल रही है कि चलो किसी भी तरह हमारे प्यार को ये समझे। लेकिन अभी कोई महसूसता नहीं, घर में बात नहीं करना, सास से तो बिल्कुल ही बात नहीं करना। और बेटा कुछ सालों से बेटे की डेथ हो गई, बहू है, एक पोता है, पोते को भी जब इच्छा होती है तो सास ससुर को रखने देते हैं, नहीं तो वो अपने पास रख लेती है, देती नहीं है। और कभी कभी मूड पर आधार है, कभी कभी नीचे भेज देती है। वो कहते हैं बच्चे तो बंद के नहीं रहते ना, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं कि बच्चा भी रूम में ही रहता है, जब उसका मूड होता है तो ही नीचे जाने देती है और वो कमरे से नीचे नहीं उतरते। अब सास ससुर परेशान है, वो बोलते हैं कि भाई या तो आप इस घर में रहो तो हमसे बातचीत करो, हम आपको बेटी की तरह रखते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि आप चाहो तो हम आपकी दूसरी शादी करवा सकते हैं, क्योंकि 5-6 साल ही हुए है शादी हुए, लेकिन वो न घर छोड़ने के लिए तैयार है न ही प्यार से रहने के लिए तैयार है। तो बेचारे सास और ससुर किसको कहे, वो कहते कि हम बात बाहर नहीं करते, नहीं तो समाज में बातें हो जाएगी। और कहते ना कि भाई बहू को बिचारी समझ करके सास ससुर पर ही आरोप लगाएंगे, लेकिन ऐसा उनके घर में हो रहा है। उनके पियर वालों, बहू के पियर वालों को भी कहा, लेकिन वो भी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं आपके घर की आप जानो, हमको नहीं कहना है, हमारी बेटी अच्छी है। और वो बेटी मतलब वो बहू बिल्कुल काम नहीं करती है और न ही नीचे आती है, अपने ही कमरे में रहती है। जब खाना बनता है देखता है कि खाना बन गया तो खाने के लिए आ जाती फिर से ऊपर। अब आप क्या कहेंगे, तो समाज में हर प्रकार के मतलब इंसान है, हर प्रकार के लोग हैं, उनकी बेटी से भी जब वो ससुराल से आती है तो बहू बात नहीं करती है। तो बहुत जगह पर तो ऐसा है कि बेटियों को समझाते बहू समझ जाती है, और बहुत सारी जगह पर भले कितने भी सास ससुर उसके आगे पीछे घूमे, भले प्यार देवे बेटी की तरह रखे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि देखिए तकलीफ है तो आप मुँह से बोलिए कि मुझे ये तकलीफ है, नहीं तो फिर इस तरह आप रूठे रहेंगे तो घर हमारा बिगड़ेगा, घर जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। चाहे भले बहू टिकी रहेगी तो सास ससुर कितनी बार वो कहते हैं कि हमारी इच्छा होती है हम घर छोड़ के चले जाए, लेकिन लोग यही कहेंगे कि देखो बहू को छोड़ करके अकेली छोड़ करके चले गए, अब घर में क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता। इसलिए प्यार से रहिए और जो भी कुछ आपको कहना है कह लीजिए, झगड़ा करना हो तो कर लीजिए, एक बार फिर से सुनिए कि हमारे सास ससुर हमें क्या कहना चाहते हैं और हम उनको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो बातचीत तो करो उतनी कम है, समय इशारा कर रहा है, इसलिए चलिए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का. तो भाई, कुछ दिनों से आपको गुजराती आइटम सिखा रही हूँ. सुवारी आपने सीखी, मठिया आपने सीखा, आज आपको सिखाएंगे चोरा फली. भाई, ये ऐसा नहीं कि गुजरात में बनता है और दूसरे स्टेट में नहीं बनता है. आजकल तो हर स्टेट की चीज़ें हर कहीं बन जाती हैं, क्योंकि हर स्टेट के लोग हर जगह पर रहते हैं. गुजरात में जैसे बाहर के लोग रहते हैं, दक्षिण के लोग रहते हैं, तो उधर के इडली डोसा भी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चटनियाँ वगैरह. और यहाँ के लोग भी बाहर रहते हैं, तो वो एक दूसरे का कल्चर तो सीखने में आ ही जाता है ना, और वही मज़ा आता है हिल मिलकर रहने में और बनाने में. तो चोरा फली के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ. लेकिन आज का प्रश्न बहुत सुंदर है कि साधु संत और योगी है तब के, और हम सभी है अब के, कैसे? प्रश्न का जवाब जरूर देंगे. हमारे नंबर है 94-14-15-14-15. और आइए अब चोरा फली आपको सिखाती हूँ. सामग्री ले लीजिएगा. जैसे आप 1 किलो लोट लेना है आपको, तो आप 700 ग्राम लीजिएगा बेसन. 300 ग्राम लेना है उड़द की दाल का आटा, ठीक है. फिर आप लीजिए स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, और थोड़ा सा आपको लेना है खाने का मीठा सोडा. आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है, ठीक है. और मसाला बुरकाने के लिए आप लीजिए लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, और अगर चाट मसाला पसंद करते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं. नहीं तो भाई, ये कहते हैं कि समय के साथ चेंज आया है, अभी की नई पीढ़ी चाट मसाला भी ऐड करती है, पहले नहीं करते थे. पहले लाल मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स करते थे, ठीक है. तो बस सामग्री यही है कि बेसन 1 किलो का अगर मठिया बना रहे हैं, तो आप ले लीजिए 700 ग्राम बेसन और 300 ग्राम उड़द की दाल का आटा. फिर आप स्वाद के अनुसार नमक लीजिए, और तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है, बेकिंग सोडा लेना है थोड़ा सा, और मसाला भुरकाने के लिए लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर और काला नमक. अगर आपको ज़्यादा पसंद है चाट मसाला तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब मैं आपको साथ ही साथ बनाने का तरीका सिखा रही हूँ. भाई, इसमें भी मेहनत है. जैसे मठिया बनाए ना, मठिया में कितनी मेहनत है, ऐसे ही चोरा फली बनाने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. आप क्या करेंगे, बेसन का और बेसन और उड़द की दाल का आटे को छान लीजिए, मिक्स कर दीजिए, और इसमें खाने का मीठा सोडा डाल दीजिए, ठीक है, और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए. फिर थोड़े से पानी में आप नमक गर्म करिए, भले आप नमक सेक करके डाल दीजिए डायरेक्ट ही, वो आप पर छोड़ा है कि आप कैसे क्या करते हैं. अगर नमक डायरेक्ट डालना चाहते हैं आटे में, तो फिर आप थोड़े से तवे पर सेक दीजिए, ठीक है, और पानी को गर्म कर दीजिए, और इसमें आप 1 चम्मच तेल डाल दीजिए. बहुत जने डालते, बहुत जने नहीं डालते, अब आपकी इच्छा हो तो डालिए, बाकी 1 छोटा चम्मच तेल डालिए, ठीक है. और फिर वो नवसेक के पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए, गून दीजिए. अच्छी तरह इसको गूंदना है, फिट रखना है, और अच्छी तरह गूंद करके फिर इसको आप आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक करके रख दो. आधे घंटे के बाद फिर से इसको एक मेक करिए अच्छी तरह, और फिर इसको भी मूसल से, हमान दस्ता जो होता है ना लोखन वाला, उससे आप कूटिए. जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना मठिया का, कैसे, बस यही तरीका है चोरा फली बनाने का भी. इसमें भी बनाने में बड़ी मेहनत है. आप चाहे तो प्लास्टिक के कट्टे के बीच में रख करके पैरों से आपको चल सकते हैं, और आप चाहे तो हमान दस्ते के मूसल से कूट सकते हैं. अब वो आप पर छोड़ा है, ठीक है. अच्छी तरह इसको कूट पीट करके जब इसमें अच्छी लोच आ जाए, तो फिर आप लीजिए, और फिर इसको भी तुंबना है, ठीक है. मतलब इसका थोड़ा थोड़ा लुआ लेकर के दोनों हाथों से इसको खींचिए, फिर से ये लुआ बनाइए, फिर से खींचिए, फिर से लुआ बनाइए, फिर से खींचिए, ठीक है। जब अच्छी मेहनत करने के बाद आपको लग रहा है कि अब इसमें लोच अच्छी आ गई है और अब ये टूट नहीं रहा खींचने पर, बाकी तो क्या लोच नहीं आती ना, तो हम जैसे खींचेंगे वैसे फट फट फट फट टूट जाएगा, लेकिन जब लोच अच्छी आती है तो हम खींचते हैं तो फिर वो टूटता नहीं है, पतले पतले तार की तरह चिपका रहता है। तो पता चल जाता है कि अब हमारा चोरा फली का आटा परफेक्ट हो गया है। उसके बाद आप अच्छी तरह इसको एक मेक करके वही मठिये के बनाए ना बेल, ऐसे ही इसके भी बेल बना दीजिए, बेलन की तरह लंबी लंबी चकले पर रख करके, और फिर धागे से इसके लुए काट दीजिए, जो भी आप साइज पसंद करते हो उस अनुसार आप लुए काट लीजिए। और फिर थोड़े से वही प्रोसेस है जो मठिया का है, बस इसमें मटेरियल थोड़ा सा अलग तरीके से डालने का है, उसमें थोड़ा सा अलग है। तो आप थोड़े से तेल में आटा या फिर थोड़ा सा आटा रखिए और आटे में थोड़ा तेल मिला करके एक मेक करके ये सारे लुए उसमें डाल दीजिए, अच्छी तरह सभी पर लग जाना चाहिए, ठीक है, सभी लुओं पर ये तेल वाला आटा लग जाना चाहिए ताकि बेलने में आसानी रहेगी, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि बेलने के लिए हम पहले से ही इतना आप तेल और आटा लीजिए कि इसमें ये सारे लुए अच्छी तरह चुपड़ जाए, उसके बाद आप बेलिए। और बेल करके आपको अगर कटर है तो कटर, नहीं तो चाकू से आप लंबे लंबे काटिए, ठीक है। पर कैसे काटना है, गोल गोल आपने बना दी साइज, जो भी रोटी की साइज है चाहे पूरी की साइज है, जो साइज आप पसंद करते हो बेल दी आपने। बेलने के बाद अब आप बीच में से थोड़ा सा काटिए, आपको एक उंगली किस साइज का आपको रखना है, फिर तो आप चाहे तो चौड़े पसंद हो तो चौड़े रखिए, सकड़े पसंद हो तो सकड़े रखिए, जो भी साइज पसंद है रखिए, लंबे लंबे काटना है, लेकिन साइड में से किनारे नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मेहनत पड़ जाती है तलने में, इसलिए रोटी की तरह ही रहना चाहिए, बस बीच में से काटिएगा, किनारे रहने दीजिए, जब आप तलेंगे फिर निकालेंगे तो वैसे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप पहले तो बेल बेल करके रख दीजिए, जब तलते हो ना उसी समय काटिए, तो बस बेल करके आपने वही थप्पी लगानी है, थोड़े थोड़े से सुखाने हैं, ज़्यादा नहीं, और फिर इसको आप जब ये सारे बन जाए तो फिर आप रखिए कढ़ाई में, तेल डालिए गैस पर रखिए और तल दीजिए। तल करके आप अच्छी तरह, मतलब दोनों तरफ से तले, लेकिन बहुत ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। और तलने के बाद आप निकाल दीजिए, फिर एक कटोरी में या एक प्लेट में लाल मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स कर दीजिए, चाट मसाला पसंद है तो उसको भी मिक्स कर दीजिए, और जब आप निकाल दो इनको तो फिर सभी के ऊपर ये नमक मिर्च बुरका दो, ठीक है। ऊपर से डालना है, अंदर नहीं डालना, अंदर तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ही डालना है, ऊपर से आप ये मसाला डालिए और फिर खाइए, फिर मुझे फ़ोन करिए कि कितना स्वादिष्ट लगता है, चोरा फली कितनी स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए चोरा फली तैयार है, देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली और थाली में आप चोरा फली रखिए, सब्जी चपाती जो भी बनाई है रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा चोरा फली का। साथ ही साथ एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। बहुत ही सुंदर विचार था कि भाई सभी से हिल मिल करके प्रेम से रहना चाहिए, न जाने कब बुलावा आ जाए। ठीक है, तो ये इस बात को ज़रूर गांठ बांध देनी है कि हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। फिर आपको टिप्स भी बहुत अच्छी दी है कि कैसे आप चांदी के बर्तन और अपने गहनों को चमकाएंगे। भाई दीपावली के काम चल रहे हैं, साफ़ सफाई ज़रूर करिएगा, पर इन सभी की भी साफ़ सफाई की आपको टिप्स दी है, तो आजमा करके साफ़ कर सकते हो। खुशनुमा जीवन की बहुत ही अच्छी बातें हुई है कि भाई बहू मतलब बेटियों को समझाएंगे तो बहू है समझ जाएगी, जो समझदार होती है वो समझ जाती है, फिर तो आप सभी जानते हो। और बहुत ही सुंदर आपको चोराफली बनाना सिखाए, तो आपने सीख लिया ना, सीख लिया है, बनाओ तो ज़रूर हमें भी खिलाना। चलिए वो तो मजाक थी। और आज का प्रश्न था कि साधु संत और योगी थे तब के और हम हैं अब के। सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छा जवाब दिया उन्होंने भी। और मतलब इनका जवाब था कि साधु संत सभी को ध्यान में रख करके भूत भविष्य वर्तमान को सोच करके चलते और हम अभी को सोच करके चलते हैं, बहुत अच्छा जवाब है। और सुरन कुमार जी सक्सेना यूपी नारोल से आप जुड़े हैं, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, विषय को अच्छा स्पष्ट किया आपने। फिर कंचन भाई आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया। सुरेश भाई झोटाना से आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की प्रश्न का जवाब देने की। और कुपाराम जी कोजरा से आपने भी विषय को स्पष्ट किया है। तो पहले तो मैं आप सभी के लिए ताली बजवाना चाहूँगी कि भाई आपने बहुत अच्छी कोशिश की और इस विषय में भी आप जुड़े और अपनी राय व्यक्त की। और आज का प्रश्न यही है कि साधु संत योगी है तब के, कैसे? देखिए साधु संत योगी बहुत तपस्या कर चुके हैं, बहुत तपस्या कर चुके हैं, तो उनको सब सीधा मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है ना, और उनके द्वारा समाज को देश को दुआएं मिल रही है। इसलिए कहते हैं कि साधु संत योगी है तब के और हम सभी है अब के, जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तपस्या करें, कुछ भक्ति करें, कुछ योग साधना करें, अभी हम चल रहे हैं, इसलिए अब के और वो है तब के। ठीक है, और अब मैं आपको चंद पंक्तियां सुनाना चाहूँगी बेटी और बहू पर। आप लोग लेंगे इन पंक्तियों का आनंद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। आंगन अपना छोड़ घर किसी और के जा रही हूँ, आंगन अपना छोड़ घर किसी और के जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, पिता की शान से पति का मान बनने जा रही हूँ, पिता की शान से पति का मान बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, अपना वजूद भुलाकर पहचान नई बनने जा रही हूँ, अपना वजूद भुलाकर पहचान नई बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, बेफिक्रियां भूल के जिम्मेदारियां उठाने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, बचपन यहाँ छोड़ संजीदगी से रिश्ते निभा रही हूँ, बचपन यही छोड़ संजीदगी से रिश्ते निभा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ।

0: परिसर में बिजली विभाग के इंचार्ज हैं और वो अपनी जीवन के उन चंद पलों को हमारे सामने खोल रहे थे और एक एक बात में हम उस ज्ञान की गहराई को समझ रहे हैं और उनके जीवन की जो यथार्थ अर्थ उन्होंने समझा है उसको हम भी समझने की और अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे भाई जी के साथ अपनी समर्पित जीवन की निर्णय के बारे में, जहाँ पे उन्होंने ये निर्णय किया कि अभी मुझे अपने आप को समर्पित करना है और ये नौकरी वगैरह सब छोड़ करके चले जाना है। और उनको बुलावा भी आया था भगवान के घर से कि आपकी सेवा उनकी बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए, आगे क्या हुआ है उस समर्पित जीवन में और कैसे उन्होंने वो निर्णय, वो दृढ़ता को कायम रखा है और आगे कैसे बढ़े हैं और अभी तक की यात्रा कैसी रही, हम जानते हैं। सुधीर भाई जी, आपको फिर से एक बार स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम जानते हैं, जहाँ पे आप बातचीत कर रहे थे कि आपने एक लेटर लिख करके दे दिया है आप उषा दीदी जी, जो आपकी सेंटर के निमित्त है, और उसके बाद क्या हुआ है?
1: फिर इस पीरियड में मेरे को इतना वैराग्य आया, ठीक है, कि मैंने लौकिक में आना जाना बंद कर दिया। बहुत वैराग्य था, ठीक है। और जो सर्विस में मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, ठीक है, था सर्विस में, तो वहां से भी जो सैलरी मिलता था, मैंने फिर दीदी के साथ एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया। तो मैं अपने खर्चे के लिए जो मेरा रनिंग अकाउंट वहाँ R&D सेंटर में था वो रहता था, और बाकी की सैलरी निकाल के जो जॉइंट अकाउंट था उसमें डाल देता था। जब मैंने समर्पणता का पत्र लिख करके दीदी को दिया था, तो दीदी ने मुझे एक पाठशाला में रहने के लिए छोड़ दिया था।
0: अच्छा।
1: कि आप इस पाठशाला में रहो। इस तरीके से 3 साल तक ये ऐसा क्रम रहा कि सर्विस करते हुए भी मैंने घर में कैश के रूप में पैसा नहीं दिया। अगर घर वाले आए, ठीक है, उनकी सेवा में जो खर्च होना था किया। उसी बीच में मेरे ताऊ जी आए, उनकी आंखों का ऑपरेशन कराया, पिताजी आए, माता जी आए, सबका, ठीक है, जो मेरे से सहयोग बन पड़ता था सब कराया, ठीक है। लास्ट में मेरे फादर आए, ठीक है। तो उन दिनों फिर मधुबन से भी ताराचंद भाई साहब का दीदी के पास बार बार फोन जाता था कि अब सुधीर को फ्री करो, इसको यहाँ भेजो, मधुबन भेजो, अब इसको फ्री करो, ठीक है। तो फिर दीदी मेरे को बोली कि सुधीर, अब तो तुम्हारा बुलावा बार बार आ रहा है, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन दिनों मेरी सर्विस लगभग 5 साल होने वाली थी। फिर मैंने भाई साहब को बात किया कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को ग्रेच्युटी का लाभ मिले, वो भी यज्ञ का ही होगा, ठीक है, तो मैं आगे और ये 3 महीने की सर्विस करूँ। अगर आप कहते हो नहीं अभी रिजाइन करो, तो मैं अभी रिजाइन करके आता हूँ। तो बोले जब ऐसी बात है तो भले ही, और ठीक है, कर लो सर्विस, ठीक है। उसमें भी लास्ट के 1 मंथ का तो नोटिस ही होता है, ठीक है जी, लीव करके उसमें 15 दिन तो ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आखिर फिर मैंने रिजाइन किया। और जो घर वालों की बात आपने पूछी, छुट्टी दे दी, ठीक है, तो उसमें एक तो क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना मेरी तरफ से बंद हो गया था, तो उनके लिए तो मैं यहाँ रहूं या माउंट आबू में रहूं, उनको क्या फर्क पड़ना, परिवार की ऐसी स्थिति थी, ठीक है।
0: और वैसे भी कोई आपके ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं थी?
1: नहीं, डिपेंडेंसी नहीं थी, 2 बड़े भाई थे, संभालते थे सब, ठीक है जी, ऐसे मेरे ऊपर डिपेंडेंसी भी कुछ नहीं। हाँ, इतना है कि मैं अपना रोल प्ले करता था, सहयोग देता था सब बातों में। परिवार पर भी, माता पिता पर भी कोई इतनी डिपेंडेंसी किसी बात की नहीं रही थी, क्योंकि हम जो भाई बहने थे सब अपने पैरों लगभग खड़े हो गए थे। मेरी बहनों की 3 बहनें थी, उनकी शादियां हो चुकी थी। छोटा भाई था उस समय, वो ग्रेजुएशन कर रहा था, ठीक है, उसने भी देखा जब ये नौकरी छोड़ के जा रहे हैं तो मैं आगे पढ़ के क्या करूं, ठीक है। उसका भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। फिर बोला कि जब ये नौकरी लगी हुई छोड़ के जा रहे हैं तो मैं क्यों ज्वाइन करूं, मैं भी इसी मार्ग पे चलूंगा।
0: अच्छा,
1: ठीक है जी।
0: फिर वो भी आ गए आपके साथ?
1: हाँ जी, हाँ, वो मेरठ में रहता है, ठीक है।
0: अच्छा।
1: और समर्पण में यहाँ मेरे मामा जी का लड़का है संजीव भाई, यात्रा भोजन में वो समर्पित मेरे साथ साथ फिर वो भी पीछे पीछे आ गए हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके का हमारा ये परिवार से छुट्टी की बात है, ठीक है।
0: कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप नौकरी कर रहे हैं और ये सभी चीजें, शादी का उम्र है, शादी का या नहीं, और ये भी होता है कि परिवार में वंश बढ़ाने की बात होती है, और ये सब कहाँ छोड़ के जा रहे हो, क्यों संन्यास ले रहे हो?
1: इसमें मेरा सिर्फ एक ही रिप्लाई सदा रहा, होता है, ठीक है जी, उम्र होती है तो आप जानते हैं होता है, रिश्तेदार भी कोशिश करते हैं, ठीक है, ननिहाल पक्ष भी पूरी कोशिश करता है, ठीक है जी।

0: एक ही जवाब रहता था, मुझे अभी नहीं करनी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, सिर्फ एक जवाब देता था कि मुझे अभी नहीं करनी, और अभी नहीं करनी है। ऐसे करते करते ठीक है, समय बढ़ता गया, मेरी ज्ञान में परिपक्वता बढ़ती गई, उन्होंने भी देखा ये तो वैरागी ही है। एक दो बार कोई लड़की वाले आए देखने के लिए, जब उन्होंने मेरे कमरे में चित्र टंगे देखे, बोला ये तो राजयोगी है। चुपचाप चले
1: सन्यासी।
0: सन्यासी है ठीक है। तो बात आगे बढ़ाने की फिर कोशिश भी नहीं की उन्होंने।
1: सो भाई साहब, जैसे आप 1992 से मधुबन में आ गए थे हेडक्वार्टर में और समर्पित रूप से जीवन में जीना शुरू किया, तो आप अपने जीवन में क्या उन्नति या क्या सिद्धियां पाया है या प्रोग्रेस कैसे क्या देखते? क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब 7 डेज कोर्स किया तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को आपने बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा अपने अंदर, तो इतनी लगभग 30-35 साल की आपकी जो जर्नी रही है इस मधुबन तपोभूमि में, तो अपने अंदर आप क्या प्रोग्रेस देखते हैं?
0: जब मैं यहाँ आया ठीक है, तो लगभग 1-1.5 साल के बाद मुझे लगा कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है यहाँ। उसके पीछे फिर मैंने एक एनालिसिस किया कि यहाँ आने से पहले मैं क्या करता था और क्या नहीं करता था, वो मैंने लिखा ठीक है। यहाँ आने से पहले मैं क्या करता था और क्या नहीं करता था, और यहाँ आने के बाद क्या करने लगा हूँ और क्या नहीं करता हूँ, एक कंपैरेटिव स्टडी किया, तो मेरे को समझ में आया ठीक है ना कि ये मेरी लाइफ में ऐड हो गया है जो नहीं होना चाहिए ठीक है, और ये मेरी लाइफ से निकल गया है जो जरूरी है, जो होना चाहिए ठीक है। उसके पीछे कारण क्या था कि जब यहाँ आए ठीक है, तो जैसे सेंटर में बहनों का टच रहता है, हमारे पर ध्यान रहता है उनका, मुरली क्लास में आए कि नहीं आए ठीक है, योग में कैसा चल रहा है, संगठित योग होता है तो आते हैं कि नहीं आते हैं ठीक है, तो बहनें वाच करती हैं, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को देखती हैं ठीक है। यहाँ वो बात नहीं थी, यहाँ सब होलसेल में है, जैसे यूनिवर्सिटी में आ गए ना
1: जी,
0: होलसेल में सब मुरली सुन रहे हैं, दैट्स ओके,
1: और सभी की अपनी खुद की जिम्मेवारी है।
0: खुद की उतने, यस ठीक है। फिर क्या होता था कि डेवलपमेंट यहाँ तेजी से उस समय स्टार्ट हो गए थे, जैसे कहा ग्लोबल हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट, ज्ञान सरोवर का एस्टेब्लिशमेंट, ऊपर से नीचे तलहटी, तो मेरा सभी कैंपस से कनेक्टिविटी रहती थी सेवाओं की, तो सभी कैंपस से जो सेवाओं की कनेक्टिविटी रहती थी, तो मेरा काफी समय सेवाओं में जाता था,
1: कर्मणा सेवा में,
0: जिसके कारण थोड़ा ज्ञान योग का जो
1: समय कम होता,
0: समय कम मिलता था, बस सवेरे योग किया, मुरली सुनी, फिर नाश्ता करते फील्ड में, कब रात होगी, शाम का योग का समय भी चला जाएगा, 8 बज जाएंगे सेवा करते करते, ऐसा चलता था। तो अपने पर जो समय देना चाहिए था ठीक, वो योग में समय नहीं जाता था, और आप तो समझते हैं कि अगर योग कम होगा तो अवस्था पर उसका असर आएगा ही है। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, जो कहा कि एनालिसिस किया, उस पर ध्यान दिया, फिर मैं कैसे भी करके सेवाओं से भी अपने आप को निकाल करके योग में समय निकालता था, जाके बैठता था संगठन में, योग में बैठता था, उससे फिर वो मेकअप हो गया। अभी आपने कहा कि इतना समय आपको हो गया है ठीक है, जैसे अभी भी आदरणीय हमारी ब्रह्मा कुमारी जी की चीफ राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, जो वर्तमान समय भी न्यूयॉर्क में है, अभी हम सब मधुबन वालों से मिल रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब वो कानून चाहे भारत सरकार का कानून कहें, राज्य सरकार का कानून कहें, जो भी है, अथवा ऐसे ही हमारे ईश्वरीय इस परिवार का कानून कहें, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विधि विधान कहें, हम उससे ऊपर नहीं है। तो कोशिश यही होती है कि चाहे वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कहें, ईश्वरीय परिवार का कहें, चाहे सरकार का कहें, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग रहता ही रहता है ठीक है जी, तो इन दोनों में मैं ध्यान रखता हूँ कि हम उसको कहीं क्रॉस नहीं करें। तो जब वो क्रॉस करने से बचते हैं तो डिस्प्यूट्स खत्म हो जाते हैं, एक तरीके से जनरेट ही नहीं होंगे तो खत्म होने का बात ही नहीं आता है, तो इसलिए इस बात पर मैं ध्यान देता हूँ। हालांकि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें एक पाठ पढ़ाया जाता है कि ना कहना माना नास्तिक और हाँ कहना माना आस्तिक, तो यहाँ हाँ और ना आस्तिक का विषय नहीं है वास्तव में, ठीक है, हमें बड़ों का ओबीडियंट होकर के चलना है, पर अगर हम देख रहे हैं कि वो नियम के अनुसार नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का नियम है चाहे हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है, तो मैं वहाँ थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूँ, मैं वहाँ अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाता हूँ, इन्वॉल्व नहीं करता हूँ अपने आप को। तो इस रीति से फिर हम ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, चाहे वो थॉट प्रोसेस की एनर्जी हो, ठीक है, चाहे एक्ट के लेवल की एनर्जी हो, मानसिक स्तर पर भी और कर्म के स्तर पर भी, ठीक है, अपनी एनर्जी लॉस नहीं होने देते हैं। और जमा है तो प्रोग्रेस है, सिंपल सी बात है, जमा है तो आप खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड भी होंगे आप। तो इसको मैं ध्यान रखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि जब ज्ञान में चला तो प्रोटेक्शन लिया मैंने, ठीक है जी, ऐसे ही यज्ञ में भी मैं इस बात का ध्यान।
1: आप जो भी बिजली विभाग का कारोबार करते हैं उसमें आप ये ध्यान रखते हैं कि लौकिक दुनिया का भी कानून और इस ईश्वरीय मर्यादाओं का भी कानून का भी आप ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं को बैलेंस रीति से चलाते हैं।
0: हाँ,
1: तो आप आध्यात्मिक जगत में हैं और अपनी, जैसे कहा कि जब समर्पित होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ईश्वर को समर्पित हैं, तो एक इसीलिए करते हैं कि हम एक स्व उन्नति कर सके, हम एक बेहतर इंसान बन सके। और जैसे आपने कहा अपने लक्ष्मी नारायण को जाते हुए देखा और उनकी जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य गुण हैं, वो हमारी जीवन में इसी जन्म में लेके आ सकते हैं। तो फिर ये जो सेल्फ प्रोग्रेस की बात है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपने किन विषयों के ऊपर आपने बहुत अच्छे से साधना की है या कुछ सिद्धियां प्राप्त की है या फिर कुछ ऐसी आपकी प्राप्तियां हैं जो आपको लगता है कि इन चीजों पे मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया है?
0: मेहनत तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं मेहनत करने वाला हूं नहीं, ठीक है जी? ठीक है, मैं इस राजयोग का एक दूसरा नाम है सहज योग, तो मैं इस योग को भी सहज रीति से ही जीता हूँ। और अल्टीमेटली जो ज्ञान क्या है वो हमारे कर्म से प्रतीत होता है, हमें कितना ज्ञान है ये भी हमारे कर्म से उजागर होता है, हमें कितनी समझ आई है ये भी हमारे कर्म से ही पता लगता है। जैसे आपने कहा सिद्धि, तो उसमें भी अर्थात हमें कितनी शक्ति है, चाहे वो दिव्यता की शक्ति कहें, पवित्रता की शक्ति कहें, समझ की शक्ति कहें, उसका भी जो पैमाना है वो हमारे कर्म ही हैं, कि हमें कर्मों में कितनी सफलता मिल रही है, हमारे कर्म यज्ञ हित में कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी शक्तियों को उजागर करता है, ठीक है, प्रत्यक्ष करता है कि हमें वो शक्ति आई है कि हम इस लेवल पर कर पा रहे हैं, इस लेवल पर जी पा रहे हैं, ठीक है। और वह करते हुए भी जब उसमें पोलाइटनेस रहती है, मधुरता रहती है, निर्माणता रहती है, निमित्त भाव रहता है, तो ये हमारे गुणों को प्रत्यक्ष करता है। कई बार क्या होता है, करते तो हैं पर उसमें ईगो क्रिएट होता है, मैं आता है, तो शक्ति का फिर मैं में कन्वर्जन, तो वहां डिविनिटी लॉस हो जाती है, जीवन के गुणों का ह्रास हो जाता है। तो फिर वो आज सफलता है, कल वो फिर असफलता में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जीवन में शक्तियों का और गुणों का संतुलन चाहिए। जो दिव्य गुण है वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, व्यवहार में दृष्टिगोचर होते हैं, और जो हमारी शक्तियां हैं वो कर्म की सफलता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो इसलिए कर्म के स्तर पर सफलता हमारी शक्तियों का सूचक है, और व्यवहार में सफलता ये हमारे दिव्य गुणों की जीवन में उपस्थिति का कहें, प्रधानता का सूचक है। तो इनको दोनों को लेके चलना चाहिए।
1: बहुत सुंदर कहा भाई जी आपने। सो लास्ट में सवाल है कि इस जीवन को जीते हुए या फिर वो कौन सा मोड़ था जब आपको लगा कि यही जीवन है, ऐसा ही जीना है, या इसे ही कहते हैं कि जीना इसी का नाम है?
0: ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं, जब देखा मैंने बाबा रजिस्टर में नाम लिख रहा है और आगे से आगे ऑफर हो रही है, ठीक है, मधुबन कॉल कर रहा है, आप मधुबन में आइए, सेवाएं दीजिए, तो मैं कुछ करूं, ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं। यहाँ भी हेडक्वार्टर में, जैसा आपने कहा कि आपको 92 से हैं, 34 साल हो गए हैं, यहाँ भी मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज को समझा है, अंत है क्या। इस समग्र सृष्टि पर मैं जब झांक कर देखता हूँ तो वो कोई भी फील्ड है, ठीक है, चाहे वो आर्थिक जगत की हस्तियों को देख लें, ठीक है, चाहे हम आप एक जो शो है जीवन का, ठीक है, तो जो भी फेमस पर्सनालिटी है किसी भी फील्ड की है उस दृष्टि से देख लें, चाहे हम विद्वता की दृष्टि से देख लें, अंततः सब जाकर के ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, अंततः उनकी मंजिल ईश्वर पर जाकर के खत्म होती है, उसके बाद नया कुछ नहीं होता, ठीक है। उससे पहले यही होगा कि मैं धनवान बन जाऊं तो भगवान का ध्यान करेंगे, ठीक है, धनवान होकर के भी उस पर ही अर्पित होना है, मैं सारी दुनिया में जाना जाऊं, सारी दुनिया मुझे जाने, जान करके भी खाली, सबने जान लिया फिर भी हम खाली, फिर भरने के लिए फिर ईश्वर के पास जाते हैं। हम राजनीतिक दृष्टि से देख लें, वैज्ञानिक दृष्टि से देख लें, कोई भी फील्ड है, अंततः हम अपने आप को सब कुछ पाकर के भी खाली ही पाते हैं। तो जब पाकर के खाली पाना है तो उस पाने की दौड़ में क्यों अपने को शामिल करना है। ठीक है, हम इस जगत में हैं, इस जगत में कर्म जरूरी है, क्योंकि कर्म का ही हमें फल मिलेगा, सोच का फल कर्म के रूप में जब घटित होगा तो ही मिलेगा, अंततः कर्म का फल है। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो कहते हैं इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो भोगना के रूप में मिले, चाहे उसको प्राप्ति के रूप में मिले। तो प्रधान हुआ कर्म, पद प्रधान नहीं हुआ, प्रतिष्ठा प्रधान नहीं हुई, प्राप्ति प्रधान नहीं हुई, कर्म प्रधान हुआ। कर्म से मैंने नंबर वन बन गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप में मेरा नाम है, ठीक है, पर मेरा कर्म का फल क्या है, वो फोर्ब्स की लिस्ट से मेरा फल नहीं है, वो नामाचार होगा, ठीक है, पर फल मेरे कर्म का है। तो मेरा कर्म कैसा है इस पर मैं ध्यान देता हूँ। मेरे को बहुत सारे स्लोगन हैं इस ज्ञान मार्ग में, मुझे सबसे जो फेवरेट मेरा स्लोगन है कि आपके शब्द कितने ही महान हों लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा ही पहचाने जाओ। अब यह पहचान बनाने की भी बात नहीं है, यानी प्रधानता किसकी हुई, कर्म की हुई। तो जब कर्म प्रधान है, वो तुलसीदास जी की चौपाइयों में भी एक ऐसी चौपाई है कि कर्म प्रधान है, इसलिए मैं कर्म पर ध्यान देता हूँ, ठीक है जी। और उस कर्म में, ठीक है, जो ईश्वरीय विधान है उसके अनुसार उस कर्म को करना, उस कर्म के आधार से अपने जीवन को जीना, जो ईश्वरीय विधान है, या इस जगत में रहते हैं तो इस जगत के विधान से बंधे हुए हैं, उसके अनुसार जीवन जीना, तो ये मुझे सुख देता है, सुकून देता है।
1: जी, बहुत सुंदर तरीके से बताया भाई जी आपने, वो जीवन क्या जीवन है जिसमें सब कुछ होते हुए भी प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो एक जो प्राप्ति मिलती है उस एक से जुड़े रहने में सर्व प्राप्तियां प्राप्त होते हैं। इस जीवन के सार को आपने समझा और यही जीवन है और ऐसा ही जीना है, आपने निर्णय करके परमात्मा के पास आकर के आप अपने आप को समर्पित किया और आप अपने कर्म से प्राप्ति भी या भाग्य भी बना रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते जा रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव है भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज अपना समय निकाल कर आप आए हैं और आपकी इस योगी जीवन की अनुभव को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। यही समझ में आता है कि आप कितना भी बड़े हो जाओ, जीवन में कितने भी नाम मान शान सब प्राप्त कर लो, लेकिन अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुँचना है, उस ईश्वर के पास पहुँचना है। और आप इस बात को बहुत जल्दी रियलाइज किया और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और इस जीवन की यात्रा को आपने जिस तरीके से सुनाया है वो भी बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, आपको भी और आप सभी को भी।
1: जी दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और हमारे साथ आदरणीय सुधीर भाई जी, आप ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। ऐसे ही कुछ और विशेष अनुभवों से हम फिर से जुड़ेंगे अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुँचाने के लिए सरकार का जो मंशा है बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुँचाएं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में उनका हुनर जो टैलेंट है जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए आज एक मंच मिलेगा। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं और बच्चे महात्मा होते हैं। बच्चे को जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो बच्चे करते हैं और माँ बाप तो खुश होते हैं, क्योंकि माँ बाप को कोई तंग नहीं करते हैं और विद्यालय में आते हैं तो माँ बाप भी अपना गृह काम में लग जाते हैं। तो आज बहुत खुशी लग रहा है, सभी बच्चों के साथ हम रूबरू होंगे और इस कार्यक्रम को हमारा संस्था प्रधान भी सहयोग देते हैं। एक इशारा में आज राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू में पहुंचे। मोडू का बच्चों का आवाज़ बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस तरह कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में जाते हैं और बच्चों को एक मंच एक स्टेज देते हैं। बच्चे अपना हुनर को भी सबका सामने रखते हैं और इस कार्यक्रम को हमारा आसपास का गतिविधि जन जन तक पहुँचाते हैं। बहुत खुशी लग रहा है और इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारा सांस्कृतिक प्रभारी मैम को भी धन्यवाद देते हैं। सबको एकत्रित कि मैम अपना परिचय देंगे, बच्चों को थोड़ा वार्म अप हो जाएगा आपका आवाज सुनकर, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे।
1: हाँ, ओम शांति। मेरा नाम है शोभा ग्रासिया, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू से हूँ।
0: शोभा जी, आप कितने साल से इस स्कूल में?
1: मैं 8 साल से।
0: लगातार अपना घर से बच्चों को भी एक घर से समाज से आते हैं और बच्चों को अपना भाषा से प्रस्तुत करते हैं। तो पहला प्रस्तुति हम सुनेंगे एक प्रार्थना के रूप में और सभी का नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुबह आज तो सुबह बढ़ाएंगे, अभी तो बढ़ा दिए। प्रार्थना पहले करेंगे, इसका बाद दूसरा गीत करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करते तो प्रार्थना से शुरू करते हैं माँ सरस्वती से। और सुबह मैम बच्चों को वार्म अप कर दिए, पहले एक बार मैम आए थे हमारे रेडियो कार्यक्रम में, याद है?
1: जी जी, जी।
0: अभी भी बच्चे को याद है। तो चलिए एक प्रार्थना सुनते हैं।

0: बच्चों को ताली चाहिए। और इस तरह कार्यक्रम में बच्चे जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनका आवाज़ ही उनका पहचान होता है, क्योंकि जब उनका आवाज़ सुनते हैं तो अपना नाम बताएंगे कौन सा क्लास में और कहाँ से। नाम क्या था?
1: आरती।
0: आरती, अरे वाह।
1: आठवीं कक्षा जयंती कुमारी, बसंती कुमारी, कक्षा आठ शोभा, कक्षा आठ सुमित्रा, कक्षा आठ ज्योत्सना, कक्षा सात कमला कुमारी चट्टी, दुर्गा कुमारी।
0: दुर्गा, कमला, सभी दोस्त को धन्यवाद देते हैं। इस तरह तोतली तोतली आवाज में पहला प्रस्तुति दिया, लेकिन बहुत सुंदर रूप में स्वर और लय का साथ। शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देंगे, ग्रामांचल बच्चे, आदिवासी बच्चे, गरसिया बच्चे भी कम नहीं है, और सभी ऐसे शुद्धता शुद्ध मन से अपना प्रस्तुति देते तो बहुत अच्छा हो जाता। और हमारा मैम शोभा मैम इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, और हमारा और एक मैम भी है तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते। ये था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू का आवाज।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला प्रस्तुति आवाज का दुनिया में सभी का आवाज जब सुनते हैं तो हमें खुशी होता है। जब इस तरह आकाशवाणी में बच्चे आते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो गांव का, शहर का और सभी का नाम रोशन होता है, विद्यालय का भी नाम रोशन होता है। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक आदिवासी गीत हो तो हमें कैसे लगेगा आदिवासी गीत में? तो मैम, आदिवासी गीत में बहुत मिठास होता है और शुद्धता होता है, भोलापन भी होता है। तो आप भी आदिवासी संस्कृति में आते, तो आदिवासी जो शुरू से बास करते उसको कहते हैं आदिवासी। तो आदिवासी का ऊपर में क्या जानते हैं?
3: आदिवासी जो पूर्व से जो निवास करते हैं, जो कोई ऐसी भी जातियां हैं जो कहीं से आती है, किसी देश से आती है, लेकिन हम जो है वो पूर्वों से यहीं पे है। हाँ, हमारे जो पूर्वज है उनके भी पूर्वज ठेर से यही है, यही जो निवास है उनका निवास स्थान यही है।
2: इसलिए आदिवासी जब नाम सुनते पूरा गर्व महसूस करते हैं। हाँ। कोई भी बच्चा बोला मैं आदिवासी हूँ।
3: हाँ।
2: तो इसका आदि से जो शुरू से जो बात करते हैं।
3: जी, शुरू से हम जो निवास है वो आदिवासी है, जो लगभग जो 80% तो पहाड़ों क्षेत्रों में ही रहते हैं और हमारा जो है ये पशु है इनको पालन करते हैं यही है और खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारी आजीविका है। अब थोड़ा शिक्षा की और बड़े हैं तो शिक्षा में भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो है मगरेज जो भी मिलता है उनको बेचा करते हैं, पशुओं को रखते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, यही आजीविका है।
2: तो क्योंकि आबू रोड आबू सिरो जिला खासकर टीएसपी एरिया है।
3: हाँ।
2: और सभी आदिवासी बच्चे बहुत नामांकन में वृद्धि होता है। तो और एक आदिवासी गीत प्रस्तुत करेंगे, तो चलिए वेरी गुड, शुरू हो जाए बच्चे, रेडी।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदिवासी अंचल में जो जाते हैं, आदिवासी जो गीत में जो भजन में जो मिठास है, जो शुद्धता देखने को मिलता है, तो आज बच्चे मोडू का बच्चे भी कम नहीं है, सब तक पहुंचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम का अगला कड़ी में बच्चों को पुनः स्वागत करते हैं। एक मंच के लिए जो तरसते हैं, आज वो मंच मिल रहा है। आज तो कार्यक्रम ही कार्यक्रम बच्चों का। आज नो बैग डे जैसे कोई पढ़ाई नहीं, पूरा मनोरंजन। उधर भी गीत चल रहा है, इधर भी नाच चल रहा है और इधर गीत चल रहा है। तो सभी भागीदारी को धन्यवाद देते हैं और एक प्रस्तुति के लिए रेडी शुरू।
3: बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी।

0: सही में बेटी तो दो कुल को उधार करती है, एक उस कुल को उधार कर देती है। बेटी एक पराया धन नहीं है, बेटी सबके लिए धन है, मान है, धन है, तन है। तो बेटी पराया नहीं है और अपना है। जहाँ बेटी यहाँ रहेंगे वहाँ तो साफ स्वच्छता, परिवेश, पर्यावरण सब कुछ मिलता है। क्यों? बेटी के पास इतना शक्ति है, क्योंकि शिव शक्ति कहते हैं बेटियों, क्या कहते हैं? शिव शक्ति, शिव का शक्तियाँ है ना। बेटी हमारा गुड़िया बहुत परिया है और सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद। ये था राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय का नन्हे मुन्ने बच्चों का बेटियों का ऊपर में एक कविता जो कि सुंदर रूप में प्रस्तुति दिए, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और अपना मन का बात गीत के माध्यम से बोलते हैं। तो ये ग्रुप कम नहीं है, छोटा सा ग्रुप है, लेकिन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सभी बड़े होकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, कोई मैडम बनेंगे, है ना? क्या बनेगी तुम?
1: पुलिस।
0: देखो पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना है, कोई चोरी करेगा तो उसको जेल दंड दे देंगे, है ना? तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

ब्रेक का पहले हम बच्चों का गीत सुन रहे थे, बेटी का ऊपर में। बेटी सभी को उद्धार करती है और घर का रोशनी बढ़ाती है। एक प्रेरणादायी गीत सुनेंगे तो हमारा सभी गुड़िया उपस्थित है। एक प्रेरणादायी गीत के लिए रेडी हो रहे सेम ग्रुप। ओके।

इतना सुंदर प्रस्तुति और हमें बहुत खुशी लग रहा है। इस तरह बच्चे को जो मंच का आवश्यकता था आज वो मंच मिल गया, जिसका चलते एक का बाद एक पूरा गाड़ी चल रहा है और सजा रहे हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम गुलदस्ता जैसे बन गया। एक एक फूल को लेकर गुलदस्ता बनता है, तो एक एक आवाज को लेकर, एक एक गीत को लेकर, एक आवाज का दुनिया में आवाज सुन पा रहे, हमें बहुत खुशी है। तो इस तरह बच्चे जब सच्चे मन से गाते हैं तो उनका माँ बाप जब सुनते हैं, उनका दोस्त लोग जो सुनते हैं, तो उनको खुशी लगता है। ये हमारा विद्यालय का आवाज है, हमारा गुड़िया का आवाज है, और एक आवाज में ही उनको खुशी मिलता है। तो लेते हैं।

0: इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति सुनेंगे बच्चों का तुतल तुतल आवाज से। तो हमारा साथ क्या नाम बोले?
1: शोभा।
0: शोभा
1: बसंती।
0: बसंती और शोभा इस गीत को प्रस्तुत करेंगे।
1: दया।

0: चलिए कार्यक्रम को अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और कविता भी सुनेंगे, लेकिन पहले कविता सुन लेते हैं। कविता सुनेंगे, एक छोटा सा नन्ना सा हमारा गुड्डा आया है तो अपना प्रस्तुति देने के लिए, बहुत खुशी लग रहा है। तो ए सिंगल प्रस्तुति के लिए नाम बताएंगे?
1: अमित।
0: अमित
1: जी।
0: और कौन से क्लास?
1: सातवीं।
0: और बड़ा होकर क्या बनेगा अमित? डॉक्टर, इंजीनियर ना मास्टर?
1: टीचर।
0: टीचर बनेंगे, बहुत अच्छा। तो अमित के लिए धन्यवाद देते हैं, छोटा सा प्रस्तुति देने के लिए आया है। तो सुनाएंगे क्या कविता? देखिए सुनाओ।
1: रणबीर चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराल था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ियावा को पाला था। गिरता ना कभी चेतक रहे तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा था हरे मस्तक आसमान पर घोड़ा था, जो तने कवा से बागली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा के पुतले फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल निकलाया ढालों में, उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, चरपट दौड़ा करवालों में। यह ही रहा अभियान नहीं, वह वही रहा वह नहीं, थी जगह ना कोई जहां नहीं, किस अरे मस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। वीर का राल बर्ज में बादल सा, अरियो की सेना की गहर गया। बाला की गया गिरा निसंग, यह टापो से खन गया अंग। वीरे समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग गया।
0: चेतक नाम सुनते हैं तो कितना खुशी लगता है, चेतक का वीरता, चेतक का पूरा साहस। मैम अपना परिचय दीजिए, और खासकर चेतक नाम सुनते तो राजस्थान का जो चेतक, राणा प्रताप का चेतक घोड़ा, और चेतक का जो वीरता जिसका साहस, जो प्रभु का मालिक थे, उसका बारे में थोड़ा बताएंगे। पहले अपना श्रोता मित्र को और हमारा बच्चों को।
2: चेतक है जो महाराणा प्रताप हमारे जो थे मेवाड़ के जो राणा, उनके जो घोड़े का नाम है चेतक, उनकी वीरता, उन्होंने अंतिम सांस तक अपना साथ, अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। उनकी टांग कट गई फिर भी उन्होंने अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए यहाँ उनकी साहस और वीरता की ये जो कहानी है कक्षा 6 की है। और चेतक की वीरता इसके बारे में बालक ने बताया कि चेतक जो कैसा था, उसकी वीरता के बारे में उसने छोटी सी कविता सुनाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अंतिम प्रस्तुति देंगे शोभा वासंती एंड पार्टी, और ये कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा रहे हैं, और सभी ने अपना बात को रखें, ये कम बात नहीं है। तो चलिए शोभा एंड पार्टी को स्वागत करते हैं, और सभी बच्चे इनको साथ देंगे। ये पहले करेंगे शोभा और वासंती, इसका बाद बच्चे साथ में करेंगे, सभी साथ में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं, और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू का आवाज।

0: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भारत का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक हम जा रहे हैं और बच्चे इस तरह देशभक्ति में, हर बच्चा एक देवी का प्रतिमा है। मैंने पहले भी बोला था बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महात्मा होते हैं और बच्चे देवी का प्रतिमा होते हैं, क्योंकि भारत का जो मिट्टी है, भारत देश महान है, इसलिए सभी देश से भारत हमारा श्रेष्ठ क्यों कहते हैं, क्यों भारत माता कहते हैं। कोई भी देश को माता शब्द नहीं बोलते, किन्तु माँ का प्यार, माँ का ममता, माँ का त्याग कभी भूल नहीं पाते, इसलिए भारत हमारा सबसे श्रेष्ठ है। और खुशी लग रहा है सभी इसका आवाज लिए हमारा, और एक मैम अपना खाली नाम बताएंगे और कौन सा विषय पढ़ाते।
1: मेरा नाम रवीना मंडावरिया है, मैं आबू रोड की रहने वाली हूँ और मैं मोर्डू स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 में गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ।
0: मैम पढ़ाने में आपको खुशी मिलता है ना?
1: हाँ, पढ़ाने में खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है।
0: बहुत खुशी मिलती है। बच्चे मैम के लिए ताली बजाओ, क्योंकि खुशी मिलना सबसे बड़ी बात है। पैसा देने से भी खुशी नहीं मिलता, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से खुशी मिलता है, क्योंकि कच्चा मिट्टी होकर बच्चे आते हैं और उसको मूर्ति बना देते हैं, जैसे रूप चाहेंगे, जैसे हम उनको बनाना चाहेंगे, जिस तरह उनका विशेषता गुण चरित्र बनाना चाहेंगे मैम बना देंगे। और इसलिए तो बच्चे स्कूल में आते पढ़ने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए। पढ़ाई का महत्व तब होता है जब हम चरित्रवान बनेंगे और एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे गीत के माध्यम से आप बच्चे सब सुनाएं, तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर बच्चों का साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन द्वारा प्रस्तुतिकरण, जो कि जैसे मैंने सुबह मैम को बताया भाई आप थोड़ा शुरुआत कर दो, बच्चे आपका आवाज को देख कर ही उनका आवाज को रोक नहीं पाएंगे और एक का बाद एक प्रस्तुति दिए। तो कैसे लगा सुबह मैम?
2: बहुत अच्छा लगा, आप आए, हमको हमारे बच्चों को मौका मिला कुछ गाने का, कुछ प्रस्तुति देने का, अपने मन के अंदर जो है उनको अभिव्यक्त करने का, अच्छा लगा। और आते रहना, बच्चे हमारे और कुछ आपको सुनाएंगे अगली बार।
0: धन्यवाद, तो धन्यवाद के लिए धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी वक्त है जीवन रोशनी कार्यक्रम का। तो आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर सब चीजें सही चल रहा है लाइफ में और कई बार कुछ निर्णय लेना होता है, कई बार कुछ परिस्थितियां अचानक सामने आ जाती है, हम कहते हैं अपने आप को टेक इट इजी, लेकिन वो इजीनेस को प्रैक्टिकल में लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तभी कैसे हम कर सकते हैं इसको, इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, तभी कर सकते हैं जब हमें से प्रैक्टिस करना आएगा और हम समझेंगे कि इजीनेस है क्या। हम अपने मन से बात करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि इजीनेस क्या है, लेकिन इसे बताने के लिए हमें चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे मध्य हैं आरजे हर्षा और आरजे मनीषा, जिनको आप सुनते हैं हमेशा कौन से प्रोग्राम में,
1: सपनों की सैर कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, तो आज हमारे साथ परी और दीदी दोनों जुड़ चुकी हैं और दोनों अपने अपने जो सेवा है बहुत बखूबी से निभाते हैं। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन होम है, वहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए सेवा करते हैं, और आरजे हर्षा वैसे MBA किया है उन्होंने और PR के रूप में कार्यरत है शिवमणि होम में, और आरजे मनीषा फिजियोथेरापिस्ट है, तो वो बुजुर्गों को हेल्प करते हैं एक्सरसाइजेस में और बहुत सारे चीजों में वो हेल्प करते हैं, उन्हें कोई भी पेन योगा हो तो इस प्रकार से वो उन्हें हेल्प करता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप जीवन रोशनी कार्यक्रम में आए हैं तो इसीलिए खूब खूब स्वागत है।
1: थैंक यू आरजे शुभा।
2: थैंक यू।
0: धन्यवाद। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इजीनेस के बारे में, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं आप करते हैं, फिर भी आप रेडियो पे शो करते हैं, ऑनलाइन आपको एडिटिंग करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं और रेगुलर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए लाइफ इजी होना बहुत जरूरी है, या फिर हमें इजीली उसे एक्सेप्ट करना शायद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि इजीनेस आपके लिए क्या है।
2: मेरे ख्याल में इजीनेस माना हम परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करें, तो इससे जो हमारा मेंटल रेसिस्टेंस है वो कम होगा
0: जी,
2: और ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है
0: जी।
2: जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में बेशक उसको हम कंट्रोल में रखें, ताकि हम उस परिस्थिति को इजीली टैकल कर पाए, और इससे हमारा जो मन है वो थोड़ा स्टेबल रहता है परिस्थितियों में भी
0: जी।
2: तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सेप्ट करना, आपने बोला रेजिस्टेंट की बात, मतलब कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट हो जाते हैं?
2: जैसे वर्कलोड अगर ज्यादा हो गया तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, तो हरी करी इससे थोड़े फ्री रहे, उसके लिए मुझे लगता है कि हम बीच बीच में पॉज करें।
0: ओके जी,
2: पॉज बहुत जरूरी है
0: जी।
2: तो इससे हम कुछ भी अगर अलग से हो गया, रिएक्ट हम नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे
0: जी। आगे आपसे जानते जाएंगे कि कैसे पॉज करें। अभी मनीषा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सहजता जन्मजात होती है या फिर ये अभ्यास से आती है?
1: वैसे देखा जाए तो सहजता मीन्स हम इजीनेस, जैसा हर्षा बहन ने बताया, और ये भी कह सकते हैं नेचुरलनेस या इफर्टलेसनेस हम सहजता से समझ सकते हैं, तो ये जन्मजात भी होती है और अभ्यास से भी आती है। जन्मजात क्यों कहेंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, तो ये सहजता उसका नेचुरल है ही उसके अंदर। और फिर क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो वो नेचर वाइज बहुत इजी होता है, वो चीजों को कन्वर्ट नहीं करता, वो एज इट इज लेता है, लाइट रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके ऊपर संस्कार आते जाते हैं, उसके ऊपर अपेक्षाएं मीन्स उसके ऊपर हावी होने लगती है, तो फिर वो जो सहजता है वो चेंज हो जाती है, उसको फिर बाद में उसको विकसित करने के लिए फिर से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर करना कहना चाहूंगी कि हाँ, इसको हमें विकसित भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर के बच्चे को यदि हम हमेशा जगा के रखें, कहें

0: हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये एक जन्मजात भी है और हम इसे और अच्छे से भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चलना जो है वो जन्मजात है, मीन्स हर कोई चल सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से चलना, बैलेंसिंग के साथ में चलना, तो वो एक कला हो जाती है, एक विकसित करने पे ये डिपेंड करता है।
1: जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको जगा के कैसे रखते हैं?
0: हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम जो अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखने के लिए हम कभी कभी डांस कर लेते हैं, हम कभी गाना गा लेते हैं, कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग, बहुत सारे जो ऐसे क्वालिटीज है, मीन्स हम एंजॉय करते हैं लाइफ को जैसे बच्चे करते हैं, कभी गेम्स भी खेल लेते हैं।
1: जी हर्षा जी, आप कैसे एंजॉय करते हैं?
2: हाँ, जैसे मनीषा बहन ने कहा, क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बुजुर्गों को भी, हाँ, उनके ये भी एक यूं कहे बच्चे की ही अब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग और बच्चा सेम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ वैसे बन जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता
1: जी क्या बात है। तो लोग लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लेते हैं, हर्षा जी से जानना चाहूंगी।
2: है। मुझे लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ओवरथिंकिंग से बनती है, जो कि आजकल के जमाने में खासकर यूथ्स को बहुत ज्यादा ये बीमारी होने लगी है, ये देखने में आता है, ओवरथिंकिंग और कंपैरिजन। कंपैरिजन के कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और फ्यूचर का फियर है, इसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है।
1: तो मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
0: जैसा हर्षा बहन ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड का रीजन करेक्ट है कि ओवर थिंकिंग है, कंपेयर और इच्छाएं हो जाती है, कई बार एक्सपेक्टेशन हम ज्यादा करने लगते हैं अपने से भी और दूसरों से भी, और जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा होती है तो फिर वहां पर हम अपने आप को मीन्स एक रिजिट कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम अपने अंदर मीन्स जगह नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आई थिंक, मुझे लगता है कि सबको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वे हैं, ना कि हमें उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तभी हम लाइफ को इजी बना सकते हैं। और क्या प्रकृति में हमें सहज जीवन के उदाहरण मिलते हैं?
0: हाँ, प्रकृति देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी जीवंत पाठशाला कहेंगे हम, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, कदम कदम पे मिलते हैं। जैसे कि यदि हम एक फूल को ही देख लें, तो फूल है वो सोचता नहीं है कि मुझे खुशबू फैलाना है या नहीं फैलाना है, वो उसका इजी, उसका नेचर ही है खुशबू फैलाना, इजी है वो। ऐसे ही देखें नदी को देखें, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो चल रही है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और जैसे पेड़ है, उसका छाया देना उसको काम है, फल लगते हैं तो और वो झुक जाता है, तो जो उसका नेचर है, जो सहज वो उसको उन्होंने अपना के रखा हुआ है। जैसे आकाश को देखें तो वो खुलापन है उसके अंदर, विशालता है। तो ऐसे हम जो प्रकृति से हम ऐसे सीख ले सकते हैं जो इजीनेस है उसके लिए।
1: जी, फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनमें से फेवरेट एलिमेंट आपके
0: फाइव एलिमेंट्स में देखा जाए तो मुझे लगता है, वैसे तो पांचों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसे लगता है वाटर ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे कटोरी हो, चाहे ग्लास हो, चाहे लोटा हो या बॉटल हो, मटका हो, नदी हो, सागर हो, तो वो अपने आप को बहुत, मीन्स उसमें एडजस्टमेंट की पावर जो है वो बहुत मीन्स ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको हर्षा जी
2: सेम
1: वाटर पसंद है?
2: पसंद है, क्योंकि फ्लो होता रहता है और हर चीज में ढल जाता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है हमें पानी।
1: जी, नेक्स्ट मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि आप यूथ के बारे में बोल रहे थे और ओवर थिंकिंग के बारे में बोल रहे थे, तो यूथ में जो एंजाइटी और कंपैरिजन जो आजकल है देखने को मिल रहा है, तो ये इजीनेस को कैसे प्रभावित करता है? और जो ओवर थिंकिंग के बारे में आप कह रहे थे, तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं आपको लगता है?
2: हाँ बिल्कुल, ओवर थिंकिंग तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इससे हमारी क्लैरिटी खत्म होने लगती है, हमारा फोकस चला जाता है और साथ में हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं चीजों की।
1: जी
2: अगर परिस्थिति 10% है, सोच सोच करके हम उस 10% परिस्थिति को हम 80% 90% तक ले जाते हैं, जिसको कहते हैं राई का पहाड़ बना दिया।
1: जी
2: तो परिस्थिति बहुत छोटी है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो वो बहुत हमको बड़ी लग जाती है, क्योंकि हमने उसको सोच सोच के कर दिया है। तो इसके कारण ओवरथिंकिंग बहुत हानिकारक है।
1: जी ओके ओके, तो मनुष्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इच्छाओं के बाद जो हम करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसके अधिकतर जीवन को असहज बनाती है, तो कैसे कुछ एग्जांपल्स?
0: जैसे कि इच्छाओं की अधिकता जीवन को असहज बना देती, तो कई बार क्या होता है हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो जरूरी भी है क्योंकि कहा भी जाता है इच्छा आवश्यकता की जननी है, वो होनी चाहिए, मगर जब जो इच्छा जो लेवल है वो उससे ऊपर चली जाती है तो फिर वो बैलेंस जो है हमारे जीवन में जो संतुलित जीवन है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाती। तो जब इच्छाओं की अधिकता होती है तो शुरू होता है चाहिए चाहिए, मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए, और अगर चाहिए तो ठीक है ओके, ये थोड़ा कहें कि ह्यूमन नेचर है चाहिए ओके, बट अगर नहीं मिला, जब वो जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला, तब भी हमारा जो थॉट्स है वो बैलेंस में रहे, हमारा इफेक्ट ना करे हमारी लाइफ पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इच्छाओं की जो अधिकता है तो ये कि हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, टू मच भागने लगते हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है वो असहज हो जाता है। अब असहज क्यों होता है, इसमें सबसे पहले आता है तुलना आती है, इसी समय हम कंपेरिजन करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है, स्पर्धा करते हैं हम, कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है, फिर ये कहें कि एक साइकिल शुरू हो जाता है, जैसे वो 99 का साइकिल है कि एक कम रह गया तो वो उसको एक को पूरा करने का वो चक्र शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इच्छाओं की अधिकता है तो वो जीवन में हमारे असहजता लाती है, फिर भय होता है अंदर में, डर क्रिएट होता है, दूसरों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, सब मेरे अकॉर्डिंग हो, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर असहज हो जाता है।
1: जी, तो हर्षा जी जैसे कंपैरिजन की बात मनीषा जी ने कही और आप भी कह रहे थे कि कंपैरिजन जो है वो बहुत डेंजरस है, लाइफ को इजी करने नहीं होता, तो इसमें शायद यूथ को सबको ही एंजाइटी फील होती है, तो ये कैसे प्रभावित करते हैं अपने लाइफ को और अपनी सिंप्लिसिटी को?
2: कंपैरिजन जो है ये एंजाइटी पैदा करता है, और आजकल के जमाने में आई थिंक सोशल मीडिया ये ज्यादा कंपैरिजन में लेकर आ रहा है यूथ्स को, और जहाँ कंपैरिजन है वहाँ कंपटीशन होगी
1: जी,
2: और कंपटीशन शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी
1: जी,
2: तो इसलिए ये जो तीन सीज हैं वो बहुत थोड़े डेंजर वाले हैं
1: जी जी जी,
2: और इसके कारण मुझे लगता है कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो रहा है, क्योंकि देखा कंपेयर किया ये मेरे से बेटर है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो और अच्छा करने की कोशिश करते उसमें उनको एंजाइटी आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता, और इसका जो नतीजा है वो जो इंटरनल ईज होना चाहिए कि एक सरलता अंदर में जो संतुष्टता होनी चाहिए, लेटिंग गो की भावना होनी चाहिए, वो सब खत्म हो रही है इसके कारण, कंपैरिजन के कारण।
1: कंपैरिजन के कारण, तो जैसे माँ बाप कंपेयर करते हैं या कंपटीशन के लिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरिजन के भाव देने से शायद उसको लगे वो कर सकते हैं तो मैं क्यों, है ना, तो इसको क्या कहना
2: है? हेल्दी कंपटीशन हो,
1: हेल्दी कंपटीशन हो
2: तो वो अच्छा है, लेकिन मेरी रील से उसकी रील्स अच्छी है तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है,
1: वो उधर घूमने गए अपने फोटोज शेयर किए जी, इस प्रकार से
2: कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए
1: ओके,
2: और माँ बाप को उसमें मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे एंजाइटी में ना चले जाए, उनको प्रेशर ना दे माँ बाप
1: ओके जी ओके। तो जब इजी फील करने लगते हैं हम हर चीज, आपने कहा कि संतुष्ट रहना चाहिए है ना और सिंपल होना चाहिए लाइफ, तो बोरिंग या फिर हम वो तो नहीं कर देंगे, स्टॉप तो नहीं कर देंगे अपने आप को कहीं पे, हम आगे तो बढ़ने कोशिश नहीं करेंगे?
2: नहीं, संतुष्टता बोरिंग नहीं है, संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति रुक गई बस हम इतने में ही सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं है, लेकिन संतुष्टता कब है, जब रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट ओके, हमने एफर्ट्स लिए, हमने काम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ठीक है, या तो उसे एक्सेप्ट करें, सेटिस्फाइड रहें और लर्न कर लें कि आगे के लिए इसमें क्या हम बेटर कर सकते थे, उसको सीख करके फिर और आगे बढ़े। लोगों से भी अगर कंपटीशन हेल्दी है तो आप उनसे सीखेंगे, लर्न करेंगे और वो चीज अपने में अपना करके आप आगे बढ़ेंगे, तो सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ना रोकती नहीं है और आगे बढ़ाती है, इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि वी डोंट नीड टू प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव
1: ओके। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव
2: हाँ,
1: करने
2: आपको
1: की
2: इम्प्रूव
1: कुछ ऐड करना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छे से हर्षा बहन ने बताया है कि हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है खुद को, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। कई बार यही होता है ना कि हम प्रूव करने के चक्कर में कईयों को उंगली दिखाते हैं, तो एक उंगली तो उसकी ओर होती है मगर चार हमारी तरफ होती है, तो फिर यही है कि चार तो हमारी तरफ है तो हमको ही इम्प्रूव करना है, दूसरे के सामने प्रूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल, तो देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने इजी तरीके से ये टॉपिक हमें समझ में अभी आ रहा है। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, 9414151415 किस नंबर पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, यहाँ पर हम एक अल्पविराम ले लेते हैं और फिर मिलते हैं गाने के उस पार। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: में आप सभी का स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे साथ आरजे मनीषा और आरजे हर्षा जी हैं। तो वो बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। बहुत ही सहज तरीके से हम सुन रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए आगे भी जानते हैं उनसे। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे आरजे हर्षा जी कि अगर कोई व्यक्ति रोज स्ट्रेस में रहता है, मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है कि सुबह ये बनाना है या ये काम पेंडिंग है, तो वो सुबह की शुरुआत कैसे सिंपल करे, कैसे सहज करे?
2: मुझे लगता है कि सुबह उठते ही आँख खुलते ही फोन हाथ में ना आए
0: जी,
2: क्योंकि हम फोन को जैसे चार्ज करते हैं तो एक ये लक्ष्य बनाए कि खुद को चार्ज करना है
0: जी।
2: तो एटलीस्ट हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स जब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, मन को थोड़ा रिलैक्स करने की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, जो पूरा दिन फिर उसी फ्लुएंसी में हम रहते हैं
0: जी।
2: और मॉर्निंग में ही अपने टारगेट्स गोल्स सेट कर लें कि आज ये काम मुझे करने हैं और इस तरह से मुझे किस तरह से करना है। मेंटली आप अपनी एक बना लें, यूं कहें प्रोग्रामिंग कर लें
0: जी,
2: तो आप बाकी जो परिस्थितियां या जो भी काम है उसमें आप एंग्जाइटी में नहीं आएंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे,
0: तो मन से बात
2: वैसे स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे।
0: तो मन से बात करनी है, प्रोग्रामिंग मतलब कि आज अगर कोई भी परिस्थिति आए तो मैं स्ट्रेस नहीं फील करूंगा,
2: मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा
0: जी। बिल्कुल। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेली अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे 5-10 मिनट तो ये लाइफ को सहज कर सकता है?
1: जी, प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के 5 तत्व जो देखे हम, आसमान, नदी, पेड़ पौधे, सब कुछ, पक्षी, फूल, पौधे, जो भी हम देखते हैं, तो उन सब से हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है एक तो, और दूसरा क्या है, उनकी क्वालिटीज हमें नजर आती है। जैसे कि पहले बताया कि जो फूल होता है वो पूछकर खुशबू नहीं फैलाता है, उसका नेचर है। तो जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हम उनसे ये सीख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। और खासकर जब भी देखा जाए बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिलैक्स होने लगता है। खुली हवा हम लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो वो भी हमारे मन की जो गति है जो बहुत फास्ट हो गई वो स्लो डाउन करती है। फिर उसके बाद में जब ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारे थॉट थे वो धीरे धीरे थोड़े क्लियर होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमें प्रायोरिटीज देना है जिन चीज़ों को, वो चीज़ें धीरे धीरे ध्यान में आती हैं और उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, तो मन बहुत मीन्स कहीं रिलैक्स हो जाता है। तो एक स्ट्रेस जब भी है, स्ट्रेस रहे तो भी हम यदि प्रकृति के बीच में जाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ये मैनेजमेंट है स्ट्रेस का, कह सकती हूँ। जिसमें शांति में जाकर यदि कोई पेड़ है तो उसके नीचे ही बैठ जाएं और गहरी सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये बहुत सहज करने में मददगार है
0: जी। बिल्कुल। और हर्षा जी, जब हम कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, तो क्या उसको आसान बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपके पास है, क्या बताएंगे?
2: बिल्कुल, प्रैक्टिकल टेक्निक्स तो आज से बहुत हमें मिलती है। इसमें यूँ कहें कि हम अपनी मेंटल फाइलिंग सिस्टम जो है वो एक बना दें सवेरे उठते ही, और उसमें चेक करें, जैसे फाइल्स होती है तो ऐसे हम अपनी फाइल्स को मेंटली चेक करें कि कौन सी फाइल इम्पोर्टेंट है। कुछ फाइलें अर्जेंट होती है, कुछ इम्पोर्टेंट होती है, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है
0: जी,
2: कुछ इम्पोर्टेंट भी होती है, अर्जेंट भी होती है। तो वो हमें डिसाइड करना है कि पहला काम मेरा कौन सा है जो मुझे करना है, अर्जेंट भी हो इम्पोर्टेंट भी हो। तो इस तरह जब मेंटल फाइलिंग सिस्टम हम कर लेते हैं तो हमें डिसीजंस लेना बहुत इजी हो जाता है, और उसके लिए फिर हमारे मन के विचारों को रिलैक्स होना बहुत जरूरी, क्योंकि मन तो विचार करता है लेकिन डिसाइड हमारा इंटेलेक्ट करता है। तो इंटेलेक्ट हमारा मतलब बुद्धि जो है जज है, मन तो वकील है। अब वकील बोलता ही रहेगा तो जज अपना निर्णय कैसे सुनाएगा। डिसाइड कब करेंगे,
0: मन को शांत करेंगे।
2: तो इसीलिए मन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तो सही टाइम पर हम सही डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। और उसके लिए जो मैं एक अफर्मेशन का प्रैक्टिस करती हूँ डेली का, खासकर सवेरे, वो ये है कि आई एम एट अ राइट प्लेस डूइंग राइट वर्क टेकिंग राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। ये अफर्म रोज सवेरे अपने लिए करना, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको मदद करता है और सही मायने में आप सही समय पर डिसीजन जो है वो ले सकते।

0: जी, तो ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, मन को शांत रखना है और फिर
1: हाँ
0: हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं अपने बुद्धि के
1: जी,
0: द्वारा।
1: हाँ
0: तो
1: जी बिल्कुल,
0: मन को साफ रखना भी जरूरी है, दोनों
1: मन को शांत रखना भी जरूरी है, साफ रखना भी जरूरी है।
0: जरूरी है, तब हम इजीली डिसीजंस ले सकते हैं जी। तो मनीषा जी से जानना चाहेंगे, क्या जो चीजें हम यूज करते हैं आसपास में है, तो मिनिमलिज्म अपनाना जरूरी है इजीनेस के लिए?
2: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमलिज्म मीन्स, यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कम सामान रखना, जबकि इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि जितना है उतना पर्याप्त है। मीन्स एक संतुष्टता का एक गुण है इसके अंदर में। और आज देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन में भी देखा जाए तो बहुत सारे कहें कि चाहिए चाहिए, इच्छाएं इच्छाएं की वजह से साधन संसाधन बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे गांधी जी का याद आ रहा है, उनका कोट था बहुत फेमस है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन सादगी से भरा हो लेकिन जो विचार है वो अच्छे इंपॉर्टेंट हो। और मीन्स अंदर की सादगी जो है वो बाहर हमारी क्लैरिटी लाती है, हमारे में सहजता लाती है। तो इसलिए सामान पे तो डिपेंड नहीं होता भले, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि संग्रह वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैन धर्म में भी कहा गया, महावीर जी ने भी कहा है कि अपरिग्रह, यानी कि संग्रह नहीं करना। तो उसी प्रकार हमें ज्यादा चीजों को जमा नहीं करना है, क्योंकि एक ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतना जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो लो होता है। तो जितनी आवश्यक है उतना रखना है लेकिन सहज रहना। और कई बार क्या होता है कि इसको भी हम एक जबरदस्ती नियम जैसा बना लेते हैं, तो ये भी फिर कई बार ही स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ये रहे लेकिन पॉजिटिव वे में रहे।
0: जी बिल्कुल। तो मिनिमलिज्म अपनाते हैं, तो जैसे मनीषा जी ने कहा कि हम अपरिग्रह, महावीर स्वामी जी ने ये बात कही थी, मतलब ग्रीड नहीं बट नीड
2: ग्रीड
0: जितनी
2: नहीं,
0: है
2: हाँ जी
0: उतनी
2: करेक्ट।
0: रखें आप अपने पास। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हर्षा जी इसमें?
1: हाँ, इसमें अगर कुछ हम, चलो चीजें हमें, इसमें भी कंपैरिजन कई बार आता है, उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए या इससे बेटर मेरे पास होनी चाहिए, है
0: कोई चीजें हमें मतलब
1: जी।
0: अट्रैक्ट करती है, अच्छे
1: हाँ
0: लगने लगता है, तो हमें
1: हाँ
0: लगता है
1: तभी
0: कि ये
1: हम
0: खरीद लेते हैं,
1: खरीद लेते हैं। हाँ
0: खरीद लेते
1: खरीद
0: हैं।
1: लेते
0: और सबसे ज्यादा जो है इसका तो ऑनलाइन शॉपिंग है, सभी जान ही
1: हाँ
0: रहे
1: जी,
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: अननेसेसरी हम चीजें देखते हैं, ये अच्छी है भले जरूरत हो ना हो, हम परचेस कर लेते हैं भले वो पड़े रहे,
1: राइट
0: लेकिन अच्छी लगी तो ये सभी थोड़ी सी हमारे जीवन को असहज करने में मिस कर देता है ये।
1: जी
0: बिल्कुल जी। तो 5 मिनट मेंटल रिसेट एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें।
1: श्योर। इसमें सुबह उठते ही 3 बार डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, और एक ग्रैटिट्यूड की भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये
0: ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज है।
1: हम मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं कि रोज उठते ही ग्रैटिट्यूड फील करें, इससे आपको बहुत एनर्जी फील होगी
0: ओके
1: और ये एक मैजिक का काम करता है ग्रैटिट्यूड।
0: जी
1: इसकी जो प्रैक्टिस है वो
0: जी
1: आप खुद करके देखेंगे, भले 1-2 दिन आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और उस फीलिंग के साथ जब करते हैं तो जरूर आप जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और साथ में फोकस्ड रहें, मैं कहूंगी सिंगल फोकस,
0: सिंगल फोकस मतलब
1: मना आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे इस डिग्री को लेना है, जो यूथ्स के लिए कहे कि मुझे ये बनना है, उनका जो सपना है, तो फिर डाइवर्जन ना हो कि ये भी करूं ये भी करूं,
0: जी
1: एक में ही फोकस रहे। और उसी को अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है, जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन या पेंटर बनना चाहते हैं, तो उसी को आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं।
0: जी
1: अपने हैबिट्स को, हैबिट्स तो नहीं लेकिन हॉबीज को
0: जी
1: प्रोफेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोकस्ड
0: फोकस्ड
1: जरूरी है
0: सिंगल फोकस्ड एक नया शब्द है जो
1: जी।
0: जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि हम आजकल सोचते हैं कि मल्टीपल चीजें एक साथ कर लें,
1: हाँ
0: मल्टीटास्किंग समझ लेते हैं इसको,
1: मल्टीटास्क, हाँ जी
0: लेकिन
1: हाँ
0: एक बार में एक ही चीज के ऊपर हम फोकस रहे, ऐसा ये बात है जी। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल घर के अंदर बहुत सारे केओस जैसा माहौल होता है, बच्चों को कुछ और चाहिए, पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, अगर सास ससुर है तो उनको कुछ और चाहिए, और सभी के ओपिनियन भी अलग अलग है और लाइफ को देखने के नजरिया भी अलग अलग है। तो घर पे, घर में रहते हुए घर के माहौल को कैसे सिंपल और पीसफुल बनाया जा सकता
2: है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि घर का माहौल बदलना है तो कहें कि एक एक पर्सन की, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। जैसे कि एक जो घर होता है वो ईंट से तो बना होता ही है, लेकिन कितनी सारी ईंटें होती है, सब जब जुड़ते हैं तो जब सब साथ में होते हैं तो फिर वो एक घर कहीं मजबूती आती है उसमें। तो घर के माहौल को यदि सिंपल और पीसफुल बनाना है तो इसमें सभी जो मेंबर्स हैं हम घर के कहेंगे तो वो सभी इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। तो इसमें हम कुछ रूटीन्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिनचर्या हम ऐसी करें, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को भी उस अच्छी शांत दिनचर्या में शामिल किया जाए। घर में जैसे गांधी जी ने भी कहा सादा जीवन उच्च विचार, तो सिंपली सिटी रहे घर में भी, अनावश्यक चीजें ना हो, तो उसे कहे कि बच्चों को भी कुछ लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। और सिंपल और पीसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि मेडिटेशन भी किया जाए, है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं तो एक शांति का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिक वो शांतिमय वातावरण क्रिएट होता है, अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। और जितना अच्छा मीन्स हमारी सादगी पूर्ण जीवन रहेगा, अंदर भी सादगी है तो वो बाहर भी सादगी को वो रिफ्लेक्ट करेगा। मन हमारा यदि शांत है तो घर में ऑटोमेटिक व्यवहार में कहें परिवार में शांति इजीली आ सकती है। तो घर के माहौल को सिंपल और पीसफुल बनाना है तो कहूंगी कि प्रकृति के बीच में भी जाएं, जो भी सारे हमारे मेंबर्स हैं सब थोड़ा टाइम निकाले, प्रॉपर एक रूटीन रहे जिसमें एक दूसरे के साथ में एंजॉय करें। यहाँ पर मैं की भावना को छोड़ के एक हम की भावना को क्रिएट करें तो सिंपल और पीसफुल हमारा जो वातावरण है घर का वो बन सकता है।
0: जी अर्षा जी, आपसे जानना चाहूंगी इसी में ही कि महिलाओं को खास करके क्या ध्यान में रखना चाहिए जब घर में वो कार्यरत है पीसफुल और उसको सहज बनाने के लिए।
1: मुझे लगता है कि महिलाओं में इमोशनल बहुत वो होता है, तुरंत इमोशनल ये हो जाते हैं कि जब कुछ भी होता है तो
0: जी,
1: तो इसलिए वैसे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सब शेयर कर लेती है, हल्के हो जाते हैं किसी को सुना करके। लेकिन उनको भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है
0: अपने घर के माहौल,
1: घर के माहौल को, क्योंकि महिलाएं भोजन बनाती हैं तो वो किस भावना से भोजन बनाती है, अगर ये भावना रखे कि ये प्रभु प्रसाद है और वो मुझे सबको खिलाना है, तो कितनी मन की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस भोजन में जाएंगे। और जब सब वो खाएंगे शांति से बनाए, अच्छे गाने सुन करके बना सकते हैं, अच्छे आजकल तो पॉडकास्ट और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आती है सोशल मीडिया में, वो सुनते हुए बनाए तो भी घर का वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा रह सकता है।
0: ओके, मतलब अगर किसी का फोन आ गया तो बातें करते करते खाना ना बनाए,
1: व्यर्थ बातों में।
2: कई बार होता है ना टीवी चालू है, सीरियल देखते हुए कई बार बताए मैंने भोजन बनाते हैं,
1: आधा ध्यान देखते हुए,
2: आधा उधर मींस चल रहा है लाउड में और इधर काम चल रहा है उधर, उस तरीके से ना हो,
0: क्योंकि अपने फेवरेट सीरियल आए तो देखने को मन करेगा।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन खासकर भोजन बनाते समय थोड़ा
1: खाते और बनाते वक्त ना वो सब चीजें देखे, उसको अवॉइड करे, उससे मिक्स होता है और उससे भी सीखते हैं उन सीरियल से और बच्चे भी सीखते हैं,
0: बच्चे भी सीखते हैं। इसलिए आप अपने घर के माहौल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, सिंपल रहने देना चाहते हैं तो इस टेक्निक्स को यूज आप कर सकते हैं। जी हर्षद जी, जैसे आप कह रहे थे कि हमें 3-4 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, तो जो मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे, अभी भी आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये कैसे सिंप्लिसिटी ला सकता है लाइफ में, कुछ एग्जाम्पल्स आप शेयर कर सकते हैं सर?
1: इसमें सुबह तो करना ही है, रात को सोते वक्त भी करना ही है
0: जी,
1: लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में हैं, आप ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो बीच बीच में माइक ब्रेक्स जब लेते हैं तभी भी ये काम में आता है, लाइफ को सिंपल करता है।
0: ओके जी,
1: बहुत फायदा होता है इससे क्योंकि मन बहुत ईज रहता है और हमको एक बहुत अच्छा सीख मिलती है कि चलो चीजों को लेट गो करें तो भी हम अपने आप को सरल बना सकते हैं कि ओके फाइन जो हुआ लेट गो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव ऑन।
0: जी मनीषा जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे?
2: ये मेडिटेशन कहें या ब्रीदिंग टेक्निक है, सिंप्लिसिटी तो लाती है क्योंकि हमारे जो विचार हैं उस समय हमारे शांत होते हैं, एक एकरस होते हैं थोड़ा, और खासकर टेक्निक ब्रीदिंग की बताना चाहूंगी। एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें डीप इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है उसे, अंदर सांस लेते हुए 4 सेकेंड, फिर अंदर हम होल्ड करेंगे 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में हम उसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 करके, और छोड़ने के बाद में भी फिर से 4 सेकेंड हमको होल्ड करना है। तो इस तरीके से 4 का ये बॉक्स, एक कहें कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा एक बॉक्स बनता है। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम करें, और खासकर तब जब बहुत टेंशन में हो या कोई स्ट्रेस हो, कोई भय हो या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो कुछ सेकेंड रुक करके जब हम अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहुत अच्छा पॉज लग जाता है उस चीज पे जो थॉट चल रहा है उस पे, प्रोसेस पे। तो ये कर सकते हैं हम
0: जी। हर्षा जी, जब ब्लड प्रेशर के बीच में इमोशनली स्टेबल हम कैसे रहे?
1: हाँ, वही माइक्रो ब्रेक्स जरूरी है, पॉज जरूरी है, बीच बीच में आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी को, वो भी रिलैक्स देता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ना करें उसमें, जैसे जैसे ऑफिस का जो भी स्ट्रेस है वो घर ना ले जाए, घर का स्ट्रेस ऑफिस में ना ले जाए, उसको वहीं छोड़कर आए
0: जी।
1: एक व्यक्ति था, वो जब ऑफिस से घर आता था तो उसके बाहर एक उसने रखा पेड़ था, अपने सारे जो ऑफिस के स्ट्रेस है वो उस पर लिख के उस पेड़ पर चिपका देता था
0: जी।
1: उसको दे देता था, फिर घर में एंटर होता था।
0: Okay.
1: तो ये एक ये प्रैक्टिकल किया है उस व्यक्ति ने, तो इसीलिए घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार हम बॉस को तो सामने गुस्सा कर नहीं सकते, वहां तो हमको पी जाना है, तो वो जो अंदर भरा है प्रेशर वो फिर घर के लोगों के आगे निकलता है
0: जी,
1: है ना, जैसे प्रेशर कुकर फटता है। तो इसीलिए वहां ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुझे नहीं करना
0: जी।
1: ये थोड़ा हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तभी हम अपने वर्क प्लेस पे और घर पे जो कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रह सकते हैं।
0: ओके जी, यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद वापस आएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जीवन रोशनी नमस्कार।
3: गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद, अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान, कमजोरी, भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है।
4: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहे।
3: हर रोग का मिटे नामो निशान, ये है संकल्प, स्वस्थ रहे राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। तो मैं बिना देर के फिर से लौटती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के पास और आइए जानते हैं कि हमारे लाइफ को और इजी बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हर्षा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको सिंपल तरीके से रिजॉल्व कैसे करें।
1: सबसे पहले तो हमें सबका सुनना जरूरी है
0: जी।
1: हम ही सुनाते रहेंगे ऐसा नहीं है, उनकी भी सुने
0: जी।
1: और इसमें रिलेशनशिप्स में 3 L's है, लिसन, लुक और लर्न।
0: ओके,
1: लुक, लिसन और लर्न
0: जी।
1: तो हमें सबसे सीखना भी है, उनसे सुनना भी है और देखना भी है कि देखना माना वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या है। सिर्फ हम अपना ही एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सपेक्टेशन रखना माना कि हम जो वो नहीं है वो हम सोच रहे हैं कि ये मेरी तरीके से ही चले, तो ये ना हो, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से कम हो सके और आपका जो घर है वो स्वर्ग बन सकता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो है वो बन सकता है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में कोई फ्लूट पे है, कोई तबले पे है, कोई पियानो पे है, लेकिन सब एक ही सुर लय में बजाएं तो एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो सकता है। सब अपना ही बजाएंगे
0: जी
1: तो एक मेस क्रिएट होगा जो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सोचे कि हर एक का अपना म्यूजिक है
0: जी,
1: हर एक अपने उस पर है, संस्कार अपने हैं, तो हमें उनसे मिला करके चलना है। तो घर का जो वातावरण है बहुत रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत हमारी अच्छी हो सकती
0: है। जी, तो मनीषा जी से जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का क्या महत्व है।
2: देखा जाए तो रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस बहुत बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षमा मीन्स माफ करना, ये किसी भी संबंध को बहुत गहरा बनाता है। जैसे कि अगर बाय चांस समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता के बीच बच्चों के बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यदि माता पिता उस बच्चे को क्षमा कर देते हैं तो वो उससे कतराएगा नहीं अपने मम्मी पापा से कुछ भी शेयर करने को। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। और जो फॉरगिवनेस है, जो हम क्षमा करते हैं, तो वो क्षमा हम दूसरों को नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही कर रहे हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए हम नेगेटिव रख रहे हैं, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने खुद को ही एक जेल में बंद कर लिया। लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो समझ लीजिए कि हम उसको तो किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने को आजाद किया, हम आसमान के खुले पंछी बने ना कि पिंजरे के पंछी। तो लाइट जीवन को हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। और महावीर स्वामी ने भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम्, यानी कि क्षमा जो है वो वीरों का गहना है। जो इगोइस्टिक होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, तो लेकिन जो जितना नम्र होगा वो क्षमा करेगा। और फॉरगिवनेस से तो क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं इजीली दूसरों को, जो जो है वैसे उसी तरीके से, हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने उनको भले एक बार बता दिया कि भाई और कई बार होता है ना कि क्षमा का भी मतलब ये नहीं होता कि बार बार माफ़ी करते जा रहे उसमें, लेकिन एक तरीके से एक गुण बन जाता है ये कि हमें यहाँ पे हर बार सहना ही नहीं है, लेकिन एक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, एक शीलता मीन्स सहनशीलता डेवलप होती है हमारे अंदर में। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ही माफ़ कर रहे हैं, वो तो सुधर नहीं रहा है, वो बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो वहाँ पर हम सहन नहीं कर रहे होते, हम दमन कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन यदि हम उसको फॉरगिव करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम सहनशीलता, ये एक वैल्यू अपने जीवन में हम धारण करते हैं। तो क्षमाशीलता सहनशीलता जैसे कि एक वैल्यू होता है, वो अपने साथ पूरी चेन लेकर आता है और वैल्यूज की। तो एक क्षमा इतना इम्पोर्टेंट मीन्स कहें कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसके पीछे समझ लीजिए पूरे गुणों की जो है वो लाइन लगी होती है। तो और ये अभ्यास तो हमें डेली ही करना चाहिए, सोने से पहले क्षमा मांगना, जिसको भी हमने जाने अनजाने यदि हमने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, चाहे अपने विचारों से भी किसी के लिए अगर गलत सोचा है तो भी एक तरीके से हम इनडायरेक्टली उसको तकलीफ दे रहे हैं, हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो उस गलती के लिए भी हमें अपने को माफ करना चाहिए और दूसरे को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है खुद के लिए दूसरे के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते हैं, वहां पर हम स्वयं को माफ ही नहीं कर पाते, दूसरों को तो माफ करने की सोचते हैं लेकिन अपने लिए हम फिर बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझसे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। तो यहाँ पर हम खुद के लिए भी बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो वहां पर खुद के लिए भी थोड़ी करुणा रहे, क्षमा रहे कि भाई गलती हो गई तो हो गई, लेट गो करें, खुद को क्षमा करें। और ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम फिर ये गलती दोबारा ना हो, ये हम लेसन लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब खुद को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं, जब दूसरों को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं। तो जो फॉरगिवनेस है वो जीवन को इस तरीके से बहुत हल्का बना देता है।
0: जी, क्या बात है। तो क्षमा करना खुद को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज के लिए आपने अपने आप को अभी तक क्षमा नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है आगे ईजी हो सके। तो हर्षा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस की भी आपने पहले बात कही है, तो उसको कम करने के क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे?
1: उसके लिए खुद की बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा।
0: ओके।
1: कि मुझे पहले अपने आप को ही देखना है। उनसे एक्सपेक्ट करके हम अपने आप को यूं कहें कि एक बेचैनी सी फील होती है अंदर से, क्योंकि उसने मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा उसने किया नहीं, और इनडायरेक्टली हम अपना कंट्रोल उस पर डाल रहे हैं। तो इसीलिए, और फिर जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न एक्शन का रिएक्शन तो होगा, हमसे भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हम उनका फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इससे फिर रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स या टॉक्सिक वातावरण बनना शुरू हो जाता है।
0: जी,
1: तो इसीलिए जितना हो सके, भले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है, या तो आप उनको ठीक से बता दो भाई मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको क्लियर हो जाए कि जैसे माँ बाप को बच्चों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन्हें बताएं, फ्री रहें, बच्चे अपनी बातें उनको बताएं, एक अच्छा हेल्दी वातावरण रहे, तो घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी।
0: जी, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप है या हमारे लव्ड वंस है, हाँ, वो ना बिन कहे हमें समझ जाए।
1: हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको क्लियर रहना है,
0: क्लियर,
1: क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
0: तो जैसे हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में, अभी बात ही चल रही है, तो ईगो कम करके हारमोनी को लाना कितना जरूरी है और कैसे ला सकते?
2: वैसे देखा जाए तो परिवार में ईगो कम करना यानी कि खुद को छोटा करना नहीं है, बल्कि रिश्ते को बड़ा करना है। मीन्स आप अपने ईगो से ज्यादा आप उस रिश्ते को, आप रिलेशन को आप अहमियत दे रहे हैं। तो परिवार में ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, कहना चाहूंगी मैं। और यहाँ पर हारमोनी, जैसे कि ये शब्द है तो इसमें ही हमारी आदरणीय जो जानकी दादी थी वो समझाते थे, हारमोनी में ही दो शब्द है, हार मानी। तो जब हम परिवार में कोई एक हार मान ले तो बातें बढ़ेगी नहीं, तो बहुत सामंजस्य कहें परिवार में बना रहता है। तो परिवार में तो सबसे पहले ईगो मीन्स को गो कर देना चाहिए और हारमोनी को अपनाना चाहिए। मीन्स छोटी भले छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं, बट कभी आप झुक जाए, कभी सामने वाला झुक जाए, तो इस तरीके से कहें कि ये दो चक्के जो होते हैं पहिए, तो वो दोनों बैलेंस के साथ में चलते हैं। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें कोई सामने झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के सामने झुक जाना ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नीचे हो गए या अपने बिल्कुल गिर गए, इस तरीके से फीलिंग नहीं होती है। ये आप झुक गए तो समझ लीजिए आप और ऊंचे उड़ गए, तो वहां पर झुकना नहीं होता है, वो सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से परिवार में यदि हम ईगो कम करते हैं और ईगो की जगह हम कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हम डेवलप करें खुद के लिए भी और परिवार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें, तो भी हारमोनी आ जाती है। दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जब ये नहीं दे पाते हैं तभी हमारा जो ईगो है वो जागता है। और क्या होता है, ईगो का कारण ये भी होता है कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, देते नहीं है, चाहते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, और अगर बाय चांस वो नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर ईगो हर्ट हो जाता है। तो वहां पर हमें भले रिस्पेक्ट दे ना दे, वहां पर तो हमको लाइट रहना ही चाहिए, क्यों, एक्सपेक्टेशन तो हमें करनी नहीं है, परिवार में तो चलता है। तो इस तरीके से यदि हम ईगो कम करें, झुके, नम्र बने, तो बहुत इजीली हम हारमोनी ला सकते हैं, परिवार में सामंजस्य बना के रख सकते हैं।
0: जी, तो इसका मतलब जिंदगी को सहज करने के लिए हमें बहुत सारे मूल्यों को अपनाना है।
2: जी,
0: वैल्यूज की चेंज के बारे में बात कर रहे हैं,
2: और एक वैल्यू अपनाएंगे तो सभी उसके फ्रेंड हैं, सभी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे।
0: जी, तो दोस्तों जरूर कोशिश करें, आप कोशिश कर भी रहे होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपके सामने अगर आ जाए अचानक, तो आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप उस परिस्थिति को सामना करते हैं। तो हर्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर बहुत सारे टॉक्सिक माहौल है, कई बार हम मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, और वैसे भी हमारे लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती है उससे भी हमें लगता है कि बहुत टॉक्सिक है लाइफ, तो खुद को इंटरनली कैसे इजी रखें, चले बाहर तो माहौल है ही,
1: उसके लिए ही हमें बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है, वरना क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और कुछ समय के बाद जो जो चीजें आपने पहले देखी हैं उसको हिस्ट्री पूरी वाइप आउट कर दें और एक फ्रेश स्टार्ट करें।
0: जी,
1: तो आपको फिर नई चॉइसेस मिलेगी कि अब ये सारी बातें जो है वो मुझे सीखनी है, कि हफ्ता है या 10 दिन के बाद मुझे दूसरी नई चीजें देखनी है या सीखनी है।
0: जी,
1: सीखने की भावना से देखेंगे तो आप व्यर्थ में या टॉक्सिक में नहीं जाएंगे, तो इससे आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे और आप सेफ रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे।
0: जी, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नो कहना सीखना इजी नहीं होता कई बार, तो नो कहना सीखना इजीनेस से कैसे जुड़ा है?
1: बिल्कुल, नो कहना थोड़े कई बार बहुत मुश्किल होता है, खासकर अपने बॉस को या बड़ों को।
0: जी,
1: लेकिन नो कहना जरूरी भी है और ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो भले आप एकदम से नो ना कहें, नहीं कह पा रहे तो
0: जी,
1: लेकिन तरीके से कहें,
0: लेकिन अपनी बात
1: तरीके से, समय देख करके, वातावरण देख करके फिर आप अपनी बात रखें, तो फिर आगे देखें कि अब बड़े क्या डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन बताएं अवश्य, वरना नहीं बोलना, बोलने की जो ताकत अगर नहीं रहेगी तो अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है नो कहना। भले उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए, तो आप टाइम लें अपने लिए, निकालें, दे अपने आप को टाइम, ताकत भरें, मोटिवेट करें, लेकिन बात को तरीके से रखें जरूर।
0: जी, कोई बात मनवाना होता है तो हम बहुत तरीके ट्राई करते हैं उसको मनवा।

0: आने के लिए, लेकिन लोग कहने के टाइम में थोड़ा बहुत
1: जी
0: कुछ आता है। जैसे आपने कहा कि समय देते हैं आपको,
1: हाँ
0: पॉज लेना बहुत जरूरी है लाइफ में।
1: जी
0: तो मनीषा जी, अभी तो समय हो चुका है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अफर्मेशन से आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कहते हैं, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल में काम करता है?
1: ये कहें ग्रेटिट्यूड मीन्स उसका मीन्स थैंकफुल फील करना कि जो आपके पास है, ना कि उसके लिए फील करना कि जो मेरे पास नहीं है। जैसे कि ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है, जो देखेगा वो कहेगा आधा खाली है, और एक व्यक्ति जो है वो कहेगा आधा भरा है। तो यहाँ पर यही बात है कि हमारे पास क्या है वो हम देखने की बजाय क्या नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं, और उसके लिए हम धन्यवाद कहें, आभार हम फील करते हैं, खुद के लिए, भगवान के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, ना। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जितना करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ओपन होता जाता है, और थैंक कहने से कहें कि और मीन्स उसमें वृद्धि होती जाती है, प्रचुरता बढ़ती जाती है कह सकते हैं।
2: हाँ, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारी एनर्जी भी और बढ़ती है और एनर्जी शिफ्ट होती है हमारी, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना तो बहुत बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हफ्ते आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, और हमें अपना जो फीडबैक है 94-14-15-14-15 पर आप बता सकते हैं, कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। तो अभी जाने से पहले कुछ रैपिड फायर राउंड है, ये आप दोनों से जानना चाहेंगे। तो मनीषा जी, इजीनेस एक शब्द में?
1: सरलता। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बच्चे।
0: एंड हर्षा जी, इजीनेस?
2: लेट गो।
0: लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली एक आदत?
1: ओवरथिंकिंग।
0: सेम क्वेश्चन,
2: सेम ओवरथिंकिंग।
0: सिंपल लिविंग का सबसे बड़ा लाभ?
1: क्लैरिटी आती है थॉट में,
0: क्लैरिटी आती है। आप क्या कहना चाहते हैं?
2: ईज फील होता है, इनर ईज।
0: लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
1: एक 1-1-1 का होमवर्क देना चाहूंगी, 1 मिनट पॉज एवरी आवर, 1 मिनट साइलेंस में फील करेंगे, और किसी एक को थैंक करना, धन्यवाद,
0: पॉज
1: या साइलेंस की प्रैक्टिस, और
0: धन्यवाद करना।
1: हाँ जी,
0: धन्यवाद। हर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
2: रोज सुबह उठते ही खुद को चार्ज करना, और इससे हम अपने खुद के इंचार्ज बन जाएंगे।
0: क्या बात है।
2: अर्थात खुद पर कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी, और अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें।
0: क्या बात, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और मुझे लगता है इजीनेस वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इजी कर दिया, सरल कर दिया हमारे लिए।
1: थैंक यू,
2: थैंक यू
0: जी। उम्मीद है कि आप सिर्फ सपनों के शहर में नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे हमारे साथ अपनी बातें भी शेयर करते रहेंगे।
1: जरूर।
0: तो दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

My thoughts are held in an experience of peace.

feel deep acceptance and serenity within myself.

0: as I feel peaceful and accepting towards others. I understand that others can become peaceful and accepting towards me. I'm experiencing the true nature of love. No questions, no demands, no expectations. Only giving and sharing of warmth, caring, and acceptance.
1: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। आज 25 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं बच्चों ने ये लाइन तो सुनी, लेकिन ये महिमा किसकी है? ये महिमा है जगत अम्बा की। बाबा कहते यहां भारत में ही जगत अम्बा की महिमा गाई जाती है। दुनिया में कोई देशों में जगत अम्बा या माताओं की महिमा नहीं होती है। जगत अम्बा को ही सरस्वती भी कहा जाता है, लेकिन बाबा कहते विशेष जगत अम्बा की महिमा होती है। जगत अम्बा के साथ साथ जगत पिता भी जरूर होगा। तो जगत पिता कौन है? जिसको प्रजा पिता कहा जाता है। तो बाबा कहते एक और जगत अम्बा जगत पिता है, और दूसरी ओर जगत का पिता परम पिता परमात्मा को भी कहा जाता है। वो निराकार परम पिता परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो प्रजा पिता ब्रह्मा को निमित्त बनाते हैं सारे संसार के परिवर्तन के लिए। और इसीलिए बाबा कहते जगत माता और जगत पिता का गायन है। परम पिता परमात्मा आकर के मनुष्य को पतित से पावन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ज्ञान सागर है तो ज्ञान के द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान स्नान करना चाहिए। इसीलिए भक्ति में गायन भी है गंगा सागर का मेला। ज्ञान गंगाएं जब सागर में मिलती है तो वहां पर मनुष्य जाकर के स्नान करते हैं, सोचते हैं उससे सदगति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि वास्तव में संगम पर परम पिता परमात्मा पतित पावन आकर के जगत पिता जगत अम्बा के माध्यम से संसार को सदगति देते हैं। इसलिए बाबा कहे ये गायन है और तुम बच्चों को नित्य गंगा स्नान करना है, अर्थात ज्ञान गंगा स्नान जरूर करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया के कायाकल्प तरु बनाने। कैसे बनाएंगे? याद से ही कायाकल्प तरु होंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? उत्तर है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। शिव बाबा को कहा जाता है महाकाल। तो बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। जीते जी मरना, उसको ही कहा जाता सच्चा जीवदान। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम तो एक होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं
शरीरधारी है तो जगत पिता भी है, जगत अम्बा है तो बाबा कहते जगत पिता भी है। जिसको प्रजा पिता भी कहा जाता है, जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहां होंगे, संगम पर होंगे, दोनों का नाम भी सुनाया। जगत अम्बा का नाम है सरस्वती और जगत पिता को कहा प्रजा पिता ब्रह्मा। दोनों है प्रजा पिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, वो प्रजा पिता हो गया और दूसरा जगत पिता है निराकार शिव बाबा जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा, सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। वह जगत पिता प्रजा पिता, ये निराकार परम पिता परमात्मा जिसको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है, फिर आत्माओं को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा दूसरा प्रजा पिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता है। पतित पावन तो एक है, ये तो दो हो गए, जगत पिता जगत अम्बा ये तो दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा को ही सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कहा, विष्णु व शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जिसको एडॉप्ट करते वो कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है जहां शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजा पिता ब्रह्मा एक को बाबा एक को दादा कहेंगे, यह तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है, शिव वंशी, फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं, शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं, शिव बाबा इनमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। बाबा कहते देवताएं सतयुग में होते हैं, उनको पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता है। नारायण बाबा भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहेंगे। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है,
वह ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ, वहां तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सत्ययुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजेन्युएट करते हैं। रिजेन्युएट माना पुनर्नवा करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। रिजेन्युएट कहो, काया कल्प तरु कहो, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नर्कवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी है। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नर्कवासी बने हो। यहां भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं, इसलिए भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, लेकिन जैसे एक है वैसे ही सभी है। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनेस्टी उतरती है। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य फास्ट हो जाता है। ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर चंद्रवंशियों से वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल है चोटी। चोटी के ऊपर है बाप शिव बाबा। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोत्र पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां। एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते हैं। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे, तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने? बाबा कहते स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। या सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है? बाबा कहते पूछो। ओ गॉड फादर, तो उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देश काल बताओ, पूरा परिचय होना चाहिए, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। जो भगवान को जानते ही नहीं है
उनको तो नास्तिक कहेंगे ना, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। वह है ही पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रौरव नर्क कहा जाता है। इनके भी स्टेजेस होती है, बाबा कहते हैं पतित बनने की भी स्टेजेस होती है। द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहां तीन रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहां शिव बाबा की पूजा, कहां टिवाटे की। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन, पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है, वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा। मनाई शिव जयंती यहां भारत में तो जरूर भारत में ही आता होगा। पतितों को पावन देवता बनाने, ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यहां तुम आते ही हो, इसलिए पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी दो भुजाएं हैं, वैसे उन्हों को भी दो भुजाएं हैं, देवताओं को भी दो भुजाएं हैं। चार आठ भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, ये अलंकार दे दिए हैं। चतुर्भुज दिखाया प्रवृत्ति दिखाने के लिए, वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए चतुर्भुज दिखाया है। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है, देवताएं वैष्णव थे, संपूर्ण सात्विक थे। वल्भाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन, वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, वो खाली अन्न की शुद्धि रखते हैं, बाकी पवित्रता की धारणा उनके जीवन में नहीं होती। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती है, वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि इन्हों में क्या फर्क है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। वह है बचपन का रूप, वह है बड़ेपन का रूप। राधे कृष्ण ये बचपन का स्वरूप, लक्ष्मी नारायण ये राजगद्दी पर बैठने वाला स्वरूप, तो बड़ेपन का स्वरूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, अब राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए, बताओ। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को सतयुग में दिखाया और राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। वास्तव में भक्ति मार्ग में गाते जरूर है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नम वासुदेव। तो ये एक जन्म की ही कहानी है, जिसको बचपन में श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, जब रासलीला रचाई तो हरे मुरारी कहा, और जब राजगद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण कहते हैं, वही वासुदेव है। तो ये एक जन्म की कहानी है, लेकिन अज्ञानता के कारण लक्ष्मी नारायण को सतयुग में दिखाया और कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं ये सिद्ध करता है कि कोई समझते नहीं है। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे
कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। झाड़ को देखने से समझ में आता है कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं, सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती है। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं है, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। सतयुग में सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे, पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, यह है बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है, नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर है और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय दे तुम यहां ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको तीन पिता है, लौकिक पिता भी है और प्रजा पिता भी है, शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में दो पिता होते हैं, सतयुग में एक पिता होगा। ये सब समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं, शिव बाबा इस समय हमें लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हो, महाकाल शिव बाबा कहते मैं तुम सबको मौत देने आया हूं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जीवदान देता हूं। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूं, वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा, इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है, लगती भी ये संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। महाभारत की लड़ाई भी तब लगती है जब हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। दूसरी पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा
सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो। एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु व व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते हैं, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। आज का अव्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। ज्वाला प्रज्वलित रहे उसके लिए सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ, देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण चलती है। अच्छा, ओम शांति।